0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च, उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश शामिल होंगे। विभिन्न मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। सम्मेलन में राज्य न्यायिक अकादमियों, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों, राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन आर्द्रभूमि प्राधिकरणों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। इसमें 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर वे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर $221 अरब से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर कल जारी वार्षिक सर्वेक्षण में ये जानकारी दी गई। पिछले वर्ष के दौरान भारत के कुल सॉफ्टवेयर निर्यात में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी BPO सेवाओं का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने चुने हुए जिलों के श्रम बाजार विवरण जारी कर दिए हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने पहली बार जिला स्तर पर भी श्रम बाजार के विवरण जारी किए हैं। लगभग 57.8% जिलों में महिलाओं की श्रम भागीदारी 40% से अधिक है। सबसे अधिक आबादी वाले 50% जिलों में श्रमिक जनसंख्या दर 37.3 से 76.7% के बीच रही है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में हुई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी गई थी। इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य विदेशी योगदान के उपयोग को ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते को गति देने के लिए बैठक की। दोनों पक्षों ने बातचीत में तेजी लाने और जल्द से जल्द समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अपनी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत को स्वीडिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के नवीनतम बिजनेस क्लाइमेट सर्वे 2026 में 40 से अधिक वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भी भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नए मानक स्थापित कर रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने कथित LIC निवेश धोखाधड़ी के मामले में मुंबई स्थित रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, इसके पूर्व अध्यक्ष और कुछ अज्ञात सरकारी कर्मचारियों सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। यह मामला भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की शिकायत के आधार पर किया गया है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL ने आंध्र प्रदेश के डुग्गा राजपट्टनम में नया ग्रीनफील्ड शिपयार्ड विकसित करने के लिए नेशनल शिप बिल्डिंग और हैवी इंडस्ट्रीज पार्क आंध्र प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। MDL रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक नवरत्न रक्षा सार्वजनिक उपक्रम है। 20वें एशियाई खेलों की औपचारिक शुरुआत आज से जापान के आईची नागोया में हो रही है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और एशियाई खेलों में शॉटपुट के मौजूदा चैंपियन तजिंदर पाल सिंह तूर इस उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

आज का चिंतन। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित ये श्लोक है, कलातीतम कल्याण कल्याण कल्पम सदा सद्रसानंददम सदपदज्ञम अनेकाक्षरम निष्कलम निर्मलम तम गणेशम भजे मोदक प्रियांतम। अर्थात मैं उन गणेश भगवान की आराधना करता हूँ जो कलाओं से परे हैं, जो परम कल्याणकारी हैं और भक्तों का कल्याण करने वाले हैं, जो हमेशा सतचित्त आनंद प्रदान करने वाले हैं, जो ओंकार स्वरूप हैं, निष्कल यानी अविभाज्य हैं, अत्यंत निर्मल और जिन्हें मोदक प्रिय है। अब प्रस्तुत है भक्ति रचनाएं।

सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरित मानस गान भाग 316। सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज सुनिए श्रृंखला ख्याल और तरानों की विशेषताएं भाग 4। कलाकार हैं डॉक्टर पंडित गोकुलोत्सव महाराज। प्रस्तुति छाया गांगुली की। सात बजे से भूले बिसरे गीत कार्यक्रम 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। 8:15 त्रिवेणी। 8:30 पर सुनिए चित्रलोक। 9:30 पर आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा गायक जुबिन गर्ग पर। 10:00 पिटारा के अंतर्गत सुनिए कहानी रिहाई। लेखिका अलका सिन्हा, वाचक स्वर मंदाकिनी जोशी कर, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। 11:00 चित्रपट संगीत। 11:30 पर मैटनी शो। इसके अंतर्गत लेखक और शायर आलोक यादव से यूनुस खान की बातचीत सुनिएगा। संपादक सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान की। दोपहर 1:00 सुरीला सफर। दो बजे त्रिवेणी। आलेख एवं स्वर ममता सिंह का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। 2:30 पर सदाबहार नगमे। 3:00 मनचाहे गीत। 3:30 पर नाट्य तरंग। नाट्य तरंग में आज सुनिए नाटक स्वप्न वासव दत्ता भाग 1। महाकवि भास के संस्कृत नाटक का रेडियो रूपांतरण। रूपांतरकार हैं कृष्णकांत दुबे, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा। पिटारा में शाम 4:00 बॉम्बे टॉकीज। गायिका पूर्णिमा सुषमा श्रेष्ठ से मंदाकिनी जोशी की बातचीत सुनेगा। इस बातचीत का आज पहला भाग। संपादन सहयोग अंबालिका सिंह का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। शाम 5:00 छाया गीत। 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 6:35 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या रंजन। आपको फिर से याद दिला दे, शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम सुनेगा श्रृंखला ख्याल और तरानों की विशेषताएं भाग 4। कलाकार हैं डॉक्टर पंडित गोकुलोत्सव महाराज, प्रस्तुति छाया गांगुली की। शाम 7:00 विशेष जयमाला कार्यक्रम निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा पर केंद्रित होगा। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत जिज्ञासा। 8:00 हवा महल कार्यक्रम में सुनिएगा सुनो कहानी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी गूंगी का पहला भाग। वाचन स्वर शेफाली कपूर का, प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई की। 8:15 पर चित्रलोक। 9:00 कार्यक्रम आपके लिए।

9:30 पर आज के फनकार ये कार्यक्रम केंद्रित होगा गायक जुबिन गर्ग पर, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। 10 बजे छाएगी, 10:30 पर ढलती जाए रात और 11 बजे मेटनी शो। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान भाग 316।

राज्यसभा में रावण अंगद के पराक्रम का आभास पा चुका था, फिर भी मंदोदरी की समझावन का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह कहती रही, जिन्होंने विराद, खरदूषण और कबंद को अपनी लीला से मार डाला, जिसके एक ही वाण से बाली का वध हो गया, हे स्वामी, आप उनकी महिमा को समझने की चेष्टा कीजिए। उन्होंने आपकी भलाई के लिए ही अपना दूत भेजा था। उसने आकर आपकी सभा में आपके सभी योद्धाओं की वीरता को इस प्रकार छिन्न भिन्न कर दिया जैसे एक सिंह हाथियों के झुंड को तितर बितर कर देता है। आप ऐसे शक्तिमान को मनुष्य समझने की भूल कर रहे हैं। आपका मान और मद सब व्यर्थ है। आप काल के वश में हो गए हैं, इसी कारण आपको वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो रहा है। मंदोदरी के अनुनय को अनसुना कर रावण सवेरा होते ही अभिमान पूर्वक सिंहासन पर जा बैठा और एक बार फिर वही हठधर्मिता। इधर सुबेल पर्वत पर अंगद श्रीराम के सम्मुख उपस्थित होते हैं, जो रावण राक्षस कुल का शिरोमणि है और जिसके बल से सारा जगत परिचित है। उसके चार चार मुकुट अंगद ने किस प्रकार यहां तक फेंके? श्रीराम की इस जिज्ञासा के उत्तर में अंगद का निवेदन है, हे सर्वज्ञ, वे चार मुकुट राजा के चार गुणों साम, दान, दंड और भेद के प्रतीक हैं, जिनका राजा के हृदय में निवास होता है। किंतु रावण राजा के धर्म से विचलित हो गया है, अतः वह उसे छोड़ आपकी शरण आ गए।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, आज आपने सुना भाग 316।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: संगीत सरिता में इन दिनों हम आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला ख्याल और तराने की विशेषताएं। इसे प्रस्तुत किया है प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज ने।
1: संगीत सरिता के समस्त श्रोताओं को गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज का अभिवादन। एक बहुत बढ़िया बात याद आई, सुप्रसिद्ध संगीत शास्त्रज्ञ ठाकुर जयदेव सिंह जी ने कहा कि खड़े स्वर लेना यानी सुरों की पगड़ी उतार लेना है, किंतु मैं तो यह कहूँगा कि खड़े स्वर लेना स्वरों को निर्वस्त्र यानी वस्त्रहीन कर देने के बराबर है। इसलिए श्रुति मूर्छना एवं माधुरी के परिधान से गायन की प्रस्तुति में शोभा बढ़ती है, यही शिष्टता है जिसे हम अदब कहेंगे। गायन वादन में खेल होना स्तुत्य है, खिलवाड़ नहीं, इसलिए गुरुजनों का सान्निध्य अत्यावश्यक है। संगीत साधना नाद ब्रह्म की उपासना है। हमारे शास्त्रों में भगवान और गुरु का एक स्थान है। जिस प्रकार अलौकिक गुणों से युक्त साकार रूप भगवान को आंख होते हुए भी देखा नहीं जा सकता, क्योंकि साइट नहीं है यानी विजन नहीं है, तो हम उन्हें निराकार कह बैठते हैं। जिस प्रकार हमें अपने प्राण दिखाई नहीं देते, फिर भी हम अपनी संजीदगी सजीवता का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार स्वर भी दिखाई नहीं देते, किंतु जैसे स्नेह निराकार है किंतु गाय में व माता में निराकार स्नेह से साकार दूध पैदा होता है, जैसे हवा दिखाई नहीं देती किंतु शरीर को लगती जरूर है, बस इसी तरह स्वर भी आत्मस्पर्श करते हैं, छूते हैं, निराकार स्वर ईश्वर की ओर लौ लगा देते हैं, निराकार होते हुए भी अद्भुत साकार सृष्टि करते हैं और आनंद की वृष्टि होने लगती है। अतः स्वर के माध्यम से ईश्वर की उपासना मंगलाचरण है, अर्थात प्रत्येक चरण हमारा मंगल आचरण है। तो सुनिए रागशाहना में मैं अपनी ही स्वरचित रचना मधुरपिया के उपनाम से प्रस्तुत कर रहा हूँ, यह प्रार्थना यानी हमद है।

संगीत केवल मनुष्य को ही नहीं अपितु प्राणी मात्र जड़ से चेतन तक को अनुप्राणित करता रहा है। इसका सुंदर उदाहरण राग गुजरी टोड़ी की रचना में हम पाते हैं।

0: ख्याल और तराने की विशेषताएं। इस श्रृंखला का चौथा भाग अभी आपने संगीत सरिता में सुना। इसे प्रस्तुत किया था प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज ने। हारमोनियम पर पुरुषोत्तम वालावलकर और तबले पर ओमकार गुलवाड़ी ने संगत की थी। अब यह कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांग

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुनिएगा थोड़ी ही देर में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत करते हैं। आप सभी को नमस्कार, सविता सिंह का। शुरुआत काली घटा फिल्म के इस गाने से।

लता मंगेशकर की आवाज में काली घटा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। बोल हसरत जयपुरी ने लिखे थे, धुन शंकर जयकिशन ने बनाई थी। भूली बिसरी गीत कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ ये गीत। संगीत निर्देशन श्री रामचंद्र का है, फिल्म का नाम अलबेला।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो है संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
4: मैं निकला ओ गडले,
3: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
5: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
6: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
3: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
7: चिट्ठी न कोई संदेह।
3: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारत।

बैजू बावरा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थीं मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और साथियों की। शकील बदायूनी के बोल थे नौशाद के तर्स। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा पर। आइए इस कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा अंतराल लेते हैं।

अंतराल के बाद आपका फिर स्वागत। हमारी याद आएगी इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: चमकती आंखों के आगे ये सितारे कुछ भी नहीं। छोटे बाबू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में। इंदीवर की रचना थी मदन मोहन की तर्स।
1: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
2: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
1: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
2: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
2: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये आरज़ू थी कभी हम बहार देखेंगे। बारिश फिल्म का गीत आप लता मंगेशकर की आवाज़ में सुन रहे थे। गीतकार राजेंद्र कृष्ण थे, संगीतकार थे सी रामचंद्र। और इसी गाने के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए सविता सिंह को नमस्कार।
1: एक विलक्षण गायक
2: अरे ओ रे हे,
1: संगीत के साधक
2: ओ रे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की हो।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घनश्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम हैं राही प्यार के। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को नमस्कार। सविता सिंह का थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे ये कार्यक्रम।

0: द ग्रेट गैम्बलर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें आशा भोसले, अमिताभ बच्चन और शरद कुमार की थी। आनंद बख्शी के बोल थे, आर टी बर्मन की तर्ज थी।
1: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
2: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
1: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
2: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहां से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
2: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: शैलेंद्र सिंह और उषा मंगेशकर की आवाजों में तराना फिल्म का गीत अभी आपने सुना। इसे लिखा था तिलक राज थापर ने और धुन बनाई थी राम लक्ष्मण ने।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: एक विलक्षण गायक,
3: अरे ओरे हे,
2: संगीत के साधक,
3: ओ रे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की,
2: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
3: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात,
2: वो है संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
4: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
2: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:00

लता मंगेशकर और बप्पी लहरी की आवाजों में सुरक्षा फिल्म का गीत अभी आपने सुना। इसे रमेश पंत ने लिखा था और बप्पी लहरी ने इस गीत की धुन बनाई थी। हम हैं राही प्यार के, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम में अब समय है कि एक बहुत छोटा सा अंतराल लिया जाए।

हम हैं राही प्यार के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मोहम्मद रफी, आशा भोसले की आवाजों में ये कुर्बानी फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं। गीतकार हैं इंदीवर, संगीतकार कल्याण जी, आनंद जी।

0: मोहम्मद रफी, आशा भोसले की आवाजों में इंदिवर का लिखा ये गीत अभी आप सुन रहे थे। संगीत निर्देशन कल्याण जी आनंद जी का था। फिल्म का नाम था कुर्बानी।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी ना कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: कि नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा। मैं मिल जाऊंगा मिट्टी में, कलम जिंदा रहे।
1: मैटिनी शो कार्यक्रम में मुलाकात जाने माने शायर आलोक यादव से।
6: मैंने तस्वीर तेरे साथ जो खिंचवाई थी, उम्र भर सिर्फ वही रौनक की तन्हाई थी। वक्त के साथ तो रिश्ते भी बदल जाते हैं, दिल में दीवार कहां पहले मेरे भाई थी।
1: शनिवार 19 सितंबर को दिन में 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विवेक।

मोहम्मद रफी और उषा मंगेशकर की आवाजों में अभी आपने काला पत्थर फिल्म का गीत सुना। गीतकार थे साहिल लुधियानवी और संगीतकार थे राजेश रोशन। इसी गीत के साथ ही आज का हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत। सविता सिंह को नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। स्वीडिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट, 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता में भारत पहले स्थान पर। रिजर्व बैंक ने कहा, भारत में सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में वर्ष 2025-26 में वार्षिक आधार पर 8.2% की वृद्धि। और 20वें एशियाई खेलों का शुभारंभ आज से जापान में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर वे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: 20वां रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसके तहत नवनियुक्त कर्मचारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। इनमें वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रक्षा मंत्रालय शामिल है। इस 20वें रोजगार मेले के साथ ही लगभग 12,75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। रोजगार मेला युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और देश की विकास यात्रा में उनकी ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने पर सरकार के लगातार ध्यान को दर्शाता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च, उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। ये सम्मेलन न्यायिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक ज्ञान, पर्यावरण से जुड़ी सुशासन प्रक्रियाओं और संस्थागत अनुभवों के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करेगा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक के बाद श्री संजय जायसवाल ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और सदस्यों ने कई प्रश्न उठाए।
2: बहुत ही अच्छे से कॉर्डियल वे से पूरी मीटिंग चली। सभी सांसदों ने अपने अपने प्रश्न पूछे। हमें मैंडेट यही मिला हुआ है कि विंडो सेशन से पहले हमें अपनी रिपोर्ट दे देनी है। हम निश्चित देने में सफल हो पाएंगे। होम मिनिस्ट्री के तरफ से ब्रीफिंग थी। जाहिर बात है कि पहली ब्रीफिंग हमेशा डिपार्टमेंट की होती है, तो जो पेरेंट डिपार्टमेंट है उसने अपनी सारी ब्रीफिंग की।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नोएडा, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े राज्य के 8 सीमावर्ती जिलों में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद श्री यादव ने बताया कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजनाओं पर चर्चा की गई।
3: व्हीकल पॉल्यूशन को लेकर जो ओल्ड व्हीकल है उनको निदान किया जाए। नई ईवी पॉलिसी में बसों की हमने समीक्षा करी, उसके साथ ही प्रदूषण सर्टिफिकेट की अनिवार्यता के विषय पे हमने करी। एग्रीगेटर वाहन है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी और व्हीकल पॉल्यूशन को लेकर के क्या और प्रभावी कार्य किए जा सकते हैं उसकी समीक्षा करी। इस क्षेत्र में आने वाला जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है उसमें हमने देखा है कि 80% इंडस्ट्रीज ने OCMs और APD जो है वो लगा ली है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनका जीवन जन सेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ा रहा है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के इन प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। इसी कड़ी में प्रस्तुत है वर्ष 2020 से शुरू हुई भारतीय अंतरिक्ष नीति पर हमारी विशेष श्रृंखला।
5: स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स की वजह से स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी सुधार देखा जा रहा है। आईआईटी मद्रास के इंजीनियरों की टीम द्वारा शुरू किए गए स्पेस स्टार्टअप गैलेक्स आई इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इस स्टार्टअप ने दुनिया का पहला एप्टो एसएआर सैटेलाइट मिशन दृष्टि विकसित किया है। गैलेक्सी आई के सीईओ और को फाउंडर सूर्य सिंह ने आकाशवाणी से खास बातचीत में स्पेस सेक्टर में हुए सुधारों के फायदों के बारे में बताया है।
6: The government is supporting the sector through technology transfers.
7: सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर R&D और ज्यादा फंडिंग के जरिए इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है। इसमें 1,000 करोड़ रुपए का स्पेस सेक्टर वेंचर कैपिटल फंड और स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी पहल शामिल हैं। इससे हमारी जैसी नई कंपनियों को मुश्किल चुनौतियों का सामना करने, भारत में अहम टेक्नोलॉजी विकसित करने और भारत के स्पेस प्रोग्राम को अगले चरण में ले जाने के लिए सार्थक योगदान का आत्मविश्वास मिलता है।
5: गैलेक्सी आई के सीईओ सूर्य सिंह का कहना है कि स्पेस सेक्टर में हुए सुधारों ने प्राइवेट कंपनियों और इंडस्ट्रीज के लिए वैल्यू चेन के रास्ते खोल दिए हैं। साथ ही इन स्पेस इंडस्ट्री को मंजूरी दिलाने और इसरो की सुविधाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकल जानकारी तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। इससे हमें सैटेलाइट सिस्टम और मिशन ऑपरेशन के क्षेत्र में अपनी इन हाउस क्षमताएं बढ़ाने में भी मदद मिल रही है। इसके अलावा सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर R&D और जरूरी फंडिंग के जरिए इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है, जिसमें स्पेस सेक्टर वेंचर कैपिटल फंड और स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी पहल शामिल है। उन्होंने कहा कि नई कंपनी के लिए इससे मुश्किल चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी और भारत में जरूरी टेक्नोलॉजी विकसित करने और भारत के स्पेस प्रोग्राम के अगले चरण में अहम योगदान देने में भी मदद मिल रही है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते को गति देने के लिए बैठक की। दोनों पक्षों ने बातचीत में तेजी लाने और जल्द से जल्द समझौते को अंतिम रूप देने की अपनी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते से वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश तथा आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों में नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। भारत को स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के नवीनतम बिजनेस क्लाइमेट सर्वे में 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है।
8: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नया मानक स्थापित कर रहा है। ग्लोबल बिजनेस क्लाइमेट सर्वे 2026 में 41 बाजारों के बारे में जानकारी दी गई है। ये सर्वेक्षण विदेशों में कारोबार करने को लेकर स्वीडिश कंपनियों के अनुभव और दृष्टिकोण को सामने रखता है। इसका उद्देश्य प्रमुख स्वीडिश निर्यात बाजारों में आर्थिक प्रदर्शन, कारोबारी संभावनाओं और कामकाज की परिस्थितियों की तुलना के लिए एक आधार उपलब्ध कराना है। समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
0: वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर $221 अरब से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर जारी वार्षिक सर्वेक्षण में ये जानकारी दी गई।
7: वार्षिक सर्वेक्षण के लिए 7,569 सॉफ्टवेयर निर्यात कंपनियों से संपर्क किया गया था, जिनमें से 2,363 कंपनियों ने जवाब दिया। कुल अनुमानित सॉफ्टवेयर निर्यात में इन कंपनियों की हिस्सेदारी लगभग 89% थी। पिछले वर्ष के दौरान भारत में कुल सॉफ्टवेयर निर्यात में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी BPO सेवाओं का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा था। भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए 54% से अधिक की भागीदारी के साथ अमरीका सबसे बड़ा केंद्र बना रहा। 31.8% के साथ यूरोप दूसरे स्थान पर था। ब्रिटेन की हिस्सेदारी 15.4% थी। रिजर्व बैंक ने यह भी बताया कि भारतीय कंपनियों की विदेशी सहयोगी कंपनियों का स्थानीय सॉफ्टवेयर व्यापार वर्ष 2025-26 में $14 अरब से बढ़कर लगभग $18 अरब हो गया। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मौसम विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने पूर्वी राजस्थान, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, केरलम और माहे में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज शाम उत्तरी अंडमान सागर और उससे सटे इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से 22 सितंबर के आसपास ओडिशा में खासकर दक्षिणी हिस्सों में वर्षा की संभावना बढ़ सकती है।
9: बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के कारण इस महीने की 22 तारीख के आसपास उड़ीसा में फिर से बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि ये सिस्टम आज शाम के आसपास उत्तरी अंडमान सागर और उसे सटे इलाकों में बन सकता है। उम्मीद है कि ये धीरे धीरे और मजबूत होगा और अगले 3-4 दिनों में पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए दक्षिण उड़ीसा, उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों की तरफ बढ़ेगा। जैसे जैसे ये सिस्टम तट के करीब आएगा, दक्षिणी उड़ीसा में बारिश बढ़ने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने के लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया है। इसके साथ ही ग्रीनलैंड को खरीदने की ट्रंप की बार बार की मांगों को लेकर महीनों से चल रहा तनाव समाप्त हो गया है। समझौते के अंतर्गत ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार बना रहेगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस समझौते से अमरीका को ग्रीनलैंड में सुरक्षा और अन्य सभी जरूरतों पर स्थायी नियंत्रण मिल जाएगा। जापान के आइची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन आज भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और शॉटपुट खिलाड़ी तजिंदर पाल सिंह तूर उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। भारत के 500 से अधिक खिलाड़ी 37 खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
10: जी विशाल, तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों को नए नाम और चुनाव चिन्ह आवंटन आज के अधिकतर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, ममता को दोहरा झटका, बगावत के चलते निर्वाचन आयोग ने पार्टी का चुनाव चिन्ह किया जब्त। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, बंगाल में खेला तृणमूल में अब फुटबॉलर वर्सेस लिफाफा। पंजाब केसरी का कहना है, निर्वाचन आयोग का ये फैसला दो उपचुनावों के लिए, अंतिम निर्णय बाद में। दो न्यायाधीशों की पीठ जाएगी एनटीए मुख्यालय। जनसत्ता के अनुसार एनटीए मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा, सुधारों को देखने के लिए खुद जाएंगे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। पीठ ने मामले में मांगी है प्रगति रिपोर्ट। वायुसेना को तेजस की मिली अंतिम खेप। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने भारतीय वायुसेना को 20 तेजस विमानों के डिलीवरी का अनुबंध पूरा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, युद्ध की बदलती तस्वीर को देखते हुए स्वदेश में विकसित प्रौद्योगिकी समय की मांग। रेटिंग एजेंसियों मूडीज और जेफरीज ने भारत का ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर किया 7%। दैनिक भास्कर लिखता है, ईरान युद्ध और महंगे कच्चे तेल के बीच 5 महीने में भारत की ग्रोथ स्टोरी की तस्वीर बदली। पंजाब के अमृतसर में ASI की गोली मारकर हत्या, दैनिक ट्रिब्यून के पहले पन्ने पर है। ड्यूटी के दौरान दो हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम। विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी सरकार को निशाना बनाते हुए राज्य में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। 17 साल में सबसे सूखा रहा 2026 का मानसून। राजस्थान पत्रिका के अनुसार अलनीनो के लगातार बढ़ते असर से देश में 346 जिले प्रभावित, खरीफ उत्पादन घटने की आशंका।
0: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट, 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता में भारत पहले स्थान पर। रिजर्व बैंक ने कहा, भारत में सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में वर्ष 2025-26 में वार्षिक आधार पर 8.2% की वृद्धि। और 20वें एशियाई खेलों का शुभारंभ आज से जापान में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज त्रिवेणी की धाराएं मिल रही हैं अहंकार पर। दोस्तों अहंकार इंसान का वो भाव है जो उसे उन्नति से अवनति की ओर ले जाता है। इसके विपरीत इंसान की विनम्रता उसे बड़ा और विराट बनाती है। आपके हाथ में है विकल्प, अहंकारी बनकर छोटा बनना है या विनम्र होकर विशाल बने रहना है। समय कभी एक सा नहीं रहता है। अच्छे समय में इंसान को अहंकारी नहीं होना चाहिए बल्कि अच्छे समय का आनंद लेना चाहिए। अहंकार आपको एक दिन गर्त की ओर ले जाता है।

दोस्तों, वक्त बदलते देर नहीं लगती। लोग वक्त को स्थायी मान लेते हैं, ये उनके विचारों की भूल है। आज आपके पास सब कुछ है, कल हो सकता है कुछ ना हो। इसलिए जब किसी से कोई बात कहें, किसी से बुरा बर्ताव करें, तो ये ध्यान रखें कि आपके गुरूर से चूर बातों से सामने वाले का मन कहीं आहत तो नहीं हो रहा है। कुछ लोग अहंकार में डूबकर आत्मश्लाघा में लीन हो जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं अपने बारे में कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। इन बातों से बचना चाहिए।

दोस्तों, जब सचमुच किसी में काबिलियत होती है तो लदे हुए फल की तरह वो व्यक्ति विनम्र होकर झुक जाता है। कई शिखर पर पहुंचे व्यक्तियों में गुरूर जरा भी नहीं देखा गया, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति आपके आसपास जरूर होंगे जो बिना किसी लियाकत के अपनी काबिलियत के डंके पीटते नजर आएंगे। ये इंसान का अहंकार है। जब भी आप किसी से कुछ कहें तो अहंकार से भर कर नहीं बल्कि नरमी से पेश आए तो आप एक नेक इंसान कहलाएंगे। आइए त्रिवेणी तट पर अपने भीतर के अहंकार को दूर भगाने की कोशिश करें।

0: कि नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा। मैं मिल जाऊंगा मिट्टी में, कलम जिंदा रहे।
1: मैटिनी शो कार्यक्रम में मुलाकात जाने माने शायर आलोक यादव से।
0: मैंने तस्वीर तेरे साथ जो खिंचवाई थी, उम्र भर सिर्फ वही रौनक के तन्हाई थी। वक्त के साथ तो रिश्ते भी बदल जाते हैं, दिल में दीवार कहां पहले मेरे भाई थी।
1: शनिवार 19 सितंबर को दिन में 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

अभी आपने ट्यून किया है देश का नंबर वन चैनल विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम कुछ ही पलों में।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोताओं, आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, संगीत का भोर से रिश्ता बहुत गहरा और आत्मीय होता है। भोर जब धीरे धीरे रात की चादर समेटती है तो लगता है जैसे आकाश किसी अनसुनी धुन का आलाप कर रहा हो। चिड़ियों की मीठी बोली, पत्तों की सरसराहट और मंदिर की दूर से आती घंटियों में संगीत अपने सबसे सहज रूप में सुनाई देता है। गीत संगीत हमारे कानों में सुरों का रस घोल देता है। चित्रलोक कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत से।

0: अभी आपने सुना अग्निपथ फिल्म का गाना, आवाजें थी अजय और साथियों की, गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य, धुन बनाई अतुल अजय ने।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा,
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अभी आपने सुना प्रेम रतन धन पायो का गीत, आवाजें अन्वेषा, विनीत सिंह, हर्षदीप कौर, शबाब साबरी और उनके साथियों के साथ। गीत रचना इरशाद कामिल, संगीत दिया हिमेश रेशमिया ने। और अब समय हो चला है चित्रलोक कार्यक्रम में एक ब्रेक का, तो लेते हैं एक ब्रेक।

कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। श्रोताओं, आज हम 19 सितंबर को आधुनिक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विद्वान संगीतज्ञ पंडित विष्णु नारायण भातखंडे को याद कर रहे हैं। उन्होंने हिंदुस्तानी संगीत के रागों को 10 थाटों में व्यवस्थित करने की पद्धति विकसित की और संगीत शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कई संस्थानों की स्थापना की। ग्वालियर और लखनऊ में संगीत शिक्षा के संस्थानों के विकास को गति मिली। उन्होंने रागों और संगीत के नियमों को पहली बार आधुनिक रूप से लिपिबद्ध किया और भातखंडे संगीत शास्त्र की रचना की। आपकी प्रसिद्ध पुस्तक हिंदुस्तानी संगीत पद्धति क्रमिक पुस्तक मालिका, जिसके 6 भाग प्रकाशित हो चुके हैं, इसे शास्त्रीय संगीत आधार का स्तंभ माना जाता है। आइए सुनते हैं ये इस फिल्म का गाना, आरक्षण फिल्म का गाना सांस अलबेली, जिसे स्वर दिया है पंडित छन्नूलाल मिश्र ने। गीतकार प्रसून जोशी और संगीतकार हैं शंकर एहसान लॉय।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे है।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
4: मैं निकला ओ गडले
3: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
5: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
6: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
3: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
7: चिट्ठी न कोई संदेह।
3: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4:00

0: अभी आपने सुना फिल्म पद्मावत का गीत, आवाजें हैं नीति मोहन की, गीतकार सिद्धार्थ गरिमा, संगीतकार संजय लीला भंसाली।
1: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
2: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
1: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बाया हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
2: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
2: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
4: मैं और मेरी तन्हाई,
3: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम चित्रलोक। अब समय हो चला है एक ब्रेक का।

विविध भारती पर चल रहा है कार्यक्रम चित्रलोक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का अगला गीत।

अभी आपने सुना धड़क टू फिल्म का गाना, स्वर दिया दर्शन रावल और जोनिता गांधी ने, गीतकार गुरप्रीत सैनी, संगीत दिया रोचक कोहली और शरण रावत ने। आइए सुनते हैं चितलो कार्यक्रम का अगला गीत।

अभी आपने सुना सिटी लाइट फिल्म का गाना, जिसे गाया अरिजीत सिंह ने और गीत की रचना की रश्मि सिंह ने और गीतकार संगीतकार जीत गांगुली।

0: सेवा से देश सेवा के दूसरे संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा 25 वर्ष जनहित से जनविश्वास तक। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के तौर पर जनसेवा के 25 वर्ष, ये केवल एक समय अवधि नहीं है बल्कि ये एक यात्रा है अनुभवों की, चुनौतियों की और प्रयासों की। और ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें शासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेही और जन केंद्रित बनाया गया है। लेकिन इसके पीछे सिर्फ ये सोच नहीं थी, लेकिन आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या पहल की गई थी, बल्कि ये है कि इसके पीछे प्रशासनिक सोच क्या रही और जमीनी स्तर पर इन परियोजनाओं को, इन योजनाओं को पूरा करने के लिए क्या पहल की गई थी। और इन सब पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज हैं नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में। अमिताभ जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ, 25 वर्ष बहुत ही लंबा सफर होता है किसी भी नेता के लिए, इतने साल पूरा करना। तो अगर आप देखें इस दौरान शासन में और जवाबदेही में किस तरह का बदलाव आया, क्या सिर्फ ये टेक्नोलॉजी तक सीमित रहा या इसमें जो जवाबदेही है वो भी बढ़ी?
2: मेरी पहली मुलाकात माननीय प्रधानमंत्री से हुई जब ये मुख्यमंत्री थे। मैं उस समय दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मुख्य अधिकारी था और मैं सारे चीफ मिनिस्टर्स के पास जा रहा था कि नए शहर बनाने के लिए जमीन करीब 150 किलोमीटर एक शहर बनाने के लिए चाहिए थी, तो सारे मुख्यमंत्री ने मना कर दिया। और जब मैं गुजरात गया तो चीफ मिनिस्टर से जब मिला तो उन्होंने कहा कितनी जमीन चाहिए, तो मैंने कहा कि साहब करीब 150 स्क्वायर किलोमीटर चाहिए। तो उन्होंने कहा 150 की बात मत करो मेरे से, मैं तुमको 750 स्क्वायर किलोमीटर देता हूँ, तुम्हें बनाना है नया शहर तो जो कि आगे चल के सिंगापुर से भी अच्छा एक शहर बने उस तरह का। तो इस तरह धुलेरा शहर की शुरुआत वहां से हुई, फिर उसकी मास्टर प्लानिंग कराई। तो लगातार मैं गुजरात जाता रहा और मैं उसके बाद मैंने वाइब्रेंट गुजरात में भी 2 साल भाग लिया। मुझे ये लगा कि चीफ मिनिस्टर मोदी साहब बहुत विजनरी हैं और आगे की सोचते हैं। फिर उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बन के आए, उस समय मैं सचिव था डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी और प्रमोशन का, तो मेक इन इंडिया किया, स्टार्टअप इंडिया किया। फिर बाद में जब नीति आयोग में सीईओ बना तो फिर उस समय ये सारा डिजिटाइजेशन किया, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम किया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोग्राम किया। और मेरे विचार से ये हमेशा लगा मुझे कि एक तो ये अगले 30 वर्ष आगे की सोचते हैं।
1: और जैसा आपने उदाहरण दिया कि आप इतनी जगह गए तो उन्होंने आपको सुना। प्रधानमंत्री मोदी की खासियत ये है कि जब उनके पास कोई आता है वे उनको सुनते हैं, समझते हैं और फिर कोई प्रतिक्रिया देते हैं और विजनरी हैं, दूर की सोचते हैं। सरकार समय समय पर योजनाओं और नीतियों की समीक्षा के लिए चिंतन शिविर आयोजित करती है। आइए सुनते हैं इस संबंध में एक रिपोर्ट।
0: सरकारी योजनाओं और नीतियों को लागू करने में अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मिशन कर्मयोगी शुरू किया। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की क्षमता और कौशल को लगातार मजबूत करना है। नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग यानी मिशन कर्मयोगी को सितंबर 2020 में मंजूरी दी गई थी। इसका एक प्रमुख उद्देश्य सरकारी व्यवस्था में रूल बेस्ड से रोल बेस्ड तरीके की ओर बढ़ना है, यानी अधिकारी और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी और भूमिका के अनुसार जरूरी क्षमताएं विकसित कर सकें। मिशन कर्मयोगी का डिजिटल प्लेटफॉर्म है iGOT कर्मयोगी। इसके जरिए सरकारी कर्मचारियों को अलग अलग विषयों पर ऑनलाइन प्रशिक्षण और सीखने के अवसर मिलते हैं। अगस्त 2026 में संसद में दी गई जानकारी के अनुसार iGOT कर्मयोगी पर 1,70,00,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं और प्लेटफॉर्म पर 5,600 से ज्यादा कोर्स उपलब्ध हैं। ये कोर्स डोमेन, फंक्शनल और बिहेवियर क्षमताओं से जुड़े हैं। प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कोर्स 23 भाषाओं में है, जिनमें हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाएं भी शामिल हैं। अब तक आईगॉट पर 14 करोड़ 42 लाख से ज्यादा कोर्स कम्प्लीशन दर्ज किया जा चुका है। प्लेटफॉर्म पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों से जुड़े 218 कोर्स भी उपलब्ध हैं।

0: सरकार के अनुसार केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग तथा सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आईगॉट प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड हो चुके हैं। मिशन कर्मयोगी को लागू करने के लिए 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ द्विपक्षीय समझौते भी किए गए हैं।
1: प्रफुल्ल जी, प्रधानमंत्री मोदी विजनरी हैं, यही सोच उनको यहाँ तक लेकर आई है, 25 वर्ष पूरे किए हैं और इसमें उन्होंने जन भागीदारी को सबसे बड़ा जो है अपना एक एस्पेक्ट बनाया है।
2: हम 25 वर्ष किसी एग्जीक्यूटिव रोल में चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर वो रोल तो देखते हैं, उसके पीछे 15 वर्ष उनकी संगठनात्मक यात्रा और उससे पूर्व 15 वर्ष सामाजिक काम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, तो जो जमीनी वास्तविकता है वो स्वयं नीचे से आने के कारण उनको उसकी बहुत अच्छी समझ, लेकिन उसके साथ साथ उनको टेक्नोलॉजी और बदलती हुई दुनिया की भी बहुत अच्छी समझ, तो उस कारण से पार्टिसिपेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन इनका गवर्नेंस में उन्होंने बहुत प्रयोग किया। मतलब जब चीफ मिनिस्टर बने तो स्वागत जैसी उन्होंने ये की, मुझे ध्यान में जब 20 वर्ष पूरे हुए तो गुजरात जैसे राज्य में लोग ये कहते थे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ग्रीवेंसेस लेकर कौन जाएगा, बट दैट हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल, और जब वो सेंटर में लेकर आए तो माईगोव के प्लेटफॉर्म के द्वारा उसी को और भी नए आयाम उसमें जोड़े, तो केवल ग्रीवेंसेस नहीं, आप आइडियाज भी शेयर कर सकते हो। तो पार्टिसिपेशन और उसका स्केल, प्रधानमंत्री मोदी जी की खासियत यह है कि वो, अभी जैसे अमिताभ जी ने बताया कि आप 150 क्यों मांग रहे हो, 750, तो वो बड़े स्केल पर सोचते हैं, तो केवल दूर की नहीं, उसका स्केल, उसका स्पीड और उसका ग्राउंड पर इम्प्लीकेशन क्या होगा, इसकी पूरी सोच रख के फिर वो उसको करते हैं। और इसी कारण से गवर्नेंस के जो पैरामीटर्स माने जाते हैं, आपने अकाउंटेबिलिटी की बात की, जवाब दी या ट्रांसपेरेंस, पारदर्शिता, फिर उसके साथ साथ डिलीवरी, बार बार वो इस पर जोर देते हैं कि गवर्नेंस जो है वो डिलीवरी पर सबसे खासियत यदि किसी इसमें रही है, तो आप किसी भी पावर सेक्टर से लेकर किसी भी स्कीम को आप एक डैशबोर्ड पर, उनकी सीएम थे तब भी वो खासियत थी, आज भी वो खासियत है, डैशबोर्ड पर आप नंबर्स देख सकते हो एग्जैक्टली क्या डिलीवर हुआ है, कितना डिलीवर हुआ है, और उसके साथ साथ फिर पार्टिसिपेट। तो ये गवर्नेंस के चारों पैरामीटर्स किस तरीके से कवर होंगे और वो भी भारत की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए,
1: जी
2: ये उनकी खासियत है। मुझे लगता है कि इसी कारण से ये 25 साल जो है एक एग्जीक्यूटिव के रूप में उनका रहना, ये एक अलग गवर्नेंस के मॉडल को प्रेजेंट करता है, जो गुजरात मॉडल पहले जाना गया, अब वो भारत के विकास का या विकसित भारत की तरफ जाने का मॉडल के रूप में देखा जाता है।
1: बिल्कुल, कहते हैं जो सीमित सोच के साथ आगे बढ़ता है कोई नेता तो उसके परिणाम भी सीमित होते हैं, लेकिन जो बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो उसके जो परिणाम है उल्लेखनीय आते हैं, और ये प्रधानमंत्री मोदी ने सिद्ध किया है अपने कार्यों के जरिए। योजनाओं और नीतियों को लागू करने में कर्मचारियों की विशेष भूमिका रहती है, इसके लिए शुरू किया गया आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, इस संबंध में एक खास रिपोर्ट सुनते हैं।
0: सरकार में बेहतर कामकाज के लिए जरूरी है कि समय समय पर योजनाओं और नीतियों की समीक्षा की जाए, उनकी चुनौतियों को समझा जाए और आगे की रणनीति तय की जाए। इसी उद्देश्य से अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में चिंतन शिविर आयोजित किए जाते हैं। चिंतन शिविर में संबंधित मंत्रालय के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, विशेषज्ञ और दूसरे हितधारक एक साथ बैठकर प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इसमें योजनाओं की प्रगति, उनमें आने वाली दिक्कतों और आगे की प्राथमिकताओं पर विचार किया जाता है। हाल के वर्षों में कई मंत्रालयों ने ऐसे चिंतन शिविर आयोजित किए हैं। उदाहरण के लिए फरवरी 2026 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने बिहार के राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर आयोजित किया। इसमें केंद्र और राज्य के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हुए। इस चिंतन शिविर में बुनियादी ढांचे, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण, वक्फ प्रबंधन और हज प्रबंधन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। मंत्रालय के अनुसार इसका उद्देश्य योजनाओं के मौजूद कमियों की पहचान करना, अलग अलग क्षेत्रों की अच्छी कार्य प्रणालियों को साझा करना और आगे के लिए ठोस सुझाव तैयार करना था। इसी तरह अप्रैल 2026 में आयुष मंत्रालय ने भी 2 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित किया। इसमें नीति, शोध, सेवा, वितरण, डिजिटल व्यवस्था, क्षमता निर्माण और जनसंपर्क जैसे विषयों पर चर्चा हुई। शिविर के अंत में

0: ट्रांसमिशन लाइन हो, ग्रिड हो, पानी के कनेक्शन हो, ये सारे के सारे जमीन पर जब आप जाते हैं तो लास्ट माइल पर प्रॉब्लम आती है और ये सब फंस जाते हैं, जिसकी वजह से जिसको कहते हैं टाइम एंड कॉस्ट ओवररन होते हैं। 2014 से पहले देखें तो हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट 1.5 साल में कंप्लीट होना था वो 10 साल 12 साल ले रहा था। तो प्रधानमंत्री जी का जो प्रोएक्टिव गवर्नमेंट अप्रोच थी, प्रगति क्या है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस है, तो उन्होंने कहा कि मैं खुद मीटिंग लूंगा। तो सारे सेक्रेटरीज और चीफ सेक्रेटरी स्टेट्स के, तो एक तो ये फेडरल एस्पेक्ट आ गया कि आपने चीफ सेक्रेटरीज को इन्वॉल्व कर लिया, क्योंकि भारत सरकार की जो स्कीमें हैं वो सारे स्टेट्स में हैं, कहीं जमीन नहीं मिल रही है, कहीं एजिटेशन चल रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो उसमें जब वो रिव्यू लेते हैं तो उसके पहले सारे ऑफिसर्स अपना रिव्यू लेने लगते हैं, उसमें आधी से ज्यादा 80% तो चैलेंजेस जो हैं वो वहीं स्कीम्स की प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसके पहले, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी रिव्यू लेने जा रहे हैं उसके पहले सारी रिव्यूज होती हैं, तो उसमें ही सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाती हैं, जो 20-25, क्योंकि वो डेट फिक्स कर देते हैं कि इस दिन मैं रिव्यू लूंगा, तो जो स्टेट का जो डीएम है वो भी जाता है फील्ड में, चीफ सेक्रेटरी है जो वो भी जाता है, यहाँ का सेक्रेटरी उनके पीछे पड़ता है, और फिर उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी भी रहते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहते हैं, स्टेट्स के लोग भी रहते हैं, तो सारे ऑफिसर्स मिलके फिर वो काम करते हैं और उसकी वजह से सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स धड़ाधड़ अप्रूवल हुए, धड़ाधड़ इंप्लीमेंटेशन हुआ, जो लास्ट मिनट प्रॉब्लम हुई उसमें इंप्रूवमेंट आया, तो इसमें बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आया प्रोजेक्ट डिलीवरी में, और प्रोजेक्ट डिलीवरी के साथ साथ कई नई चीजें हुई, जैसे गति शक्ति प्रोग्राम आया जिसमें करीब 523 के उसके नीचे आई, तो सब प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, उसके कॉन्सेप्चुलाइजेशन में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में, टेक्नोलॉजी के उपयोग में, ये सारी चर्चा करने के बाद पूरे देश में एक बदलाव आया इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी में, और यही कारण है हमें समझना जरूरी है कि हमारी जनसंख्या के लिए भारत में जो बदलाव आया है कि हमने देखिए ना, हम ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से ज्यादा तो हमने घर बना दिए यहाँ लोगों के लिए, जो ब्राजील की जनसंख्या है उससे ज्यादा तो हमने पानी कनेक्शन दे दिए यहाँ, कनाडा की जो जनसंख्या है उससे ज्यादा तो हमने बिजली कनेक्शन दे दिए यहाँ पर, और हमने करीब जितनी सड़कें थी उससे करीब 95,000 ज्यादा सड़कें बनाई यहाँ, तो सड़क हो, घर हो, बिजली कनेक्शन हो, पानी कनेक्शन हो, इसका जो फायदा मिला है भारत की जनसंख्या लास्ट माइल और जो साधारण व्यक्ति है उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया उसकी,
1: बिल्कुल
0: तो ये हुआ है
1: बिल्कुल। और जैसे हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री खुद समीक्षा करते हैं और उनको एक टारगेटेड चाहिए, इस टाइम तक ये पूरा होना है, और अक्सर लोग ऐसा भी कहते हैं, आलोचना भी होती है कि प्रधानमंत्री छोटी से छोटी परियोजना के लिए भी खुद जाते हैं, लेकिन इसके पीछे की भी एक सोच है कि जब वे खुद जाते हैं वो छोटी परियोजना भी बहुत बड़ी होती है, और वो छोटी परियोजना कैसे अंतिम व्यक्ति तक उसको लाभ पहुंचाने वाली है ये सिर्फ शायद वे ही जानते हैं, तो इस सोच में और इस जो अवधारणा में वो किस तरह से बदलाव आप देखते हैं प्रफुल्ल जी?
2: मैं प्रधानमंत्री जी का और एक एस्पेक्ट पर ध्यान दूंगा जिससे आपको ये ध्यान में आएगा, जो आपने कहा परियोजना के बारे में वो कैसा सोचते हैं, आप प्रगति का देख लीजिए, आप नीति का देख लीजिए, टर्मिनोलॉजीज सारी एब्रिवेशन में
1: जी,
2: लेकिन उन शब्दों का अर्थ भारत की सांस्कृतिक धरातल पर है।
1: बिल्कुल।
2: वैश्विक सोच, वैश्विक दृष्टि रहते हुए भी भारत की रूट्स के साथ कैसे जुड़े रहना, और वो यदि दृष्टि रही तो गवर्नेंस में उसका क्या रिफ्लेक्शन होता है। जैसे पहली बार आपको ध्यान में होगा जब लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने शौचालयों की बात की थी, तो सार्वजनिक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर बहुत लोगों ने इसका मजाक उड़ाया था
1: जी,
2: कि ये भी कोई मतलब 15 अगस्त के भाषण में बोलने का विषय है
1: जी, जी।
2: लेकिन 70 साल बाद हमको इस विषय पर बोलना पड़ रहा है, ये दिखाता है ग्राउंड की वास्तविकता क्या है और उससे जुड़े हुए डायमेंशंस कितने हैं।
1: बिल्कुल।
2: मतलब वो डिग्निटी के डायमेंशंस है, सुरक्षा के डायमेंशंस है, हेल्थ के डायमेंशंस है, इकोनॉमिक डायमेंशंस है, या मान लीजिए कोई उज्ज्वला योजना जैसी स्कीम है। तो इसमें जो बड़ा ये लगता है ना, कि आपने जो पूछा कि योजना कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती है, उसके पीछे की सोच जो है वो यदि ठीक है तो वो डिलीवर हो रही या नहीं। मतलब बहुत सारे ऐसे स्कीम्स है जिनको तो 30-30, 35-35, 37 साल बाद कोई डैम्स, कोई प्रोजेक्ट्स तो प्रधानमंत्री जी ने उसको राष्ट्र को समर्पित किया है।
1: बिल्कुल।
2: तो इसमें हुआ क्या है, सबसे बड़ा बदलाव जो मैं देखता हूं कि उन्होंने महिला को और महिला के साथ परिवार को

0: योजनाओं के संदर्भ में केंद्र में लाया।
1: बिल्कुल।
0: और जो इंडिविजुअल सेंट्रिक अप्रोच था किसी भी स्कीम को सोचने का, वो परिवार केंद्रित हो गया। भारत की दृष्टि केवल विश्व के लिए परिवार की नहीं, वो परिवार संकल्पना जब विकसित होती है तब वो विश्व तक पहुंचती है। लेकिन उसके लिए पहले आप आवास योजना में देख लीजिए, आप किसी भी बेनिफिशियरी स्कीम्स के बारे में देख लीजिए, महिला आती है तो एडिशनल बेनिफिट है, और महिला के साथ आती है तो पूरा परिवार आता है।
1: बिल्कुल।
0: तो मुझे लगता है कि हमको केवल, मतलब अमिताभ जी इंफ्रास्ट्रक्चरल स्कीम्स के बारे में ज्यादा बता पाएंगे, लेकिन मैं जब पत्रकार के नाते सोशल और उसके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डायमेंशंस के बारे में सोचता हूं, तो मुझे लगता है कि इंक्लूसिविटी का एक नया अप्रोच इस गवर्नेंस मॉडल ने दिया है। और इसीलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी छोटी से छोटी योजनाओं को भी माइन्यूट मॉनिटरिंग भी करते हैं, और उसकी डिलीवरी होती है तो उसके साथ साथ उस समाज के कौन से घटकों का उसको सीधा बेनिफिट मिलने वाला है उसके साथ कनेक्ट भी करते हैं। तो उस दृष्टि से मुझे लगता है कि वो योजना कोई उनके लिए छोटी बड़ी नहीं है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट।
1: बिल्कुल। जैसे शौचालय की आपने बात की, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वे स्वयं जाकर लोगों की परेशानियां दिक्कत देखते थे, और उन्होंने देखा कि महिलाओं को आज भी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो उन्होंने शौचालय मतलब बनाने की मुहिम शुरू की, जो जब वे प्रधानमंत्री बने तो राष्ट्रीय स्तर तक आ गई। तो उनका जो सोचने का तरीका है वे आउटकम बेस्ड गवर्नेंस है कि उसके परिणाम दिखने चाहिए, सिर्फ कागजों पर नहीं रहने चाहिए। तो आप इस संदर्भ में क्या कहेंगे अमिताभ जी, की आउटकम बेस्ड गवर्नेंस पे किस तरह से आज काम हुआ?
2: एक कैबिनेट मीटिंग
1: जी
2: के बाद उन्होंने मुझे बुलाया बड़े प्यार से और कहा कि चाहूंगा कि आप प्रोजेक्ट तैयार करके आइए, कि मुझे ये जो सबसे पिछड़े हुए जिले हैं 115 उनमें बदलाव लाना है
1: जी।
2: तो हम लोगों ने बहुत मेहनत की और जाकर प्रेजेंटेशन किए एक बार दो बार, और उसके बाद ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, आकांक्षी जिलों का प्रोग्राम, ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको बैकवर्ड मत बोलो, इसको एस्पिरेशनल बोलो। और ये जो उन्होंने एक चीज और कही कि मैं इसमें पैसे नहीं दूंगा तुमको, तुम इसमें बदलाव करके दिखाओ। उन्होंने हम लोग को चैलेंज किया कि मैं तुमको पैसे नहीं दूंगा, तुम बिना पैसे के इसमें बदलाव लाओ। सारा आउटकम बेस्ड हम लोगों ने किया, हेल्थ आउटकम्स, एजुकेशन आउटकम, एग्रीकल्चर आउटकम्स क्या होंगे उसको पहले डिफाइन, और उसके बाद हमने उन आउटकम्स के बेसिस इन सारे जिलों को चैलेंज किया, क्योंकि भी कई बार मीटिंग्स की। ये 115 जिलों में केवल आउटकम बेस्ड कॉम्पिटिशन किया, और हर महीने हम इसकी रैंकिंग निकालते थे कि कौन सा जिला आगे गया, कौन सा जिला पीछे, और उसकी रैंकिंग और कितना आगे गया और किस आउटकम पे आगे गया, किस आउटकम में पीछे रह गया। तो वहां की जो जनता है उसको मालूम होना चाहिए, वहां का जो कलेक्टर है उसको मालूम होना चाहिए कि क्यों वो पीछे गया, क्यों आगे गया। और ये सारा का सारा हमने डैशबोर्ड पे रखा था और उसको हम पब्लिक में रिलीज करते थे, तो हर MLA को, हर MP को, हर चीफ मिनिस्टर को मालूम है कौन सा जिला आगे गया, कौन सा पीछे गया और क्यों गया। और इतने जोरों का कॉम्पिटिशन हुआ इसकी वजह से कि जो आकांक्षी जिले थे, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट थे, वो जो उस स्टेट्स के जो सबसे अच्छे जिले थे उनसे भी ज्यादा अच्छा करने लगे। तो ये आउटकम बेस्ड जो उनका ओरिएंटेशन है कि आप क्या फिजिकल अचीवमेंट करते हो, कितना पैसा खर्च करते हो, उस पे फिजिकल और फाइनेंशियल में मुझे नहीं जाना, तुम बदलाव करके दो
1: जी।
2: तो बदलाव वो लिटरेसी में इंप्रूवमेंट आया, हेल्थ में इंप्रूवमेंट आया, कृषि उत्पादन में इंप्रूवमेंट आया, और वो केवल आउटकम बेस्ड सारा का सारा रहा। इसी तरह मैंने जब उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया हमने शुरू किया, तब देश में केवल 356 स्टार्टअप्स थे, आज आप देखिए देश में करीब 3 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। और इसकी वजह से जियो स्पेशल सेक्टर खुला, डिजिटल सेक्टर खुला, स्पेस सेक्टर खुला, ड्रोन सेक्टर खुला, डिफेंस सेक्टर खुला, ये सारे के सारे सेक्टर्स खुलते चले गए और हर सेक्टर में स्टार्टअप्स ने बदलाव किया। और आजकल जितना इस देश में जितनी तरक्की हो रही है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, वो सारे स्टार्टअप्स की वजह से हो। तो मेरे विचार से उनकी जो विचारधारा है, टेक्नोलॉजी का उपयोग कीजिए, टेक्नोलॉजी को उपयोग करके देश को आगे ले जाइए। इसी तरह उनका जो विश्वास है कि युवा वर्ग में, कि युवा वर्ग ही बदलाव ला सकता है, ये स्टेटस को बड़े लोग नहीं कर पाएंगे, ये आज का युवा वर्ग कर पाएगा। मैं अब इंडिया में आप इंश्योरेंस हो, स्टॉक मार्केट हो, क्रेडिट हो, फास्ट पेमेंट हो, ये सबका सब लोग मोबाइल से करते हैं, किसी और देश में नहीं है। तो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ने कहा कि जो भारत ने 7 वर्ष में किया है वो 50 वर्ष लगते, जो 7 वर्ष में किया है ये डिजिटल लीप फ्रॉगिंग हुई है।
1: बिल्कुल, तो ये जो नजरिया है मतलब सोचने का, अब जैसे बैकवर्ड जिलों की बात की तो हम कहते थे पहले कि ये पिछड़े जिले हैं, लेकिन नहीं, आप किसी चीज को अगर पॉजिटिव वे में सोचते हैं तो उसके रिजल्ट भी पॉजिटिव आते हैं। और खासकर ऐसा सुना है कि जब प्रधानमंत्री मोदी कोई बैठक लेते थे तो उसमें जब उनसे समस्याएं किसी परियोजना को लेकर बताई जाती थी तो ये नहीं पूछते थे ये मुश्किल क्यों है, वे कहते थे इसको पूरा करने के लिए क्या जरूरी है। तो सिर्फ नजरिए का फर्क है। आप क्या सोचते हैं कि इस नजरिए ने भारत की तस्वीर किस तरह से बदली है? केतकर जी,
0: मानव के सारे आचरण में तो मन केंद्र में है ना। अब ब्यूरोक्रेट साथ में बैठे इसलिए कहता हूँ, स्टील फ्रेम और ब्यूरोक्रेसी और नहीं होता इस सर कहने वाली, उनको उन्होंने कर्मयोगी बना दिया
1: जी।
0: अब कहने के लिए तो ये नॉमिनक्लेचर बदला है, बैकवर्ड का आकांक्षी जिले हो गया। पर्सन हम बोलते हुए बोलते थे कि नहीं नहीं ये तो हैंडीकैप है,
1: नहीं
0: वो अब दिव्यांग हो गया, वो स्पेशल एबिलिटी उस शब्द में आ गई ना। तो आपका देखने का, बात करने का, उस व्यक्ति के प्रति केवल उसकी डिग्निटी का, और उसके साथ साथ उसके बारे में फिर परियोजनाएं जब बनेगी तो उस डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए बनेगी। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरी की पूरी सोच में, ये जो मूलतः उसके पीछे मानसिक दृष्टि को बदलना, नजरिया तो केवल आपका देखने का होता है लेकिन उसके पीछे के मन को बदलना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। प्रधानमंत्री जी गवर्नेंस में, मूलतः गवर्नेंस के जितने भी सारे एक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग पीपल, मतलब जो उसमें स्टेक होल्डर्स जिनको कहा जाता है, तो उनका आप देख लीजिए, सारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सारे लैंड रिकॉर्ड्स, एग्रीकल्चर, मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स तो स्टेट्स के पास है या तो फिर कंकरेंट लिस्ट में है। तो आपने योजना कितनी भी अच्छी बना ली हो, यदि इसमें सहभागिता नहीं है और उसके लिए फिर अलग तरीके का मुख्यमंत्रियों के साथ चिंतन भी शुरू हुआ
1: जी जी,
0: तो वो भी एक अलग से ये थी। तो वो केवल फेडरलिज्म को लेकर हम कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस एनुअली ले रहे ये नहीं है, ये चिंतन है
1: बिल्कुल।
0: हम पूरे भारत को लेकर, और उन्होंने एक उसमें कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट क्रिएट किया जो कॉन्फ्लिक्चुअल था
1: जी।
0: तो फेडरलिज्म का अर्थ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, सेपरेटिज्म नहीं होता है, हम अलग है ये भावना नहीं होती है, हम मिलकर प्रतिस्पर्धा के साथ भी, सहयोग के साथ भी मिलकर क्या कर सकते हैं अच्छा, एक दूसरे के साथ स्पर्धा भी करेंगे लेकिन एक दूसरे का सहयोग भी करेंगे, ये भाव मन में जगाना, मुझे लगता है ये मन परिवर्तन होता है तो गवर्नेंस में वो आपने जो पूछा तो आउटकम ओरिएंटेड रिजल्ट्स अपने आप आते हैं।
1: ये हेल्दी कंपटीशन की बात होती है, और इसी सोच के साथ बना था नीति आयोग जिसमें सहकारी संघवाद को प्रमुखता से रखा गया। तो आप नीति आयोग के पूर्व सीईओ रहे हैं अमिताभ जी, आपने क्या चीजें इसमें देखी और क्या परिवर्तन रहा, क्योंकि उसमें राज्य और केंद्र मिलकर परियोजनाओं पर काम करते थे।
2: तो सबसे पहला जब ये माननीय प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो सबसे पहला प्रेजेंटेशन मेरा ही था और भारत की रैंकिंग वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 148 रैंक, तो उस पे प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि आप इसको लग के भारत की रैंकिंग को ठीक करिए पहले। तो लोग लगे बहुत, क्योंकि गवर्नमेंट क्या होता है, हर डिपार्टमेंट साइलो में काम करता है, वो सोचता है कि मैं ही मालिक हूं इसका और ये पोजीशन इंप्रूव नहीं करेगी जब तक कि हम सब मिलके काम नहीं करें। तो फाइनेंस हो, टैक्स हो, कस्टम्स हो, इनकम टैक्स हो, सबको मिलके काम करना आवश्यक। तो हम लोग लगे बहुत, और जितनी कागजी कार्रवाई थी उसको हटाया क्योंकि सब डिजिटल करना आवश्यक था। तो जब ईपीएफओ के पास गए उन्होंने डिजिटल तो किया, पर उन्होंने कहा कागजी कार्रवाई भी रखेंगे, पर ये क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद पीछे पड़े इसके, तो सारे डिपार्टमेंट इसमें आगे बढ़े और उसकी वजह से भारत ने 2.5 साल के अंदर करीब 80 पोजीशन का जंप किया, किसी देश ने इतना नहीं। और हम, ये भारत एक अकेला देश है जिसने करीब 35,000 लॉ जिनको हटा दिया है, और ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से शुरू हुआ। पर उनका माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य था, साधारण व्यक्ति के लिए ईज ऑफ लिविंग होना चाहिए, और वही इसीलिए सारी कागजी कार्रवाई हटाई गई और सब चीज डिजिटाइज किया। तो ये उनका लक्ष्य हमेशा ये रहा है कि कैसे साधारण व्यक्ति की जिंदगी में कैसे उसको सरल किया जाए, और ये बहुत मेरे विचार से, जो भी वो विचारधारा रखते हैं वो हमेशा यही सोचते हैं कि साधारण व्यक्ति की जिंदगी पे बदलाव
1: जी। अब बिल्कुल सही कहा। और प्रफुल्ल जी, जैसे अब राज्यों और केंद्र की हम कह सकते हैं कि तनातनी कहीं ना कहीं किन्हीं मुद्दों पर रहती है, अब जैसे नीति आयोग में भी बात है तो वो संतुलन कायम करना, क्योंकि उनकी मांगे अपनी होती हैं और उधर से जो आपूर्ति होती है वो डिपेंड करता है कि किस तरह से देना है, तो वो समन्वय संतुलन जो कायम किया गया है इतने वर्षों में उसे आप
0: देते। उसमें नीति आयोग आने के कारण छोटी छोटी चीजों में भी एक बहुत बड़ा डायनेमिज्म, मतलब एनर्जी सेक्टर में देखिए, हम हमारे कार्बन इमिशन को लेकर जो टारगेट्स थे वो 2000

0: 30 के टारगेट्स हमने ऑलरेडी अचीव कर लिए।
1: तो क्या हम अभी 5 साल का प्लान हमारा है, इसलिए हम 2029 के चुनाव के बाद अभी अगला 5 साल का प्लान करेंगे, अभी कार्बन वाले इशू पर कुछ भी नहीं करें, ऐसे थोड़ी होता। तो यू हैव टू थिंक डिफरेंटली नाउ, बिकॉज नाउ द थिंग्स आर चेंजिंग सो फास्ट। यूर आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बदल रही है, वैश्विक परिदृश्य बदल रहा है, पूरे पश्चिम एशिया में घमासान मचा हुआ है, ऐसे में आपको आपकी ऊर्जा आवश्यकता, सुरक्षा, इस सारे परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए करनी पड़ेगी। तो ऐसे में फिर नीति आयोग को स्पेशली अभी टास्क दिया गया है ऊर्जा वाले इस पर कि आपको रिपोर्ट बना के देना। तो उस समय मुझे ध्यान में है जब ये बदलाव हुआ तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये गवर्नमेंट का थिंक टैंक के रूप में काम करेगा। मुझे, क्योंकि मैं बहुत समय में थिंक टैंक्स में रहा हूं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कोई भारत का राजनेता कम से कम ये कह रहा है कि सरकार को भी थिंक टैंक की आवश्यकता है। पहले तो गुजरात ही अकेला था, आज लगभग हर स्टेट अपना इन्वेस्टर समिट करता है। तो ये सोच में ही बदलाव आया है ना कि भाई वी आर इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट, ये प्रोजेक्ट करने में हर सरकार को, हर राज्य को इस पर गर्व है कि हम इन्वेस्टर फ्रेंडली है।
2: बिल्कुल, ऐसे सम्मेलन की बात हो ही रही है तो अभी हाल ही में जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है और इससे पहले जो G20 था, मतलब इंटरनेशनल मीडिया ने तारीफ की है कि इस तरह का सम्मेलन आयोजित करना और खासकर जो ब्रिक्स में महाशक्तियों, भर्ती महाशक्तियों का एक साथ आना और ऐसे जो बिंदुओं पर आम सहमति बनाना, ये शायद आम बात नहीं थी।
3: तो देखिए, मैं G20 में प्रधानमंत्री जी का शेरपा रहा हूँ और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये बड़े, उस समय बहुत बड़ा जियोपॉलिटिक्स में देखिएगा तो रशिया और यूक्रेन का बड़ा, बहुत बड़ा युद्ध चल रहा था। ये हालत थी कि उनके शेरपा लोग, यूरोप के जो शेरपा थे, रशिया के साथ बैठ के चाय पीने को भी तैयार नहीं थे और वो न चाइना के साथ बैठते थे न रशिया के साथ बैठते थे। और इस हालात में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसको सबसे एग्रेसिव करो, सबसे एम्बिशियस करो और सबसे डायनेमिक करो। तो हम लोगों ने करीब, हमने कहा कि दिल्ली में करने से अच्छा है इसको सारे स्टेट्स में ले जाए। तो हमने करीब 350 मीटिंग थी, हर स्टेट में गए। हर स्टेट में जाने के बाद सारे स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर का इंप्रूवमेंट हुआ, वहां के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट सामान को हमने प्रमोट किया, वहां के आर्ट और कल्चर को हमने प्रमोट किया, हर स्टेट के कल्चर को हमने प्रमोट, और हर स्टेट ने रोल प्ले किया, हर यूनियन टेरिटरी ने रोल प्ले किया। उसके बावजूद जब भारत मंडपम में जब आखिरी सारे लीडर्स आए तो ये किसी ने नहीं सोचा था कि कंसेंसस डॉक्यूमेंट निकलेगा और सारे इश्यूज पर लगाकर हमारा एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट निकला जो यूनाइटेड नेशंस नहीं कर पाया, वो भारत ने करके दिया। और यही हुआ अभी हाल की जो ब्रिक्स समिट हुई, ब्रिक्स की समिट में न केवल रशिया यूक्रेन का इश्यू था, एक और इश्यू था बहुत बड़ा, ईरान था, यूएई था, सऊदी अरेबिया था, ये तो युद्ध में दो तरफ थे, आपस में लड़ रहे थे। भारत में बैठ के ईरान के राष्ट्रपति और यूएई के राष्ट्रपति ने मिलकर मीटिंग की। तो ये दिखाता है कि भारत जियोपॉलिटिकल क्षेत्र में इसने बड़ी डायनेमिक रोल प्ले किया है लीडरशिप। और ये लीडरशिप, प्रधानमंत्री जी ने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम ये करो या ये करो, उन्होंने कहा इसको आप एग्रेसिव कीजिए, इसको आप एम्बिशियस बनाइए और फिर उसके बाद वो सारी फ्रीडम आपको दे देते हैं, वो विश्वास पे बहुत बिलीव करते हैं। अगर विश्वास करते हैं पर फिर उसके बाद पूरा छोड़ देते हैं, फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि आप इसको करके दीजिए। कोई नेता आप पे विश्वास कर रहा हो तो आपकी तो जिम्मेदारी 100 गुना बढ़ जाती है। तो उसके लिए फिर सारी मेहनत करनी पड़ती है और उसको करके हम लोगों ने दिखाया, और पर उनकी जो विजन है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाए।
2: बिल्कुल, वे जिम्मेदारी सौंपते हैं और जिम्मेदारी की अपेक्षा भी करते हैं, यही उनकी सोच है। और जैसे वसुधैव कुटुंबकम के जो मंत्र के साथ वे चलते हैं, चाहे वे भारत की बात करें या विश्व स्तर की बात करें, और यही हर सम्मेलन में और हर जगह प्रदर्शित होता है। केतकर जी,
0: बिल्कुल देखिए, जैसे G20 की बात चली, किसी ने ये नहीं सोचा था कि भारत एक प्रस्ताव लाएगा और अफ्रीकन यूनियन 21वें मेंबर के रूप में G20 में शामिल होगा। G20 तो एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के रूप में उभरा था, जो अर्थव्यवस्था में जो उथल पुथल होती है उसको डील करने के लिए। ब्रिक्स वैसे ही एक अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है। मतलब आप देखिए कि जिसको कहा जाता है कि आप यदि टेबल पर नहीं हो तो फिर आप मेनू में हो। भारत आज हर जगह टेबल पर है, G20 में है, G7 में इन्वाइटेड मेंबर है, ब्रिक्स जैसे संस्थान में है, फिर इंडियन ओशन रिम में भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो बिग पावर्स के बीच में जो भी स्ट्रगल चलता रहेगा, हर कोई आज कहता है कि यदि भारत मध्यस्थता करता है और प्रधानमंत्री मोदी बातचीत करते हैं तो शायद इसमें से रास्ता निकल सकता है। और ये केवल बोलने के लिए नहीं रह जाता कि युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है, प्रधानमंत्री बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहते हैं। भारत की आज वो साख है कि आज वो यूक्रेन से भी बात कर सकते हैं और रशिया से भी बात कर सकते हैं।

0: बिल्कुल
1: वो चाइना के साथ बॉर्डर टेंशन्स होते हुए निगोसिएशंस भी कर सकते हैं, ट्रेड भी कर सकते हैं, और फिर भी चाइनीज प्रेसिडेंट भारत में आके ब्रिक्स में शामिल होते हैं, तो ये हमारी क्रेडिबिलिटी का लक्षण है। वो क्रेडिबिलिटी बड़ी है क्योंकि उसके पीछे लीडरशिप है। वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में दिखा, वो इंटरनेशनल जब योगा डे जब डिक्लेयर हुआ तो उस समय दिखा। तो ये सारा दिखाता है कि एक लीडर की विजन हो तो उस देश की भी विजन विश्व पटल पर बड़ी होती हुई दिखती है।
0: बिल्कुल। और अमिताभ जी, बस अंत में ये पूछना चाहती हूँ कि जनहित से जन विश्वास की जो यात्रा है वे आप किस तरह से देखते हैं?
2: देखिए, सबसे जरूरी है समझना कि प्रधानमंत्री जी का एक विजन है, उन्होंने जो देश का विजन आगे रखा है कि भारत एक पूरा विकसित राष्ट्र बन के उभरे 2047। और इसका मतलब ये कि हम न केवल विकसित बने, न केवल हम 4 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन से अधिक कि हमारी जीडीपी बढ़े, उसका मतलब है कि हर व्यक्ति की जिंदगी में बदलाव आए, और इसका मतलब है कि हम 9-10% से हर साल बढ़ते जाएं आगे, और उसका जो गुण मिले वो साधारण व्यक्ति को मिले, और साधारण व्यक्ति का मतलब है कि उसके पास पानी हो, बिजली हो, घर हो, और उसकी जिंदगी में एक बदलाव आए। तो ये मेरे विचार से एक रोड मैप तैयार कर देना और हर व्यक्ति को समझना कि उसकी भी जिम्मेदारी है इस देश में बदलाव लाना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि जब हम विकसित भारत का सपना रखते हैं तो हर व्यक्ति को अपना एक रोल प्ले करना आवश्यक है।
0: बिल्कुल सही कहा। बस यही कहेंगे कि जो लोकतंत्र में सरकार और जो नागरिक की भूमिका है वे केवल योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि असली कसौटी ये है कि सरकार उस नागरिकों की जरूरतों को कितने अच्छे से समझ पाती है और कितनी जल्दी अमली जामा पहना पाती है। अमिताभ जी और प्रफुल्ल जी, आप हमारे साथ आए और इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, इसके लिए आप दोनों का धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के दूसरे संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा 25 वर्ष जनहित से जन विश्वास तक। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि जुबीन गर्ग केवल एक आवाज ही नहीं बल्कि संगीतकार, गीतकार, म्यूजिक प्रोड्यूसर, अभिनेता, फिल्म निर्माता, स्क्रिप्ट राइटर भी रहे। बचपन से ही संगीत से लगाव इतना था कि अलग अलग भाषाओं और लोकगीतों से जुड़ाव तो रहा ही, साथ ही वाद्यों से भी उनका लगाव अनोखा था। उन्हें तकरीबन 12 किस्म के वाद्यों में महारत हासिल थी। ढोल, दो तारा, ड्रम, गिटार, माउथ ऑर्गन, हारमोनियम, मैंडोलिन, कीबोर्ड, तबला और कई तरह के ताल वाद्य उनके संगीत के जादू के साक्षी थे।

कलाकार का जीवन जितना लोगों के सामने होता है उससे भी ज्यादा गहराई उनके मन में होती है। कुछ ऐसा ही मन जुबिन गर्ग का भी महसूस होता है। मुंबई जैसी सपनों की नगरी में कोई भी एक बार आता है तो बस यहीं का होना चाहता है, लेकिन जुबिन ने यहाँ बसना नहीं चाहा। वो अपनी मिट्टी से

इतना लगाव रखते थे कि वो कहीं भी रहें उन्हें वापस अपनी मिट्टी की याद खींच ले जाती। शायद यही एक कारण था कि उन्हें भारत के उत्तर पूर्वी भाग में एक गायक या संगीतकार की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह जाना जाता था जिसे लोग सम्मान की दृष्टि से देखा करते और अपना समझते। जुबीन उस सम्मान को सिर्फ यूं ही नहीं पा रहे थे बल्कि उन्होंने वो सम्मान कमाया था लगातार अपने उन कामों से जो वो लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से किया करते।

संगीत के साथ साथ समाज सेवा के कई कामों से भी जुड़े हुए थे। असम बाढ़ के दौरान भी उन्होंने काफी सहायता की और लोगों से भी सहायता की अपील की। उनकी संस्था कलागुरु आर्टिस्ट फाउंडेशन के साथ वो आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों की सहायता करते, जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई रहन सहन देखते। हम जुबीन के सेवा भाव का अंदाजा इस बात से ही लगा सकते हैं कि कोविड के दौरान उन्होंने 19 कोविड सेंटर्स को हर सुविधा प्रदान की। उन्होंने 16 बच्चों को गोद लिया और उनके पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी उठाई। न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों से भी उनका प्रेम कम नहीं। डॉग सेल्टर, बंदर और पक्षियों के लिए भी कई तरह की व्यवस्था की गई। यहाँ तक कि उन्होंने उस दौरान अपने गुवाहाटी के घर को भी कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए दे दिया। कहते हैं एक कलाकार की ईमानदारी और सच्चाई उसके काम में झलकती है। शायद यही बात जुबीन को भी लोगों से जोड़ती है।

बतौर अभिनेता और निर्देशक पहली फिल्म थी साल 2000 के शुरुआत में आई फिल्म तुमी मोड़ मथु मोड़। कुछ अन्य फिल्में जिनमें जुबीन बतौर अभिनेता नजर आए, प्रेम अरुप्रेम, दीना बंधु, मोन जाई, भल पाबो न जानीलू, गाने की आने, मिशन चाइना, प्रियार प्रियो, द अंडरवर्ल्ड, कंचन जंघा, राजनीति, शिकार और रोई रोई बिनाले। इनमें से मिशन चाइना पहली ऐसी असमिया फिल्म बनी जिसने 6 करोड़ कलेक्शन किया और इसका रिकॉर्ड तोड़ा जुबीन की ही फिल्म कंचन जंघा ने 7 करोड़ का कलेक्शन करके।

संगीत में हमें रॉक, भारतीय शास्त्रीय संगीत और असमिया लोक गीतों का मेल नजर आता है। साथ ही एक सूफियाना अंदाज भी उनकी आवाज में झलकता रहा है। हालांकि उनका जीवन भी कुछ सूफियाना अंदाज लिए हुए ही लगता है। उनका संगीत हो या जीवन, वो स्वतंत्र रहना ही पसंद करते थे। उनका मानना था कि एक कलाकार को अपनी कला प्रदर्शित करने के लिए किसी भी तरह की बंदिश में नहीं होना चाहिए। यही कारण था कि जब उनके सुपरहिट गीत या अली के बाद उन्हें उसी तरह के गीतों के ऑफर आने लगे तो उन्होंने मना कर दिया। अपनी बातें, अपने विचार सामने रखने में जुबीन कभी भी नहीं घबराते थे।

साल 2009 में जुबीन गर्ग को शॉर्ट फिल्म इकोज ऑफ साइलेंस के लिए गैर फिल्मी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। 2022 में उनकी 20 फीट ऊंची प्रतिमा दिग्बोई में अनावृत की गई। अपने 33 साल के करियर में जुबीन ने कई गीतों को अपनी आवाज दी, लेकिन वो अक्सर कहा करते कि उनका गाया गीत मायाबिनी उनके दिल के करीब है। अपने फैंस को लगातार नाराज करते हुए वो ये तक कहा करते कि ये गीत उनकी अंतिम यात्रा में गाया जाना चाहिए, और किसे पता था कि ये दिन भी देखना ही होगा। 19 सितंबर 2025 वो तारीख थी जब लोगों को ये दिल दहलाने वाला समाचार मिला। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में परफॉर्म करने के लिए सिंगापुर गए जुबीन, वहाँ समुद्र में स्कूबा डाइविंग कर रहे थे और एक हादसे में 52 साल की उम्र में जुबीन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके संसार छोड़ने के विचार ने चाहने वालों को एक ऐसे शोक में डुबो दिया जिससे बाहर लाने का काम भी केवल जुबीन की आवाज ही कर सकती थी।

पार्थिव शरीर को जब भारत लाया गया तो उनकी अंतिम यात्रा में लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए। चाहने वालों का ये हुजूम थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। 23 सितंबर तक ये दौर यूं ही चलता रहा। अपने चहेते सितारे को देखने के लिए आए लोगों के आंसू लगातार बह रहे थे। विश्व में किसी की अंतिम यात्रा में लोगों का ऐसा जमावड़ा चौथी बार ही देखा गया और भारत में पहली बार। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे दर्ज भी किया गया। गुवाहाटी में जुबीन को अलविदा कहने के लिए फैंस ने उनके ही गीतों को एक साथ गाया। इसमें जुबीन का पसंदीदा गीत मायाबिनी भी शामिल था। जुबीन का जाना असमिया संगीत के एक दौर का खत्म होना माना गया, लेकिन हम तो यही कहते हैं कि एक कलाकार कभी खत्म नहीं होता। वो अपनी कला के जरिए मौजूद रहता है और कुछ न कुछ सिखाता रहता है।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक, संगीतकार, अभिनेता और बहुमुखी प्रतिभा के धनी जुबीन गर्ग पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का, संपादन प्रभा भटनागर का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
2: गीतों भरी कहानी में आज प्रस्तुत है अलका सिन्हा की लिखी कहानी रिहाई, वाचक स्वर मंदाकिनी जोशी का।
3: उसे उम्र कैद की सजा हुई थी, मगर उसके अच्छे चाल चलन के कारण उसे 2 साल पहले ही रिहा कर दिया गया। बरसों बाद आज वो अपने ही घर के सामने अजनबी सा खड़ा था। लंबी सांस भर बहुत संयत मन से उसने कंधे पर टंगे झोले में से चाबी निकाली और ताले में डालकर घुमाई। ताला ढीठ सा अड़ा रहा। इसी दशा में टंगे टंगे ये ताला भी उम्र कैद जितनी लंबी अवधि काट चुका था। यूं दरवाजा जोर से धकेलने पर शायद ताला खोलने की जरूरत ही न पड़ती, मगर ये बात उसके दिमाग में आई ही नहीं। एक आंख बंद कर उसने ताले की मोरी के भीतर झांकते हुए चाबी घुसेड़ कर पूरी ताकत से मरोड़ दी। कड़ कड़ की आवाज के साथ कराहता वो ताला आखिर होश में आया तो जैसे नींद से जागकर अविश्वास से पूछने लगा,
4: कौन हो भाई? यहां तो बरसों से कोई आया ही नहीं है।
3: तो क्या ओमी भी कभी आया नहीं मेरे पीछे? वो हल्के से बुदबुदाया।
4: ओमी? कौन ओमी?
3: दरवाजा भी अब तक बूढ़ा हो चुका था और उसकी याददाश्त पहले जैसी नहीं रह गई थी। खैर, उसने दरवाजा

दरवाजे को जोर से धकेला तो बरसों की जमी धूल उस पर छिटक कर गिर पड़ी। चलो, किसी ने गले लगाकर स्वागत तो किया। वो हंसा तो धूल मुंह में घुस गई और वो खांसने लगा। भीतर का दृश्य जैसे फ्रीज हुआ पड़ा था। लंबे अरसे से एक ही स्थान पर रखी चीजें पड़ी पड़ी जम चुकी थीं। कुछ साफ नहीं दिख रहा था। हर तरफ पड़ी धूल की मोटी परत से उसका रंग रूप ही बदल चुका था। मैं किसी गलत घर में तो नहीं आया ना? ये मेरा ही तो घर है ना? किसके सहारे छोड़ गया था मैं अपना घर? ओमी? उसने पुकारना चाहा, मगर गहरे निश्वास के साथ आंख नाक और मुंह में धूल भर आई। हाँ, बाथरूम भी यही है। हाँ, यही तो है बाथरूम। यानी घर तो मेरा ही है। बाकी सब भी धीरे धीरे साफ हो जाएगा। झाड़ू भी मिल गई, रसोई के दरवाजे के पीछे रखी थी, ठीक वहीं जहां हमेशा रहती थी। और इस एक छोटी सी बात ने उसे यकीन दिला दिया कि ये घर सचमुच उसका है। रात होते होते उसने घर को काफी हद तक ठीक कर लिया। यानी ओमी कभी आया ही नहीं मेरे जाने के बाद। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो उसी के भरोसे सब कुछ छोड़ के गया था। वो जरूर यही कहीं छुपा बैठा होगा, नालायक, यही कहीं बैठा होगा। उसने ओमी को खोजना चाहा, पलंग के नीचे, पर्दे के पीछे, खिड़की के बाहर, बगीचे में, हर तरफ देख लिया। ओमी कहीं नहीं था। अंधेरा गहराने लगा था। उसने बत्ती जलानी चाही तो तारे कटी हुई मिली। शायद चूहा कुतर गया था। किसी तरह तारे जोड़ी और स्विच दबाया तो बल्ब चनक कर टूट गया। खाने का मन भी नहीं था उसका और खाने को कुछ था भी नहीं। वो वैसे ही अंधेरे में लेट गया, एकटक पंखे को देखता रहा। भीतर ही भीतर ओमी को

आंख खुली तो दिन चढ़ आया था। वो हड़बड़ाकर उठा, ओह इतनी देर हो गई। मैं तो इतनी देर तक सोता ही नहीं था, अब तक सब जग गए होंगे। उसने दाएं बाएं देखा, फिर उसे याद आया कि वो अपने घर में है, जेल की सलाखों से बाहर। अब तो वो खुद अपनी मर्जी का मालिक है। जब तक चाहूंगा सोऊंगा, जहां चाहे जाऊंगा, अब मैं आजाद हूं। अब मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। सुन रहे हो ना ओमी, ओमी ओमी सुन रहे हो ना, अब मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। हाँ। उसे फिर ओमी की याद हो आई। याद आई कि ओमी को तो पता ही नहीं होगा कि उसे समय से पहले ही रिहा कर दिया गया है और वो अपने घर उसका इंतजार कर रहा है। उसका मन मायूस हो गया। आखिर ओमी के बिना ये आजादी किस काम की? आएगा ओमी, आज जरूर आएगा। आएगा तो उसे क्या खिलाऊंगा? अच्छा चलो बाजार से कुछ सब्जी भाजी खरीद ले आता हूं। हाँ, आज अपनी पसंद की सब्जियां लाऊंगा। रोज रोज घी या कद्दू खा खाकर रुकता चुका हूं। और हाँ, नया बल्ब भी तो लाना है। ओमी जरूर कहीं दूर से इस घर पर नजर रखता होगा, जलती बत्ती देखकर दौड़ा चलाएगा। हाँ, उसे क्या मालूम कि मैं समय से पहले ही रिहा हो गया हूं। जरूरत का सामान खरीद कर वो घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने बड़े चाव से सब्जी बनाई। गोल गोल नरम नरम रोटियां सेकते हुए भीतर ही भीतर ओमी को पुकारता रहा। सोचा पास पड़ोस में पूछूं कि पिछली बार ओमी कब आया था यहां, मगर हिम्मत नहीं हुई। बाहर की दुनिया पराई हो गई थी। एक सजायाफ्ता से कौन बात करना चाहेगा? लोग उसे नहीं पहचानते अब, ये भी अच्छा ही है। उसने राहत की सांस ली और खा पीकर सो गया। बत्ती जली ही छोड़ दी। उसे भरोसा था कि बत्ती जलती देखकर ओमी दौड़ता हुआ यहां आएगा। नींद में भी वो हर खटके से जागता रहा, पर सुबह हो गई और ओमी नहीं आया। अगला दिन भी बीत गया, फिर एक और रात ओमी नहीं आया। वो हर रात बत्ती जली छोड़ देता इस उम्मीद में कि उजाला देख कोई तो दौड़ा चला आएगा। लगातार चलता पंखा उसे बरसों पीछे लिए जा रहा था, बहुत पीछे, कॉलेज की गहमा गहमी के बीच। कॉलेज का वार्षिक उत्सव, सजी धजी भीड़ मंच की तरफ देख रही थी। भीड़ उत्साह से ओमी ओमी ओमी ओमी पुकार रही थी। भीड़ में से आवाजें आ रही थी, ओमी ओमी। वो देख रहा है ओमी मंच पर खड़ा है। मंच पर इतनी तेज रोशनी है कि आंखें चुंधिया जाएं। तेज रोशनी में वो ओमी को ठीक से देख भी नहीं पा रहा, मगर वो उसकी आवाज सुन रहा है। वो कह रहा है, दोस्तों आज की ये महफिल किसी खास के नाम, देखता हूं मेरी आवाज उस तक पहुंचती है या नहीं। महफिल में तालियों की आवाज, सीटियां और उत्साह भर उठता है। ओमी एक तान भरता है और हॉल में सन्नाटा छा जाता है। सबकी धड़कनें रुक गई हैं। वे सांस रोके ओमी का गीत सुन रहे हैं, उसे अपलक देख रहे हैं और ओमी है कि आंखें बंद कर गा रहा है। मखमली आवाज का जादू हर किसी पर छाने लगा है।

0: सुनिए, क्या क्या खूब गाते हैं आप। मैं तो खो ही गई थी, मगर ये गीत नहीं था, मेरे दिल की आवाज थी। और आपने क्या कहा कि आप तो खो गई। अरे, आप खो जाएंगी तो मैं खुद को कहाँ ढूंढूंगा। अच्छा, अपना नाम तो बता दीजिए ताकि ढूंढने में कुछ आसानी हो। जी, मेरा नाम गीत है। अरे वाह, आप गीत और मैं गायक, क्या खूब है। अब समझा ये निगाहें क्यों बार बार आपकी तरफ खींची चली जा रही थी। चलिए, आप तो बातें बनाते हैं। उसे खूब याद है ओमी और गीत की वो पहली मुलाकात, जिस दिन ओमी के दिल की आवाज गीत तक पहुंची गई। फिर तो वो हर जलसे में ओमी की आवाज के साथ खींची चली आती। यही हाल ओमी का भी था। जब वो गाने लगता तो सबसे पहले उसी की ओर देखता, फिर आंखें बंद कर तसल्ली से गीत में डूब जाता। गीत उसकी जिंदगी थी, इसीलिए तो उसने अपने बैंड का नाम ओम बैंड से ओम गीत बैंड कर दिया था। ओमी के दोस्त उसे गीत का नाम लेकर खूब चिढ़ाते थे, मगर वो चिढ़ता नहीं था। उल्टे एक मीठी मुस्कान उसके होठों पर आ जाती, जैसे कोई अपना सबसे प्यारा राज सुन ले और भीतर ही भीतर खुश हो जाए। उसके दोस्त जानबूझकर उससे बात करते हुए गीत का नाम बीच में डालते हुए दोहरी जुबान में उससे पूछते, ओमी भाई, आज के जलसे में तुम्हारे गीत ने गजब ढा दिया भाई। ओमी हंसकर कहता, यार, गीत ने मंच पर ही नहीं, मेरे जीवन के रंगमंच पर भी गजब ढा दिया है। हाँ। वो कुछ देर हंसता मगर फिर संजीदा होकर कहता, हाँ, पहले मैं गाता था, अब जिंदगी गाती है। मेरे गीतों के शब्द अब लगे बोलने जब से सुर पर उन्हें वो सजाने लगी है। दूर कहीं कोयलिया गाने लगी है। उसे संजीदा देखकर दोस्त भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगते। अम्मा यार, ये तो सच है, जब से गीत तेरी जिंदगी में आई है, तेरी आवाज में बला का जादू आ गया है, एक नशा सा छा गया है तेरी गायकी में। ओमी एक पल के लिए रुका, जैसे वो इस बात की गहराई को तौल रहा हो, फिर धीरे से अपने भीतर ही बोल पड़ा, हाँ, मेरे हर बोल में वो होती है, हर सुर में उसका चेहरा होता है। जब उसकी झुकी हुई नजरों को देखता हूं तो मेरी तान खुद ब खुद ऊपर उठती चली जाती है। सब जानते थे कि ओमी और गीत एक दूसरे के लिए बने हैं, ये जोड़ी कुछ अलग ही है। ये बात अब किसी से छुपी नहीं थी। जलसों में लोग ओमी का गाना सुनने आते थे, मगर कनखियों से गीत को भी देखते रहते। ये अनूठी संगत थी,
1: इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। और इस पूरे प्रयास के केंद्र में रहा माने

गीत की सहेलियां भी कहां कम थी, हर वक्त उसे ओमी के नाम की मीठी झिड़कियां देती रहती। ए गाता तो ओमी है, मगर भाव तेरे चेहरे पर होते हैं, ऐसा कैसे होता है गीत? देख अभी भी तेरा चेहरा कैसा सिंदूरी हो गया है। हायो रब्बा, ओमी को देखते ही ये तो किसी दूसरी ही दुनिया में जा पहुंचती है। उनकी बातें सुन गीत एक पल के लिए चुप हो जाती, फिर धीरे धीरे जैसे मन में सांस लेते सपने को शब्द देती भी बोल पड़ती। हाँ सच में ओमी जब तान भरता है ना, तो जाने मुझे क्या लगता है, जैसे जैसे मैं इस दुनिया में हूं ही नहीं, किसी किसी और ही दुनिया में हूं। हाँ जैसे मैं बादलों की पालकी पर जा बैठी हूँ और ओमी की तान के साथ साथ ऊपर उठती जा रही हूँ, ऊपर और ऊपर, पता नहीं कितने ऊपर। सहेलियां एक दूसरे को देखने लगती और गीत बोलती रहती। और पता है जब भीड़ तालियां बजाती है, जब सारा हॉल उसकी आवाज की जादूगरी से गूंज उठता है, तो मेरे भीतर कुछ उमड़ने लगता है, जैसे जैसे कोई नदी बरसों से शांत बह रही थी और अचानक अचानक उसमें बाढ़ आ गई हो, और मैं उस बाढ़ को रोकना नहीं चाहती, बस बस उसमें बहती रहना चाहती हूँ, बहती रहना चाहती हूँ। गीत तू तो बनी ही उसके लिए है रे, यूं ही तो तेरा नाम गीत नहीं पड़ा। गीत अपनी सहेलियों के चूहल में खो जाती और कहती, माँ ने संगीत सीखा था और प्यार से मुझे गीत कहकर बुलाया करती, गीत तो बस मेरे पुकारने का नाम था। मगर जब ओमी मुझे गीत कहकर बुलाता है ना, सच मानो, तुम सच मानो, मेरे कानों में संगीत गूंजने लगता है, मुझे मुझे अपना नाम सच्चा लगने लगता है, जैसे जैसे सालों से ये नाम उसी की आवाज का इंतजार कर रहा था, वो मुझे पुकारता है और मेरे भीतर एक झनकार सी बज उठती है, जैसे किसी ने सितार की मिजराब को छू दिया हो। हाँ ऐसा लगता है मुझे। और सच में ऐसा ही था, ओमी की आवाज में गीत थी और गीत की सांसों में ओमी का सुर, दोनों एक दूसरे में इस तरह घुले थे कि अलग करना मुश्किल था, जैसे नदी में समाया आसमानी रंग, दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित थे बिना कहे बिना जताए। ये प्रेम शोर नहीं करता था, ये बजता था धीरे धीरे,

0: उसे अच्छी तरह ध्यान है कि कॉलेज में इस जोड़ी की कितनी चर्चा थी। वो अचानक सोच में पड़ जाता है और खुद से ही पूछ बैठता है, पता नहीं दोनों कैसे होंगे, कहाँ होंगे। जरूर दोनों ने शादी कर ली होगी, शायद इसीलिए यहां आना कम हो गया होगा। क्या पता, कहीं कहीं शहर छोड़कर तो नहीं चले गए होंगे। काश काश कोई ओमी को ये बता दे कि मैं समय से पहले ही घर आ गया हूं। काश काश कोई ओमी को बता दे। वो करवट बदलता है, उसके भीतर बेचैनी है। कैसे वो अपनी बात ओमी तक पहुंचाए, पता नहीं ओमी कहाँ है, क्या पता। कब से उससे बात नहीं हुई, हर रात यही सब सोचते हुए करवटों में बीतती है उसकी। अधनींदी सी हालत में वो बीते वक्त की परछाइयों को पकड़ने के लिए दौड़ता रहता है। बीती जिंदगी की यादें उसके भीतर शोर मचाती रहती हैं, जबकि सामने अजब सा सन्नाटा रहता है। वो उस कागज की तरह था जिस पर कुछ लिखकर मिटा दिया गया हो। न उस कागज पर लिखे को पढ़ा जा सकता था, न वो ऐसा कोरा था कि जिस पर कुछ नया लिखा जा सकता हो। बिखरी बिखरी यादें उसके जहन में आती जाती रहती। वो फिर जा पहुंचा उसी जलसे में जहां ओमी गाना गाकर उठा था और भीड़ उसे घेरे खड़ी थी। ओमी हर किसी से बात कर रहा था, मगर उसकी आंखें उधर कोने में खड़ी गीत की तरफ देखे जा रही थीं। गीत भी उसे ही देख रही थी और खुश हो रही थी कि कितने फैन थे उसके इर्द गिर्द। वो दूर से ही उनकी गिनती कर ही रही थी ताकि ओमी को बता सके। इतनी देर में उधर से मोहित बैंड के कलाकार गुजरने लगे। उसके पास से निकलते हुए उसके सिंगर मोहित ने ऊंची आवाज में कहा,
1: हीरे और पत्थर में फर्क करना सीख ले गीत, हीरा भी मैं हूं और हीरो भी मैं ही।
0: मोहित की बात पर उसके साथियों का ठहाका गूंज उठा। गीत ने भले ही उसकी बात पर लापरवाही से कंधे उचका दिए, मगर ओमी इसे हल्के में नहीं ले पाया। वो भीड़ का दायरा तोड़कर मोहित की तरफ बढ़ा। उसके फैन भी उसके पीछे पीछे हो लिए और देखते ही देखते बैट बल्ले निकल गए। अचानक ओमी ने देखा कि गीत को मोहित के साथियों ने घेर लिया था। ओमी सब कुछ भूलकर उस चक्रव्यूह में दाखिल हो गया, जिससे बाहर निकलने के लिए गीत भरपूर कोशिश कर रही थी। ओमी के पीछे उसके दोस्त भी आ गए। भीड़ में पता नहीं कौन किस पर हावी था। चीख पुकार के बीच गोली चलने की आवाज आई और कुछ ही देर में सायरन बजाती एम्बुलेंस आ पहुंची थी और गीत को जिसमें चढ़ाया जा रहा था। उसके कपड़े खून में भीगे हुए थे, कातर नजरें ओमी को ढूंढ रही थीं। गीत बेआवाज उसे पुकार रही थी। ओमी महसूस कर रहा था कि अगर गीत को कुछ भी हो गया तो उसकी तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। ओमी मन ही मन गीत को पुकार रहा था। हाँ, मन ही मन गीत को पुकार रहा था।

0: एम्बुलेंस के बजते हूटर की तेज आवाज से उसकी नींद उचट गई और वो ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गया। अच्छा हुआ कि उसकी नींद टूट गई। वो उस घटना को सपने में भी दोहराना नहीं चाहता था। उसने अपनी आंखें कस कर मूंद ली। वो जीवन के उस प्रसंग को पूरी तरह नकार देना चाहता था जिसके बाद उसकी जिंदगी बदल गई थी। मगर आंखें बंद कर लेने पर वो दृश्य और साफ साफ दिखने लगता था। आखिर वो उठकर बैठ ही गया, सोने की जबरन कोशिश छोड़ दी और खिड़की से बाहर देखने लगा। बाहर अंधेरा था, मगर उसकी चेतना में वो दृश्य जस का तस कैद था, जिसे वो कभी दोहराना नहीं चाहता था। उसका ऐसा अतीत जिससे उसका वर्तमान इस तरह चिपका था कि उसे कभी अलग ही नहीं किया जा सकता था। यही वो पल था जहां से बदल गई थी उसकी दुनिया, वो दुनिया जो ओमी की दिलकश आवाज से गुलजार थी, वो दुनिया जिसमें गीत की मासूमियत भरे प्रेम का दरिया छलकता रहता था। मगर उस दिन सब कुछ बदल गया था। भुलाने की लाख कोशिशों के बावजूद उस दिन की घटना उसके जहन में कब्जा करके बैठी थी। उसे अच्छी तरह ध्यान है कि मोहित के एक साथी ने पिस्तौल निकाल ली और ओमी की ओर घुमा दी। बचने की कोशिश में ओमी बगल घूम गया और गोली उसके पीछे खड़ी गीत के सिर पर लग गई। ओमी ये देखकर अपना आपा खो बैठा और उस व्यक्ति पर झपट पड़ा। हाथापाई में पिस्तौल छिटक कर दूर जा गिरी। ओमी तूफान की तरह पिस्तौल की ओर लपका। वह सोच की सुरंग में गहरे जा घुसा था कि अचानक बरामदे में जलती बत्ती गुल हो गई। शायद बिजली चली गई थी, लेकिन पंखा चल रहा था। हो सकता है बल्ब फ्यूज हो गया हो, पूरी रात जलता रहा था। अब इस अंधेरे में ओमी उसे कैसे ढूंढ पाएगा, वो बेहद परेशान हो गया ये सोचकर। ऐसा ही परेशान वो उस दिन भी था जब ओमी पिस्तौल उठाने लपका था। वो जानता था कि इस वक्त अगर ये पिस्तौल ओमी के हाथ लग गई तो वो सारी दुनिया तहस नहस कर डालेगा, तांडव मचा देगा। उसने बिना एक पल गंवाए ओमी से पहले खुद वो पिस्तौल अपने हाथ में उठा ली और ओमी को गीत का ध्यान रखने का इशारा किया, जिसे खून से लथपथ हाल में एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया जा रहा था। जीवन में आया ये कल बीत कर भी नहीं बीता और उसे आज भी उसी तरह उद्वेलित कर रहा था। उसने कुछ पल के लिए अपनी आंखों को जोर से भींच लिया, जैसे वो आगे की घटना को रोक देना चाहता हो, ताकि वक्त वहीं थम जाता और वो न होता जो हुआ।
1: ये

वो दोबारा बिस्तर पर लेट जाता है, सोने की कोशिश करने लगता है, मगर उसे लगता है कि तब से आज तक वो नींद में ही तो जीता रहा और इसी अवस्था में इतने बरस गुजार दिए। वो करवट बदलता है और साथ ही दृश्य बदलता है। वो देखता है उसके हाथ में पिस्तौल है और पुलिस उसे पकड़ कर लिए जा रही है। ओमी उसे रोकना चाहता है, उसके पीछे पीछे आ रहा है, मगर वो ओमी को रोक देता है। तू गीत का ध्यान रख, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, वो ओमी को देखकर बुदबुदाता है। ओमी दौड़कर एम्बुलेंस में जा बैठता है। उसके बाद कोर्ट कचहरी, पेशी पर पेशी, हर पेशी पर ओमी आता है, पीछे की बेंच पर बैठता है, खामोश बेबस। वो ओमी को देखकर भी नहीं देखता कि कहीं पुलिस को ओमी पर किसी तरह का शक न हो जाए। उसे कुछ याद नहीं कौन उसकी वकालत करता है और वकालत में क्या क्या कहता है। वो बस खामोशी से सबकी दलीलें सुनता रहता है, न किसी का समर्थन करता है न विरोध। उसकी चुप्पी को हामी समझा जाता है और उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है। ओमी दूर से उसे जेल जाता देखता रहता है। ओमी की आंखों से झांकते सवालों और उसमें तैरती अंतहीन बेबसी को अनदेखा कर वो जेल की सलाखों में कैद हो जाता है।

हर रात यही कहानी कई कई तरह से उसकी आंखों में घूमती रहती हैं। हर रात वो बीच नींद में जाग जाता और फिर यादों का अंतहीन सिलसिला चल पड़ता। प्याज के छिलकों की तरह एक के बाद एक घटनाओं का सिलसिला उसे मथता रहता। वो याद करने लगता कि जेल जाते वक्त ओमी ने धीरे से उससे कहा था कि वो उसका इंतजार करेगा, उसके पीछे इस घर का ख्याल रखेगा। वह यह सब कतई दोहराना नहीं चाहता। वह उस सारी कहानी को भूल जाना चाहता है। उस रात भी इसी कोशिश में लगा था कि दिमाग में छपी इस दर्दनाक इबारत को किस तरह मिटाया जाए कि अचानक कहीं दूर से उसके कानों में कोई आवाज सुनाई पड़ती है, एक मीठी तान, ऊंची तान, सुरीला आलाप। अरे अरे, ये आवाज तो ओमी की है। हाँ, ओमी की ही तो है, 100% ओमी की। ये ओमी ही है, ओमी ही है। वो हड़बड़ाकर बिस्तर से उठता है। मैं जानता था ओमी जरूर आएगा। मैं जानता था वो जरूर आएगा, इसीलिए तो बत्ती जला रखी थी मैंने। हाँ, मगर कहाँ कहाँ, बल्ब तो फ्यूज हो गया था, पर ओमी तक मेरी आवाज पहुंच गई होगी। देखा, अंधेरे की टोह लगाता ओमी आ ही गया मेरे पास। मैं आया, बस तुरंत आया। आता हूँ, दरवाजा खोलता हूँ ओमी, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, कहता हुआ वो दरवाजे की तरफ लपका। चिटकनी खोलने की जल्दबाजी में हाथ दीवार से टकराकर छिल गया, मगर उसे सुध कहाँ थी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला, आगे पीछे झांका, वहां कोई दिखाई नहीं दिया। ओमी ओमी ओमी, जरूर तू मेरे साथ मस्ती कर रहा है, यही कहीं छुपा होगा तू बाहर, है ना? कहाँ है ओमी? ओमी कहाँ है तू? कहाँ छिपा है ओमी? देख, सामने आ जा, कहाँ है? वो दरवाजे से बाहर निकल आया, सीढ़ियों की तरफ लपका, मगर वहां भी कोई नहीं था। कुछ पल को वो मायूस तो हुआ, मगर फिर अपनी बेवकूफी पर खुद ही हंस पड़ा।

हंसने लगा और दौड़कर घर के पिछवाड़े में बगीचे की तरफ दौड़ा। उसके भीतर का कौतूहल देखते ही बनता है। जिस पल का वो इतनी रातों तक जगकर इंतजार करता रहा, आखिर वो सफल हुआ। हड़बड़ी के बावजूद वो दबे पांव घर के पिछवाड़े की तरफ बढ़ता है। बेतरतीब लताओं का जाल उसे किसी जासूसी फिल्म का आभास दे रहा है। अंधेरे उजाले के बीच हर पेड़ के पीछे कोई साया छुपा सा लग रहा है। वो धीमी आवाज में पुकारता है ओमी को, ओमी, ओमी, ओमी, मगर कोई उत्तर नहीं मिलता। ओमी, वो फिर पुकारता है, इस बार थोड़ी तेज आवाज में पुकारता है, ओमी, सुन रहे हो ओमी? पीछे की तरफ हल्की सी सरसराहट मालूम पड़ती है। वो हौले से घूमकर देखता है, मगर ओमी कहीं नहीं दिखता। अलबत्ता एक बिल्ली जरूर झाड़ियों से निकलकर दूसरी तरफ भाग जाती है। वो मायूस हो जाता है। उसकी आंखें सुनसान सड़क को टटोलती हैं, मगर दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। अंधेरा और घना होने लगता है, इतना घना कि जिसमें परछाई भी दिखाई न पड़े। आखिर वो ओमी को कहां से देख पाता? वो लौटकर कमरे में आ जाता है, गहरी सांस भरकर वापस बिस्तर पर लेट जाता है।

अगली सुबह जब वो सोकर उठा तो धूप की तेज किरण आंखों पर पड़ रही थी। वो बहुत व्याकुल था। अब वह और सब्र नहीं कर सकता था। उसे ओमी को खोजना ही था और ये काम वो अकेला नहीं कर सकता था। उसे किसी के मदद की जरूरत थी। वो उठकर पड़ोस में जाने को बढ़ा। हाँ, हो न हो, वे जरूर बता पाएंगे कि मेरे पीछे यहां कोई कभी आया था। और वो कहाँ रहता है, मैं जाकर पड़ोस में पूछ लेता हूं। मगर दरवाजे पर दस्तक देने से पहले वो ठिठक गया। किसी ने चेताया कि अब वो क्या करने जा रहा है। वो सोचने लगा कि पड़ोसी को अपने बारे में क्या बताएगा, और ये भी कि वो इतने सालों तक कहाँ रहा और आज अचानक कैसे आ गया, और ओमी ओमी को क्यों ढूंढ रहा है। वो एक सजा याफ्ता मुजरिम था। ये जानकर पास पड़ोस के लोग पता नहीं उसके साथ कैसे पेश आए। हो सकता है उससे डरने लगे, अपने बच्चों को भी उससे बचकर रहने की हिदायत दे डाले। ऐसे में उसकी सहायता कौन करता। वो बहुत असहाय हो गया। फिर उसे ध्यान आया कि जेलर

साहब उसे बहुत मानते थे। वो जेलर साहब की ओर जाने को लपका, सोचने लगा, क्यों ना जेलर साहब से ही मदद ले लूं। हाँ, उनकी वजह से ही तो मेरी सजा 2 साल कम हो गई और मैं जेल से छूटकर बाहर आ गया। हाँ, वो बहुत समझदार हैं, जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। हाँ, जेलर साहब के पास जाता हूँ, वहीं जाता हूँ मैं। वो सोचता है कि जेलर साहब कितने भले और मददगार हैं, वे जरूर उसकी सहायता करेंगे। वह याद करता है कि बिना उसके कुछ कहे ही जेलर साहब ने उसकी फाइल मंगाई थी और उसकी रिहाई के लिए अपील की थी। जेलर साहब ही एक ऐसे इंसान थे जिनसे वो अपने मन की बात कह सकता था और वही कोई रास्ता भी सुझा सकते थे। बस फिर क्या था, वो जल्दी से तैयार होकर जेल की तरफ निकल पड़ा।

क्या हुआ, घर में मन नहीं लगा? जेलर साहब ने पूछा। वो सीधा मुद्दे पर आते हुए बेचैनी भरे स्वर में कहता है, साहब ओमी से मिलवा दो ना। ठीक है, मिलवा देंगे, पर ये ओमी है कौन? साहब जी, वो मेरे साथ ही रहता था, बहुत अच्छा गाता था, अरसा हो गया उसकी आवाज सुने। वो मेरे साथ यहां भी आया था, मुझे जेल तक छोड़ने। उसने वादा किया था साहब कि वो मेरे घर का ध्यान रखेगा। जेलर साहब सोच में पड़ गए, कौन हो सकता है, क्योंकि उनके रहते तो कभी कोई इससे मिलने आया नहीं। खैर, जब ये जेलर साहब इस जेल में आए, तब अन्य मुजरिमों की तरह इसकी भी पिछली कहानी से जेलर साहब पूरी तरह नावाकिफ थे। हाँ, उसके स्वभाव की नरमी से जरूर जेलर साहब को प्रभावित किया था और उन्होंने उसकी समय पूर्व रिहाई की अपील भी लगाई थी। अपील करते समय ही उन्होंने उसकी फाइल पढ़ी थी और जाना था कि ये हत्या के जुर्म की सजा भुगत रहा है। उन्हें तब भी विश्वास न हुआ था कि ये व्यक्ति किसी का कत्ल कर सकता है। खैर, जेलर साहब ने अर्दली से कहकर उसकी फाइल मंगवाई थी कि शायद उसमें ओमी का कुछ पता ठिकाना मिल सके। अर्दली फाइल लाकर देता है, जेलर साहब उसकी फाइल पलटते हैं कि अचानक खट से एक तस्वीर फाइल से नीचे गिरती है। जेलर साहब से पहले वो लपक कर तस्वीर उठा लेता है और चहक उठता है, साहब जी, साहब जी, साहब जी, यही तो है ओमी। हाँ साहब जी, यही है ओमी, इसी को तो ढूंढ रहा हूँ मैं। इसे ढूंढ दो साहब जी, इसे ढूंढ दो साहब जी, इसके बिना मेरी रिहाई का कोई मतलब नहीं है साहब जी। इसे ढूंढ दो, इसे ढूंढ दो साहब जी, इसे ढूंढ दो, इसे ढूंढ दो साहब जी, इसे ढूंढ दो। जेलर साहब सोचने लगे कि फोटो फाइल से निकली है तो इसमें इसके बारे में भी जरूर कुछ लिखा होगा। वो फाइल के पन्ने पलटने लगते हैं। शिवेंद्र ओंकार उर्फ ओमी को दफा 302 के जुर्म में आज तारीख। जैसे जैसे वे फाइल पढ़ते जा रहे थे, सारा रहस्य खुलता जा रहा था। जब उसे यहाँ लाया गया था और रिकॉर्ड के लिए जो तस्वीर खींची गई थी, ये वही तस्वीर थी, यानी ओमी और कोई नहीं, वो खुद था। जेलर साहब समझ चुके थे कि लंबे समय तक जेल की जिंदगी जीते जीते वो खुद को ही पहचान नहीं पा रहा था। अपने कॉलेज के ओम गीत बैंड का वो सिंगर, हिंदुस्तानी और पाश्चात्य संगीत का फ्यूजन, जिसके गाने की खासियत थी, जिसकी ऊंची तान और दिलकश आवाज के कितने ही दीवाने थे, वो और कोई नहीं, खुद ही था ओमी। जेलर साहब फाइल पलट रहे थे और महसूस कर रहे थे कि एक समय में वो कितना हसमुख और हाजिर जवाब हुआ करता था, कितना खूबसूरत, कितना सुदर्शन युवक, मूछों की हल्की धारी, चमकदार आंखों वाला वो युवक, संगीत की धुन पर थिरकता, आवाज के आरोह अवरोह पर झूमता ओमी एक जिंदा दिल इंसान था। उसके दिलकश आवाज को सुनने भीड़ उमड़ आती थी, ओमी ओमी ओमी ओमी, हर तरफ उसके नाम की धूम मची रहती थी। ऐसे ही म्यूजिकल कॉन्सर्ट में अपने प्रतिद्वंदी मोहित बैंड के लोगों के साथ उसका झगड़ा हुआ, हाथापाई, जानलेवा हमला, जिसमें इसकी गोली से गीत नाम की युवती की मौत हो गई। उसके बाद से ही ये अवसाद में चला गया, ऐसे गहरे अवसाद में कि इसने खुद को बचाने की कोशिश करना तो दूर, बल्कि खुद की उसकी हत्या का इल्जाम अपने सिर ले लिया। उसके वकील ने कहना चाहा कि ये गोली बचाव के दौरान गीत को लगी थी, मगर शिवेंद्र ओंकार उर्फ ओमी अब जीना ही नहीं चाहता था। जेलर साहब समझ रहे थे कि ओमी यानी वह खुद ही खुद को माफ नहीं कर पा रहा था और उसने अपने लिए ये उम्र कैद की सजा चुनी थी। जिस तरह सभी कैदी अपनी रिहाई के दिन गिनते रहते थे, इसने कभी भी जेल से बाहर निकलने का सपना नहीं देखा, यही उसकी दुनिया थी। मगर जब जेलर साहब की मदद से उसकी रिहाई हुई, तब वो खुद ही दो हिस्सों में बट गया। वो खुद की पिछली जिंदगी को थर्ड पर्सन होकर देखता रहा और खुद को ही खोजता रहा। उसके नाम के अक्षर कैदी नंबर में तब्दील हो गए। उसके भीतर का ओमी जेल की ऊंची दीवारों में दफन हो गया। उसकी आवाज की खनक लोहे की सलाखों में गुम हो गई।
जेलर साहब पूछना चाहते थे कि ये कैसी और किसकी रिहाई थी, क्योंकि जिसे कैद किया गया था वो रिहा होने से बिल्कुल अलग था। कैद तो किया था एक मशहूर सिंगर को, जिसकी लरजती आवाज के कितने ही दीवाने थे, मगर जिसे रिहा किया गया, ऊंची तान लेना तो दूर, वो तो किसी से दबी जुबान में भी बात नहीं करता था। चुपचाप हुक्म की तामील करना उसे बाकी कैदियों से अलग करती थी। हंसने गाने से तो उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, उसकी कोई पसंद नापसंद नहीं थी। अब वो किसी से नहीं लड़ता था, किसी से नहीं उलझता था, कोई बहस नहीं उसमें, न तो किसी तरह की जिद थी न उत्तेजना। कैद के इन लंबे वर्षों में वो एक निहायत तटस्थ व्यक्ति हो चला था, एकदम शांत और निर्विकार। अनजाने में या आत्मरक्षा में वो खुद अपनी प्रेमिका की हत्या का कारण बन गया था। इस आत्मग्लानि में घुल घुल कर उसकी जिद पानी हो गई थी और वो अपने भीतर ही भीतर खामोश होता चला गया। रिहाई के बाद अचानक वो गुमशुदा शख्स ओमी उसके भीतर उभरने लगा था और ये व्यक्ति दो बिल्कुल मुख्तलिफ शख्सियतों में बट गया था। जेलर साहब महसूस कर रहे थे कि वो मल्टीपल डिसऑर्डर का शिकार हो चुका था, यानी एक ही व्यक्ति में अलग अलग किरदारों को जीना। वो खुद को खुद से अलग करके देख रहा था, कुछ हद तक आउट ऑफ बॉडी जैसा एहसास। ये तुम्हारी ही तस्वीर है, समझे? तुम ही ओमी हो, शिवेंद्र ओंकार उर्फ ओमी। सुना तुमने? समझे कुछ? तुम ही हो वो ओमी। जेलर साहब ने उसकी तस्वीर उसे वापस लौटाते हुए कहा। वह कुछ समझ नहीं पाया कि जेलर साहब क्या कह रहे हैं। वो अबूझ सा जेलर साहब का मुंह ताकने लगा। फिर वो अकबकाकर कुर्सी से उठा और उस फोटो को लेकर कमरे में लगे आईने के सामने खड़ा हो गया। कभी वो उस तस्वीर वाले कमसिन चेहरे को देखता तो कभी आईने में बड़ी अपनी अधपकी दाढ़ी को। जेलर साहब कह रहे थे कि ये दोनों चेहरे उसी के हैं, मगर उन दोनों में कुछ भी तो एक जैसा नहीं था। वे दोनों शख्स एक कैसे हो सकते थे? वह पूरी तरह कंफ्यूज हो गया था, खुद से पूरी तरह अनजान। वो सोच रहा था, क्या कह रहे हैं जेलर साहब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं ही ओमी हूं। क्या कह रहे हैं जेलर साहब? पता नहीं, पता नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा।

गीतों भरी कहानी। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अलका सिन्हा की लिखी कहानी रिहाई। वाचक स्वर मंदाकिनी जोशी का था, संपादन सहयोग सौरभ घारू का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राघवेंद्र सिंह नेगी।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।

आपकी कसम, इस फिल्म का गीत था किशोर कुमार, लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी के बोलों को सुर में ढाला राहुल देव बर्मन ने। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज, साहिल उद्यानवी के बोल।

संघर्ष फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज थी, नगमा निगार, शकील बदायूं, मौसिकार नौशाद। चित्रपट संगीत, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।

ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म जानवर से, आवाजें थीं लता मंगेशकर और आशा भोसले की, शैलेंद्र के बोल थे, संगीत था शंकर जयकिशन का।

किशोर कुमार का गाया ये गीत आप सुन रहे हैं। तर्ज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की आनंद बख्शी की रचना है, फिल्म है महबूब की मेहंदी। और यही है श्रोताओं आज के चित्रपट संगीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

0: मैटिनी शो। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको सुनवा रहे हैं शायर और लेखक आलोक यादव से यूनुस खान की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और मैटिनी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं शायर आलोक यादव जी, जो भारतीय भविष्य निधि संगठन से भी जुड़े हुए हैं और एक ऊंचे ओहदे पर हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: बहुत शुक्रिया यूनुस साहब, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं इस विविध भारती के स्टूडियो में आपके पास हूँ।
1: जी आलोक जी, मुझे लगता है कि एक शायर का सबसे बड़ा परिचय उसकी शायरी होती है, तो सबसे पहले आपके दो चार शेर सुनते हैं, फिर बातें करते हैं।
2: बिल्कुल
1: इरशाद।
2: एक शेर से शुरुआत करता हूं मैं अपने, कि नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा।
1: वाह, नई नस्लों के हाथों में भी
2: ताबिंदा, नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा, मैं मिल जाऊंगा मिट्टी में, कलम जिंदा रहेगा।
1: वाह वाह वाह, बहुत शानदार।
2: किसी की याद आएगी मुझे दश्ते जुनू में,
1: दश्ते जुनू में,
2: किसी की याद आएगी मुझे दश्ते जुनू में, किसी का नाम कोसारों पे पाइंदा रहेगा।
1: वाह वाह वाह, कोसारों पर पाइंदा रहेगा, क्या बात है, शानदार है।
2: गजल कोई लिखे कैसे लबो रुखसार पे अब, अच्छा गजल कोई लिखे कैसे लबो रुखसार पे अब, समय से अपने कब तक कोई शर्मिंदा रहेगा।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत प्यारी बात है, बहुत प्यारी बात है।
2: जी एक दो शेर और एक गजल के, मौन के ये आवरण मुझको बचा ले जाएंगे, मौन के ये आवरण मुझको बचा ले जाएंगे, वरना बातों के कई मतलब निकाले जाएंगे।
1: वाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है।
2: जानते हैं रहनुमा देंगे हमें कैसा जवाब, जानते हैं रहनुमा देंगे हमें कैसा जवाब, आज के सारे मसाइल कल पिटा ले जाएंगे।
1: वाह वाह वाह, बड़ी बात है।
2: अब अंधेरों की हुकूमत हो चली है हर तरफ, अब अंधेरों की हुकूमत हो चली है हर तरफ, अब अंधेरों की अदालत में उजाले जाएंगे।
1: वाह अच्छा है, बहुत अच्छा है।
2: शहर से हाकिम के हरकारे जो आए गांव में,
1: जी
2: शहर से हाकिम के हरकारे जो आए गांव में, जाने किसके छीन के मुंह के निवाले जाएंगे।
1: वाह वाह वाह,
2: कब तलक भरते रहें दम दोस्ती का आपकी,
1: जी
2: कब तलक भरते रहें दम दोस्ती का आपकी, आस्तीनों में ना हमसे सांप पाले जाएंगे।
1: वाह आस्तीनों में ना हमसे सांप पाले जाएंगे, क्या बात है।
2: दर्द दिल जो मौत से पहले गया तो दर्द क्या,
1: तो दर्द क्या,
2: दर्द दिल जो मौत से पहले गया तो दर्द क्या, तेरी थाती को हमेशा हम संभाले जाएंगे।
1: वाह वाह वाह वाह,
2: प्यार का दोनों पे आखिर जुर्म साबित हो गया,
1: जी
2: प्यार का दोनों पे आखिर जुर्म साबित हो गया, ये फरिश्ते आज जन्नत से निकाले जाएंगे।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा है। मुझे ये बताएं, इतने प्यारे शेर आपने कहे, और गजलों की दुनिया जो है वो एक बहुत ही लोकप्रिय दुनिया है, पर ये रास्ता आसान नहीं है, तो गजलों के रास्ते पर आपने कब चलना शुरू किया था?
2: जी दरअसल मैं कविता लिखने लगा था जब स्कूल में था मैं,
1: जी

0: उसके बाद जब लखनऊ यूनिवर्सिटी में पहुंचा तो मैंने कविता के साथ कहानी भी लिखी कुछ जो उस दौर के सबसे लोकप्रिय अखबारों में छपी और आकाशवाणी से प्रसारित भी हुई। शायरी की तरफ और गजल की तरफ मेरा बहुत रुझान था, लेकिन कोई मुझे सिखाने वाला नहीं था। इतना मुझे पता था कि गजल का एक उरूस होता है और उस उरूस को समझना बहुत जरूरी है गजल कहने से पहले। 1993 एक ऐसा साल था जहां मेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आया कि मैंने कविता लिखना और कहानी लिखना, मतलब लेखन का कार्य पूरी तरह से बंद कर दिया और सिविल सर्विसेज की तैयारी और उसी में पूरी तरह से डूब के रह गया मैं।
1: इससे पहले आप क्या कर रहे थे?
0: इससे पहले मैं बीएससी और एमबीए किया मैंने।
1: तो ये जो बीएससी है ये तो विज्ञान की पढ़ाई हुई
0: जी,
1: फिर अचानक एमबीए की तरफ घूम गए आप?
0: एमबीए चूंकि एक प्रोफेशनल कोर्स था और उस दौर में बहुत कम लोग एमबीए करते थे, मुझे इसके बारे में पता लगा और मेरा रुझान था, मैंने एमबीए किया उस समय।
1: तो उसके बाद पेशेवर दुनिया की ओर नहीं गए?
0: बिल्कुल गया मैं। मैंने प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब किया लेकिन शुरू से लगन ये थी कि सिविल सर्विसेज करना है, तो हमेशा से था कि तैयारी करनी है।
1: तो ब्रेक लिया?
0: ब्रेक लिया मैंने जॉब से और ब्रेक लेके फिर मैंने तैयारी शुरू करी।
1: कितने बरस तैयारी की?
0: बहुत साल तैयारी की मैंने 93 से लेके 98 बैच में मैं इसमें आया।
1: ओहो जी, तो कुछ नाकाम अटेम्प्ट थे या क्या?
0: बिल्कुल नाकाम अटेम्प्ट थे, बहुत सारे नाकाम अटेम्प्ट रहे
1: जी जी।
0: यूपीएससी आसानी से घुसने नहीं देता।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही कठिन राह है
0: जी,
1: है ना, वो आग का दरिया है।
0: बिल्कुल।
1: तो इस दौरान जब आप यूपीएससी की पढ़ाई में मुब्तिला थे, क्या कलम मचलती नहीं थी लिखने के लिए?
0: हाँ बहुत, बेशक ऐसा होता था, कई दौर ऐसे आए, कई समय ऐसे आए कि लगा कि कुछ लिखना चाहिए, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, पहले इस मकसद को हासिल कर लिया जाए, ये पूरा कर लिया जाए, उसके बाद सोचेंगे। लेकिन उसके बाद भी काफी समय लग गया।
1: अच्छा।
0: और मैंने दोबारा जो लिखना शुरू किया है वो 2012-13 में फिर से लिखना शुरू किया।
1: आपने बताया कि ये जो नाकाम अटेम्प्ट्स थे और एक जदोजहद का सिलसिला समझ में आता है
0: जी,
1: बहुत सारे ऐसे बच्चे हमें सुन रहे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि
0: हाँ
1: पूरा सिनेरियो होता है, एक हॉस्टल
0: या
1: एक किराए का कमरा, एक ट्रांजिस्टर,
0: बिल्कुल
1: एक टेबल,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ये सिलसिला जिससे आप भी बाकायदा वाकिफ होंगे, वहां रेडियो जो है एक बहुत बड़ा साथी होता है,
0: बहुत बड़ा।
1: और आप एक कामयाब यूपीएससीएन हैं
0: जी,
1: तो क्या सलाह, एक एक जो ज्ञान का तत्व निचोड़ क्या देंगे आप अपने अनुभव का, ताकि उनको थोड़ा सा हौसला, थोड़ी सी रोशनी मिले?
0: देखिए, किसी भी खासतौर से यूपीएससी की परीक्षा के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और समय देना पड़ता है, ये लड़ाई लंबी है।
1: आशा और निराशा के बीच जिस तरह का तनाव का सिलसिला है, उससे कैसे निपटें ये बच्चे?
0: उससे निपटने के लिए आपको कोई अच्छा शौक रखना चाहिए, चाहे वो गेम्स का हो, चाहे वो शायरी का हो, चाहे पढ़ने का हो। मैंने लिखना जरूर छोड़ा बट पढ़ना नहीं छोड़ा था मैंने। और यूपीएससी में भी मेरा एक सब्जेक्ट था, वो हिंदी लिटरेचर था।
1: ओके
0: जी,
1: तो ये बड़ा कठिन,
0: हिंदी लिटरेचर मेरा ग्रेजुएशन में नहीं था।
1: हाँ, तो ये कठिन सिलसिला चुना था आपने
0: जी,
1: है ना, क्योंकि अमूमन लोग जो है
0: पॉपुलर था मेरे लिए
1: जी। यूपीएससी में सिलेक्ट हो जाने वाला दिन और उसकी कैफियत बताएं।
0: एक बहुत खूबसूरत दिन था वो, और ये लगा कि जो सपना था वो मैंने, मेरा साकार हुआ, तो खुशी बहुत थी, आंखों में आंसू थे।
1: बिल्कुल, क्योंकि अच्छा प्रीलिम्स मेंस निकाल के फिर इंटरव्यू, कई लोग तो मेंस पे अटक जाते हैं, इंटरव्यू में निकल जाते हैं, छन जाते हैं, तो ये बड़ा ही चांद को छू लेने जैसा।
0: और इस दौरान मैं फिर एक बार कहूंगा कि आकाशवाणी से मेरा जुड़ाव तो बहुत पुराना, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान मैंने युववाणी ज्वाइन किया। जब मैं तैयारी कर रहा था उस दौरान भी आकाशवाणी को मैं जरूर सुनता था, रेडियो को जरूर सुनता था, मेरा एक छोटा ट्रांजिस्टर था और उस ट्रांजिस्टर पे गाने जब बजते थे तो मन बिल्कुल खुश हो जाता था।
1: बिल्कुल, वो एक
0: तरोताजगी, तरोताजगी मिल जाती थी
1: जी, एक नई जिंदगी होती है जिम्मेदारियों के साथ एक प्रशासनिक अधिकारी की
0: जी।
1: मैं समझ पाया जब आपने कहा कि थोड़ा वक्त लगा वापस लिखना शुरू करने में, तो वो जो शुरुआती साल थे वो कितने उबड़ खाबड़ थे?
0: आप दूसरे दौर की बात कर रहे हैं?
1: बिल्कुल
0: जी, तो मैं आपको बताऊं कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि शायरी की तरफ मेरा रुझान था और एक जबरदस्त आकर्षण था गजल के प्रति, तो मैंने फिर तलाश करना शुरू किया कि कोई मुझे इस फन को सिखा दे। और उस समय मेरी मुलाकात हुई अखिल नुमानी साहब से, जो कि बहुत बड़े शायर हैं और बहुत अच्छे उस्ताद भी हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि उन्होंने मुझे सिखाना कबूल किया
1: और ये तो गजलों की बहुत पुरानी उर्दू शायरी की परंपरा है कि आपके उस्ताद हो जिनसे आप मश्क करें कि भाई
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: सिलसिला
0: जी। तो उन्होंने मुझे इसका अरूज सिखाया और फिर हाथ पकड़ के चलना सिखाया। इसके साथ साथ एक वहाँ बरेली में सरदार जिया साहब थे, उन्होंने भी मेरी तरबियत की और मेरा हाथ पकड़ा, मुझे सिखाया। और उनके रहते हुए ही मेरा पहला जो संग्रह था उसी के नाम 2016 में आया।
1: जी जी, कितनी सुंदर बात होती है अपनी किताब अपने हाथों में आना।
0: जी
1: बेशक। तो वो दिन कैसा था जब किताब पब्लिश होके उसकी प्रतियां आपके पास आ गईं?
0: जी, इसकी भी एक कहानी है कि मैं चाहता नहीं था कि मैं किताब अभी लाऊं। मेरे अंदर ये था कि पहले अच्छी गजलें और कहूं और जब एक जखीरा तैयार हो जाए तब इत्मीनान से सोच के लाऊं कि उसमें अच्छी गजल जाए। लेकिन हमारे उस्ताद का भी कहना था और हमारे जो दूसरे उस्ताद थे सरदार जैसा, वो काफ़ी चाहते थे कि पहली किताब आ जाए। तो हम इस किताब को लेके आए और जब ये किताब मेरे हाथ में आई तो ऐसा लगा जैसे मेरा दूसरा जन्म हुआ।
1: वाह बढ़िया।
0: मैंने अपनी किताब में लिखा है कि किसी शायर या किसी लेखक की पुस्तक का प्रकाशन जो है उसका दूसरा जन्म होता है, क्योंकि उसको एक नया रूप मिलता है, समाज के सामने उसका एक नया रूप आता है।
1: बिल्कुल, बहुत सही कह रहे हैं। तब तक क्या आपने मुशायरों में पढ़ना शुरू कर दिया था?
0: नहीं, छोटी नशस्तों में पढ़ना शुरू किया था मैंने।
1: जी, ये जो सिलसिला होता है महफिलों में पढ़ने का,
0: जी
1: इसके लिए एक अलग तरह का हुनर और एक अलग तरह की हिम्मत चाहिए।
0: बेशक।
1: तो उस रास्ते पर जब आप चल पड़े तो उसके तजुर्बात हमारे साथ शेयर करिए।
0: शुरुआत दौर में बहुत मुश्किल होती है कि आप मंच पे खड़े होके माइक पर जब पढ़ते हैं तो खासतौर से गजल पढ़ते हुए लगता है कि कहीं कोई लग्जिश ना हो जाए और कहीं ज़रा सा चूके और लोगों ने आपको खारिज करना शुरू कर दिया। तो उस सबसे बचने के लिए एक तनाव दिमाग में रहता था, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे वो ओवरकम किया मैंने और फिर प्रस्तुतियों में भी अपने कुछ निखार आया, थोड़ा बेहतर हुआ जैसा लोग बताते हैं। मुझे तो आज भी लगता है कि मैं अभी सीख रहा हूँ और अभी बहुत सारा रास्ता मुझे तय करना है।
1: अब मुझे ये बताएं कि जब आप अब पढ़ते हैं और आपके चारों तरफ कुछ जाने माने शायर मौजूद होते हैं जो बरसों बरस से पढ़ रहे हैं और शायरे में मौजूद हैं जिनको आप पहले सुना करते थे,
0: जी
1: तब दिल में क्या चल रहा होता है?
0: हाँ, तब भी दिल में यही चलता है कि कुछ मैं गलत ना बोल जाऊं, कुछ गलत कह ना जाऊं, और ये भी इच्छा रहती है कि वो मेरे शेर को गौर से सुने और अगर अच्छे हों तो उस पर दाद दें।
1: इस तरह के अनुभव होंगे वो हमारे साथ बांटिए।
0: कई बार ऐसा हुआ, जैसे फरत एहसास साहब हैं, उन्होंने मेरे एक शेर की तारीफ की जो मेरा दूसरा संग्रह है कलम जिंदा रहेगा, उस पर उन्होंने लिखा भी था और मुशायरे में भी उन्होंने ये कहा कि अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग वो अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन मेरा एक शेर था जिसको उन्होंने बहुत तारीफ की और कहा कि बिल्कुल सही इसमें इस्तेमाल हुआ। वो शेर था कि मेरी नजर पड़ी है रियर व्यू मिरर पे जब,
1: ओहो
0: मेरी नजर पड़ी है रियर व्यू मिरर पे जब, जितना तू दूर था मुझे उतना नहीं लगा।
1: वाह, अच्छा है अच्छा है। तो इस शेर की फरत एहसास साहब ने तारीफ की और बजाय इसके कि वो अंग्रेजी अल्फाज का इस्तेमाल गजलों में अच्छा नहीं मानते। आधुनिक गजल अपने ये कहना चाहिए कि जो पारंपरिक ढांचा है उससे बहुत आगे निकल गई है और वो अपने समय और समाज की बात कर रही है।
0: जी,
1: आप किस तरह से अपने शेरों में अपने समय और समाज की बातों को पिरोते हैं?
0: देखिए, मैं तो जहाँ पे रहता हूँ और मेरे जो एहसासात हैं वहीं से निकल के आते हैं, चाहे वो मेरा दफ्तर हो चाहे वो लोग हों जिनको मैं सर्व करता हूँ। तो जैसे मैंने एक शेर कहा कि तुम काम से आए हो तो फिर काम बताओ।
1: वाह, कितनी प्यारी लाइन है।
0: तुम काम से आए हो तो फिर काम बताओ।
1: हाँ।
0: बेकार खुशामद में नहीं वक्त गंवाओ।
1: वाह, ये तो सीधी सीधी बात हो गई है।
0: ये सीधी सीधी बात
1: ये मतलब आपने अपने दफ्तर के लिए कहा है।
0: जी जी जी, ऐसे ही मेरी गजल है। मैं चाहूंगा कि दो चार शेर आपको पेश करूं, उसमें आपको समझ में आएगा कि मैं कैसे कहां से
1: जी
0: अपने विषय उठाता हूं।
1: जी इरशाद।
0: तो ये है कि लोग कहते हैं कि जो ज्यादा बोलने वाले लोग हैं
1: जी
0: उनके लिए कहा जाता है कि सूप बोले तो बोले चल नहीं बोले जिसमें 72।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: हमारे उत्तर प्रदेश में हिंदी बेल्ट में
1: मशहूर कहा
0: होता है। जी, तो मैंने कहा कि सूप छलनी से भी बढ़कर निकले,
1: सूप छलनी से भी बढ़कर निकले
0: छह दिन में भी 72 निकले।
1: ओ, उल्टी बात कही है।
0: उल्टी बात
1: जी,
0: सूप छलनी से भी बढ़कर निकले, जिनको हम सूप समझ रहे हैं
1: जी,
0: सूप छलनी से भी बढ़कर निकले, छह दिन में भी 72 निकले,

0: दफ्तरों में न मिला एक इंसान,
1: वाह,
0: दफ्तरों में न मिला एक इंसान, कहीं बाबू कहीं अफसर निकले।
1: क्या शानदार है, क्या खूबसूरत, वाह।
0: दफ्तरों में न मिला एक इंसान, कहीं बाबू कहीं अफसर निकले, और धूल उड़ती है क्षितिज ओझल है,
1: क्षितिज ओझल है,
0: धूल उड़ती है क्षितिज ओझल है, तेरी यादों के हैं लश्कर निकले।
1: वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये वो सिलसिला है जहां आप अपने समय और समाज को अपने अशार में पिरोते हुए चलते हैं। पहली किताब से कुछ चीजें हमें सुनाइए प्लीज।
0: जरूर, एक गजल के शेर सुनिए कि अपना रावण की कृपा का भार ढोना चाहता हूं।
1: क्या बात है, वाह।
0: अपना रावण की कृपा का भार ढोना चाहता हूं, आ भी जाओ राम मैं मारी छोना चाहता हूं।
1: वाह।
0: थक चुका हूं और कब तक ये दुआ करता रहूं मैं।
1: वाह।
0: थक चुका हूं और कब तक ये दुआ करता रहूं मैं, एक कांधा करता मौला की रोना चाहता हूं।
1: वाह।
0: तुम की पंछी हो उड़ो आकाश में जिस ओर चाहो, तुम की पंछी हो उड़ो आकाश में जिस ओर चाहो, कब तुम्हारी राह की दीवार होना चाहता हूं।
1: बढ़िया है।
0: आशिकों के आंसुओं से था जो तर दामन गजल का, आशिकों के आंसुओं से था जो तर दामन गजल का, अश्क से मजलूम के उसको भिगोना चाहता हूं।
1: वाह।
0: जिनके हाथों में किताबों की जगह औजार देखे,
1: औजार देखे,
0: जिनके हाथों में किताबों की जगह औजार देखे, उनकी आंखों में कोई सपना सलोना चाहता हूं।
1: सुंदर, बहुत बढ़िया।
0: और है कलम तलवार से भी तेज तरह लोग तो फिर, है कलम तलवार से भी तेज तरह लोग तो फिर, मैं किसी मजबूर की शमशीर होना चाहता हूं।
1: वाह वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये पहली किताब से आपने एक गजल पढ़ी है।
0: जी। एक गजल है जो तत्सम शब्दावली के साथ में है हिंदी की।
1: जी जी,
0: मैं चाहता हूं उसको भी पेश करूं आपके सामने। के पढ़ रहा हूं वेदना का व्याकरण में,
1: वेदना का व्याकरण,
0: पढ़ रहा हूं वेदना का व्याकरण में, हूं समर में आज भी ये रे क्षण में।
1: वाह।
0: सभ्यता के नाम पर उड़े गए जो,
1: जी
0: सभ्यता के नाम पर उड़े गए जो, नोच फेंकूं वो मुखौटे आवरण में।
1: क्या बात है।
0: रच रहा हूं आज मैं कोई गजल फिर, रच रहा हूं आज मैं कोई गजल फिर, खोल बाहें कर रहा हूं दुख ग्रहण में।
1: वाह।
0: ये निरंतर रच जगे चिंतन ये लेखन, ये निरंतर रच जगे चिंतन ये लेखन, कर रहा हूं अपनी ही वै का शरण में।
1: वाह।
0: पीछे पीछे अनगिनत हिंसक शिकारी,
1: जी
0: पीछे पीछे अनगिनत हिंसक शिकारी, प्राण लेकर भागता सहमा हिरण में।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: शक्ति का हूं पुंज एटम बम सरीखा,
1: एटम बम,
0: शक्ति का हूं पुंज एटम बम सरीखा, देखने में लग रहा हूं एक कण में।
1: वाह, बहुत अच्छा है।
0: है मेरी पहचान है अस्तित्व मेरा, है मेरी पहचान है अस्तित्व मेरा, कर नहीं सकता किसी का परिक्रमण में।
1: क्या बात है।
0: ब्रह्म का वरदान हूं नूरे खुदा हूं, ब्रह्म का वरदान हूं नूरे खुदा हूं, व्योम का हूं तत्व धरती का लवण में।
1: वाह वाह, इसमें पूरी साइंस वाइंस आ गई है।
0: इसमें तीन धर्मों के बारे में आ गया।
1: देखिए, दर्शन तो आया पर मैंने साइंस भी देखी कि हाँ, प्रॉपरली साइंस आई है इस गजल।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ब्रह्म का वरदान हूं नूरे खुदा हूं, व्योम का हूं तत्व धरती का लवण में। और एक दो गजल के शेर कुछ और पढ़ देता हूं मैं आपके सामने के। बिन बात अगर रूठ वो जाए तो करूं क्या,
1: जी
0: बिन बात अगर रूठ वो जाए तो करूं क्या, और वजह भी कोई ना बताए तो करूं क्या।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: सब देखने वालों की निगाहों में जलन है, सब देखने वालों की निगाहों में जलन है, वो मुझसे जो नजरें ना हटाएं तो करूं क्या? क्यों गैरों के आगे मैं कभी हाथ पसारूं, क्यों गैरों के आगे मैं कभी हाथ पसारूं, और यार भी एहसान जताएं तो करूं क्या।
1: क्या बात है, वाह।
0: होगा यही बढ़ जाएगी एक और शिकायत, होगा यही बढ़ जाएगी एक और शिकायत, वादा भी करें और ना आए तो करूं क्या।
1: वाह।
0: मुस्कान पे मैं जिनकी हूं आलोक फिदा वो, मुस्कान पे मैं जिनकी हूं आलोक फिदा वो, हर बात मेरी हंस के उड़ाएं तो करूं क्या।
1: क्या बात है, बहुत अच्छा। मुझे ये बताएं कि आपका ताल्लुक कर्मचारी भविष्य निधि से है, ये संगठन कितना मायने रखता है और आज आपके सामने किस तरह की चुनौतियां हैं?
0: जी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है वो हिंदुस्तान के ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के भविष्य की चिंता करता है, उनके पीएफ के माध्यम से, उनकी पेंशन के माध्यम से, और एक ईडीएलआई नाम की एक इंश्योरेंस स्कीम है उसके माध्यम से। इस समय

0: 7 करोड़ के आसपास हमारे सदस्य हैं, जो लाइव जो सब्सक्राइबर हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन आता है,
1: जी, बहुत बड़ी तादाद है ये
0: बहुत बड़ी
1: तो।
0: तादाद है, और इनकी पेंशन और इनके पीएफ की व्यवस्था हम लोग करते हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक खास तौर से मैं अपनी सर्विस के बारे में कहूँगा कि हमको दोनों मौके फराहम होते हैं कि हम स्टेट की जो पावर है वो भी रखते हैं, और साथ में एक रेगुलेटर की तरह भी काम करते हैं, साथ में हम जो है एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन भी हैं। हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि हम करोड़ों जो कर्मचारी हैं, जो देश के निर्माण में लगे हुए हैं,
1: उनकी बेहतरी,
0: उनकी सेवा कर रहे हैं।
1: जी, एक बहुत बड़ा संगठन और एक बहुत
0: जी
1: बड़ी जिम्मेदारी।
0: जी
1: तो अपने काम के बीच में लिखने का वक्त कैसे निकलता है?
0: देखिए, इसीलिए शायद मैंने इस शायरी को चुना,
1: जी
0: क्योंकि शायरी ये मुझे ये सुविधा देती है, ये सहूलत देती है कि मैं एक शेर कभी भी कह सकता हूँ और उसको नोट कर सकता हूँ या दिमाग में रख सकता हूँ। दिमाग से तो निकल जाता है, तो अक्सर वो
1: लिखना ही पड़ता है।
0: स्लिप में लिख लिया, जो दिमाग में रहता है वो अक्सर निकल जाता है। तो कई बार होता है काम करते करते भी कुछ ऐसे एहसास आते हैं, ऐसी बातें हो जाती हैं कि उनसे एक शेर का जन्म होता है, वो शेर उस समय लिख लिया जाता है, उसके बाद जब कभी मौका आता है तो उसमें आगे के शेर कहे जाते हैं।
1: क्या बढ़िया बात है। अपनी किताबों के बारे में बताइए।
0: जी, तो जैसा कि आपने बताया कि उसी के नाम मेरा पहला संग्रह था, जो 2016 में लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद से आया था।
1: जी,
0: उसके बाद 2022 में कलम जिंदा रहेगा मेरा संग्रह था दूसरा, जो कि भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ। जो पहला संग्रह था उसी के नाम, वो उर्दू में भी आया, उर्दू स्क्रिप्ट में भी आया, नश्तालिक में, उसे अर्शिया पब्लिकेशन दिल्ली ने पब्लिश किया था। और तीसरा संग्रह जो है वो लफ्ज़ चारागरी भी करते हैं के नाम से, इनफैक्ट ये संग्रह मैंने नहीं किया था, बल्कि बहुत मशहूर लेखक शायर हैं, कवि हैं, ओम निश्चल जी, दिल्ली
1: जी
0: में
1: बिल्कुल,
0: बहुत अच्छे लेखक आलोचक हैं, उन्होंने एक सीरीज निकाली है सर्वभाषा प्रकाशन नई दिल्ली से, उसमें दौरे हाजिर के जितने भी अच्छे शायर हैं उन सब पे एक एक किताब निकाली उन्होंने। मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे भी इस सीरीज में
1: इस
0: शामिल
1: सिलसिले में
0: किया है।
1: उन्होंने चुना आपको,
0: जी
1: तो इसमें से कुछ सुनाइए प्लीज।
0: हाँ, लफ्ज़ चारागरी भी करते हैं, ये इस जो संग्रह है उसका टाइटल है। मैं आपको एक गज़ल सुनाता हूँ कि मौसम के बदलाव दिखाऊं,
1: जी
0: मौसम के बदलाव दिखाऊं, तुम आओ तो घाव दिखाऊं,
1: वाह वाह,
0: मौसम के बदलाव दिखाऊं, तुम आओ तो घाव दिखाऊं, जहरीले लहजों में उलझे, जहरीले लहजों में उलझे, रिश्तों के उलझाव दिखाऊं,
1: वाह,
0: बस्ती भर में सन्नाटा है, बस्ती भर में सन्नाटा है, देखोगे तुम आओ दिखाऊं,
1: वाह,
0: बस्ती भर में सन्नाटा है, देखोगे तुम आओ दिखाऊं, घर का आंगन सिमट गया है, घर का आंगन सिमट गया है, रिश्तों का बिखराव दिखाऊं,
1: वाह वाह,
0: देखो तो बंजर बस्ती में, देखो तो बंजर बस्ती में, हिजरत का फैलाव दिखाऊं,
1: वाह वाह वाह,
0: आलोक अब आवाज ना आहट, आलोक अब आवाज ना आहट, किसको दिल के घाव दिखाऊं,
1: बढ़िया है, बहुत अच्छा।
0: आलोक अब आवाज ना आहट, किसको दिल के घाव दिखाऊं। एक गजल और है कि फाख्ता शाख से उड़ते हुए घबराई थी,
1: जी
0: फाख्ता शाख से उड़ते हुए घबराई थी, जब परिंदों के बिलगने की सदा आई थी,
1: वाह,
0: इस जबां पर ही नहीं रूह पे भी छाले हैं,
1: रूह पे भी छाले हैं।
0: इस जबां पर ही नहीं रूह पे भी छाले हैं, मैंने एक बार तेरी झूठी कसम खाई थी,
1: वाह वाह वाह,
0: इस जबां पर ही नहीं रूह पे भी छाले हैं, मैंने एक बार तेरी झूठी कसम खाई थी, बन के जंजीर मेरे पाँव में वो रहती है, बन के जंजीर मेरे पाँव में वो रहती है, मैंने एक बार जो पायल तुझे पहनाई थी,
1: वाह वाह,
0: बन के जंजीर मेरे पाँव में वो रहती है, मैंने एक बार जो पायल तुझे पहनाई थी, उम्र भर सिर्फ वही रौनके तन्हाई थी, उम्र भर सिर्फ वही रौनके तन्हाई थी, मैंने तस्वीर तेरे साथ जो खिंचवाई थी,
1: क्या बात है, वाह,
0: उम्र भर सिर्फ वही रौनके तन्हाई थी, मैंने तस्वीर तेरे साथ जो खिंचवाई थी, वो दबे पाँव बराबर से गुजर जाता है,
1: जी
0: वो दबे पाँव बराबर से गुजर जाता है, गो कि उससे मेरी बरसों की शनासाई थी,
1: शनासाई थी, क्या बात है,
0: वक्त के साथ तो रिश्ते भी बदल जाते हैं।
1: आहा। प्यारी लाइन।
0: वक्त के साथ तो रिश्ते भी बदल जाते हैं, दिल में दीवार कहां पहले मेरे भाई थी।
1: वाह क्या बात है, कितने अच्छे अशआर आपने सुनाए। आलोक जी, इतनी सारी बातें हुई, आपकी पसंद के एक गाने की बारी है चलते चलते, तो बताइए कि इस प्रोग्राम में आप अपनी पसंद का कौन सा गाना सुनना चाहेंगे।
0: मैं पल दो पल का शायर हूं।
1: वाह, साहिर लुधियानवी, फिल्म का नाम है कभी कभी। खयाम साहब का संगीत इस गाने में सुनते हैं।

0: आलोक जी, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और आपकी रचनात्मक यात्रा के बारे में हमने जाना और आपके अशार भी सुने। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का, और मेरी खुशकिस्मती है, मैं समझता हूँ कि आज मेरा एक स्वप्न पूरा हुआ कि मैंने विविध भारती का स्टूडियो देखा, विविध भारती का ऑफिस देखा, जिस विविध भारती को मैं बचपन से सुनता आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: शुक्रिया।
2: मैटिनी शो, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे शायर और लेखक आलोक यादव से यूनुस खान की ये बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग रीमा जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन पर यह बात कही। श्री मोदी ने कहा कि विकासशील देशों को अक्सर कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो कि अनुचित है। उन्होंने कहा कि भारत G20 का एकमात्र ऐसा देश है जिसने पेरिस में आयोजित COP21 शिखर सम्मेलन में की गई प्रतिबद्धताओं को समय से पूर्व ही सफलतापूर्वक पूरा किया है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है।
1: प्रकृति और पर्यावरण के विषय पर सदियों तक भारत ने एक तरह से विश्व का मार्गदर्शन किया है। अपने उस वैचारिक कमिटमेंट को लेकर, अपने सांस्कृतिक अनुभवों को आधार बनाकर भारत अब आधुनिक क्लाइमेट चैलेंजेस के समाधान भी दे रहा है और साथ ही भारत मानवता के सामूहिक प्रयासों के लिए आह्वान भी कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का प्रमुख ध्यान नवीकरणीय ऊर्जा पर रहा है और इसने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
0: इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि पर्यावरण संबंधी न्यायाधिकरणों, नियामक तंत्रों और अनुपालन ढांचों के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ही देश में पृथ्वी संरक्षण का विचार मौजूद था। इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि पर्यावरण के प्रति भारत का दृष्टिकोण उसकी प्राचीन सभ्यतागत विचारधारा में गहराई से निहित है, जो पृथ्वी को संपत्ति नहीं बल्कि एक साझा विरासत और पवित्र धरोहर मानता है। प्रधानमंत्री मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देशभर के 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसके तहत नवनियुक्त कर्मचारी केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राज्यीय परिषद से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। इसके अंतर्गत पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर और दिल्ली के उपराज्यपालों को इन केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में परिषद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति होगी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास

0: मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। पहले चरण में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण बैच शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। मंत्रालय ने बताया कि अगले वर्ष 31 दिसंबर तक 3,57,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। भारत ने सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने की अपनी मांग दोहराई है और कहा है कि वाणिज्यिक समुद्री आवाजाही भू राजनीतिक तनाव का निशाना नहीं बननी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने बृहस्पतिवार को सुरक्षा परिषद में कहा, समुद्री आवाजाही के अधिकारों पर जबरदस्ती, धमकियों, गैरकानूनी प्रतिबंधों या मनमाने दखल का अवसर नहीं पड़ना चाहिए। जापान के आइची नगोया में 20वें एशियाई खेलों का उद्घाटन आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। एशियाई खेल 8 से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

मुकद्दर का सिकंदर, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार लता मंगेशकर का गाया, अनजान के बोल थे कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।

लता मंगेशकर शब्बीर कुमार की आवाज इन फिल्म प्यार झुकता नहीं। एस एच बिहारी के बोल हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरफ।

0: एसएच बिहारी का लिखा गीत था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। आप सुन रहे थे प्यार झुकता नहीं फिल्म का ये गीत।
1: कि नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा, मैं मिल जाऊंगा मिट्टी में, कलम जिंदा रहे।
2: मैटिनी शो कार्यक्रम में मुलाकात जाने माने शायर आलोक यादव से।
1: मैंने तस्वीर तेरे साथ जो खिंचवाई थी, उम्र भर सिर्फ वही रौनक तन्हाई थी। वक्त के साथ तो रिश्ते भी बदल जाते हैं, दिल में दीवार कहां पहले मेरे भाई थी।
2: शनिवार 19 सितंबर को दिन में 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: बोलने की ताई, मला ना कालच
1: रोजगार मेला के इस क्रम में आज हम 20वां अंक लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। यदि अभी तक हुए रोजगार मेला के कार्यक्रमों का आकलन किया जाए तो समझ में आता है कि जहां एक तरफ सरकारी नौकरियों में होने वाली नियुक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई, वहां साथ ही साथ नियुक्ति प्रणाली में पारदर्शिता भी आई है, टाइमलाइन डिसिप्लिन भी। और यदि आंकड़ों की बात करें तो केंद्र की तीन प्रमुख रिक्रूटमेंट एजेंसीज यूपीएससी, एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जहां यूपीए के 10 वर्षों में होने वाली नियुक्तियों की संख्या रही 7,22,000, वहां एनडीए की 10 वर्षों में संख्या रही 10,96,000, यानी कि 1.5 गुना ज्यादा। और यदि हिसाब लगाया जाए 12 साल का तो ये आंकड़ा 13 लाख तक पहुंचता है। बैकलॉग रिजर्व्ड कैटेगरी में होने वाली नियुक्तियों की संख्या यूपीए के कार्यकाल में रही मात्र 1,08,000, एनडीए के कार्यकाल में लगभग 5 गुना अधिक 4,79,000। इसी तरह से वर्षों से प्रमोशंस में स्टैग्नेशन आ चुकी थी, जिसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों में डीमोटिवेशन देखने को मिल रहा था। आपके नेतृत्व में गत 23 लाख से अधिक गत 12 सालों में प्रमोशंस को क्लियर किया गया है। नियुक्ति प्रणाली में सुधार हेतु अनेकों कदम उठाए गए, इंटरव्यू की प्रथा समाप्त कर दी गई, हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी परीक्षा हो रहा है, और एसएससी पोर्टल में जाकर के एग्जामिनेशन सेंटर की चॉइस देने का भी प्रावधान उपलब्ध करवा दिया गया है। आंसर की को एक्सेस दिया गया है और ग्रीवंस पोर्टल पर दर्ज कराई जा सकती है। यदि यूपीएससी की बात करें तो दिव्यांग उम्मीदवारों को लिए सेंटर ऑफ चॉइस का प्रावधान इंट्रोड्यूस किया गया है, और प्रतिभा सेतु यानी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के वो उम्मीदवार जो आखिरी चरण में किसी कारण असफल रहे, उन्हें अपनी अनुकूलता से जॉब का ऑप्शन मिल सके। मिशन कर्मयोगी यानी नई जिम्मेवारी ग्रहण करने से पहले अपने आप को प्रशिक्षित किया जा सके, इसके लिए अभी तक 1,72,00,000 यूजर्स अपना

0: नाम रजिस्टर करवा चुके हैं। पब्लिक एग्जामिनेशंस में मैल प्रैक्टिसेस पर अंकुश लगाने हेतु सन 2024 में प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट लाया गया और इसी वर्ष 2026 में उसका अमेंडमेंट। प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा शुरू किए गए रोजगार मेला के सफल प्रयोग से प्रेरित होकर के अनेकों राज्य सरकारों ने भी अपने अपने प्रदेशों में इस प्रकार के आयोजन प्रारंभ किए हैं। पिछले मात्र 1.5-2 वर्षों के भीतर 6,79,000 से अधिक प्रदेश स्तर की नियुक्तियां हुई हैं। राजस्थान, बिहार, असम, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, उड़ीसा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा आदि राज्यों में गत 11 वर्षों में आपने रोजगार एवं जीविका के अनेकों विकल्प उपलब्ध करवाए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज हिंदुस्तान के नौजवान में एस्पिरेशनल सर्ज देखने को मिलता है। स्टार्टअप्स की संख्या 350 से बढ़कर के 2.5 लाख तक पहुंच गई, परंतु महत्वपूर्ण बात यह कि 50% से अधिक स्टार्टअप का ताल्लुक छोटे शहरों और कस्बों से है, जबकि 45% से अधिक वुमेन लेड स्टार्टअप्स है। इसी प्रकार मुद्रा योजना के तहत 66% से अधिक लाभार्थी महिलाएं, स्वनिधि योजना के तहत 50,63,000 लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर्स और विश्वकर्मा योजना के तहत अपने हुनर से अपनी जीविका कमाने हेतु 2,72,00,000 याचिकाएं प्राप्त हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री जी, आज भी हर बार की तरह आपके द्वारा बटन दबाते ही एक साथ देश भर में 91,000 से अधिक नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे, जिसमें से 50% लगभग 26,000 का ताल्लुक फाइनेंस एंड रेवेन्यू सर्विसेज के साथ है। अंत में प्रधानमंत्री जी, केवल इतना ही कहना है कि आज जबकि हर योजना की कल्पना विकसित भारत के लक्ष्य को सामने रख करके की जाती है, तो ये एक सुखद संयोग है कि आज ये नौजवान जो आपके हाथों से नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, ये सरकारी नौकरी के माध्यम से राष्ट्र सेवा का संकल्प एक ऐसे समय में ले रहे हैं जबकि सारा देश सेवा संकल्प अभियान मना रहा है। इनके संकल्प को सिद्धि प्राप्त हो, भारतवर्ष को शीर्ष स्थान प्राप्त हो, इसी कामना से आपका एक बार पुनः धन्यवाद।
1: धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आज पूरा विश्व तेजी से विकसित होते भारत की ओर उम्मीद और गौरव से देख रहा है। आज का ये रोजगार मेला भारत की विकास यात्रा में युवाओं के लिए नए अवसरों का संदेश लेकर आया है। इस अवसर पर प्रस्तुत है एक लघु फिल्म।
2: दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती बड़ी इकॉनमी भारत, बीते 12 वर्षों से लगातार अपने सपनों, संकल्पों और सामर्थ्य के दम पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारत की हर उपलब्धि के केंद्र में है भारत के युवा और उनकी अटूट संकल्प शक्ति। और जब राष्ट्र सेवा का अवसर स्वयं सरकार में हो, तब संकल्प मिशन मोड में बदलता है। यही कारण है कि रोजगार मेला आज पारदर्शी, समयबद्ध भर्ती और युवा सशक्तिकरण का एक राष्ट्रीय अभियान बन चुका है। इसी कड़ी में एक बार फिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। चयनित युवा गृह मंत्रालय, राजस्व विभाग, भारतीय रेल, स्वास्थ्य विभाग, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, डाक विभाग तथा केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में विभिन्न पदों पर सेवाएं देंगे। देश के कोने कोने से चुने गए ये युवा बनेंगे कहीं सुरक्षा की ढाल, कहीं स्वास्थ्य का भरोसा, कहीं बैंकिंग की गति, कहीं शिक्षा की नींव, कहीं रेल की रफ्तार, तो कहीं राजस्व प्रशासन के माध्यम से देश की ताकत। ये सभी कर्मयोगी बनेंगे विकसित भारत 2047 के अहम भागीदार।
3: विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है।

0: टेक्नोलॉजी आधारित सिस्टम, निष्पक्ष चयन और मातृभाषा में परीक्षा की सुविधा ने हर क्षेत्र और आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले युवाओं के लिए अवसरों का दायरा बढ़ा दिया है। साथ ही सरकारी नौकरी में चयनित युवा आज के समय की जरूरत के हिसाब से बेहतर भूमिका निभा सके, इसीलिए मिशन कर्मयोगी के आई गॉट प्लेटफॉर्म पर 1.7 करोड़ से अधिक लर्नर्स और 8 करोड़ से अधिक कोर्स कम्प्लीशंस हर कर्मचारी को फ्यूचर रेडी, सक्षम और सिटीजन सेंट्रिक बना रहे हैं। भारत सरकार का हर नया कर्मयोगी ईमानदारी, दक्षता और सेवा के साथ विकसित भारत की आर्थिक नींव को और मजबूती देगा, क्योंकि जब युवा कर्तव्य से जुड़ता है, राष्ट्र निर्माण की शक्ति और बढ़ती है। रोजगार मेला, नियुक्ति से राष्ट्र निर्माण तक।
1: अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों के वितरण के इस अभियान का शुभारंभ करें।

0: मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि रोजगार मेले के इस अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें।
1: मेरे प्यारे युवा साथियों, देश में त्योहारों का समय शुरू हो चुका है। इन खुशियों के बीच आज का दिन हजारों परिवारों के जीवन में एक नई खुशी लेकर आया है। आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। आज आप जिस मुकाम पर पहुंचे हैं उसके पीछे आपकी मेहनत तो है ही, साथ ही आपके माता पिता और आपके परिवारजनों की भी तपस्या है। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जीवन की इस नई शुरुआत के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का। इसमें आप जैसे युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। सरकार में रहते हुए आपको हर वो निर्णय लेना है जो विकसित भारत के अभियान को, आत्मनिर्भर भारत के अभियान को निरंतर सशक्त करे। युवा होने के नाते विशेष तौर पर अन्य युवाओं के प्रति आपकी विशेष जिम्मेदारी है। आज आप देख रहे हैं हमारे युवाओं के टैलेंट और स्किल्स ने पूरी दुनिया का भरोसा जीता है। दुनिया को हमारे इनोवेटर्स, हमारे एंटरप्रेन्योर्स और हमारी युवा शक्ति से बहुत उम्मीदें हैं। अभी कुछ दिन पहले ही ब्रिक्स समिट संपन्न हुई। भारत

साफ रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे, हमारे एंटरप्रेन्योर्स, हमारे किसान, हमारी महिलाएं, हमारे युवा, हर कोई इस पार्टनरशिप का सक्रिय भागीदार बने। इसी सोच के साथ ब्रिक्स कनेक्ट और ब्रिक्स एमएसएमई कोऑपरेशन पोर्टल की भी पहल की गई है। साथियों, भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स एफटीए हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं, नए मार्केट्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं। साथियों, बीते वर्षों में भारत सरकार का निरंतर जोर युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने पर रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने का प्रयास, हमारी कोशिश है कि युवाओं की पढ़ाई और उनकी स्किल्स बदलती इकोनॉमी की जरूरतों के साथ चले। जैसे एक उदाहरण है पीएम सेतु, इस योजना के माध्यम से 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से 1,000 सरकारी आईटीआईस को आधुनिक बनाया जा रहा है। इसमें इंडस्ट्री की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। साथियों, भारत के युवाओं के सामर्थ्य की एक और तस्वीर हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में दिखाई देती है। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और भारत की स्टार्टअप स्टोरी अब केवल बड़े शहरों की कहानी नहीं है। आज करीब आधे रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स टीयर टू और टीयर थ्री शहरों में है, यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है। छोटे शहरों के हमारे युवा अपने आइडियाज पर काम कर रहे हैं, नई कंपनीज बना रहे हैं और अपने साथ दूसरे युवाओं के लिए भी रोजगार के नए अवसर तैयार कर रहे हैं। साथियों, हमारा प्रयास है कि प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार के नए अवसर तेजी से बढ़ें। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की गई है। इस योजना पर करीब 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस योजना की मदद से करीब 2 करोड़ युवाओं को पहली बार वर्क फोर्स का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। सरकार द्वारा इस योजना के तहत पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं का 15,000 रुपए तक का इंसेंटिव भी दिया जा रहा है। नए रोजगार पैदा करने वाले एम्प्लॉयर्स को भी सरकार प्रोत्साहन दे रही है, यानी देश में रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार हर मोर्चे पर काम कर रही है। साथियों, युवाओं के लिए नए अवसर तभी बनते हैं जब देश की इकोनॉमी आगे बढ़ती है, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, नए उद्योग लगते हैं और नए सेक्टर्स का विस्तार होता है। आज भारत
तेजी से ग्रो करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में भारत की ग्रोथ रेट 7.8% रही है, इन्वेस्टमेंट में करीब 12% की बढ़ोतरी हुई है, रेटिंग एजेंसियां भारत की रेटिंग सुधार रही है, और ये प्रगति ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया अनेक अनिश्चितताओं से गुजर रही है। भारत की इस ग्रोथ के पीछे बीते वर्षों के रिफॉर्म्स का बड़ा योगदान है। आपको अपने कार्यकाल में निरंतर रिफॉर्म्स को और गति देनी है, टैक्स और कंप्लायंसेस को सरल बनाना हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना हो, एजुकेशन और स्किलिंग में रिफॉर्म हो, या नए सेक्टर्स को इनोवेशन के लिए खोलना हो, या ईज ऑफ लिविंग की बात हो, हर स्तर पर देश में रिफॉर्म एक्सप्रेस का लगातार फुल स्पीड में चलना जरूरी है। और सरकारी कर्मचारी होने के नाते वर्तमान और आने वाले वर्षों में इसमें आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। साथियों, मैंने कुछ दिन पहले कहा था, सूरज हमारा हो, समंदर भी हमारा हो, सूरज हमारा हो, समंदर भी हमारा हो, नाव हमारी हो, नाविक भी हमारा हो, लहरों पर विजय लिखे वो हौसला हमारा हो। आज भारत का युवा इसी हौसले के साथ आगे बढ़ रहा है। अब आप सभी की भारत सरकार में रहते हुए ये जिम्मेदारी है कि देश के युवाओं की आकांक्षाओं को समझते हुए आप अपने काम को बखूबी निभाएं। मेरा प्रिय आग्रह होगा, आपका हर निर्णय, हर फाइल पर किया गया सिग्नेचर युवा एस्पिरेशंस को आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए। आपको अपने कार्यकाल में देखना होगा, युवाओं के रास्ते की बाधाएं हटे, उनके आइडियाज को आगे बढ़ाने का अवसर मिले, इनोवेशन से इन्वेस्टमेंट बढ़े और इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर बने। साथियों, अब आप स्वयं सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनना जा रहे हैं, इसलिए आपका प्रयास हो कि जिन परेशानियों से आप गुजरे हैं या जिन परेशानियों से आपके माता पिता को गुजरना पड़ा है, उनसे दूसरे युवाओं को न गुजरना पड़े। जो तकलीफें आपके माँ बाप ने सही है, जो तकलीफें कभी आपको सहनी पड़ी है, वो अब हमारे देश के किसी नागरिक को सहनी न पड़े, ये काम आपको सरकारी व्यवस्था में आते ही करना चाहिए। साथियों, आज देश में हर क्षेत्र में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। आप लगातार सीखते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अब यहां से निरंतर सीखते रहने की एक नई यात्रा शुरू हो रही है। आपको लगातार अपनी स्किल्स को बेहतर करना है, नई टेक्नोलॉजी और नए सिस्टम को समझना है। मिशन कर्मयोगी इसी उद्देश्य को पूरा करने में आपकी मदद करता है। आई गॉड कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर आज 1,70,00,000 से अधिक सरकारी कर्मचारी जुड़ चुके हैं, और आप जैसे नए साथियों के लिए कर्मयोगी प्रारंभ को विशेष रूप से तैयार किया गया है। आप जितना खुद को बेहतर बनाएंगे, उतना ही बेहतर देश के नागरिकों की सेवा कर पाएंगे। साथियों, आपको एक और बात हमेशा याद रखनी है, सरकार की असली ताकत देश के नागरिकों का विश्वास होता है। आप किसी भी मंत्रालय में हो, किसी भी विभाग में हो, आपका काम
किसी न किसी रूप में

0: के सामान्य नागरिक के जीवन को छुएगा। किसी बुजुर्ग की पेंशन आपके काम से आगे बढ़ेगी, किसी विद्यार्थी की स्कॉलरशिप आपकी जिम्मेदारी से जुड़ी होगी, किसी किसान को मिलने वाली सुविधा आपके डिपार्टमेंट हो जाती होगी। हो सकता है किसी नागरिक के लिए आप ही सरकार का चेहरा हो। आपका व्यवहार, आपकी संवेदनशीलता, आपकी एफिशिएंसी, आपकी ईमानदारी, इन सबसे तय होगा कि उस नागरिक का सरकार के साथ अनुभव कैसा रहता है। इसलिए साथियों, सरकारी सेवा में हमारा मंत्र होना चाहिए, नागरिक देवो भव, नागरिक देवो भव, नागरिक की सेवा राष्ट्र की सेवा है। आपकी सफलता तब और बड़ी होगी जब आपके काम से किसी नागरिक का जीवन आसान होगा। मुझे विश्वास है आप जहां भी रहेंगे, जिस भी विभाग में रहेंगे, कर्तव्य और सेवा भाव से अपने दायित्व को निभाते रहेंगे। मैं एक बार फिर आप सभी को बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी है, अभी आप सुन रहे थे 20वें रोजगार मेले के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन।
2: मैंने

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में सुहाग फिल्म का गीत आनंद बख्शी का लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। यादों की महफिल ये प्रोग्राम श्रोताओं संपन्न हुआ।

0: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
1: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
0: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
1: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरोसर्जन।

0: डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
0: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जिंदगी में कश्मकश या उलझनों का भी गजब समा होता है। श्रोताओं, समझ नहीं आता कि जिंदगी में कश्मकश है या कश्मकश का ही ताना बाना है जिंदगी। कभी मोहब्बत, कभी किसी दो बातों को लेकर, दो चीजों को लेकर, या फिर कहीं घूमने जाने को लेकर, या फिर कभी शादी ब्याह को लेकर कश्मकश तो रहती ही है। एक सुलझाया तो दूसरी उलझ गई। ऐसे में करना क्या चाहिए? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि छोड़ो, चलो कहीं घूमने निकल लेते हैं, और कभी ऐसा भी लगता है कि चलो आज रेडियो पर गीतों का आनंद लेते हैं। तो विविध भारती का कार्यक्रम सुरीला सफर है आपके रेडियो सेट पर। श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए श्रोताओं का भी। अपने फेसबुक पेज पर तो हमने आज की इबारत लिखी ही है, डाली ही है, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इसे पढ़ा भी है। अपने और भी श्रोताओं के लिए, रेडियो श्रोताओं के लिए पढ़ देते हैं एक बार फिर। जिंदगी में कश्मकश अक्सर दिल की राहों से होकर गुजरती है। कभी चाहतों में उलझते हैं ये दिन ये रात, कुछ एहसान उन आंखों का। ये कश्मकश के खूबसूरत सिलसिले कभी गम की दवा, कभी रंग में बिखरते नूर की तरह नजर आते हैं, और सही गलत के दो राहे पर ला खड़ा करते हैं। शोख फूलों की मोहब्बत का एहसास, तो कभी चंदन की खुशबू को छूने की चाहत भी मन में हलचल मचाती है और अक्सर उलझन में डाल देती है। ये उलझनें रूप तो बदलती हैं थोड़ा तड़पाकर, लेकिन संघर्ष के कुछ न कुछ मायने तो सिखा जाती हैं। ये कश्मकश की रातें कट भी जाती हैं और जिंदगी में नई मंजिलें, नया सवेरा होता है। तो कश्मकश को लेकर आज आपको हमारी जो ये इबारत है वो पढ़नी भी है, और हमें कमेंट्स और अपनी प्रतिक्रियाएं भी भेजनी है। लॉग ऑन कीजिए www.facebook.com/vbsmumbai और जुड़िए हमारे सुरीला सफर कार्यक्रम से। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

अर्ज आपको बतानी है श्रोताओं। शकील बदायूनी का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। संघर्ष फिल्म से वैजंतीमाला और दिलीप कुमार पर फिल्माया गया ये नगमा था। अगले गीत में आपको बताना है कि संगीत किसका है और इस गीत में भी यही आपको बताना है। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि कभी कभी जिंदगी की कश्मकश हमें उलझाती जरूर है, मगर यही उलझने हमें अपने दिल की आवाज सुनना भी सिखाती है। कुछ चाहतें अधूरी रह जाती है, कुछ आंखें बिना कहे बहुत कुछ कह जाती है, और कुछ रास्ते तड़पा कर भी हमें नई मंजिल तक ले जाते हैं। शायद हर कश्मकश के पीछे कोई सीख और हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा छुपा होता है। आज की इबारत भी जैसे दिल से यही कह रही है, उलझ रही है नहीं, बस चलते रहिए, रास्ते खुद अपनी मंजिल बता देंगे। एक और श्रोता लिखते हैं, दिलों की राहें भी अनोखी इम्तहान लेती हैं, कभी मृदुल सफलता तो कभी कसहली कड़वाहट से भरी कश्मकश भंवर में उलझ इंसान स्वयं एक प्रश्न चिन्ह बन जाता है और स्वयं को ढूंढता है। नूर के लिए तरसती निगाहों में उसे मंजिल भी एक मरीचिका सी प्रतीत होती है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज जो शब्द हैं कश्मकश, मोहब्बत, उलझन, जिंदगी, संघर्ष, रात, इन शब्दों पर आधारित गीत सुनने को मिल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी की कश्मकश दिल की राहों से होकर गुजरती है, कभी

रातों में उलझती है, ये दिन ये रात कुछ एहसास दिला जाते हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है, अक्सर मेरा मन कहता है, अक्सर कोई लड़का इस हाल में एहसान होगा तेरा मुझ पर, एहसान मेरे दिल पर तुम्हारा है दोस्तों। यानी कश्मकश को लेकर जो भी कुछ गीत इनके जहन में आए हैं वो इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी की इस खूबसूरत कश्मकश दिल की राहों, चाहतों और सही गलत के दो राहों को बयां करता एक बेहद गहरा फिल्मी गीत जो है वो इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी की ये उलझने और जज्बात ही इंसान को भीतर से मजबूत और संवेदनशील बनाते हैं। जीवन के अनकहे एहसास दिल की कश्मकश, दिल हमेशा किसी न किसी में उलझ कर सही राह तलाशता है। कभी कभी आंखें खामोश रहकर भी एहसान और दर्द बयां करती हैं। चाहतों, उम्मीदों और ख्वाहिशें ही इस सफर को खूबसूरत और जिंदा रखती हैं। आप अगर कलाकार भी बता दें तो क्या ही अच्छा है।

सुनील दत्त और वैजयंती माला पर फिल्माया गया आम्रपाली फिल्म का गीत आपने सुना। इस गीत में तर्ज थी शंकर जयकिशन की, और इसके पहले जो गीत हमने आपको सुनवाया था तर्ज थी नौशाद की। इसका जवाब हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक दिया है। एक श्रोता लिखती है कि जीवन में जब दुविधा, मानसिक तनाव या खींचातानी होती है, तब

0: समझ में नहीं आता क्या करें। उलझन को सुलझाने में भले ही देर हो सकती है, लेकिन भगवान की घर सदा के लिए अंधेरा कभी नहीं होता। सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है, इस गीत को इन्होंने पसंद किया है, और कश्मकश को लेकर या कश्मकश के बाद जो मंजिलें मिलती हैं उसके उजालों को लेकर बहुत सारे गीत हमारे श्रोताओं ने भी सुझाए हैं, तो उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। एक बात तो बताइए श्रोताओं कि जब किसी अजनबी से पहली बार बात होती है तो बड़ी कश्मकश होती है, ऐसा कोई वाकया अगर आपको याद हो तो आप बता सकते हैं कि कभी आपको किसी से बात करने में कोई कश्मकश हुई, कोई उलझन हुई, लेकिन वो बातें इतनी प्यारी थीं कि वो भी इतनी याद आई कि वो भी एक कश्मकश का कारण बन गई। और एक और सवाल का जवाब आपको देना है कि दोस्ती और प्यार, इन दोनों के बीच अक्सर कश्मकश चलती है, किसी एक को चुनना हो तो आप किसको चुनेंगे? एक श्रोता लिखती हैं कि नई मंजिल पाने के लिए कश्मकश भरी जिंदगी में कई राहों को पार करना पड़ता है। दो प्रेमियों का मिलन वो खूबसूरत पल मन में उलझन में भी डाल देता है मन को, पर उस मीठे एहसास को पाने के लिए मन में हलचल मचा देती है और आत्मविश्वास जाग उठता है। एक ना एक दिन नई मंजिल मिलेगी, नया सवेरा होगा। और एक और श्रोता ने लिखा है कि मोहब्बत कश्मकश उलझन जिंदगी संघर्ष नूर रंग आंखें आंसू, ये सारे शब्द हैं तो इनसे गीत हो सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी में जो भी कश्मकश होती है वो सीधे तौर पर दिल की राहों से ही होकर गुजरती है, चाहत या तृष्णा ही इस कश्मकश का मूल कारण है। दिन रात इन्हीं चाहतों में उलझे रहना माया का प्रभाव माना जाता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हर उलझन दुख का कारण नहीं होती, कुछ उलझनों को सुलझाने में जिंदगी बहुत गहरे सबक सिखाया करती है। और भी इन्होंने अपनी बातें लिखी हैं। दो सवाल जो हमने आपसे पूछा था उनके जवाब फटाफट आप भेज दें श्रोता।
1: रूप तेरा मस्ताना प्यार

आप सुन रहे थे ये गीत आराधना फिल्म का कलाकार आपको बताने हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी केवल सीधी लकीर नहीं बल्कि ये चाहतों एहसासों और कश्मकश से भरे दिन और रातों का ये खूबसूरत ताना बना है। ये कश्मकश इंसान को अक्सर सही और गलत के दोराहे पर लाकर खड़ा कर देती है जहां मन में कई तरह की हलचलें और सवाल उठते हैं। जीवन की ये उलझने और तड़प व्यर्थ नहीं जाती, ये हमें संघर्ष के असली मायने सिखाकर हमारे व्यक्तित्व को तराशती हैं। एक और श्रोता लिखते हैं जिंदगी की यही कश्मकश ही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई है जहां दिल की राहों पर चलते हुए चाहते यादें और फर्ज आपस में टकराते हैं जो कभी तड़पाते हैं तो कभी चंदन की खुशबू की तरह छू कर गुजर जाते हैं। ये कश्मकश हमें कभी कभी सही और गलत के ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा करती है जहां से कोई रास्ता नहीं सूझता। ये उलझने हमें तड़पाती जरूर हैं पर यही तड़प हमें मोहब्बत का मर्म और गम को दवा बनाना सिखाती हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि जब हम दिल की राहों पर कदम बढ़ाते हैं तो उम्मीदों का एक नया आसमां खुलता है। दिल चाहता है कि सब कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक हो, प्यार सुकून सफलता और रिश्ते कि लेकिन जिंदगी अपनी शर्तों पर चलती है। वो हमें उन मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और। यही वो बिंदु है जहां से कश्मकश की शुरुआत होती है। तो ये तो बताइए कि जब आप ऐसे उलझनों में होते हैं तो अपनी बातें किसी को कहते हैं या फिर खुद से ही फैसला लेना ठीक समझते हैं? आपको गीतकार बताने हैं श्रोताओं।

फैसला कुछ लोग बड़ी सोच समझ के बाद लेते हैं, यानी सोचने समझने के बाद लेते हैं। तो आप किस तरह से फैसले लेते हैं जब आपको कोई कश्मकश होती है? और कोई ऐसा वाकया जो आपको याद हो कि जब आप किसी कश्मकश में थे तो किस तरह से निकले, तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। और ये जो कश्मकश होती है कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसे में क्या रेडियो पर सुनाई देता कोई गीत आपकी कश्मकश को, आपकी उलझनों को कुछ कम करता है? तो आप हमें ज़रूर बताएं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं, दोस्ती और प्यार वैसे तो दोनों की ही ज़रूरत ज़रूरी है, पर दोनों में से एक को चुनना हो तो हमारा दिल दोस्ती को चुनेगा। तो इन्होंने अपनी बात तो कह दी, हमारे बाकी श्रोता भी ज़रूर लिखें कि दोस्ती और प्यार दोनों में से अगर आपको चुनना हो एक को, तो आप किसे चुनेंगे? और एक और श्रोता ने लिखा है कि जीवन साथी ही अगर आप का सबसे अच्छा दोस्त बन जाए तो क्या बात है। और आराधना का गीत इन्हें पसंद आया। और एक और श्रोता ने लिखा है कि एक कश्मकश का सामना करना पड़ा था जब मेरी बेटी बीए इंग्लिश ऑनर्स पढ़ रही थी और टीवी भी न्यूज़ रीडर से प्रभावित हो पत्रकारिता करियर करना चाहती थी, किंतु मुझे उसकी दक्षता का अनुमान था, अतः बहुत समझा बुझाकर इस प्रभाव को दूर किया और इंग्लिश में पीजी करने को कहा। और आज वो 14 साल से आईटी सेक्टर में सीनियर पोस्ट पर है। ये उलझन दूर हुई तो क्या ही अच्छी बात है। जी हाँ, सही फैसला सही वक्त पर बहुत ज़रूरी होता है, और यही कश्मकश, यही उलझनें फिर खुशियों में या मंजिल को पाने के लिए तब्दील हो जाती हैं।

ये गीत आप सुन रहे थे उपकार फिल्म का मुकेश की आवाज में। कमर जलाल अबादी के बोल थे। आपको संगीतकार बताने हैं और कलाकार बताने हैं श्रोताओ। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी भी एक झूले की तरह होती है, जैसे झूला जितना जल्दी पीछे जाता है ठीक उतना ही आगे आता है। ठीक इसी तरह सुख और दुख दोनों ही जीवन में बराबर आते हैं और जाते रहते हैं, क्योंकि जिंदगी के हर फैसले हमारे नहीं होते, कुछ फैसले वक्त और हालात के भी होते हैं। हर इंसान की जिंदगी एक यात्रा है, इसे रोकर जीने से बहुत लंबी लगेगी और हंसकर जीने से कभी पूरी हो जाएगी। कब पूरी हो जाएगी ये पता भी नहीं चलेगा। जिंदगी एक अनजान किताब जैसी होती है, अगले पन्ने पर क्या लिखा है ये किसी को पता नहीं। एक और श्रोता लिखते हैं कि लिखती हैं कि जीवन की इस उतार चढ़ाव में, जीवन के इस उतार चढ़ाव में न जाने कितनी उलझने आती हैं और जाती हैं, हमें कुछ न कुछ सिखा के जाती हैं। कभी कभी उलझे हुए रिश्ते हम चाह कर भी नहीं सुलझा सकते। एक डोर सुलझाते हैं तो दूसरा कहीं और उलझ जाता है, और कैसे सुलझाऊं मैं इस उलझन को, बताए कोई राहें धुंधली सी। तो कुछ इन्होंने अपनी पंक्तियां भी लिखी हैं। आपको कौन से ऐसे गीत हैं जो कश्मकश के हैं और आपको बहुत पसंद आते हैं? इस गीत में आपको कलाकार बताने हैं श्रोताओ, और इसके पहले जो गीत आपने सुना उसमें भी कलाकार आपको बताने हैं।

नरगिस और फिरोज खान पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे रात और दिन फिल्म से। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि सबसे ज्यादा कश्मकश का समा अपने होने वाले साथी और उसके परिवार से बात करने में होती है। बहुत सारी फीमेल श्रोता मेरी बात से सहमत होंगी, ऐसा इनका लिखना है। शायद किसी नए व्यक्ति के बारे में ये लिख रही हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि सच्चा प्यार ही दोस्ती का आधार है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के गीत हो सकते हैं राही मनवा, दुख की चिंता क्यों सताती है, रात भर का है मेहमा अंधेरा, चंदन साबदन गीत तो बहुत ही खूबसूरत गीत है श्रोताओं। लेकिन आपने जो बाकी के दो पहलू दो बातें लिखी हैं राही मनवा यानी गीत के विषय में, दुख की चिंता क्यों सताती है या रात भर का मेहमान अंधेरा, तो ये तो कश्मकश के एक पहलू हो गए। कश्मकश के बहुत सारे पहलू हैं श्रोताओं, इसलिए हमने आपसे कहा था कि जिंदगी कश्मकश है या कश्मकश ही जिंदगी है, कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि कश्मकश तो हर पल साथ रहती है। एक आपसे सवाल पूछते हैं कि दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, जब ऐसी कश्मकश होती है तो दिल की सुननी चाहिए या फिर दिमाग की सुननी चाहिए। कलाकार बताएं और संगीतकार।

0: हो सबसे हसी इनाम है ये, छू लेने दो नाजुक हो तुम।
1: राजकुमार और मीना कुमारी पर फिल्माया गया फिल्म काजल का ये गीत आपने सुना और ये तर्ज थी रवि की, हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि कश्मकश कभी भी हुई तो सोच समझ कर उस समय जो सही लगा वो किया, पर कुछ निर्णय बाद में गलत भी सिद्ध हुए। एक और श्रोता ने लिखा है कि मुकेश जी की आवाज में ये गीत जो हमने पहले आपको सुनवाया था इन्हें बहुत पसंद है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि जिंदगी आप के चाहे अनुसार ही चल सकती है क्या, भविष्य के झरोखों में क्या है इसका सिर्फ पूर्वानुमान ही किया जा सकता है, उसी के अनुसार कश्मकश के समय निर्णय लिया जा सकता है, आने वाला समय ही बताता है कि ये निर्णय सही था या गलत। एक और श्रोता ने लिखा है कि फिल्म उपकार का गीत था, भारत कुमार यानी मनोज कुमार पर फिल्म आया गया। जी हाँ, आशा पारेख भी नजर आती हैं। तो आपसे हमने पूछा था दिल और दिमाग दोनों में से आप किसकी सुनते हैं या किसकी सुनना चाहेंगे। और एक सवाल और आपसे पूछते हैं श्रोता कि क्या जब हम कॉलेज में थे तो उन विषयों को लेकर कोई कश्मकश आपके जहन में था? इस गीत को पहचानिए, फिल्म का नाम बताइए।

कॉलेज की जब शुरुआत होती है श्रोताओ, तो विषयों को चुनने में बड़ी कश्मकश होती है। ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है तो आप जरूर लिखें। मौसम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, गुलजार का लिखा, मदन मोहन का संगीत था। एक श्रोता लिखते हैं कि दोस्ती और प्रेम में एक चुनना हो तो दोस्ती ही चुनेंगे, दोस्ती की तो बात ही अलग है। एक और श्रोता ने लिखा है कि जब इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन के लिए न्यू कॉलेज में एडमिशन लिया, उसके बाद कॉलेज का पहला दिन था, किसी से कोई जान पहचान नहीं थी। तब काफी देर तक क्लासरूम के बाहर हम और एक अन्य लड़की टहल रहे थे। थोड़ी देर तक कोई बातचीत नहीं हुई, फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए हमने पूछा, न्यू एडमिशन? तो उसने भी हाँ करके सर हिलाया, फिर बातचीत शुरू हुई। वही लड़की आज तक अच्छी सहेली है। जी हाँ, अच्छे साथी तो बहुत जरूरी होते हैं। क्या आपका भी कोई कॉलेज में अच्छा साथी बना जिसे आप शुरू में बातें करने से बहुत हिचकिचाते थे? ये फिल्म आपको बतानी है।

एक सवाल का जवाब बड़ी ही शिद्दत से दीजिए श्रोताओं, कि क्या आपके मन में इस समय क्या कश्मकश चल रही है।

अभिनेता पंकज पर फिल्माया गया कांच और हीरा फिल्म का ये गीत आपने सुना। एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी के रंग कई रे साथ ही रे, जिंदगी दिलों को जोड़ती भी है, जिंदगी दिलों को तोड़ती भी है। जब जिंदगी की उलझन सुलझे ना, रास्ता सूझे ना, तब दिल कहता है जाऊं कहां बताए दिल। एक पैरडी जैसी इन्होंने बनाई है श्रोता, और हम इनकी सराहना करते हैं, अच्छा लिखा है इन्होंने। और हमारे जितने भी श्रोता हैं, कार्यक्रम से जुड़ते हैं, उन सभी का बहुत बहुत तो शुक्रिया हम कहते हैं। एक सवाल हमने आपसे पूछा था श्रोताओं कि जो विषय होते हैं उनको लेकर आपकी कितनी कश्मकश थी कॉलेज में, और इस समय आपके दिल में क्या कश्मकश चल रही है, अगर आप बताना चाहते हैं तो ज़रूर बताइए। और ऐसे सिचुएशन में, ऐसी जब उलझने होती हैं, ऐसी कश्मकश जब होती है, तो क्या कभी रेडियो विविध भारती आपका साथी बना? कलाकार आपको बताने हैं और फिल्म बतानी है।

अमानुष फिल्म का ये गीत था, प्रेम नारायण और उत्तम कुमार पर फिल्माया गया। श्रोता, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज के गद्यांश में जिंदगी के उतार चढ़ाव, कश्मकश और उलझनों को के भाव को आज के गद्यांश ने समेटा हुआ है। अजीब है जिंदगी का ये नूर और रंग, कभी आंखों में अश्क, कभी चाहतों की उमंग, चंदन की चाहत हो या फूलों का एहसास, जिंदगी हर मोड़ पर एक इम्तहान लेती है, ऐसा कुछ इन्होंने लिखा हुआ है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफ़र ये कार्यक्रम जो है, जब हम सुनते हैं या फिर जब हम विविध भारती सुनते हैं, तो ये हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का काम करता है। संगीत जगत में हमारे रग रग में खून के कतरे कतरे में बसा हुआ है। आकाशवाणी

हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि दिल से यानी भावना और अंतःप्रेरणा से और दिमाग यानी तर्क और बुद्धिमता से सोचना जीवन के हर बड़े फैसले में दिल और दिमाग का तालमेल ही सही होता है।

हमारी एक और श्रोता लिखती हैं कि जीवन में हजारों बार कश्मकश आए, लेकिन मैं हमेशा अपने दिल की आवाज सुनती हूँ, फिर कोई गलत कहे या सही। इंसान का अपना भी कुछ सोच होनी चाहिए, अपनी

मोहम्मद रफी की आवाज थी और सुनील दत्त और मीना कुमारी पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। श्रोताओं, हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि विविध भारती मुंबई के श्रोता हैं हम, और जीवन में आए कश्मकश और समस्याओं को इसे सुनकर हल चुटकियों में खोज लेते हैं। आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, सुरीला सफर कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ।

दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज त्रिवेणी की धाराएं मिल रही हैं अहंकार पर। दोस्तों अहंकार इंसान का वो भाव है जो उसे उन्नति से अवनति की ओर ले जाता है। इसके विपरीत इंसान की विनम्रता उसे बड़ा और विराट बनाती है। आपके हाथ में है विकल्प, अहंकारी बनकर छोटा बनना है या विनम्र होकर विशाल बने रहना है। समय कभी एक सा नहीं रहता है। अच्छे समय में इंसान को अहंकारी नहीं होना चाहिए बल्कि अच्छे समय का आनंद लेना चाहिए। अहंकार आपको एक दिन गर्त की ओर ले जाता है।

दोस्तों, वक्त बदलते देर नहीं लगती। लोग वक्त को स्थायी मान लेते हैं, ये उनके विचारों की भूल है। आज आपके पास सब कुछ है, कल हो सकता है कुछ ना हो। इसलिए जब किसी से कोई बात कहें, किसी से बुरा बर्ताव करें, तो ये ध्यान रखें कि आपके गुरूर से चूर बातों से सामने वाले का मन कहीं आहत तो नहीं हो रहा है। कुछ लोग अहंकार में डूबकर आत्मश्लाघा में लीन हो जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं अपने बारे में कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। इन बातों से बचना चाहिए।

दोस्तों, जब सचमुच किसी में काबिलियत होती है तो लदे हुए फल की तरह वो व्यक्ति विनम्र होकर झुक जाता है। कई शिखर पर पहुंचे व्यक्तियों में गुरूर जरा भी नहीं देखा गया, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति आपके आसपास जरूर होंगे जो बिना किसी लियाकत के अपनी काबिलियत के डंके पीटते नजर आएंगे। ये इंसान का अहंकार है। जब भी आप किसी से कुछ कहें तो अहंकार से भर कर नहीं बल्कि नरमी से पेश आए तो आप एक नेक इंसान कहलाएंगे। आइए त्रिवेणी तट पर अपने भीतर के अहंकार को दूर भगाने की कोशिश करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुक्त व्यापार समझौतों से देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संस्थानों में चयनित 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा, प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देगी। संयुक्त राष्ट्र ने अफगान शरणार्थियों को जबरन उनके देश वापस भेजने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी। और 20वें एशियाई खेलों का आज जापान के आईची नागोया में औपचारिक उद्घाटन होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
1: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, जिससे देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में करीब आधे Tier 2 और Tier 3 शहरों में है। श्री मोदी ने कहा कि गांव, कस्बों और छोटे शहरों के युवा देश की नई अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के माध्यम से रोजगार सृजन और भर्ती के आकलन से पता चला है कि सरकारी नियुक्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है। 20वां रोजगार मेला देश के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। नवनियुक्त युवा वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रक्षा सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी और केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने आज केरलम के एर्नाकुलम में दो स्थानों पर आयोजित रोजगार मेलों का उद्घाटन किया। ये मेले 20वें राष्ट्रव्यापी रोजगार मेले के अंतर्गत आयोजित किए गए। श्री चौधरी ने कहा कि लोगों के सामूहिक प्रयासों से वर्ष 2047 से पहले ही विकसित भारत का सपना साकार किया जा सकता है। श्री सुरेश गोपी ने कहा कि रोजगार मेले राष्ट्र निर्माण के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: कार्बन एमिशन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती रही है, जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज

0: एवरेज के आधे से भी कम है। विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है।
0: भारत G20 में इकलौता ऐसा देश है जिसने पेरिस में COP21 समिट में जो भी कमिटमेंट्स किए थे उन सारे कमिटमेंट्स को समय से पहले पूरा करके दिखाया है। नॉन फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी कैपेसिटी, कार्बन एमिशन पर रोकथाम, हर पैरामीटर पर भारत की परफॉर्मेंस दुनिया में आज सकारात्मक रूप से चर्चा का विषय है।
1: श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
0: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
1: इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने तथा प्राणियों के प्रति करुणा रखने के प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के महत्व का उल्लेख किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में अब गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों का योगदान 54% से अधिक है, जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य से कहीं अधिक है। श्री यादव ने वनों, घास के मैदानों और आर्द्र भूमि के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया।
2: भारत ने मैंग्रोव यानी समुद्र तटों पर उड़ने वाले पेड़ों और वनस्पतियों के संरक्षण के साथ साथ तटीय समुदायों की आजीविका मजबूत करने के लिए मिष्टी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत मैंग्रोव क्षेत्रों को फिर से विकसित करने, नए पौधे लगाने और स्थानीय लोगों की भागीदारी से पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
3: लाइवलीहुड एंड इकोलॉजिकल रेजिलेंस।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। विधि और न्याय मंत्रालय ने बताया कि ये नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की गई हैं। निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 5 न्यायाधीशों को दिल्ली उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जबकि एक एक न्यायाधीश को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के लिए नियुक्त किया गया है। मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा को झारखंड उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 3 न्यायाधीशों को कर्नाटक उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि वर्तमान में विश्व के सेमीकंडक्टर डिजाइन कार्यबल का लगभग 20% हिस्सा भारत में है। श्री कृष्णन ने कहा कि सरकार ने डिजाइन प्रतिभा पर विशेष बल दिया है और लगभग 85,000 डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम जारी है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2026 के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार कौशल विकास के सभी पहलुओं को प्राथमिकता देगी, जिसमें सेमीकंडक्टर विनिर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फोरेंसिक सामग्री, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य जरूरी चीजें शामिल हैं। नेपाल को बाढ़ त्रासदी से उबरने में सहायता के लिए राहत सामग्री ले जाने वाला ये वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल को सहायता करना जारी रखेगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने

0: युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने और देश सेवा का अवसर देने के लिए सरकार ने कई पहल की हैं। इन्हीं में से एक है अग्निपथ योजना। इस विशेष श्रृंखला में आज हम अग्निपथ योजना के अंतर्गत युवाओं को मिल रहे नए अवसरों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
1: युवाओं को देश की सेवा का अवसर देने के लिए सरकार ने वर्ष 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की। इसके तहत सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाता है। अग्निवीर 4 वर्ष तक सेवा करते हैं और इस दौरान उन्हें सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और विभिन्न कौशल का अनुभव मिलता है। उत्तराखंड की सैन्य परंपरा में युवाओं की सेना में सेवा की विशेष भूमिका रही है। अग्निपथ योजना के तहत राज्य के युवा भी भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। इस वर्ष फरवरी और मार्च में चंपावत के बनबसा में आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। 4 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद प्रत्येक बैच के अधिकतम 25% अग्निवीरों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सशस्त्र सेनाओं के नियमित कैडर में शामिल किए जाने का प्रावधान है। अन्य अग्निवीरों को सेवानिधि पैकेज और कौशल प्रमाण पत्र दिया जाता है। उत्तराखंड में सेवा मुक्त अग्निवीरों के लिए वर्ष 2025 में समूह गा की विभिन्न वर्दीधारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें पुलिस, अग्निशमन, कारागार, वन आबकारी और सचिवालय रक्षक जैसे पद शामिल हैं। निर्धारित शर्तों के अनुसार उन्हें आयु सीमा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट का प्रावधान है। संतोष थपलियाल, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक और विज्ञान सचिव श्री एम गणेश पिल्लई ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों पर आकाशवाणी से विशेष बातचीत की है।
2: इंडिया स्पेस प्रोग्राम,
3: भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने संचार, नौवहन, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन और कृषि सहित राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसरो, गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्र अभियान और अन्य अत्याधुनिक तकनीकों पर काम कर रहा है।
2: प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन एंड लूनर लैंडिंग।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने अफगान शरणार्थियों को जबरन उनके देश वापस भेजने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी है और अधिकारियों से कहा है कि शरणार्थियों को निर्वासित करने से पहले ये आकलन किया जाना चाहिए कि क्या अफगानिस्तान में ऐसे लोगों को उत्पीड़न, यातना या अन्य गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों का खतरा है। विशेषज्ञों ने पाकिस्तान के चिकित्सा और दंत चिकित्सा संस्थानों को अफगान छात्रों को वापस भेजने के निर्देश पर भी चिंता व्यक्त की। रिपोर्ट के अनुसार 100 अफगान छात्र, जिनमें से 20 से 40 महिलाएं शामिल हैं, इससे प्रभावित हैं। असम के प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और सांस्कृतिक हस्ती जुबिन गर्ग की आज पुण्यतिथि है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 17 सितंबर से 3 दिन का जुबिन दिवस भी मनाया जा रहा है। जापान के आइची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का उद्घाटन आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुक्त व्यापार समझौतों से देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संस्थानों में चयनित 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और 20वें एशियाई खेलों का आज जापान के आइची नागोया में औपचारिक उद्घाटन होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।

फिल्म छाया का गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज थी, राजेंद्र कृष्ण के बोल सलील चौधरी की तर्ज थी। आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

0: फिल्म ससुराल का गीत था, हसरत जयपुरी का लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज, मोहम्मद रफी की आवाज थी।
1: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
2: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
1: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
2: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
2: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: राजकुमार फिल्म में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोलों को सुर में ढाला शंकर जयकिशन ने।
1: एक विलक्षण गायक,
2: अरे ओरे हे,
1: संगीत के साधक,
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की,
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम,
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमें।

नमस्कार श्रोताओं, आपके रेडियो सेट पर आ चुका है आप ही के पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। खूबसूरत गीतों का ये सफर आपकी फरमाइशें और आपके पत्र और होता है आपको बेसब्री से इस कार्यक्रम का इंतजार। तो कार्यक्रम के लिए अपने रेडियो सेट के जरा करीब आइए, पास लाइए और जरा ध्यान से सुनिए, कहीं आपके पसंदीदा गीतों में से तो कोई गीत आज के कार्यक्रम में शामिल नहीं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने सभी श्रोताओं का प्रोग्राम मन चाहे गीत में। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

नहीं आना मुझे न बुलाना के मारे कताना जमाना। कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मारे कताना जमाना।

डिस्ट्रिक्ट साबरकांठा से इस गीत की फरमाइश भेजी विनोद भाई बी वाघेला ने, और इसी गीत को सुनना चाहते थे छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सनी, कोमल यादव। और ये पत्र आया श्रॉफ रोड राजकोट सौराष्ट्र से जुबैदा खातून, रुबीना, हीना, नूर मोहम्मद लखानी, सिराज और विहान लखानी की ये फरमाइश थी। और प्रमिला गंज आलोट के हमारे श्रोता हैं रतलाम के, मध्य प्रदेश के बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई, अतुल कुमार पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा ने इस पत्र को भेजा। शीतला नगर दुर्ग के हमारे श्रोता हैं अर्पा पैरी, पार्वती, राधा भगवान और शिव चंद्राकर। आपने सुना था दो रास्ते फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज थी।

आसपास फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी और गीतकार आनंद बख्शी थे। ग्राम सनोतिया जिला गुना मध्य प्रदेश के हमारे श्रोता हैं मांगीलाल चंदेल, अरविंद अशोक, राजकुमार और हिमांशु, और कालेगांव जाफराबाद की ये फरमाइश है सुधाकर राजे, डॉक्टर प्रशांत राजे, संचित मोताला के हमारे श्रोता हैं प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख करडा रोड से, कुमारी सानवी देशमुख और कुमार सरवद देशमुख की ये फरमाइश है। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और डागला परिवार के सभी सदस्य और इसी गीत को सुनना चाहते थे। अम्बेडकर नगर अकोले के हमारे श्रोता प्रकाश खेलकर, मीराताई खेलकर, आरती संतोष खेलकर, पूजा खेलकर और इनके परिवार के सभी सदस्य। श्रोताओ, विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं अपने ही पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत।

आप सुन रहे थे फिल्म अमानत में मोहम्मद रफी की आवाज, साहिर लुधियानवी के बोल थे, रवि का संगीत था। ये हमारे श्रोता हैं शाहनगर करवीर जिला कोल्हापुर के बाजीराव ढेरे, संगीता और हर्षद ढेरे, और इसी गीत के लिए हमें पत्र भेजे गुलमोहर सिटी एक्सटेंशन होशियारपुर जालंधर रोड से रमाकांत शर्मा, रवि शर्मा, अक्षय शर्मा। और ये पत्र आया वरोड़ा चंद्रापुर से लवकुश खाडिलकर, उमा देवी, रोहित और प्रणीत की ये फरमाइश है। इसी गीत को सुनना चाहते थे राजावत कॉम्प्लेक्स से शाजापुर के हमारे श्रोता हैं ये, मनमोहन राजावत, मधु राशि, चितरंजन, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, स्वीटी, रिया, ऋषभ और इनके परिवार के सभी सदस्य, और सुब्रत चौधरी, बेबी अनीशा, मनीषा चौधरी, ये हमारे कोलकाता के श्रोता हैं।

कच्चे धागे फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, आनंद बख्शी की रचना आप सुन रहे थे। बाबुलगांव महाराष्ट्र के हमारे श्रोता इस गीत को इन्होंने पसंद किया था। प्रकाश पाटिल, अलका पाटिल, दीप्ति तृप्ति, यशोदीप की ये फरमाइश है। और दूधसागर मार्ग राजकोट के साजिद कुतुबुद्दीन मकसूद शाहीन चाणक्या ने फरमाइश भेजी। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका और सुचा सिंह ने इस गीत को सुनना चाहा। जिला लुधियाना के हमारे श्रोता हैं राज शर्मा, मंजू शर्मा, आशीष बिट्टू, दीपक, और इसी गीत को सुनना चाहते थे बक्सर बिहार से शरीफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी। डुमराव बिहार के ही हमारे श्रोता हैं डॉक्टर डब्लू, डॉक्टर सोनम और दानिश अंसारी। सलीमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी ने इस गीत को सुनना चाहा। और जेल रोड दिल्ली के हमारे श्रोता हैं लाल बाबू, दीवाना और दिव्या भारती।

गोला बाजार बक्सर के हमारे श्रोता मंजू गुप्ता, पूनम गुप्ता, कविता गुप्ता, आयुष और सांगवी की ये फरमाइश थी। खांजीपीर उदयपुर के हमारे श्रोता डॉक्टर निदा, नाहिद फरीदा, जब्बार मोहम्मद, अशरफ खान, मंजू निमी, थाना रोड बक्सर से इस गीत को पसंद किया। आशीष सतीश और आयुष ने और लक्ष्मी बाई अनाज मंडी रोड वंदना नगर इंदौर के हमारे श्रोता हैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खर्चे, ललिता नारायण, गणेश और संजना परी मालती स्वाति प्रयाग चौधरी की फरमाइश है ये।

विश्वेश्वर शर्मा का लिखा है ये नगमा। आपने सुना शंकर जयकिशन की तर्ज थी, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाजें थी, आत्मा राम फिल्म का ये गीत था श्रोताओ। और यही है आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। कार्यक्रम में सहयोग मिला योगिता जाधव और धनाश्री साठे का। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले और अब दीजिए संगीता श्रीवास्तव को इजाजत। नमस्कार, लेकिन भेजते रहिए अपने पत्र, क्योंकि आपके पत्रों का हमें भी रहता है कार्यक्रम के लिए इंतजार। मनचाहे गीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग।

0: नाट्य तरंग कार्यक्रम में आइए सुनते हैं नाटक स्वप्न वासव दत्ता, इसका पहला भाग। ये महाकवि भास के संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण है। रूपांतरकार हैं कृष्णकांत दुबे, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा।
1: जैसा मेघदूत में वर्णित है, मालवांचल के ग्राम वृद्ध वत्सराज उदयन और अवंतिराज कन्या वासव दत्ता की प्रणय गाथा के ज्ञाता थे। इसी प्रणय गाथा को महाकवि भास ने अपने दो नाटकों प्रतिज्ञा यौगंधरायण और स्वप्न वासव दत्ता में गूंथा है। प्रतिज्ञा यौगंधरायण में वत्सराज उदयन का अवंति सीमा पर बंदी होना, अवंतिराज महलों में रहकर उदयन का वासव दत्ता को वीणा की दीक्षा, उनका प्रणय और महाअमात्य यौगंधरायण के प्रयत्नों से उदयन की मुक्ति और उदयन द्वारा वासव दत्ता का हरण कर कौशाम्बी ले जाना वर्णित है। स्वप्न वासव दत्ता उसके बाद की घटनाओं पर आधारित है, भास की विख्यात नाट्य कृति है स्वप्न वासव दत्ता।

0: महामाती योगेंद्रायण, कैसा वन है ये? हमारी भाग्य रेखा की तरह ये घनी काली वनराजी, चलते चलते थक गई हूं मैं। ये दिन भी देखना थे हमें।
1: आर्या वासवदत्ता, चिंतित न हो।
0: आर्य, कैसा है ये नियति का क्रूर चक्र? सोच कर कांप उठती हूँ। इधर आर्य पुत्र का शत्रुओं द्वारा पराभव, कौशाम्बी के राज महलों को त्याग, लावानक ग्राम में राज परिवार का निवास,
1: और इधर महाराजा उदयन का आखेट के लिए वन गमन, उधर लावानक ग्राम में भयानक अग्नि प्रकोप।
0: नहीं नहीं नहीं महामात्य, उसे याद न दिलाएं, सिहर जाती हूँ उसे याद कर। आपने ही मुझे उन अग्नि ज्वालाओं के बीच से बचाया, आप ना होते तो क्या होता मेरा? और अब हम इस वन भूमि के बीच खड़े हैं।
1: हमें अपना करणी करना है देवी वासवदत्ता। मुझे विश्वास है एक दिन हम इन समस्त विपदाओं से अवश्य मुक्त होंगे।
0: हाँ, यही हो महामाति योगेंद्रायण।
1: यही होगा देवी, यही होगा। देवी, स्मरण है न आपको मेरी प्रतिज्ञा? जब तक हम शत्रुओं का पराभव कर अपने वत्स देश की राजधानी कौशाम्बी पर पुनः अधिकार न कर ले, महाराजा उदयन को फिर सिंहासनारूढ़ न कर दे, मैं इसी तापस वेश में रहूंगा। और तब तक आप भी महाराजा उदयन को नहीं दिखेंगी।
0: आर्य, आर्य पुत्र के मंगल के लिए ही आपने ये कठोर प्रतिज्ञा की है, मैं इस प्रतिज्ञा की रक्षा करूंगी।
1: तो देवी, अब से मैं महाआमात्य योगेंद्रायण नहीं बल्कि एक परिव्राजक हूं, और आप वत्सराज उदयन की महारानी नहीं बल्कि मेरी प्रिय भगिनी अवंतिका है।
0: हाँ, मैं इसे याद रखूंगी।
1: देवी, वहां सामने देखिए, जहां मृग निर्भय विचर रहे हैं, चारों दिशाओं से यज्ञ धूम उठ रहा है, जहां व्यवस्थित अरण्यावली है।
0: हाँ?
1: मुझे लगता है वह तपोवन है, क्यों न हम वहां चले?
0: हाँ आर्य, यही उचित होगा, चलिए।
2: मार छोड़ दे, आर्य हट जाए, मार छोड़ दे।
1: आश्चर्य, यहां भी लोगों को हटाया जा रहा है। पूजनीय और वलकलधारी आश्रम वासियों में ये लोग क्यों भय उत्पन्न कर रहे हैं? ये अभिमानी इस तपोवन के साथ गांव का सा व्यवहार क्यों कर रहे हैं?
2: मार छोड़े, आर्या हट जाएं, मार छोड़ दें।
0: आर्या योगेंद्रराय, ये कौन है जो आश्रम वासियों को यूं हटा रहे
2: हैं? आर्या मार छोड़ दें।
0: देखिए ना, यहाँ तो मुझे भी हटाया जा रहा है। आर्या, अब तो ये थकावट मुझे इतना दुखित नहीं कर रही जितना कि ये अपमान।
1: धैर्य धैर्य देवी, अपने पति वत्सराज उदयन के विजयी होने पर आप फिर प्रतिष्ठित होंगी। काल चक्र के घूमते अरों की भांति इस जगत का भाग्य भी घूमता है।
2: मार छोड़ दे आर्य, हट जाए, मार छोड़ दे।
3: संभाषण, लोगों को इस तरह ना हटाओ।
4: आश्रम वासियों के प्रति कठोर व्यवहार उचित नहीं। ये मुनिजन नगर के अपमान से बचने के लिए इस वन में निवास करते हैं।
5: जो आज्ञा आर्य कंचुकी, ऐसा ही होगा।
1: ये कंचुकी ज्ञानमान है। देवी वासवदत्ता, आइए इसके पास चले। आर्य कंचुकी
4: जी,
1: आप रनिवास की प्रतिष्ठा के ज्ञाता हैं, ज्ञानवान हैं। हमें बताएं, लोगों को यहाँ राज से क्यों हटाया जा रहा है?
4: तपस्वी, हमारे मगध राज महाराजा दर्शक की बहन राजकुमारी पद्मावती महाराजा की माता महादेवी से मिलने यहाँ आश्रम में आई है।
1: अच्छा, तो ये ही वो मगध राज कन्या पद्मावती है जिनके लिए पुष्पक भद्र आदि भविष्य दृष्टाओं ने घोषणा की है कि ये हमारे स्वामी वत्सराज उदयन की द्वितीय रानी होगी। अपने स्वामी की भावी वधु को देखकर मेरे मन में ममत्व साक्षात्कृत हो रहा है।
6: राजकुमारी आश्रम में प्रवेश करें।
7: स्वागत है राजकुमारी।
8: स्वागत है राजकुमारी। आर्य तपस्विनी, हमारा अभिवादन स्वीकारें।
9: आयुष्मान हूँ, ये आश्रम अतिथियों के लिए उनके गृह समान ही है।
7: इन वचनों के लिए अनुग्रहित हूँ आर्य।
0: बहुत सुंदर आश्रम है ये, कैसी शांति, कैसा सुख है यहाँ।
6: इधर इधर पधारिए राजकुमारी, इधर आइए।
9: कितनी सुंदर है राजकुमारी पद्मावती। मगध राज की सुंदर भगिनी के लिए किसी राजकुल ने विवाह प्रस्ताव तो किया ही होगा।
6: उज्जैनी अधिपति महाराजा प्रद्योत महासेन ने अपने राजकुमार की ओर से दूत भेजा है।
0: उज्जैनी से मेरे पिता अवंती नरेश ने दूध भेजा है। ओह, कितना अच्छा। तब तो पद्मावती मेरी आत्मिया हुई।
7: आर्य, क्या आश्रम में ऐसे मुनिजन हैं जो मेरी दीप भेंट स्वीकार कर मुझे अनुग्रहित करें? आर्य कंचुकी,
4: राजकुमारी की जो इच्छा।
3: आश्रम के तापस जन सुने, मगध राज कन्या पद्मावती आपको धर्मार्थ भेंट लेने आमंत्रित करती हैं। जिसे जो वस्तु इच्छित हो बताएं।
1: आर्य कंचुकी, मुझे कुछ मांगना है।
7: अवश्य मांगे, मेरा तपोवन में आना सार्थक रहा।
9: इस आश्रम के तपस्वी हर तरह संतुष्ट हैं। ये मांगने वाला निश्चय ही कोई आगंतुक है।
4: बताएं, बताएं तपस्वी, आपकी इच्छा बताएं।
1: राजकुमारी, ये मेरी बहन अवंतिका है। इनके पति विदेश में हैं। मेरी इच्छा है कुछ समय इन्हें आप अपने साथ रखें, आप इनका परिपालन करें। देवी, मैंने धन वस्त्र की इच्छा से ये काषाय वस्त्र धारण नहीं किए हैं।
7: फिर क्या चाहते हैं आप?
1: आपने धर्मप्रियता का परिचय दिया, अतः आप निश्चित ही मेरी भगिनी की चरित्र रक्षा कर सकती है।
4: चरित्र रक्षा? चरित्र रक्षा? राजकुमारी, इनका मनोरथ बड़ा है, धन प्राण और यहाँ तक के तप भी सुखपूर्वक दिए जा सकते हैं, लेकिन थाती की रक्षा।
7: आर्य कंचुकी, घोषणा के बाद पुनः विचार उचित नहीं। अब ये जो कुछ कहें वही संपन्न हो।
4: जो आ गया राजकुमारी जी।
1: अनुग्रहित हुआ मगध राजकुमारी पद्मावती। जाओ अवंतिके, देवी के समीप जाओ।
0: आह, कैसा सुंदर मुख है इसका।
7: चेटी, अवंतिका को देख ही लगता है जैसे ये कोई राजकन्या हो।
0: आर्य, लगता मुझे भी यही है, इन्होंने निश्चित अच्छे दिन देखे हैं।
7: आओ अवंतिके, हमारे साथ चलो।
1: एक भार उतरा, जैसा साथी मंत्रियों के साथ

0: निश्चित किया था कि वैसा ही संपन्न हुआ जब मेरे स्वामी वत्सराज उदयन कौशाम्बी को जीतकर सिंहासन आरूढ़ हो गए, तब उन्हें देवी वासव दत्ता को वापस लौटा दूंगा। उस समय यही मगध राजकुमारी मेरा साक्ष्य करेंगी, और ऐसी भविष्यवाणी भी है। समुचित रीति से कहे ऋषि वचनों को भाग्य भी मिथ्या नहीं करता।
1: बहुत थक गया हूं, मध्यान्ह हो रहा है, पर विश्राम कहां करूं? कहां जाओ, किधर जाओ? अरे ये सामने शायद तपोवन है। हाँ, तपोवन ही है। निर्भय हिरण और गायों के दल घूम रहे हैं, फल फूलों से लदे वृक्ष, प्रति दिशा उठता यज्ञ धूम। निश्चित ही तपोवन ही है। चलू देखू।
2: ब्रह्मचारिण पधारें।
3: आश्रम सबका समान रूप से होता है। हम आपसे पहले यहां आए, आप हमारा आतिथ्य स्वीकारें श्रीमान। लीजिए, शीतल जल ग्रहण करें।
1: धन्यवाद। अब थकान दूर हुई।
3: अतिथि ब्रह्मचारी, ये हैं हमारी मगध राजकन्या पद्मावती।
4: प्रणाम।
1: आयुष्मान भव।
3: ये हैं इन तपस्वी की बहन अवंतिका।
4: प्रणाम।
3: और ये इनके भाई।
5: प्रणाम मुनिवर।
3: और ये आश्रम की तपस्विनी सेविका चेटी।
4: प्रणाम मुनिवर।
1: आयुष्मान भव।
5: ब्रह्मचारी, आप कहां से आए, कहां जाएंगे, निवास स्थान कहां है आपका?
1: मैं मगध की राजधानी राजगृह का ही रहने वाला हूं। वेदों के विशेष अध्ययन के लिए वत्स देश के लावणक ग्राम में रहता था।
4: लावणक ग्राम में।
5: अध्ययन समाप्त हुआ?
1: नहीं तपस्विन, नहीं।
5: नहीं? फिर वहां से चले आने का प्रयोजन?
1: वहां एक दुखद घटना घटी।
5: वो क्या?
1: वही लावण ग्राम में उदयन नाम के राजा रहते थे।
4: स्वामी।
1: अवंतिराज प्रद्युत महासेन की कन्या उनकी परम प्रिय पत्नी थी।
4: मेरे स्वामी।
1: जब राजा अन्यत्र आंखें खेलने गए, तब तब तब गांव में आग लगी। और इसके बाद रानी की रक्षा का प्रयत्न करते अमात्य योगनधरायण भी उसी अग्नि में गिर पड़े।
4: क्या?
5: अमात्य भी गिर पड़े? फिर मुनिवर?
1: फिर उदयन लौटे और ये संवाद सुना। प्रिय वियोग से दुखी हो वे उसी अग्नि में प्राण त्यागने को उद्यत। मंत्रियों ने बड़े प्रयत्नों से उन्हें रोका।
4: अपने प्रति आर्य पुत्र का असीम प्रेम जानती हूं, उसी के बल आज जीवित हूं। आज भी उनकी प्रेम वीणा के स्वर, प्रेम वीणा के स्वर मेरे कानों में गूंजते हैं।

0: रानी वासवदत्ता के जलने से शेष रहे आभूषणों को हृदय से लगा मूर्छित है।
1: राजकुमारी पद्मावती आर्या अवंती का विलाप कर रही है।
2: क्या बात है अवंती की?
3: ना रो अवंती के। राजकुमारी मेरी ये भगनी स्वभाव से भावुक है। हाँ ब्रह्मचारिण, फिर क्या हुआ?
0: फिर धीरे धीरे राजा को चैतन्य लाभ हुआ।
1: प्रसन्नता है, वत्सराज जीवित है, उनका मूर्छित होना सुन मेरा तो हृदय शून्य हो गया था।
0: लेकिन चेतना आने पर महाराज उदयन सहसा उठे और हाँ वासवदत्त
4: हाँ अवंती राजपुत्र,
0: हाँ प्रिय,
4: हाँ शिष्य वासवदत्ता, हाँ

0: देर तक विलाप करते रहे। धन्य है वो स्त्री जिससे उसका पति इस तरह प्रेम करता है। ऐसा पति स्नेह पा वो जलकर भी नहीं जली।
1: ब्रह्मचारी, उन मंत्रियों में से किसी ने भी वत्सराज को प्रकृतिस्थ करने का यत्न नहीं किया?
0: किया तपस्वी, किया। रुम्नवान नामक मंत्री ने दृढ़ प्रयत्न किया। वे ही दिन रात राजा की यत्न पूर्वक सेवा करते रहे।
2: सौभाग्यवश आर्यपुत्र अप्रत्याशित कार्यों में दक्ष रुम्नवान जैसे मंत्री के हाथों सुरक्षित हैं। भाग्य मेरे।
1: अच्छा ब्रह्मचारी, क्या राजा पूरी तरह स्वस्थ हैं?
0: इस समय तो नहीं जानता तपस्वी, लेकिन यहाँ मैं वासवदत्ता के साथ फंसा।
3: यहाँ मैं वासवदत्ता के साथ फंसा, यहाँ उससे बातें की, यहाँ रात व्यतीत की, यहाँ कोप किया। वासवदत्ता, आप ये शिष्य, तुम मुझे छोड़ क्यों चली गई?
0: इस तरह विलाप करते राजा को मंत्रीगण बड़े यत्न से संभाल पाए और बाहर ले जा सके।
1: फिर
0: जिस तरह चांद तारों के अस्त होने पर आकाश श्रीहीन हो जाता है, उसी तरह उस अनाकर्षक लावण ग्राम को मैंने त्याग दिया और अब आपके समक्ष हूं।
4: जिसकी प्रशंसा आगंतुक करते हैं वो राजा निश्चित गुणवान है।
2: क्या महाराज उदयन अब किसी अन्य स्त्री को स्वीकार सकेंगे? अन्य स्त्री को? हाँ, चीटी की तरह मेरा मन भी यही प्रश्न करता है।
0: अब सभी लोगों से मैं आज्ञा लूं। आश्रम में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सबको मेरा आशीष।
2: प्रणाम मुनिवर।
1: अच्छा ब्रह्मचारी, प्रणाम। अब मैं भी देवी पद्मावती से जाने की अनुमति चाहूंगा।
4: आर्य, आपके बिना आपकी ये भगिनी दुखी तो नहीं होंगी?
1: नहीं राजकुमारी, साधु जनों के हाथ हो ये दुखी नहीं होगी। अच्छा, मुझे आज्ञा दे, मैं जा रहा हूं अवंती के।
5: राजकुमारी, आश्रम प्रवेश का समय हो गया। इधर इधर पधारे राजकुमारी।
6: शांत वेला हो रही है, पंछी बसेरा ले रहे हैं, मुनिजन जल तर्पण कर रहे हैं, सूर्य अस्ताचलगामी हो रहा है।
5: सब लोग आश्रम प्रवेश करें।
2: चलो कंचुकी, चेटी चलो।

0: अरे तुम्हारी बहन।
1: अवंती के अब बस करो, अब नहीं खेल सकूंगी।
0: खेले राजकुमारी, कुमारी का जीवन के रमणीय क्षणों का सदुपयोग करे। क्या कह रही है चिट्ठी?
1: सुन रही हूँ अवंती के। पर बताओ हमारे यहाँ की राजगृह के राजमहल में कैसा लग रहा है तुम्हें?
0: ये राजगृह के महल भी सुंदर है और इस उद्यान की सुंदरता तो बस।
1: क्या देख रही हो इस तरह मेरी ओर अपलक?
0: आज आप विशेष सुंदर लग रही हैं राजकुमारी।
1: रहने दो, तुम उपहास कर रही हो मेरा।
0: अच्छा अच्छा, महासेन की भावी पुत्र वधु, मैं चुप होती हूँ।
1: ये महासेन कौन है?
0: नहीं जानती। उज्जैनी के राजा प्रद्योत, असीम सेना होने के कारण उनका नाम ही महासेन हो गया।
1: लेकिन हमारी राजकुमारी उज्जैनी का ये संबंध नहीं चाहती।
0: तब किसके साथ चाहती हैं आर्य चेठी?
1: ये चाहती हैं वत्सराज उदयन को।
0: वत्सराज?
1: कुमारी पद्मावती उनके गुणों पर मुक्त है।
0: मेरे स्वामी, ये आर्य पुत्र की पति रूप में कामना करती है। नहीं नहीं,
1: क्या क्या हो देवी?
0: हाँ कुछ नहीं, मैं कह रही थी वत्सराज के साथ ही क्यों?
1: वत्सराज उदयन अत्यंत कोमल हृदय हैं।
0: जानती हूँ, मैं भी कभी उनके इस गुण पर इसी तरह आसक्त हो गई थी। उनका रूप गुण।
1: अच्छा राजकुमारी पद्मावती, यदि वत्सराज उदयन कुरूप हुए तो?
0: नहीं, वे अत्यंत सुंदर हैं, दर्शनीय हैं।
1: अवंती की, तुम उन्हें कैसे जानती हो?
0: मैं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा ही उज्जैनी के लोग कहते हैं।
1: ओह हाँ, वे अपनी ससुराल उज्जैनी के लिए तो अपरिचित नहीं।
2: कुमारी पद्मावती की जय हो। कुमारी आपकी मम्मी हो गई।
0: मम्मी हो गई?
2: बधाई हो राजकुमारी।
0: आहो धात्री माँ, किसके साथ मम्मी हो गई राजकुमारी की?
1: वत्सराज उदयन के साथ।
0: क्या, वत्सराज के साथ? कहाँ, कैसे? वे कुशल पूर्वक तो हैं?
1: हाँ वे कुशल पूर्वक है अवंती के। वे यहाँ राजगृह आए हैं और राजकुमारी पद्मावती को उन्होंने स्वीकार किया है।
0: क्या क्या स्वयं उन्होंने ये विवाह प्रस्ताव किया?
1: नहीं, वे अन्य प्रयोजन से यहाँ आए थे। हमारे महाराज मगध नरेश ने उनके आभिजात्य ज्ञान वय और रूप को देख यह प्रस्ताव किया है।
0: ऐसा ही है ना? तो आर्य पुत्र इसमें सर्वथा निर्दोष हैं। मेरा मन भी यही कहता है।
1: ओ राजकुमारी बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो।

0: पद्मावती को विवाह मंडप में छोड़ मैं यहाँ राजगृह के प्रमथ वन में चली आई ताकि दुख से मुक्त हो मन बहला सकूं। मेरे दुख की भी कोई सीमा है आर्यपुत्र, वे भी अब पराए हो गए। धन्य है चक्रवाकी जो अपने चक्रवाक से बिछुड़ फिर जीवित नहीं रहती। मैं अभागिन आर्यपुत्र को देख भर लेने की मनोरथ से ही।
1: आर्य अवंतिका जाने कहां गई। ओ, प्रियंगुलता के नीचे शिलापट पर बैठी है। अरे कितने देर से मैं आपको ढूंढ रही हूँ।
0: किस लिए चेटी?
1: राजमाता का कहना है आप महाकुल से उत्पन्न हैं, स्नेहशील और चतुर हैं, इसलिए आप ही राजकुमारी पद्मावती के लिए विवाह माला गूंथे। ये लीजिए फूलों की टोकनी।
0: हाय, मुझे ये करना होगा, भाग्य भी कितना निष्ठुर है।
1: अरे क्या सोच रही हैं? जा माता उदयन मणिभूमि में स्नान कर रहे हैं, आप शीघ्र माला गूंथे।
0: ठहरो चेटी। अच्छा ये तो बताओ तुमने जामाता को देखा है? कैसे हैं?
1: ऐसे हैं जैसे मैंने कभी नहीं देखा।
0: कहना क्या सुंदर हैं?
1: धनुष बाण रहित साक्षात रतिपति कामदेव हैं।
0: अच्छा अब बस भी करो।
1: अरे क्यों रुक रही है मुझे?
0: पर पुरुष की प्रशंसा सुनना अनुचित है ना।
1: अच्छा शीघ्र माला गूंथते,
0: वही तो कर रही हूँ।
2: अच्छा चेटी बताओ इस फूल का क्या नाम है?
3: अविधवाकरण।
2: अविधवाकरण?
3: जानती है इसके धारण करने से पत्नी विधवा नहीं होती।
0: तो फिर माला में इससे अधिक गूंथूंगी अपने लिए और पद्मावती के लिए भी।
2: और इसे क्या कहते हैं?
3: सपत्नी मर्दन, यानी सौत को डहाने वाली।
0: नहीं नहीं इसे नहीं गूंथना है।
3: क्यों
0: चेटी? राजा की पूर्व पत्नी वासव दत्ता का तो देहांत हो चुका है, अब इसे गूंथने का क्या प्रयोजन।
4: जल्दी करें आर्य, जल्दी करें, सुहागिने जामाता को विवाह मंडप में ले जा रही है।
1: हाँ हाँ लो ये माला तैयार है।
3: अरे सुंदर माला गूंथी है आपने, तो मैं चली।
0: दुर्भाग्य, आर्यपुत्र भी अब मेरे नहीं रहे।

स्वप्न वासव दत्ता, अभी आपने इस नाटक का पहला भाग सुना। ये महाकवि भास के संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण था। रूपांतरकार थे कृष्णकांत दुबे, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में। ये नाटक आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: बॉम्बे टॉकीज
1: साइंस लाइट साउंड
2: कैमरा एक्शन।
3: दोस्तों नमस्कार। एक गायिका जिनका नाम था सुषमा श्रेष्ठ, उन्होंने बाद में अपना नाम बदल लिया और रखा पूर्णिमा। पूर्णिमा के नाम से वो खूब मशहूर हुई। आज बॉम्बे टॉकीज में आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत।
4: आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने एक ऐसी कलाकार को आमंत्रित किया है जिन्हें आप उनके बचपन से सुनते आए हैं और आज भी जब आप उनके गाए गीत सुनते हैं तो आपके और हमारे पैर थिरकने लग जाते हैं। जी हाँ, आज बॉम्बे टॉकीज में हमारी मेहमान है मधुर और दमदार आवाज की धनी गायिका पूर्णिमा। जी हाँ, वही पूर्णिमा जिन्हें बचपन में हम सुषमा श्रेष्ठ के नाम से जानते हैं। तो विविध भारती के स्टूडियो में पूर्णिमा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
5: नमस्कार आप सबको और मेरे सुनने वाले श्रोताओं को भी।
4: जी, और आकाशवाणी से पूर्णिमा के गाए गीत न जाने कितने बजते रहे और आज आपको सामने पाकर मुझे लगता है हम धन्य हो गए हैं।
5: धन्य तो मैं हो गई, आप लोगों ने जिस तरह से मेरा इस्तकबाल किया
4: जी,
5: जो प्यार जो मान मुझे आप लोगों ने दिया
4: जी,
5: बहुत कम मिलता है। आजकल तो मिलता ही नहीं
4: जी।
5: पर मैंने मतलब सोचा नहीं था कि इस तरह से आप मुझे वेलकम करेंगे
4: जी।
5: तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं धन्य हो गई आज।
4: ये आपका बड़प्पन है,
5: मतलब अगर मैं नहीं आती ना तो मुझे दुख होता। मतलब मुझे शायद इस बात का एहसास भी नहीं होता
4: जी
5: कि मेरे ना आने से मैं क्या क्या खो रही हूँ
4: जी। जी,
5: तो मैं आई इसके लिए मैं खुद की बहुत शुक्रगुजार हूँ।
4: तो पूर्णिमा जी, आज का जो ये सफर है जो आपके साथ हम तय करने वाले हैं, ये सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने का सफर है
5: जी, जी।
4: वहाँ तक हम बातचीत करने वाले हैं कि किस तरह से एक प्यारी सी नन्ही सी गायिका किस तरह से एक बड़ी गायिका में तब्दील हो गई, और वहाँ पर भी वो हमेशा टॉप पे रही और अपने गानों से हम लोगों को हमेशा बांधे रखा। तो पूर्णिमा जी, आप नेपाली हैं और आपके पिता भोलेनाथ श्रेष्ठ एक बहुत जाने माने संगीतकार रहे हैं, तो मुंबई आना कैसे हुआ? क्योंकि आपके पिता मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों के संगीत निर्देशकों के साथ काम करते थे।
5: जी जी, एक्चुअली हुआ यूं कि डैडी का जो परिवार था नेपाल से, वो लोग कोलकाता चले गए।
4: अच्छा।
5: और कोलकाता में जाकर बस गए। तो डैडी का जन्म जो है वो कोलकाता में हुआ।
4: अच्छा।
5: और पढ़ाई लिखाई संगीत की तालीम सब कुछ डैडी ने वहीं से हासिल की, कोलकाता से
4: जी।
5: फिर मुझे लगता है अगर मुझे ठीक से याद है तो लेट 40s में डैडी मुंबई आ गए। आए किसके साथ? मन्नादा के साथ, मन्नादा जी के साथ।
4: अच्छा।
5: आए मन्नाडे जी के
4: जी,
5: साथ
4: जी।
5: और उनके चाचा हुआ करते थे केसी डे जी। उन दोनों के साथ डैडी मुंबई आए। फिर मुंबई में स्ट्रगल शुरू हुआ, तो डैडी ने पहले तो एक म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे बुलो सिरानी जी,
4: जी
5: उनको असिस्ट किया।
4: उनके गाने हम यहाँ के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में
5: है
4: जाते हैं।
5: हाँ। जी। तो उसके बाद उनको असिस्ट करते करते फिर डैडी ने रंजीत स्टूडियो ज्वाइन किया, तो वहाँ पे डैडी फिर खेमचंद प्रकाश जी को असिस्ट करने लगे।
4: अरे क्या बात।
5: मैं गलत नहीं हूँ अगर मैं कहूँ कि फिल्म महल की गाने जब बन रहे थे तो खेमचंद जी तब तक काफी बीमार हो चुके थे, काफी बीमार रहते थे। तो वो गाना खास तौर पर आएगा आने वाला, उसको कंपोज करने में डैडी का बहुत सहयोग रहा है।
4: अच्छा।
5: बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन डैडी की रही है
4: जी जी।
5: बस फिर डैडी ने बहुत अपनी खुद से भी कोशिश की, कुछ इंडिविजुअल फिल्म्स में भी उन्होंने ये बस्ती ये लोग वगैरह, लेकिन यहाँ क्या होता है ना मंदाकिनी जी की, सिर्फ आज मुझे इस बात का यकीन होते जा रहा है कि सिर्फ टैलेंट से नहीं चलता
4: जी, जी।
5: किस्मत बहुत बड़ी चीज होती है और सही वक्त, और सही वक्त पे सही लोग मिलना। वक्त तो बादशाह है पर उस सही वक्त के साथ सही लोगों का मिलना बहुत जरूरी होता है। तो हो सकता डैडी कहीं वहां पीछे रह गए बस यही कहानी मेरे डैडी भोलानाथ श्रेष्ठ की है।
4: जी जी जी।
5: तो असफल रहे, बदकिस्मत रहे, सही वक्त पे नहीं आए, जो भी आप कहें, लेकिन प्रतिभाशाली बहुत थे
4: जी,
5: बहुत ज्यादा टैलेंटेड, इसके बारे में कोई शक नहीं। वो सिर्फ एक अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर, बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर नहीं तो बहुत ही बेहतरीन तबला वादक भी थे।
4: अच्छा।
5: बहुत बेहतरीन। फिर उन्होंने कुछ साल किशोर कुमार जी के साथ भी काम किया, उनके फिल्मों में भी उन्होंने उनको असिस्ट किया। बल्कि आज अगर मुझे, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, माफ करें अगर मैं कहूं कि किशोर अंकल के फिल्मों के गानों को कंपोज करने में काफी कुछ सहयोग, नहीं बोलूंगी मैं, कंट्रीब्यूशन डैडी का रहा है।
4: जी जी जी। आप ही ने उनके बारे में बताया ना कि उन्होंने कितना काम किया है।
5: जी।
4: और जो संगीत प्रेमी हैं, जो संगीत के रसिक हैं, वो जानते हैं आपके पिता भोलेनाथ श्रेष्ठ एक कितने महान संगीतकार रहे होंगे।
5: बिल्कुल। मुझे आज भी मंदाकिनी जी कितने लोग डैडी के गाने भेजते हैं, मुझे तो मालूम भी नहीं था। कल ही मैं किसी से मिली और उन्होंने कहा कि एक शख्स हैं यहाँ मुंबई में, मरीन ड्राइव में रहते हैं, बहुत संगीत प्रेमी हैं, लेकिन उनके पास मेरे पिताजी के बहुत सारे गानों के, बहुत नहीं, सारे गानों के कलेक्शंस हैं।
4: अच्छा।
5: तो उन्होंने मुझे बुलाया भी है मिलने के लिए, जाऊंगी मैं। तो इससे मालूम होता है कि बदकिस्मत ही सही, नहीं वो मतलब नाकामयाब ही सही, असफल ही सही, पर कहीं एक मुख्तसर सा सेक्शन है
4: जी,
5: जो आज भी उनको और उनके गीतों को जानता है और पसंद करता है।
4: बिल्कुल सही कहा आपने कि आज भी उन्हें लोग याद करते हैं किसी न किसी।
5: बिल्कुल
4: बिल्कुल। बातचीत को हम आगे बढ़ाएं, उसके पहले सुनते हैं ये गीत।

0: तो आपका जो गायन का सफर है वो कैसे शुरू हुआ? आप हिंदी फिल्मों की पहली सफल बाल गायिका रही हैं। महज 9 साल की उम्र में आपने अपनी गायकी शुरू कर दी थी।
1: जी
0: ये सफर कैसे शुरू हुआ?
1: असल में मैंने शुरुआत तो की बहुत बचपन में।
0: अच्छा, इससे भी पहले?
1: जी जी, क्योंकि देखिए संगीत में एक मुझे वातावरण घर में मिला,
0: जी
1: विरासत में ही संगीत मिल गया। तो और मेरे मायके की तरफ की, मतलब मेरी माँ, मेरी मौसियाँ बहुत सुंदर गाती हैं। माँ तो खैर अभी जिंदा नहीं है,
0: जी।
1: आई कहती थी मैं माँ को,
0: जी।
1: आई जिंदा नहीं, मेरी एक दो मौसियों की भी का भी इंतकाल हो गया, लेकिन जब वो थीं और जो भी अभी मौसी जिंदा है, बहुत सुंदर गला। तो हो सकता है आवाज मुझे शायद विरासत में उस तरफ से मिली हो। और क्या मैं थोड़ा सा अगर अपना बैकग्राउंड बताऊं?
0: जी बिल्कुल।
1: तो उस वक्त क्या, क्योंकि डैडी असिस्ट करते थे खेमचंद प्रकाश जी को, बुलो सिरानी जी को, तो घर में काफी प्रख्यात लोगों का आना जाना, एक जैसे ना रोजाना ही वो चलता रहता
0: बड़े
1: था,
0: बड़े
1: है ना,
0: संगीतकारों का।
1: और सिंगर्स भी, गायक गायिकाएं, उनमें से बहुत करीब जो थी डैडी के और आई के, वो थी आशा जी।
0: अच्छा।
1: मैं आज भी उन्हें आशा काकी ही कहती हूँ,
0: हाँ
1: है ना।
0: हाँ।
1: तो आशा काकी का आना जाना, तो आई मेरी जो थी वो आशा काकी की जबरदस्त फैन, मतलब कहते हैं ना एक दीवानों सा एक प्यार उनकी गायकी से, उनसे एक पर्सनालिटी जो उनकी थी,
0: जी
1: उस पर्सनालिटी से आई इतना प्यार करती थी कि मैं जब आई मुझे लेकर जब गर्भवती हुई तो आई हमेशा ये कहती थी, ये प्रार्थना करती थी
0: जी
1: कि मुझे बेटी हो और वो आशा जैसी
0: जैसी हो। अरे क्या बात है।
1: ये बिल्कुल फैक्ट है। और हो सकता है शायद इसीलिए मेरे गानों में उनकी छवि आपको थोड़ी बहुत,
0: बिल्कुल,
1: थोड़ी
0: बिल्कुल।
1: बहुत
0: और आप
1: नजर,
0: उनसे प्रभावित भी रही हैं।
1: बिल्कुल, एक बाल बराबर उनकी छवि शायद नजर आती होगी
0: नहीं,
1: आपको।
0: होता है कलाकार है के साथ, जब हम अपना किसी को आइडियल मानते
1: जी,
0: हैं
1: जी।
0: तो कहीं ना कहीं वो छवि हमारे अंदर होती है।
1: और आइडल तो आई मानती थी, उसके बाद मैं, तो वो डबल हो गया ना।
0: हाँ, आप ही का गायवा सुनते
1: जी
0: हैं
1: जी बिल्कुल
0: की पसंद का ये गीत सुनते हैं।

0: जब मैं 6-7 महीने की थी, आई ने बताया सब कुछ। एक गाना बहुत चला था सुमन कल्याणपुर जी का, वो छोड़ो छोड़ो मोरी बैया, सावरे छोड़ो छोड़ो मोरी बैया, ठीक से याद नहीं मुझे।
1: बहुत सुंदर।
0: तो आई, मैं बैठने लगी थी और ये आशा काकी जब घर में आती थी तो ये गाना वो गुनगुनाती थी कि वो सिर्फ मुझे ठुमके लगाते हुए देखना चाहती थी।
1: अच्छा।
0: तो मैं बैठे बैठे ठुमके लगाती थी और इतना हंसती थी वो, इतना एंजॉय करती थी। उन्होंने, वो हमेशा कहती थी, भैया इसे ना आप डांस सिखाइए, ये बहुत अच्छी डांसर बनेगी। और मंदाकिनी जी, मैं बचपन में डांस बहुत अच्छा करती थी
1: जी,
0: ये अलग बात है कि आज मैं लोगों को नचाती हूँ लेकिन तब मैं नाचती बहुत अच्छा थी
1: जी।
0: तो मतलब ऐसा था कि अब थोड़ा और, मैं जब बड़ी हो गई तो जो गाने आते थे, अब घर में जब कोई फंक्शन है, कुछ भी, दशहरा दिवाली सब मिलते थे, क्योंकि आई सबसे बड़ी थी, डैडी सबसे बड़े थे, तो हमारे घर में ही वो हुजूम लगता था। तो बस, तो एंटरटेनर एक ही थी, मुझे घर में सब गुड्डी कहते हैं, तो एक ही थी एंटरटेनर गुड्डी
1: जी।
0: तो पहले तो ये कि डांस तो डांस भी ऐसे नहीं, मैं बाकायदा एंट्री लेती थी।
1: अच्छा।
0: हाँ, दूसरे कमरे से वो दो कमरों के बीच का जो पर्दा है वो बंद करके,
1: हाँ,
0: फिर वो पर्दा हटा के, मतलब मैं क्या 5-6 साल की थी
1: जी,
0: और सारा म्यूजिक अपने मैं जुबानी मुझे याद रहता था। तो वो जो गाना चला था ना, उड़ के पवन के संग चलूंगी, तो उसका बिगनिंग म्यूजिक वो सब मुंह से बजा के फिर मैं एंट्री लेती थी।
1: अच्छा।
0: तो बहुत मजे लेते थे सब लोग और यही लगा था सबको कि ये डांसर बनेगी। लेकिन अभी हुआ यूं कि करते करते जब 7 साल की हो गई, गाती भी थी, तो एक मेरे मामा जी कृष्ण कुमार राणा जी उनका नाम था, वो भी अभी इस दुनिया में नहीं रहे
1: जी।
0: तो वो और मेरी सबसे छोटी मौसी रेखा राणा उनका नाम है, वो अभी जिंदा है, भोपाल में है
1: जी।
0: तो वो दोनों इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ थे कि मैं गाती भी हूँ, थोड़ा बहुत घर में मतलब ऐसे गवा देते थे, लेकिन उनको बहुत बहुत पता नहीं, मुझ पे बहुत एतबार था कि ये डांस से ज्यादा गाना अच्छा गाती है। तो मामा जी मेरे मुंबई में लायंस क्लब के मेंबर हुआ करते थे और एक शो था मुंबई के तेजपाल ऑडिटोरियम में। हाँ, मैं तारीख भी आपको बता सकती हूँ, 17 जनवरी 1967
1: जी।
0: तो ये शो अब मामा जी को ही ऑर्गेनाइज करना था, तो ये तय हुआ कि भाई तुम एक जो तुम्हारे एक दो डांसेस है वो करोगे। लेकिन बाद में जैसे जैसे शो की तारीख करीब आती गई, तो मामा जी और मौसी ने मुझे बोला कि देखो डांस तो फिर भी बच्चे कर लेते हैं, लेकिन गाना, उस वक्त की बात मैं कर 1967 हाँ,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन इतनी छोटी उम्र में गाना गाना बहुत बड़ी बात होगी, तो तुम ना गाना गाओ, बाद में डांस भी रखेंगे
1: जी,
0: पर तुम गाना गाओ।
1: अरे वाह।
0: तो ये बहुत नयापन होगा ऑडियंस के लिए, और मैं भी मान गई, उस वक्त ना बच्चे मान लिया करते थे,
1: बिल्कुल,
0: ज्यादा हुज्जड़बाजी नहीं करते
1: जी,
0: थे।
1: और आपको बनना था एक महान गायिका,
0: हो सकता है तो कुदरत ने शायद, हो सकता है कि दिमाग की बत्ती भी उसी तरह खोल दी।
1: बिल्कुल।
0: अब वो दिन आया तो एक छोटा सा ऑर्केस्ट्रा था, मुझे ना उस ऑर्केस्ट्रा का नाम याद नहीं, बाद में जहाँ गाने लगी उसका नाम था रॉयल म्यूजिक सर्कल, तो वहां उनके साथ रिहर्सल्स हुई और मैं गई गाने। पहला गाना मैंने जब गाया वो, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, तो वो पहला आलाप जो लिया ना मैंने, ओ माँ, वहीं पे लोग उठकर खड़े हो।
1: अरे वाह, अरे वाह।
0: और इतनी तालियां कि उसके बाद गाना उठाने के लिए मुझे 5-7 मिनट रुकना पड़ा।
1: अच्छा।
0: अब ऐसा हुआ कि दो ही गाने रिहर्स हुए थे, अब मामा जी को भी क्या ही पता कि भाई ऐसा रिस्पांस मिलेगा।
1: जी
0: अब लोग ना छोड़े कि नहीं एक और एक और। और पता है मंदाकिनी जी, वो एक कहावत है ना कि होनहार बिरहा के होत चिकने पात। तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना मंदाकिनी जी, वो पहले से, ये मेरा मानना है
1: जी, बिल्कुल सही कह रही
0: है ना, वो उस बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में
1: ढाल देती है,
0: ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी देता है।
1: बिल्कुल सही
0: है ना
1: जी जी।
0: तो मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई, जैसे घर में गाती थी, जिस गाने की जो लाइन मुझे याद है, दो लाइंस तो दो लाइंस, चार लाइंस तो चार लाइंस, छोड़े ही ना पब्लिक। फिर हुआ कि भाई और भी लोग हैं कलाकार, और भी परफॉर्मेंसेस हैं। तो फिर बस उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं मंदाकिनी जी, बस वहां से मैं 7 साल की थी तब,
1: जी।
0: और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया
1: जी, जी।
0: कि डांस तो रहने ही दो तुम,
1: बिल्कुल
0: तुम गाना ही गाओ,
1: आप लोगों को नचाएंगी, ये था खुद नहीं नचाएंगी लेकिन दुनिया को नचाएंगी, और आपने नचाया भी। बातचीत को हम आगे बढ़ाएं, उसके पहले सुनते हैं ये गीत।

0: आपका पहला गीत जो है फिल्म अंदाज के लिए आपने गाया था, शंकर जयकिशन का संगीत था
1: बिल्कुल,
0: और रफी साहब और सुमन कल्याणपुर के साथ आपने गाया, इतने बड़े बड़े लोग और आप एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची, ये अनुभव कैसा रहा और ये गीत कैसे मिला आपको?
1: ये शो मैंने जो किया ना मंदाकिनी जी, तो मेरे परिवार के तो सारे सदस्य आए थे, तो हमारे एक बहुत करीब के फैमिली फ्रेंड हुआ करते थे चंद्रकांत भोसले जी,
0: जी,
1: और वो मेरे नैनीहाल के, मतलब जहाँ मेरी नानी रहती थी, समझिए कि उनके बिल्कुल चाली में रहती थी नानी, नाना चौक हरिनिवास चाल, बड़ी बड़ी बड़ी चौल, वहाँ समझिए नेक्स्ट रूम उनका, तो वो भी जानते थे, बचपन से उन्होंने देखा है, वो आए थे शो देखने, और उस वक्त देखिए, अब ये तो मैं जो कहती हूँ ना किस्मत सही वक्त,
0: जी
1: उसी टाइम में ये फिल्म बनने जा रही थी अंदाज, और शंकर जी, जयकिशन जी नहीं,
0: अच्छा
1: शंकर जी ने ये गाना कंपोज किया था, तब तक शायद वो अलग हो चुके थे,
0: अच्छा
1: छोटा मुंह बड़ी बात, पर वो अलग हो चुके थे, तो शंकर जी ने अपने सारे, उस वक्त क्या होता था मंदाकिनी जी, अभी होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर जब तक मैंने पंचम दा के साथ भी काम किया, कुछ एक हद तक आनंद मिलिंद जी के साथ भी, हम सिटिंग्स करते थे, सिटिंग मतलब रिहर्सल, गाने पहले हमें सिखाए जाते थे, तो उस वक्त जो मैं कहूंगी म्यूजिशियंस हमारे साथ बजाते थे सिटिंग में, रिहर्सल्स में, उन्हें सिटिंग मेंबर्स कहा जाता था, तो जब शंकर जी ने अपने सारे सिटिंग मेंबर्स को ये बोला कि ये गाने का एक सिचुएशन आया है, अब उस वक्त तो सीनियर सिंगर्स गाया करते थे, है ना, बच्चों के गाने भी, सिर्फ एक बच्ची ने तब तक गाया था, रानू दीदी ने, हेमंत काका की जो सुपुत्री हैं रानू मुखर्जी, उन्होंने वो गाना गाया था नानी तेरी मोरनी को,
0: मोरली, है ना, जी जी,
1: पर पता नहीं क्यों उसके बाद उनके कुछ गाने नहीं आए, तो उसके बाद बस मैं ही आई, तो उन्होंने कहा कि कोई बच्चा अगर नजर में है तो मुझे बताना जरूर, उन्होंने ना ये चैलेंज दिया था सबको कि ये गाना जो है मैं बच्चों से ही गवाऊंगा, अब सब लोग तो डरे हुए थे कि ऐसा बच्चा तुम्हें मिलेगा कहाँ, सिप्पी साहब, जीपी सिप्पी प्रोडक्शंस, रमेश सिप्पी जी की पहली फिल्म बतौर डायरेक्टर, कितने लोगों की वो पहली फिल्म रही मंदाकिनी जी, सलीम जावेद जी पहली फिल्म,
0: अच्छा
1: बतौर स्क्रिप्ट राइटर,
0: जी जी बिल्कुल,
1: गुलजार अंकल के तो डायलॉग्स,
0: हाँ,
1: और रमेश सिप्पी जी बतौर एक डायरेक्टर, तो वो रिस्क कैसे लेंगे ना,
0: और सुपर डुपर हिट,
1: सुपर डुपर हिट, वो रिस्क कैसे लेंगे, तो वो तो बिल्कुल नाराज थे इस उनके इस फैसले से, पर शंकर जी बहुत जिद्दी थे, वो माने ही नहीं, बोले मुझ पर छोड़ दो, मैं गवाऊंगा बच्चों को
0: जी,
1: तो ये भोसले अंकल ने

0: शंकर जी को बोला कि एक बच्ची है, भोला जी की बेटी, बहुत अच्छा गाती है। अब जाहिर बात है मंदाकिनी जी, वो बड़े पेड़ के नीचे तो छाया ही मिलती है, है ना?
1: पारिवारिक जो संगीत की पृष्ठभूमि थी वो आपके गायन कौशल को निखारने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई उसने।
0: तो डैडी का नाम सुनते ही बोले भोला जी की बेटी है, तो लेके आओ, पूछते क्या हो। अब मुझे लेके गए मौसी और मामा उनके सिटिंग रूम पे। सिटिंग रूम हुआ करता था फेमस महालक्ष्मी
1: जी,
0: टॉप फ्लोर पे। तो जब मैं वहां गई, देखा इतना बड़ा हॉल उनका और सारे म्यूजिशियंस बैठे थे। शंकर जी ऐसे एक स्टेज जैसा बना था, शंकर जी वहां थे, हसरत जयपुरी जी थे और सबास्टियन अंकल उनके अरेंजर थे, जिन्होंने मेरे डैडी के भी कुछ गाने अरेंज किए
1: जी।
0: तो वहां गई मैं, शंकर जी ने बिठाया और पूछा, गाती हो तुम, सीखती हो? तब तक डैडी से सीखने लगी थी थोड़ा बहुत। तो बोली हाँ। मैंने कहा अच्छा, तो क्या क्या गाती हो? मैंने सारे गम। अच्छा अच्छा, किस सुर से गाती हो? मैंने कहा काली एक। अच्छा, तो जरा सुनाओ सारे गम सुनाओ। तो उन्होंने सारे गामा पात पंचम तक लेके गए। बोले बस। बोले भोसले किसको लेके आए तुम? अरे ये तो चलेगी नहीं, दौड़ेगी।
1: अरे
0: और बोले मौसी और मामा को, बोले इसको ना कल आप फिल्म सेंटर लेकर आइए
1: जी,
0: साहब के साथ और सुमन जी के साथ गाना है। तो मौसी ने पूछा रिहर्सल? अरे कोई रिहर्सल नहीं, वहीं सिखा देंगे गाना।
1: अरे वाह।
0: तो दूसरे दिन, वो तारीख थी 7 नवंबर 1969
1: जी जी,
0: फिल्म सेंटर में हमारी बारात गई। मेरे साथ एक और बच्ची भी, उसने भी गाया है, प्रतिभा बोर्डे का। वो भी भोसले काका की ही कोई जान पहचान की थी।
1: पर आगे उन्होंने फिर ज्यादा नहीं गाया।
0: उनको ना इंटरेस्ट, प्रतिभा को ना ज्यादा एक्टिंग में इंटरेस्ट था, जहां तक मैं मुझे याद है। ज्यादा गाने में उसको रुचि नहीं थी, वो एक ही गाना उसने गाया। बस वहां पहुंचे मंदाकिनी जी, उन्होंने गाना सिखाया
1: जी
0: और मुझे बोला तुम हंसती हो? मैंने बोला हाँ, गाने में हंसोगी, मुझे तुम्हारी हंसी डालनी है।
1: बहुत सुंदर हंसी थी आपकी वो।
0: मैंने बोला हाँ, तो मुझे बताओ कैसे हंसोगी? तो मैंने कहा पापा मम्मी मिलते हैं, चुपके चुपके हंसते हैं। बोले बस इसको पकड़ के रखना।
1: बहुत सुंदर।
0: बस उसके बाद फिर थोड़ी देर में रफी साहब आए, बहुत बाद में, मैं उनको साहब अंकल कहती थी। हाँ, और सुमन जी आई
1: जी,
0: सब आए थे
1: जी,
0: रमेश सिप्पी जी सब आए। मुझे, हमको ना बाहर खड़ा किया था, वह सिंगर्स कैबिन नया नया बना था फिल्म सेंटर में। तो शंकर जी ने कहा कि अगर बच्चों को अंदर खड़ा करेंगे तो हो सकता है हेडफोन लगाकर थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, डर जाएंगे, इनको बाहर खड़ा करो। तो हमको बाहर हॉल में सारा जो वायलिन सेक्शन, म्यूजिशियंस, सारे म्यूजिशियंस के साथ ही हमको खड़ा किया था। और रफी साहब और सुमन जी सिंगर्स कैबिन, फर्स्ट टेक ओके
1: जी जी,
0: उन्होंने रिपीट ही नहीं करवाया।
1: बहुत सुंदर।
0: बाद में फिर साहब अंकल से मुलाकात हुई, मौसी ने बताया। उस वक्त ना मंदाकिनी जी एक गाना चला था ना रफी साहब का, अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया
1: जी,
0: ये मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर, जिसने दस्तूर बनाया।
1: बिल्कुल।
0: ये गा के मैं डांस करती थी और इसके पीछे किशोर काका पागल, क्योंकि किशोर काका और डैडी की बिल्कुल ऐसी दोस्ती जैसे आप समझिए एक माल के मणि
1: जी।
0: तो घर में आते थे और जब आते थे अमिता के साथ यही गाने में मुझे डांस करवाते थे
1: जी।
0: तो मौसी ने बोला तुम वो गाना गाती हो ना, ये वही है, जाओ पैर छुए।
1: अच्छा।
0: तो उस वक्त वो ना धनतेरस का दिन था मंदाकिनी जी, तो साहब अंकल ने वो बड़े बड़े 100 रुपए के नोट चलते थे उस वक्त, तो मुझे और प्रतिभा को 100 रुपए बख्शीश दिए, नजराना। ये एक हमारे गाने बजाने में एक, ये एक तहजीब होती
1: जी,
0: है
1: जी।
0: हम जब अपने छोटों को सुनते हैं
1: तो उसको तो उनका
0: एक नजराना देते हैं,
1: प्यार का प्रतीक,
0: बिल्कुल, और उनको एक प्रोत्साहन देने के लिए। तो उन्होंने वो दिया और बोला जाओ मिठाई खाओ।
1: अरे वाह।
0: फिर मौसी से पूछा कि भोला जी की बेटी है ना, तो मौसी ने कहा इसको ना बहुत प्यार दीजिएगा, बहुत अच्छे से सिखाइएगा, ये बहुत नाम करेगी।
1: क्या बात है। यानी आप भाग्यशाली थी कि आपकी शुरुआत रफी साहब और सुमन कल्याणपुर के साथ,
0: ये आज महसूस होता है,
1: शंकर जी के साथ हुई और इतनी बड़ी फिल्म में आपने गाया। तो वो गीत की दो लाइनें हमारे श्रोता सुनना चाहेंगे और उसके बाद शायद यही हम सुने आपकी पसंद का।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और पता है मैं एक छोटी सी बात बताऊं मंदाकिनी जी, अभी एक 10 है ना बुलबुल

0: अभी तो हम आपको सुषमा जी भी कह लेंगे तो कोई अति नहीं होगी, क्योंकि अभी हम सुषमा श्रेष्ठ को ही सामने बैठा देख रहे हैं। तो आपने राहुल देव बर्मन के साथ भी कई गीत गाए, यादों की बारात और तेरी है जमीन, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई,
1: क्या हुआ तेरा वादा
0: है ना, क्या हुआ तेरा वादा, ये सब गाते गाते सिर्फ 11 साल की उम्र में आपको फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के रूप में नामांकित किया गया।
1: काश मिलता वो अवार्ड
0: लेकिन नामांकन भी बहुत बड़ी चीज थी।
1: बड़ी चीज़।
0: तो ये अनुभव कैसा रहा और पंचमदा के साथ काम करने का जो संगीत की आपकी समझ पर क्या प्रभाव पड़ा होगा?
1: मैं जो कुछ भी गाती हूँ आज, जो कुछ भी थोड़ी बहुत अगर मैं समझती हूँ कि डायनामिक समझ से गाने में कहती, उतार चढ़ाव और बहुत कुछ मैंने पंचम दादा से सीखा, क्योंकि उनके साथ बहुत उठना बैठना होता था। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ
0: जी।
1: एक तो क्या हुआ ना कि बर्मन चाचा मतलब SD बर्मन जी और डैडी, मैंने जो बताया आपको कि डैडी का जन्म कोलकाता में हुआ, तो वो पूरी तरह से अपने आप को वो बंगाली बाबू ही समझते थे अपने आखिरी सांस तक
0: जी।
1: और उनका सर्कल भी पूरा बंगाल
0: वैसे ही था
1: बिल्कुल। उस कारण भी मुझे ये सब बहुत प्यार करते थे, जैसे बर्मन चाचा, शक्ति सामंत जी, प्रमोद चक्रवर्ती जी, इतना प्यार करते थे कि डैडी के जाने के बाद भी कोशिश यही उनकी रहती थी कि उनके फिल्मों में कहीं ना कहीं मुझे एक लाइन ही मिल जाए। तो पंचम दास से फिर वही एक वही था कि तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही तो वो एक रिश्ता आप समझिए ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे चलता आ रहा हो, एक अनोखा वो मंदा के नीचे क्या होता है ना, बड़ी देर के बाद जैसे जैसे बड़ी हुई ये एहसास हुआ कि कुछ रिश्ते जो होते हैं ना अपने होने का ना एहसास नहीं दिलाते, वैसा रिश्ता मेरा पंचमदा के साथ रहा
0: जी
1: है और मेरे मरते दम तक रहेगा
0: जी। बहुत सुंदर।
1: मैं हमेशा उनसे कहती थी मंदाकिनी जी, मैं इतना प्यार करती थी उनसे, करती हूँ करती रहूंगी, कि मैं हमेशा पंचमदा से कहती थी मैं अगर बड़ी होती मैं आपसे शादी करती।
0: और क्या बात है,
1: इतने क्यूटली वो हंसते थे
0: जी।
1: तो मुझे लगता मेरे गाने में बहुत सारी छवि उनकी आती है और बाल बराबर आशा का कि उन वो तो आई नहीं सकती, कोशिश बहुत की दादा ने, पर हाँ मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ और हुई उनसे, बहुत सीखा। वो बुलाते थे सिटिंग्स में, रिकॉर्डिंग्स में, सिर्फ सुनने के लिए कि सुनो कैसी गाती हैं वो, मतलब खास तौर पर आशा काकी की रिकॉर्डिंग्स कि सिर्फ सुनो सुनो और देखो। मैंने पहला गाना जो दादा के लिए गाया वो परिचय फिल्म, फिर गुलजार अंकल देखिए,
0: अरे वाह,
1: ये मैं कह रही हूँ वक्त कैसे एक खेल रचता है। मंदाकिनी जी यहाँ एक छोटी सी बात मैं जरूर आपको और मेरे श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि ये वक्त और कुदरत का जो खेला होता है ना, मैंने अंदाज में गाया GPCP प्रोडक्शंस
0: जी,
1: शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी जी,
0: जी
1: सुमन कल्याणपुर जी, रफी साहब, शमी कपूर जी, सही
0: बिल्कुल,
1: है
0: बिल्कुल।
1: मैंने जब स्टेज पर गाना शुरू किया था 7 साल की उम्र से, तो मेरा सबसे पहला जो डुएट गाना था स्टेज पर, जो मैंने डुएट गाना गाया
0: जी,
1: वो फिल्म ब्रह्मचारी का गाना था
0: हाँ,
1: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे
0: हर जबान,
1: और यही पूरा था ना
0: हाँ,
1: GPCP प्रोडक्शंस
0: हाँ,
1: शमी कपूर जी, शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी जी, रफी साहब, सुमन कल्याण
0: जी,
1: वही पूरा देखे खेला
0: बिल्कुल।
1: मुझे नहीं पता हाँ, था तब कि कुछ साल बाद मैं इसी सर्कल इसी ग्रुप का एक हिस्सा बनूंगी,
0: हिस्सा बनेंगे
1: और अपनी जिंदगी का सबसे कामयाब पहला और सबसे कामयाब गाना मैं इन्हीं लोगों के साथ जुड़कर शुरू करूंगी।
0: जी
1: देखिए
0: जी,
1: ये वक्त का खेला है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने,
1: तो
0: कि वक्त ही है जो
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: हमारी पहचान बनाता है
1: उसके आगे
0: या हमारी पहचान मिटा देता है।
1: एकदम
0: बातचीत को हम आगे बढ़ाएं, उसके पहले सुनते हैं ये गीत।

0: तो सुषमा जी ही कहूंगी मैं फिर आपको अभी, क्योंकि मैं सुषमा जी को जी रही हूँ इस वक्त थोड़ी देर बाद मैं पूर्णिमा जी को जीना शुरू करूंगी। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी तब कि जब सुषमा जी पूर्णिमा जी आपस में बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, लेकिन ये सवाल थोड़ी देर में होगा। अभी मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आप सुषमा श्रेष्ठ के नाम से गा रही थी तो आपने उस समय के सभी दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया था, मसलन शंकर जयकिशन में आप बताई रही हैं, मदन मोहन साहब के साथ, सलील चौधरी, एस डी बर्मन काका जो आप कह रही है, नौशाद साहब के साथ,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: बप्पी लाहिड़ी, रविन्द्र जैन, राजेश रोशन, कल्याण जी आनंद जी और चित्रगुप्त साहब के साथ भी आप,
1: बिल्कुल बिल्कुल। चित्रगुप्त अंकल के साथ मैंने काफी भोजपुरी गाने गाए।
0: अच्छा।
1: और उस वक्त आनंद मिलिंद उनको असिस्ट करते थे।
0: जी, और बाद में आपने उन्हीं के सुपुत्र आनंद मिलिंद साहब के साथ बहुत गाने गाए।
1: अच्छा, मंदाकिनी जी देखो मुझे आज कैसी कैसी बातें याद आ रही है।
0: जी,
1: जो मैंने पहला शो अपना किया ना, पता है आपको, एक फिल्म आई थी औलाद,
0: जी।
1: उससे पहले एक फिल्म आई थी, शायद वो फिल्म का नाम भी लाडला था,
0: लाडला।
1: उसमें निरुपा रॉय जी थी शायद। एक गाना था उसका,

0: ये मैं इतना गाती थी सालों बाद। ये चित्रगुप्त अंकल का म्यूजिक है
1: जी
0: अगर मैं गलत नहीं
1: जी
0: हूं,
1: बिल्कुल
0: करेक्ट।
1: बिल्कुल
0: सालों बाद मैंने आनंद मिलिंद के लिए लाडला फिल्म में ही गाना
1: गाना
0: गाया।
1: गाया
0: देखिए आप देख रही हैं मैं,
1: समय खुद को
0: हाँ
1: दोहराता है किस
0: देखिए,
1: रूप में।
0: एक गाना आया था कब तक हुजूर रूठे रहोगे औलाद फिल्म का, वो मैं इतना गाती थी। ये नहीं पता था कि ये जो मैं इतना गाती हूँ गाना, जिन जिन म्यूजिक डायरेक्टर का ये गाना मैं गा रही हूँ, उन्हीं के बेटों के साथ सालों बाद मैं एक टीम बनाऊंगी, एक
1: बिल्कुल
0: बहुत ही सफल टीम।
1: बहुत बहुत
0: ये वक्त का खेला
1: बिल्कुल
0: ये
1: सही
0: होता
1: कहा।
0: है
1: और ये आपसे
0: जी।
1: बात करके हम भी महसूस कर रहे हैं कि देखिए वक्त
0: बिल्कुल,
1: आपको किस तरह से कहाँ
0: कैसे
1: कहाँ
0: देखिए,
1: जोड़ता
0: है
1: है।
0: ना।
1: बिल्कुल
2: बॉम्बे टॉकीज इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की ये बातचीत। ये बातचीत यही खत्म नहीं हुई, अगले हफ्ते इस बातचीत का दूसरा भाग लेकर हाजिर होंगे। तब तक इंतजार कीजिएगा अगले हफ्ते का। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिद्धल, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
3: बॉम्बे टॉकीज,
4: साइंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन।

0: देखिए कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज। 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं। 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
1: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
0: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है काम करना बंद कर देता है।
1: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
0: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहा है तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
1: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जम्बो जेट, जम्बो जेट, लंडन मुंबई प्रवास थेट, जगलो वसलो पुन्ना भेट, जम्बो जेट सोई।
3: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
2: रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग।
3: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
2: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
3: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरे केंद्र से बोल रहे हैं। शाम की 5 बज रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

स्वागत है आप सभी युवा दोस्तों का आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में, जिसे आप सुनते हैं प्रतिदिन शाम 5 बजे आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से 102.7 FM पर। और आज का ये अंक आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो वाली साथी प्रीति सिन्हा के साथ। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी दोस्त स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी और भविष्य को उज्जवल बनाने में जुटे होंगे। और इसके साथ ही आप अपने खान पान पर भी ध्यान दे रहे होंगे। दोस्तों, आज का युग मोबाइल और इंटरनेट का है। इसके साथ ही हर समय हमारा फोन हमारे हाथों में ही रहता है और साथ ही रहता है हमारे बैंक से लेकर हमारे निजी जानकारी, हमारा सोशल मीडिया, हर तरह के पासवर्ड और डेटा हमारे फोन में सेव रहते हैं। ऐसे में यदि आप साइबर सुरक्षा से अननोन हैं, यानी आपको साइबर सुरक्षा क्या है, साइबर सुरक्षा से बचने के क्या उपाय हैं, इसमें यदि आपकी जानकारी कम है तो आज का ये अंक आपके लिए ही है। दोस्तों, ध्यान से सुनिए और सुरक्षित रहिए। सबसे पहले जानिए कि साइबर सुरक्षा क्या होती है, जो आज के डिजिटल युग की सबसे बड़ी ढाल बन चुकी है। दोस्तों, आज का युग आप सभी जानते हैं कि डिजिटल युग है। हम पढ़ाई, बैंकिंग, खरीदारी, मनोरंजन और सरकारी सेवाओं के लिए इंटरनेट का उपयोग करते ही करते हैं। मोबाइल और कंप्यूटर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन इंटरनेट की बढ़ती सुविधा के साथ साइबर अपराध भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में साइबर सुरक्षा यानी साइबर सिक्योरिटी हर व्यक्ति की आवश्यकता बन गई है। क्या होता है साइबर सुरक्षा? साइबर सुरक्षा का अर्थ है कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, नेटवर्क और डिजिटल जानकारी को हैकिंग, वायरस, डेटा चोरी, फिशिंग और अन्य ऑनलाइन खतरों से सुरक्षित रखना। इसका उद्देश्य हमारी व्यक्तिगत, आर्थिक और सरकारी जानकारी की रक्षा करना है, ताकि कोई भी व्यक्ति या संस्था हमारी जानकारी का गलत उपयोग न कर सके। दोस्तों, साइबर अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? आज अधिकांश काम ऑनलाइन होने लगे हैं। डिजिटल भुगतान, सोशल मीडिया और ई कॉमर्स के बढ़ते उपयोग के कारण साइबर अपराधियों को लोगों को धोखा देने के लिए नए तरीके मिल रहे हैं। नकली वेबसाइट, फर्जी कॉल, ईमेल और मैसेज के माध्यम से लोगों की बैंक जानकारी, पासवर्ड और OTP चुराए जाते हैं। ऐसे में साइबर सुरक्षा का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। साइबर सुरक्षा केवल तकनीकी विषय नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। इसके माध्यम से हम अपनी निजी जानकारी, बैंक खाते, सोशल मीडिया अकाउंट और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रख सकते हैं। इससे आर्थिक नुकसान, पहचान की चोरी और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव हो सकता है। दोस्तों, आप युवाओं को ये जरूर जानना चाहिए कि साइबर अपराध कितने प्रकार के होते हैं या इनके कौन कौन से प्रकार हैं। जैसे कि हैकिंग, बिना अनुमति किसी सिस्टम या अकाउंट में प्रवेश करना हैकिंग कहलाता है। फिशिंग, नकली लिंक, ईमेल या संदेश भेजकर जानकारी चुराना फिशिंग कहलाता है। मैलवेयर, वायरस या हानिकारक सॉफ्टवेयर के माध्यम से सिस्टम को नुकसान पहुंचाना मैलवेयर कहलाता है। रैंसमवेयर, डेटा लॉक करके पैसे की मांग करना और पहचान की चोरी यानी किसी व्यक्ति की निजी जानकारी का गलत उपयोग करना पहचान की चोरी कहलाता है। दोस्तों, साइबर सुरक्षा के आसान उपायों की बात करें तो सबसे पहले आप सभी को मजबूत और अलग अलग पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए। इसके लिए आपको 2-स्तरीय सुरक्षा यानी 2FA चालू रखना चाहिए। किसी भी अनजान लिंक या ईमेल पर क्लिक न करें। OTP, पिन और बैंक संबंधी जानकारी किसी से साझा न करें। मोबाइल और कंप्यूटर को समय समय पर अपडेट करें। एंटीवायरस और फायरवॉल का उपयोग करें। सार्वजनिक वाईफाई पर संवेदनशील लेन देन करने से बचे। दोस्तों, इसका खास तौर पर ध्यान रखें।
दोस्तों, आपको ये भी जानना चाहिए कि भारत में साइबर सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। भारत सरकार साइबर अपराधों से निपटने के लिए कई कदम उठा रही है। CERT-IN साइबर हमलों की निगरानी करता है और लोगों को सुरक्षा संबंधी सलाह देता है। राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए कि राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन क्या है। तो ये है 1930 यानी 1930। इसे आप 1930 भी कह सकते हैं। और ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल के माध्यम से लोग धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों, साइबर सुरक्षा आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग, सतर्कता और सही जानकारी हमें साइबर अपराधों से बचा सकती है। यदि हम डिजिटल दुनिया में सावधानी बरतें, तो तकनीक हमारे जीवन को सुरक्षित, सरल और बेहतर बना सकती है। तो दोस्तों, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, साइबर सुरक्षा अपनाएं, डिजिटल भारत को मजबूत बनाएं।

0: नमस्कार, यदि आप रेडियो प्रस्तुति और एंकरिंग में रुचि रखते हैं और अपनी आवाज के माध्यम से श्रोताओं के बीच अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी ओबरा आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका।
1: आकाशवाणी ओबरा द्वारा युववाणी कार्यक्रम के लिए असाइनमेंट अर्थात समनुदेशती आधार पर कंपेयर एवं अंतरवार्ताकार का पैनल तैयार किया जा रहा है। इसके लिए ओबरा परिक्षेत्र में निवास करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
0: अभ्यर्थियों का चयन सौर परीक्षा यानी ऑडिशन और स्क्रीनिंग समिति के संस्तुति के आधार पर किया जाएगा और सफल अभ्यर्थियों का नाम पैनल में शामिल किया जाएगा।
1: ध्यान रहे, यह स्थायी और नियमित रोजगार नहीं है। आकाशवाणी ओबरा अपनी कार्यक्रमगत आवश्यकता के अनुसार ही पैनल में शामिल अभ्यर्थियों को समय समय पर कार्य हेतु आमंत्रित करेगा। प्रत्येक असाइनमेंट के लिए प्रसार भारती के नियमानुसार मानदेय देय होगा।
0: आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की आयु 28 अगस्त 2026 को 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय अथवा महाविद्यालय से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
1: आवेदन शुल्क ₹118 निर्धारित है। शुल्क ऑनलाइन अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से PBBC ऑफ इंडिया प्रसार भारती आकाशवाणी वाराणसी के खाते में देय होगा।
0: आवेदन पत्र के साथ शुल्क जमा करने की रसीद संलग्न करना भी अनिवार्य होगा।
1: इच्छुक अभ्यर्थी सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में आकाशवाणी ओबरा कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं और पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन 28 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
0: और यदि आप व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करने में असमर्थ हैं, तो आवेदन पत्र डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। पता इस प्रकार लिखें: स्वर परीक्षा युववाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी ओबरा जिला सोनभद्र, पिन कोड नंबर है 231219।
1: तो जुड़िए आकाशवाणी ओबरा से,
0: दीजिए अपनी आवाज को नई पहचान।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर TC टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी OTP पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
3: RBI कहता है OTP या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
4: दोस्तों, आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं अपना कार्यक्रम युववाणी और आज का ये अंक प्रस्तुत कर रही है आपकी रेडियो वाली साथी प्रीति सिन्हा। दोस्तों, युववाणी कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए ये वार्ता। विषय है मातृभाषा में अभिव्यक्ति और आत्मविश्वास। वार्ताकार हैं महिमा मित्तल।
5: नमस्कार, आज फिर से आपके सामने हाजिर है आपकी बहन आपके मित्र महिमा मित्तल। पुरानी मैं हूँ पर मुद्दा नया है। आइए बात करते हैं कुछ इस टॉपिक पर जो आप प्रतिदिन सुनते हैं पर आप उसकी गहराई नहीं समझ पाते हैं। मातृभाषा सुनने में कितना सामान्य अच्छा लग रहा है, शब्द लग रहा है, पर अगर आप इसकी गहराई समझेंगे तब आपको पता चलेगा। किसी भी चीज में मात्र आ जाता है तो वह अपनापन सा सुनाई देता है, पर आज भी हम जब बाहर निकलते हैं तो हम बचते हैं अपनी मातृभाषा से, शायद इसलिए कि हमें लगता है कि हमको अपमान का ना सामना करना पड़े। इस भागती दुनिया में हम सबने जैसे अपने आप को दिखावे का चोला पहना लिया है। हम लोग को लगता है कि हम अपने आप को कितना श्रेष्ठ दिखाने के लिए पश्चिमी सभ्यता पश्चिमी भाषा अपनाएं, तभी दूसरे को हम लगेगा कि हमें ज्ञान है और हम सभी दिखेंगे। पर आपको पता है आप कितना भी पश्चिमी सभ्यता अपना लीजिए, लेकिन जब आपको वह एहसास होगा कि आपको कहीं कुछ सोचना है तो आप अपने मन में उस मातृभाषा में ही सोचेंगे। मातृभाषा केवल एक अक्षर नहीं है, वह एक कारण है जो आपको मिलाता है अपने से। आइए एक उदाहरण लेते हैं कि आप किसी ऐसे देश में रहते हैं जहां आप किसी को नहीं जानते और आपका कोई नहीं है, आपका माने गए हैं, और वहां पर आपको देश का एक मिलता है जो आपसे आपकी भाषा में बात करता है, आपकी गांव की भाषा में, तो आप कुछ नहीं देखेंगे उस वक्त, आपको लगेगा यह भाई है यह अपना है। तो कुछ इसी तरह हमको हमसे जोड़ती है मातृभाषा। भारत विभिन्न भाषाओं का देश है, संस्कृतियों का देश है, और उस संस्कृतियों को आपस में जोड़ने के लिए एक नींव है मातृभाषा। आप जानते हैं जब आप किसी से अपनी मातृभाषा में बात करते हैं तो वहाँ पर आपकी बेइज्जती अपमान नहीं होता है, वहाँ आपको विश्वास होता है कि कुछ तो है जो बता रहा है कि मेरी इस जगह की पहचान क्या है, संस्कृति क्या है। आप जब तक अपने गांव से जुड़े हैं, जब तक अपने जड़ से जुड़े हैं, तभी तक आप सुरक्षित हैं। कितना भी पेड़ ऊंचा हो जाए, कितना भी फैल जाए, लेकिन जब तक उसकी जड़ से वो जुड़ा है तब तक वह पेड़ कहलाएगा, नहीं तो वह लकड़ी काट कर जला दिया जाएगा। अगर आप अपने जड़ से जुड़े हैं, आप अपनी मातृभाषा से जुड़े हैं, आप अपनी संस्कृति से जुड़े हैं, तभी आप कहलाएंगे कि आप प्रायः देश के प्रायः गांव के निवासी हैं। मातृभाषा में अभिव्यक्ति कुछ महत्व रखती है। अभिव्यक्ति क्या होता है कि हम किस ढंग से उसको प्रस्तुत करते हैं, किस ढंग से उसको व्यक्त करते हैं, कुछ उसका महत्व है। अगर आप बात करें तो सांस्कृतिक जुड़ाव, मातृभाषा हमारी संस्कृति और परंपराओं को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यह हमें अपने पूर्वजों की विरासत से जोड़ती है और हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहने में मदद करती है। आत्मविश्वास, अब आप यह दो वर्ड आपस में जोड़ नहीं पा रहे होंगे कि मातृभाषा और आत्मविश्वास में क्या संबंध है। कुछ बहुत बड़ा भाषण देना होता है तो आप सोचते हैं कि मैं यह भाषा अंग्रेजी में बोलूं या किसी और पश्चिमी सभ्यता में बोलूं तो यह सामने वाले को लगेगा कि मुझे इस चीज का ज्ञान है, पर शायद आप भूल जाते हैं कि उस चीज में कभी भी आपको आत्मविश्वास नहीं आएगा। आपको आत्मविश्वास आएगा अपनी ही भाषा में बोलने पर। आज हम उस देश में रहते हैं जिस देश के प्रधानमंत्री किसी विदेश में जाकर अपनी भाषा में वक्तव्य देते हैं और गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। उस देश में हम 10,000-20,000 रुपए की नौकरी के लिए अपनी मातृभाषा क्या, अपना हिंदी क्या, अपनी अंग्रेजी को प्राथमिकता देते हुए कहते हैं कि जो हिंदी बोलते हैं उनको आज के समय में कोई समझ नहीं है। यह सही है, हर देश अपनी भाषा से खुश है, लेकिन हम नहीं खुश है। हमें लगता है कि हमारी भाषा तुच्छ है। जब आप में वह विश्वास नहीं आएगा अपनी भाषा को लेकर तो दूसरे व्यक्ति में यह विश्वास कभी नहीं आ सकता। मैं एक छात्रा हूँ, एक समय में अध्यापिका भी हूँ, लेकिन दोनों के होते हुए भी मैं आपको चीज बता रही हूँ कि मैंने हिंदी माध्यम से पढ़ाई करी है, हिंदी माध्यम में पढ़ाया है, एक समय में अंग्रेजी माध्यम में भी पढ़ाया है। लेकिन आप यह बात नोट कर लीजिए कि जितना आत्मविश्वास, जितना ज्ञान आपको अपनी मातृभाषा, अपनी दिनचर्या, अपने माता पिता, अपने गांव से मिल सकता है, वह ज्ञान आपको कोई प्रकार की बुक नहीं दे सकती है। जब आप अपने गांव में रहते हैं, जब आप देखते हैं कि प्रायः व्यक्ति का चेहरे का भाव क्या है कि जब वह कुछ व्यक्त कर रहा है तो आप उसके भाषा से तो जुड़ते हैं, साथ में उस इंसान से भी जुड़ते हैं। मातृभाषा से बात करने में आत्मविश्वास बढ़ता है और यह हमें अपने विचारों को खुलकर व्यक्त कर पाते हैं। यह आत्मविश्वास जरूरी है ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सके। इंसान कितना भी सीढ़ी चढ़ ले सफलता की, लेकिन अगर उसमें यह आत्मविश्वास नहीं है कि मैं इस सीढ़ी पे खड़ा रह सकता हूँ, तो आप यह बात लिख के ले लीजिए कि वह उस सीढ़ी से कभी भी गिर सकता है। तो यह जरूरी है कि आप जिस मुकाम पर है आपको लगे कि यह मुकाम मैंने अपने से पाया है, अपनी सफलता से पाया है, अपनी भाषा से पाया है, अपने ज्ञान से पाया है, इसमें किसी दूसरे का हाथ नहीं है। बेहतर समझ बनती है। आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आपकी बेहतर समझ नहीं है उस चीज में तो आपका कोई अस्तित्व कोई नहीं रहेगा। मातृभाषा में बातचीत करने से हम बेहतर ढंग से अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं, रिश्तों में मजबूती आती है, एक सकारात्मक माहौल बनता है, प्रभाव बनता है उस चीज को जो आप जल्दी से जल्दी नहीं खत्म कर सकते। कुछ सुझाव है मेरे, अगर आपका बच्चा 1 साल का 2 साल का धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसको अभ्यास कराइए अपनी मातृभाषा की। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि इसमें कोई किसी प्रकार का वक्तव्य नहीं है, इसमें यह बात है कि आज की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी मातृभाषा को अलग महत्व दिया है। जिस देश की एजुकेशन पॉलिसी यह सोच के बनती है कि बच्चे को मातृभाषा में वह चीज पढ़ाई जाए जो उसको अभी तक किसी और भाषा में पढ़ाई जा रही थी, तो यह चीज आप अपने से जोड़िए कि मातृभाषा का आज भी कितना योगदान है हमारी चीजों में। जिस देश का नाम ही विविधता का देश है, हम वो पेड़ हैं जिसमें अलग अलग फूल खिलते हैं। तो समझिए कि अगर वो पेड़ में केवल एक ही प्रकार का फूल खिलेगा तो उसमें कोई अलग बात नहीं रह जाएगी, वह अलग बात तब तक है जब तक अलग अलग प्रकार के फूल खिल रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी और हमारी है कि उसको सींचे। मातृभाषा में बोलने का अभ्यास कराइए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ मातृभाषा में बात करिए। शुरुआत में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप सहज हो जाएंगे। सुनिए, पढ़िए, अपनी मातृभाषा में लिखी किताबें पढ़िए, समाचार सुनिए, फिल्में देखिए। इससे आपकी शब्दावली और समझ आपके नए शब्दों वाक्यांशों में होगी, जो आपकी अभिव्यक्ति को और समृद्ध बनाएगी। सोचिए, सकारात्मक सोचिए, हमेशा सकारात्मक सोचिए। मातृभाषा पे गर्व करिए, यह आपकी आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपको अपनी मातृभाषा की और बेहतरीन तरीके से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करेगा। आपको पता है कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और फिर ऐसे पूरा गांव, फिर जिला, फिर शहर, फिर देश बनता है। अगर यह बात मेरी कुछ लोग भी सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो यह मेरा आपसे निवेदन है कि अगर हम अपनी चीजों की, हम अपनी वास्तविकता की, हम अपनी संपत्ति की सुरक्षा नहीं करेंगे, तो सामने वाले को कुछ सेकंड नहीं लगेगा उसे ध्वस्त करने में। हमको एक खादी का वस्त्र पसंद नहीं आता है, पर हम अपने आप को उच्च दिखाने के लिए वह चीज खो रहे हैं जो हमारी ताकत थी। आप ऐसा क्यों नहीं करते

0: कि पश्चिमी सभ्यता वाली हमारी भाषाओं को अपनाएं? यह तभी हो सकता है जब आप में वह आत्मविश्वास होगा। जब तक आप में आत्मविश्वास नहीं होगा, तब तक मातृभाषा में कुछ अलग खास नहीं होगा। यह मैं फिर से आपको दोहराना चाहूंगी कि जब तक आप में विश्वास नहीं, तब तक आपकी मातृभाषा में कुछ खास नहीं। आप आज जाते हैं किसी भी इंटरव्यू के लिए या कुछ भी लिए, तो अपनी भाषा प्रस्तुत करने में अपना आत्मविश्वास रखिए और सामने वाले से कहिए कि मैं इस देश का निवासी हूँ। तो बहनों भाइयों, मेरा फिर से निवेदन है, कुछ करा जाए, अपनी जड़ों को बना के रखिए, नहीं तो एक आंधी सब कुछ तबाह कर देगी और आप अपनी नींव हिलते हुए अपनी आंखों से देखेंगे। और आज तो हमारे पास महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग भी नहीं है जो बता सके कि क्या जरूरत होती है अपने भाषा की, अपने देश की, अपनी सभ्यता की, संस्कृति की। तो यह हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद
1: दोस्तों। अभी आप सुन रहे थे, ये वार्ता विषय था मातृभाषा में अभिव्यक्ति और आत्मविश्वास। वार्ताकार थी महिमा मित्तल, प्रस्तुतकर्ता थे सचिन कुमार वर्मा।

का विचार। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा है, शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। तो दोस्तों, आज का अंक बस यहीं तक। अब प्रीति सिन्हा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम युववाणी समाप्त करने की। नमस्कार।

अभी हमारे युवा श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी, जो अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी के हम ओबरा केन से बोल रहे हैं।

तो बहनों कुछ पल अपने लिए निकालिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। बहनों अक्सर हम लोग ये सोचते हैं ना कि लाइफ में कुछ बड़ा बदलाव लाने के लिए कोई बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, जैसे कि एकदम से हम लोग को अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाए, खूब सारा पैसा आ जाए, या बिजनेस हो तो वो भी बहुत बड़ा हो, छोटा मोटा बिजनेस नहीं चाहते। लेकिन सच्चाई ये है बहनों कि बड़े बदलाव की शुरुआत हमेशा एक छोटे से कदम से होती है। अगर कोई महिला घर पर अचार बनाती है, कोई पापड़ बना लेता है, सिलाई कढ़ाई करती हैं कई बहनें, या ब्यूटी पार्लर का भी काम घर पे भी शुरू कर देती हैं, या कोई और हुनर जानती हैं तो शुरुआत में वो केवल अपने पड़ोस की दो चार महिलाओं के लिए काम कर सकती हैं। शुरू में इतना भी अगर हो जाए तो समझ लीजिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, शुरू में आमदनी भी कम होगी, लेकिन याद रखना है छोटी कमाई छोटी नहीं होती, बल्कि वो तो आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी होती है।

और बहनों, कई बार तो किसी काम की शुरुआत डर के मारे शुरू ही नहीं कर पाते हम लोग, क्योंकि डर लगता है कि कहीं हम सफल ना हुए तो क्या होगा। सबसे ज्यादा डर क्या होता है? लोग क्या कहेंगे, या तो मेरे पास समय ही नहीं है, या सोचते हैं मेरे पास पैसे ही नहीं है तो हम कैसे शुरू करें। लेकिन बहनों, ये सवाल बदलने होंगे। अगर कोशिश

कोशिश ही नहीं करेंगे तो बदलाव कैसे आएगा? बहनों, आपके मन में भी कोई सपना है तो उसे केवल सपना बनाकर मत रखिए कि बस सोच में ही है, हाँ ऐसा हो जाए, हाँ ये काम शुरू कर सकते हैं हम, बस दिन भर ऐसे ही बीत जाएगा। अब जैसे बिजनेस शुरू करना है तो आज एक ग्राहक ढूंढिए, एक साथ नहीं कि बस आज शुरू हुआ और आज ही भीड़ लग गई, ऐसा नहीं हो पाएगा। पढ़ाई पूरी करनी है तो आज एक पन्ना पढ़िए, बहुत है। आप सोचें कि मैं 10 पन्ने 100 पन्ने एक साथ पढ़ लूं, वो नहीं हो पाएगा। स्वास्थ्य सुधारना है तो आज 10 मिनट पैदल चलिए। आत्मनिर्भर बनना है तो अपने हुनर को पहचानिए और उसे आगे बढ़ाने की शुरुआत कीजिए। तो चलिए कार्यक्रम को भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, एक भेंट वार्ता सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: होगी, तो आप लोग ने सुन लिया और मैंने कहा था कि मैं एक भेंट वार्ता भी आप लोग को सुनवाऊंगी। तो चलिए अब भेंट वार्ता सुन लेते हैं। कुटीर उद्योग से आत्मनिर्भर होती महिलाएं। भेंट वार्ताकार हैं वनवासी सेवा आश्रम गोविंदपुर की सचिव श्रीमती शुभा प्रेम जी और इनसे बातचीत कर रही हैं साजिदा बेगम।
1: बहनों, कुटीर उद्योग से महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकती हैं। कुटीर उद्योगों से बेरोजगारी कम होती है और लोगों को रोजगार मिलता है। कुटीर उद्योगों से महिलाएं सिलाई बुनाई अचार पापड़ बनाने जैसा काम करके आत्मनिर्भर बन सकती हैं। तो आज हमारे साथ हैं शुभा प्रेम जी, तो चलिए उन्हीं से बातचीत करते हैं। तो शुभा जी, आपका गृह लक्ष्मी प्रोग्राम में स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए और कैसे आप कुटीर उद्योग से जुड़ी ये बताइए।
2: मैं वनवासी सेवा आश्रम में 1990 से काम कर रही हूँ
1: जी,
2: और यहाँ पर महिलाओं के साथ काम करते हुए मुझे ये समझ में आया कि ये एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट है जो लोगों की अपनी आजीविका को मजबूत करता है।
1: जी जी।
2: ज्यादातर महिलाएं किसान हैं और खेती में पूरे समय के लिए काम नहीं मिल पाता है।
1: जी जी।
2: तो खेती और अपनी गृहस्थी संभालते हुए अगर उनके पास रोजगार के साधन हैं तो वो कुटीर उद्योगी हो सकते हैं।
1: जी जी।
2: और वनवासी सेवा आश्रम में क्योंकि कुटीर उद्योगों का एक काफी अच्छा कार्यक्रम है और उन्होंने हमेशा इसको आगे बढ़ाने का काम किया, इसलिए मुझे इन उद्योगों के बारे में जानने समझने का मौका मिला।
1: जी जी। तो आप कब जुड़ी इससे?
2: मैं तो वैसे बनवासी सेवा आश्रम में 1991-92 में जुड़ी हूँ।
1: जी जी।
2: और इन कार्यक्रमों की मुख्य जिम्मेदारी हमारे यहाँ हमारे दूसरे साथी कार्यकर्ता की रही
1: जी,
2: लेकिन उसके साथ में क्योंकि हम महिलाओं के साथ काम करते रहे तो इन सबके साथ जुड़ने का एक मौका मिला।
1: जी जी। ये तो आपने बता दिया। तो शुभा जी, ये बताइए कि कुटीर उद्योग से क्या मतलब है?
2: कुटीर उद्योग जैसे लगता है कि कुटी में, यानी एक स्थानीय स्तर पर
1: जी,
2: हमारे घर में भी हो सकता है या एक छोटी सामुदायिक स्थान पर हो सकता है
1: जी,
2: जिसके लिए कम से कम पूंजी चाहिए, छोटी छोटी मशीनों के साथ हो सकता है, मनुष्य चालित वो मशीनें हो सकती हैं या सामान्य मशीनें हो सकती हैं जो बिजली या इससे चले
1: जी जी।
2: तो कुल इसमें मुख्य बात जो कुटीर उद्योग की है वो ये है कि ये स्थानीय संसाधनों पर निर्भर करता है
1: जी,
2: और लोग बहुत कम साधनों के साथ इस उद्योग को शुरू कर सकते हैं।
1: जी जी।
2: तो ये इसकी खास बात है। और अगर हम उस तरह से देखें तो इसकी दूसरी खास बात है कि ये बहुत पुराने समय से परंपरागत रूप से विकसित हुए हैं, इसलिए इसमें एक हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है वो भी दिखाई देती है, कला भी दिखाई देती है, व्यक्तिगत कला का मौका भी इसमें दिखाई
1: देती है। जी जी। तो शुभा जी, ये बताइए कि कौन कौन से उद्योग धंधे कुटीर उद्योग की श्रेणी में आते हैं?
2: वो तो बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है
1: जी,
2: लेकिन अगर हम लोग इनको कुछ क्राइटेरियाज में देखें
1: जी,
2: तो एक तो है कि जो हम लोगों का वस्त्र उद्योग हो सकता है, तो वस्त्र उद्योग में जहाँ कताई बुनाई शामिल है
1: जी,
2: वहीं फिर उसका जो है वस्त्र निर्माण है, ड्रेस मेकिंग है
1: जी,
2: या फिर बहुत सारे तरह की जो हस्तकलाएं हैं
1: जी,
2: चाहे वो कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी से जुड़ी हुई हो, बुटीक से जुड़ी हुई हो
1: जी,
2: या अदरवाइज भी पैचवर्क है, मतलब बहुत तरह की कलाएं हैं जो इसमें, और इसमें बहुत बड़े स्तर पर महिलाएं जुड़ी हुई हैं
1: जी।
2: तो एक हो गया जैसे कपड़े से जुड़ा हुआ हो सकता है। फिर अगर हम एक क्राइटेरिया लें जिसमें हम कह सकते हैं मेटल वर्क है, चाहे वो लोहे से जुड़े हुए चीजें हैं, लोहारी के काम है
1: जी,
2: या तांबे पे काम है, पीतल के काम है, तो इस तरह की चीजें हैं। मेटल वर्क में बहुत सारे काम है, चूड़ियां बनाने का है
1: जी जी,
2: ये सब हो सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखें तो जो भवन निर्माण से जुड़ी है जैसे कारपेंट्री, बहुत बड़ा एक काम इसमें है बढ़ईगिरी का। फिर अगर हम चले तो खाद्य से जुड़े हुए जो अन्न प्रशोधन से जुड़ी हुई चीजें हैं, चाहे वो अचार बनाने का है, तेल घानी का काम है, मसाले बनाने का काम है
1: जी,
2: फिर औषधियों से जुड़े हुए भी हैं, च्यवनप्राश बना रहे हैं, त्रिफला बना रहे हैं, मतलब इस तरह की चीजें, तो ये सभी चीजें जो है कॉटेज इंडस्ट्री में आती हैं
3: जी।
2: तो इसका एक बहुत वाइड रेंज है। और सोनभद्र के लिए अगर देखें तो सरकार ने जो वन डिस्ट्रिक्ट वन उसकी बात की है ट्रेड की, तो उसमें कालीन उद्योग को लिया गया है
3: जी। जी तो शुभा जी ये बताइए कि वहाँ आपके आश्रम में कौन कौन से काम होते हैं और कितनी महिलाएं हैं वहाँ पे?
2: हमारे यहाँ भी कई तरह के कार्यक्रम हैं। अगर उस तरह से देखें तो लोहारी है, बढ़ईगिरी का काम है, तेलघानी है हमारी, हम तेल बनाते हैं, शहद का काम है
3: जी।
2: फिर कपड़े में जो है हम सिल्क और कॉटन दोनों का कताई और बुनाई करते हैं
3: जी।
2: इसी तरह जो है कि हम लोग अन्न प्रशोधन से जुड़े हुए जो मिलेट्स हैं
3: जी,
2: उसके प्रोसेसिंग के काम में जुड़े हैं
3: जी।
2: फिर खाद्य प्रसंस्करण में फल और सब्जी के उसको लेके करते हैं
3: जी।
2: कुछ औषधियाँ छोटे पैमाने पर हम अपने लिए बनाते हैं
3: जी।
2: तो इस तरह के कार्यक्रम हमारे यहाँ पे कैंपस में होते हैं
3: जी।
2: ये हमारे पास लगभग 100 लोग हैं जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं। पर इसके अलावा जो हमारे साथ बड़ा एक नेटवर्क है वो कारीगरों का संगठन है
3: जी।
2: तो कारीगरों का संगठन ये आश्रम दक्षिण सोनभद्र में है
3: जी।
2: तो जिसमें 150 महिलाएं तो हमारे साथ हैं जो कि महिलाओं को सिलाई ट्रेनिंग का भी काम करती हैं और अब सिलने का एक मतलब एक ड्रेस मेकर के रूप में वो काम करती हैं
3: जी।
2: तो वो जुड़ी हुई हैं। फिर हमारे साथ बांस कारीगर हैं, लोहार हैं, कुम्हार हैं जिनकी ट्रेनिंग हुई है और वो काम कर रहे हैं
3: जी। तो ये बताइए कि जैसे जो महिलाएं आती हैं तो ट्रेनिंग आपके यहाँ खुद होती है पहले?
2: जो हमारे साथ सीधे जुड़ते हैं उनकी ट्रेनिंग हम करते हैं
3: जी।
2: और इसमें दो तरह के जैसे मैंने आपको बताया कि एक जो है कि एकदम शुरू से जिनको नहीं आता था हमने ही ट्रेनिंग किया और वो हमारे साथ काम कर रहे या अपना खुद का काम कर रहे हैं, दोनों तरह के लोग हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके यहाँ ट्रेडिशनली काम हो रहा था, उनके हमने ओरिएंटेशन किए हैं, एक्सपोजर ट्रिप की है उनकी, ताकि वो अपनी कला को और आगे बढ़ा सके।
3: बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो शुभा जी ये बताइए कि जो जरूरतमंद महिलाएं हैं वो सोचती हैं कि हमें भी कुछ काम मिले, तो वो किस तरह से आपसे जुड़ती हैं?
2: दोनों तरह की बात है। आश्रम के अपने सब सेंटर्स हैं, वहाँ से जो कार्यकर्ता साथी हैं उनके साथ वो अगर मिलती हैं और अपना कोई उद्योग खड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं
3: जी।
2: और जो बहनों को हमारे साथ काम करना है वो भी जुड़ सकती हैं, पर हमारा अपना टर्नओवर के हिसाब से हम जिनको रख सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे मतलब इसको इस तरह से देखें कि कुटीर उद्योग में कोई नौकरी नहीं हो सकती, तो हमारे साथ जुड़ने वाली जो भी बहनें हैं वो नौकरी के आधार पे नहीं है, वो अपने घर का काम करते हुए जो काम करती हैं वो पीस वर्क की तरह से करके वो हमारे साथ जुड़
3: जी। जी तो क्या जैसे कि आपने अभी बताया कि कुछ अपने महिलाएं अपना उद्योग खड़ा करना चाहती हैं, तो इसके लिए कुछ लोन वगैरह की भी व्यवस्था है?
2: वो तो गवर्नमेंट में ऑलरेडी व्यवस्था की गई है, हम लोग उनको के लिए उनका बिजनेस प्लान बनाने में मदद करके उनको जुड़ने में प्रोत्साहित करते हैं
3: जी।
2: और आजकल तो आप जानती हैं SRLM में भी बहुत बड़ी सुविधा है
3: जी, CLF
2: के माध्यम से भी है, उन लोग ले सकती हैं लोन्स
3: जी। जी शुभा जी ये बताइए कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर उद्योगों का क्या महत्व है?
2: देखिए मैं ये मानती हूँ कि भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा महत्व
3: जी। जी बिल्कुल,
2: क्योंकि हम आज अगर हम इस तरह से देखें कि आज तो जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो भी मार्केट के रूप में ग्रामीण अंचल पर आधारित है
3: जी।
2: और अगर देखा जाए तो पूरा कुटीर उद्योगों का लगभग 30% GDP में योगदान माना जाता है, जिसमें केवल कुटीर उद्योग नहीं है लघु उद्योग भी शामिल है
3: जी।
2: तो इनके इनका ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन इसको हम इस रूप में कॉन्ट्रीब्यूशन देखने की जगह हम ये देख सकते हैं कि इसमें कृषि के साथ एडिशनल इनकम के रूप में इसका बहुत बड़ा योगदान है, और उससे जो माइग्रेशन है उसके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है कि कम होता है, लोगों को एक एकदम करने में इनका योगदान है, निकालने में इनका योगदान है। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि ये बहुत सारे लोकल रिसोर्सेस के, रॉ मटेरियल के आधार पर ये कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, तो उनका बेटर, मतलब उनका सही उपयोग हो सकता है उस रॉ मटेरियल का, अगर स्थानीय स्तर पे इन कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ाया जाए। और तीसरे रूप में इनका जो महत्व है कि जो बहुत खूबसूरत कला है उनको हम बचा के रख पाते हैं, दूसरी तरफ वो जो सुंदर वस्तुओं का निर्माण होता है उसके लिए हमारे पास एक एक्सपोर्ट करने के लिए भी एक चांस बढ़ता है। तो इस तरह से ये एक हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद कर
3: जी। तो शुभा जी ये बताइए कि कुटीर उद्योग बेरोजगारी दूर करने में किस तरह से सहायक हो सकता है?
2: वो तो मैंने आपको कहा कि अगर हम कुटीर उद्योग, आज उस पे एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है
3: जी,
2: लोग करना चाहते हैं लेकिन अगर आप उनको खुले मार्केट में उतार देंगे
3: जी
2: तो वो कभी भी वहाँ पे नहीं टिक पाता है
3: जी।
2: आज इतने सारे ट्रेनिंग्स के बाद भी, इतना पूंजीगत सपोर्ट खड़ा करने के बाद भी जिस तरह से इन उद्योगों को आगे चलना चाहिए वो नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा कि अब ग्रामीण बाजार में भी सब इंडस्ट्रीज का सामान आने लगा है, तो हमेशा आदमी सस्ते सामान को लेने की कोशिश करता है, क्वालिटी को नहीं देखता है,
3: पर
2: सस्ता लोग देखते हैं, और आजकल तो यूज एंड थ्रो वाली बात हो गई है, लेकिन क्वालिटी पे लोग नहीं जाते हैं। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में, और रोजगार के साथ साथ एक स्वाभिमान देने में
3: जी,
2: स्वाभिमान को बचाए रखने में इनका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, लेकिन ये तभी हो सकता है जब समाज मिलके इस चीज को समझे कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को चलाने में इनका एक बहुत बड़ा योगदान है कुटीर उद्योग का, और इससे हमको शुद्ध चीजें मिल रही हैं, क्योंकि स्थानीय हैं
3: जी,
2: तो वहाँ पे वो उसको हम देख सकते हैं कि वो किस चीज से बन रहा है, कैसे बन रहा है खास करके। और दूसरा ये है कि ये कभी भी एनवायरमेंट पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट कम से कम कर रहा है
3: जी,
2: तो अगर हम अपने जीवन को स्थायी बनाना चाहते हैं तो इनका एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है, तब ये लोगों को रोजगार देने में, खास करके ये जो है कि एक एडिशनल इनकम की बात करता है जो कॉटेज इंडस्ट्री है, ऐसा मैं कह सकती हूँ।
3: बिल्कुल। तो शुभा जी, आज आपसे ढेर सारी बातें हुई और आपने कुटीर उद्योग से आत्मनिर्भर होती महिलाओं के बारे में बातचीत की और बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: कुटीर उद्योग से आत्मनिर्भर होती महिलाएं, इस विषय पर बहनों अभी आपने भेंटवार्ता सुनी। भेंटवार्ताकार थी वनवासी सेवा आश्रम गोविंदपुर की सचिव श्रीमती शुभा प्रेम जी, और इनसे बातचीत कर रही थी साजिदा बेगम।

अब हम बात करेंगे एक ऐसी ताकत की जो दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारे व्यक्तित्व को अंदर से मजबूत बना देती है। वो ताकत है आत्मविश्वास की, यानी कि खुद पर विश्वास, अपने फैसलों पर विश्वास, अपनी मेहनत पर विश्वास। आप छोटा सा प्रयास करके तो देखिए, व्यक्तित्व में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि आत्मविश्वास बढ़े कैसे, यही सोच रही है ना। उसके लिए सबसे पहली बात, अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दीजिए। ये मत सोचिए कि वो मुझसे बेहतर है, वो तो बहुत सुंदर है, उसकी तो हाइट अच्छी है, उसके पास पैसा ज्यादा है। ऐसे ऐसे हम लोग के मन में ये सब चीजें आती रहती हैं। बल्कि सोचिए, मेरे अंदर ऐसी कौन सी खूबी है जिसे मैं और अच्छा कर सकती हूँ, ये सोचिए। दूसरी बात, अपनी गलतियों से डरिए मत। गलती तो सबसे हो जाती है, आपसे भी हो जाती है, मेरे से भी हो जाती है। अब डर के बैठ जाएंगे तो सीखेंगे कैसे?

हाँ, और तीसरी बात, अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए। चौथी बात, अपने बारे में पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए। बहनों, हमें ये बात याद रखनी है कि आत्मविश्वास जो है वो जन्म से नहीं मिलता, इसे तो अनुभव से, मेहनत से और लगातार प्रयास से बनाया जा सकता है। बहनों, इसके साथ हमें एक काम ये भी करना है कि समाज में ये संदेश फैलाना है कि शादी का सही समय तभी है जब बच्चा आत्मनिर्भर हो जाए और जिम्मेदार हो जाए, क्योंकि हमारे समाज के लिए बाल विवाह एक चिंता का कारण है। कम उम्र में शादी होने से बचपन खो देते हैं, सपने पूरे नहीं हो पाते हैं, पढ़ाई अधूरी रह जाती है। लड़कियों पर क्या होता है, जल्दी फिर माँ बनने का दबाव पड़ जाता है, कई बार घरेलू हिंसा हो जाती है, मानसिक तनाव बढ़ जाता है। हम सब की यही जिम्मेदारी है, बाल विवाह को रोकना होगा, बेटियों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना होगा। तो चलिए अब बातचीत को रोकते हैं और सुन लेते हैं मिलके ये प्यारा सा गीत।

बहनों, अब गृहलक्ष्मी कार्यक्रम समाप्त करने का समय तो हो रहा है। चलते चलते यही कहेंगे, छोटी छोटी आदतों को अपनाएं। रोज़मर्रा की साफ सफाई है, जैसे रसोई की सफाई है, गीला और सूखा कचरा अलग अलग डस्टबिन में डालें। स्वच्छता की शुरुआत अपने घर से ही करें। अब इसी के साथ दीजिए अपनी सखी बबीता को अनुमति। नमस्कार।

महिलाएं अभी सुन रही थी अपना कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। आकाशवाणी के हम ओबरा केन से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। अब से कुछ ही क्षणों में आप हमारे गोरखपुर केंद्र से प्रसारित भोजपुरी में समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम शिवानी अरोरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ के सतही देश के 45 जगहनी पर आयोजित 20वां रोजगार मेला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से कई गो सरकारी संगठनन में 51,000 से बेसी नया नियुक्त नौजवानन के नियुक्ति पत्र बटले। यह मौका पर श्री मोदी कहने की केंद्र सरकार पिछला कुछ सालों में नौजवानन के भविष्य का चुनौतियन बदे जरूरी कौशल आ मौका उपलब्ध करवले पर लगातारे ध्यान दे रहे हो।
1: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों और आपके परिवारजनों बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
0: प्रधानमंत्री कहले कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगारी का मौका तेजी से बढ़ावे बदे कार कई रहले हो। वहां की कहले कि भारत में पछला कछु बरस में करीब 40 देशन के साथे मुक्त व्यापार समझौता कहले हो, जैसे देश के नौजवानन बदे अवसर का नया द्वारे।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मिशन रोजगार के तहत लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओरी से कई गो विभागन में चयनित 818 नौजवानन के नियुक्ति पत्र बटले। यह मौका पर मुख्यमंत्री कहले कि अगला 6 महीना में 1,00,000 से बेसी नौजवानन के नियुक्ति देने का प्रक्रिया जारी रही। उत्तर प्रदेश पुलिस में 36,000 होमगार्ड में 41,000 से 42,000 नौजवानन के भर्ती का प्रक्रिया चली रहल बा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का आवे वाला नतीजा से 25,000 से 30,000 उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग से 20,000 से 25,000 नौजवानन के नियुक्ति का मौका मिली। मुख्यमंत्री कहले कि अबले करीब 9.5 लाख नौजवानन के सरकारी नियुक्ति दिहल जा चुके बा।
2: आज यूपी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जा रहा है, आज यूपी अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जाना जा रहा है, आज यूपी अपने परंपरागत उद्यम को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से MSME यूनिट के माध्यम से हमने जो उसको ताकत दी है, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा है, डिजाइन और पैकेजिंग के साथ जोड़ा है, बाजार से जोड़ा है, अकेले MSME सेक्टर में ही 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार हम लोग देने में सफल हुए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार बरिस 2047 ले विकसित भारत के लक्ष्य पवले के दिशा में काम कई रहे हो। यह मौका पर हमनी के सेवा संकल्प अभियान का खास श्रृंखला प्रसारित कई रहे है। प्रस्तुत बा जल जीवन मिशन के आयोग के लेके एको खास रिपोर्ट।
3: 2019 में लॉन्च किए गए जल जीवन मिशन के तहत 12 करोड़ 60 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नए नल कनेक्शन दिए गए हैं। इससे ग्रामीण नल जल कवरेज बढ़कर 82% से अधिक हो गया है। मिशन को अब 2028 तक बढ़ाया गया है, जिसमें जल सेवा की गुणवत्ता और स्थिरता पर जोर दिया जा रहा है। जल जीवन मिशन से मिल रहे लाभों के बारे में बांदा जिले की निर्मला कहती हैं।
4: हमारे यहाँ पानी की बहुत दिक्कतें थी पहले, जैसे हैंडपंप से दूर से पानी लाना, घंटे खड़े होकर लाइन लगाकर पानी लाना, नदी से लाना, काफी समस्या होती थी पानी की पहले। अभी तो काफी सुविधा सरकार की ओर से हो गई है, जो कि घर घर नल टूटी लग गई है, जिससे घर सबके घर पानी उपलब्ध हो रहा है, समय की बचत होती है और काफी आराम है लोगों को।
3: गौरतलब है कि मिशन के तहत 5,00,000 से अधिक पानी समितियां गठित की गई हैं और 24,80,000 से अधिक महिलाओं को जल गुणवत्ता जांच का प्रशिक्षण दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर घर नल का पानी पहुंचने से प्रतिदिन 5,50,00,000 घंटे तक की बचत हो सकती है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: मथुरा समेत प्रदेश के सज्जो जिलन में राधा अष्टमी का पर्व श्रद्धा भक्ति और उत्साह के माहौल में मनावल जा रहे हो। बरसाना के श्री राधा रानी मंदिर में दर्शन पूजन बदे श्रद्धालुओं का तांता लगले हो। तड़के 4 बजे से लाडली जी के अभिषेक के साथ ही पूजन का सिलसिला जारी बा। राधा अष्टमी के लेके शासन प्रशासन की ओर से सज्जो जरूरी इंतजाम कैल गये हो। गोरखपुर के गीता वाटिकों में राधा अष्टमी धूमधाम से मनावल जा रहे हो। वहाँ पूजा अर्चना और भजन कीर्तन भी नहीं से चरल रहल हो। समाचार पूरा भेल, नमस्कार।
5: FM 102.7 पर हम आकाशवाणी की ओबरे के से बोल रहे हैं। समय है श्रोताओं, आज की सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी का, लेकिन उससे पहले श्रोताओं आइए हम आप सबको जानकारी दे दें आज सबसे पहले गुमशुदा हुए व्यक्तियों के बारे में। पहली सूचना, पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार एक अज्ञात पुरुष का शव प्राप्त हुआ है, जिसका हुलिया इस प्रकार है। यह शव जो है ग्राम सिरगोती थाना बीजपुर से प्राप्त हुआ है। लंबाई 5 फीट 8 इंच है। शरीर पर कपड़ा नहीं है। उम्र लगभग 35 वर्ष है। जिस किसी से भी यह संबंधित हो कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र से संपर्क करें। श्रोताओं एक सूचना और, पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीमती संध्या देवी पत्नी श्री लखिंदर निवासी ग्राम इनमा थाना शाहगंज जनपद सोनभद्र ये दिनांक 12/7/2026 से लापता हैं। इनके साथ इनका पुत्र कान्हा भी है, जिसकी उम्र 2 वर्ष है। इनका हुलिया कुछ इस प्रकार है। उम्र 27 वर्ष लगभग है। लंबाई 5 फीट है। गोरा रंग, गोल चेहरा और एक हरा बदन है। ये लाल रंग की साड़ी पहने हुए है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। श्रोताओं ये थी खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना।

अब श्रोताओं कार्यक्रम संबंधी जानकारी। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:10 पर हमारे ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत। हमारे किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसान वाणी हमारे लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित 6:50 पर। फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा कार्यक्रम सब रस में 7:31 पर।

पुरानी फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा कार्यक्रम भोले बिस्तरे गीत में रात्रि 9:15 पर। रात्रि 9:30 का समय होगा राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती। यह कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे और रात्रि 10 का समय होगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम का। यह कार्यक्रम भी हम अपने दिल्ली केंद्र से ही अनुप्रसारित करेंगे। श्रोताओं, ये थी हमारी कार्यक्रम संबंधी जानकारी जो अब समाप्त हुई।

0: सब पंचन के राम राम, जगु भैया तो हो के राम राम हो, कह सुनाओ का हाल चाल है।
1: अरे मुनई भैया कुल हाल चाल तो ठीक है बाहो, देखत हुआ भैया की बदरी कैले बाट, चार दिन पीछे चला भैया तो बड़ी तेज भैया घाम हो,
0: घमवा तो जो रहल है भैया।
1: लेकिन आज तो तोरे यहाँ रापड़ गली में खूब पानी पड़ल है।
0: बिल्कुल भैया पानी खूब बरसल है, देख जब पानी बरसता फिर घाम होता ना, तो ये रोगे का घर है भैया
1: एकदम।
0: इमें थोड़ा सा बच बचाए के हम लोगन के रह के पड़ी, कैसे पहले के बूढ़ बुजुर्ग रहे ना भैया। जगु तो एक बात कहे हो कि जौनी कुआर का महीना बा, माने भादो में बीते वाला बा, कुआर अभी वाला बा, तो ये महीना में देखा खाए पिए में बड़ा सावधानी बरता भैया। बासी कुसा तो एकदम छोड़ दा
1: एकदम,
0: हाँ खाबे मत करा। देख ये महीना में बड़ा खीरा मिला ला, तो खीरा का जो उन बतिया बा ओकर भी उपयोग मत करा। काहे से के पहले के बूढ़ पुरनिया कहे न जगो भैया कि बासी भात खीरा का बतिया आवे जर हिलावे खटिया। तो भैया हो ऐसन जर आई ना, माने बुखार हो कि वो खटिया हिले लगी।
1: बिल्कुल,
0: तो ऐसे बचे का जरूरत बा। अब भैया हो जहाँ पानी लगल बा वहाँ पानी कोशिश करें कि निकल जाए, अगर पानी नहीं निकलत तो अगल बगल जो घास फूस बा ओकर साफ सफाई कर दें।
1: भैया जरल मोबिल ओबिल घरे में बाय, अगर इंजन फिंजन का तो गढ़ा में भैया तनी मनी डाल दे के चाहिए।
0: हाँ, कि ऊपर से भैया एक लेयर बना,
1: लारवा का जो है लेयर न भैया एक लेयर बन जाए तेले का, ताकि लारवा जो है पनपे ना।
0: अब भैया हो घरे में अगर रहत हो ना संझा सवेरे, तो भैया हो हाथ पैर एकदम ढक कर रह, सूते के बेरी भैया मच्छरदानी का प्रयोग जरूर कर। अगर मच्छरदानी का प्रयोग नहीं कर सकत तो संझा सवेरे नीम आयल आवला भैया, मने हाथे गोड़े तनी सा लगाए ला के मच्छर काटे ना। भैया हो जब साफ सफाई रही स्वच्छता रही तब हम लोगन भी स्वस्थ रह। देख अगर जगह भैया कहल जाए ना, तो स्वच्छता ही सेवा
1: बिल्कुल
0: एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है, जेकर अर्थ है कि स्वच्छता बनाए कर रखल भैया केवल हम लोगों का कर्तव्य न है, बल्कि समाज और देश का सेवा भी है। स्वच्छ वातावरण में रहले से जो अपन जीवन बा वो स्वस्थ और सुरक्षित सुखद बनला।

0: जगह है।
1: तो
0: भैया साहब तो वैसे ही हुए लगी, कुल मिलाए के ही है कि भैया इसमें जागरूकता यापन जवन है स्वविवेक बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, एक स्वच्छता का संदेश भी भैया पहुंचे के चाहिए अपने पंच भैया लोगों के बीच में। देखा स्वच्छता का संदेश पहुंचा था, इस समय साफ सफाई में हम लोग लगल है।
0: बिल्कुल, स्वच्छता ही सेवा का संदेश जो अपने संजीव भैया लेके चलल हुआ। देखा जब चली देले हुआ तो कुछ न कुछ तो भैया सुनाई।
1: बिल्कुल भैया, देखें आज अगर मौसम का जानकारी अपने पंच भैया लोगों को बता दें तो अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान भैया 25 डिग्री सेल्सियस बा। आज देख बाजार भाव तो शामिल कल जाये बाबूलाल भैया का, लेकिन एक साथे साथे एक बड़ी अच्छी जानकारी बा, स्वच्छता ही स्वास्थ्य का मूल आधार। भैया पुरानी बातचीत बा डॉक्टर नीतीश कुमार जो आयुर्वेदिक चिकित्सक हुआ, इनसे अपन जगत नारायण भैया का बातचीत बा। एक साथे साथे भैया अपने किसान भाई लोगन का अनुभव भी हम लोगन अपने कार्यक्रम में साझा करीला। तो गोभी के खेती में सावधानियां, अजय कुमार कुशवाहा एक प्रगतिशील कृषक हुआ, तो इनसे जगत नारायण भैया को बातचीत हुई। एक साथे साथे मन मन शायन के रूप में भैया किसानी गीत भी हुई राजकुमार और उनके संघाती लोगन का। तो हम तो कहता है कि बिना देर कैले भैया स्वच्छता ही स्वास्थ्य का मूल आधार बा। डॉक्टर नीतीश कुमार जो आयुर्वेदिक चिकित्सक हुआ, इनसे जगत नारायण भैया का बातचीत बा बिना देर के लिए
0: सुन।
2: श्रोताओं, बदलते मौसम में या ये कह दिया जाए कि तरह तरह के लापरवाही की वजह से या गंदगी की वजह से तमाम तरह के बीमारियां फैलते रहते हैं, जिसको हम लोग जान नहीं पाते हैं कि किस कमी की वजह से इस प्रकार का तबीयत हो रहा है। अक्सर कहते हुए सबको सुना जाता है कि अमुक मौसम है, इसमें मौसम परिवर्तन की वजह से बुखार आ रहा है, तबीयत खराब हो रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि उस मौसम का परख हम नहीं कर पाते हैं कि इस प्रकार के मौसम परिवर्तन है तो हमें किस प्रकार से अपने जीवन शैली में परिवर्तन करनी चाहिए जिससे कि अपना स्वास्थ्य ठीक बना रहे। साथ साथ जैसे कि घास फूस अभी प्रत्येक गांव में बहुत सारे बढ़े हुए हैं और उसको समय से हम लोग साफ सफाई नहीं कर पाते हैं, उसमें तरह तरह के जीव जंतु पल रहे होते हैं जिसको हम लोग नग्न आँखों से नहीं देख पाते हैं और वो कहीं ना कहीं से बीमारी के कारण बनते हैं। तमाम जानकारियाँ लेनी होती है तो कैसे हम लोग इससे परहेज करें या किस प्रकार के साफ सफाई पर ध्यान रखें जिससे हमको बीमारी ना हो, अगर हो भी जाए तो फिर क्या करें जिससे कि जल्दी से हमारे बीमारी में ठीक होने लगे और जो है कि उसमें कवर हो। तो आज इस विषय को जानने के लिए सोनभद्र जनपद अंतर्गत दुधी ब्लॉक के बिंडमगंज में हैं और यहाँ आयुर्वेद के चिकित्सक डॉक्टर नीतीश कुमार जी से मुलाकात हो रही है। आपका क्या कुछ सलाह है, क्या कुछ जानकारियाँ हैं और हम लोग के आयुर्वेद के बारे में बात की जाए तो हम लोग के इर्द गिर्द में ही घर के आसपास पड़ोस खेतों में जिसको उखाड़ करके हम लोग फेंकते हैं, सुखाते हैं, वो भी जो है कि औषधि गुणों से भरपूर है, क्या कुछ आपका कहना है, आपसे ही बातचीत होगी। तो नीतीश कुमार जी, आपका रेडियो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: जी धन्यवाद।
2: और इस उद्देश्य से भी कि इस समय मौसम में बदलाव हो रहा है, बरसात बहुत हुई इस बार,
3: जी जी
2: घास फूस भी बहुत बढ़े हैं,
3: जी
2: ताल तलैया भी बहुत भरे हुए हैं, अगल बगल अपने घर के अगवाड़े पिछवाड़े चारों तरफ जो है कि थोड़े थोड़े गड्ढे हैं उसमें भी पानी भरे हुए हैं
3: जी।
2: तो क्या साफ सफाई कितना आवश्यक है और इन गंदगियों से कौन कौन से बीमारी होने की संभावनाएं होती हैं?
3: जी जी जी जी, तो सबसे पहले ध्यान ये देना है कि घर के आसपास बाहर भीतर इन मौसमों में बदलते मौसमों में स्वच्छता साफ सफाई रखने की बहुत आवश्यकता है। पानी को ना भरने दें, ना जमा होने दें, घास फूस ना इकट्ठा होने दें, ना जमा होने दें, ना सड़ने दें, क्योंकि उनमें सूक्ष्म रूप में जो कीटाणु बैक्टीरिया पनपते हैं उनको नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन उसके स्पर्श से या उसके दुर्गंध से बहुत सारी बीमारियां जो है कि फैलती हैं लोगों में
2: जी।
3: पानी अगर आपके इर्द गिर्द गड्ढों में भरा हुआ है तो उससे कई तरह के मच्छर कीटाणु जीवाणु उत्पन्न होते हैं जो कि आम जीवों पे जो है कि बहुत ज़्यादा प्रभाव असर डालते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों को स्वच्छता के माध्यम से जो है कि स्वच्छ रखते हुए, साफ सफाई का ध्यान रखते हुए बहुत सारी बीमारियों को जो है कि होने से बचाया जा सकता है।
4: जी जी।
3: और अगर कुछ बीमारियां इनमें से अगर हो भी जाती हैं, उसके बाद पता लगने के बाद अगर स्वच्छता पे ध्यान दिया जाए, कुछ परहेज रखा जाए, तो भी उस बीमारियों को जल्दी से ठीक करने में मदद मिलती है।
4: जी जी।
3: और मैं थोड़ा सा इस पे जो है कि स्वच्छता के ध्यान में रखते हुए और चर्चा करना चाहूँगा।
4: जी, स्वागत।
3: जैसे कि आपके रसोई में या आपके घर के इर्द गिर्द अगर आप गांव में रहने वाले लोग हैं, तो आपके घर गांव के अगल बगल खेतों में, आपके बाग बगवान में, आपकी रसोई में ऐसे ऐसे औषधीय गुण से भरे हुए जो है कि पौधे मिलेंगे, घास फूस मिलेंगे, जिनमें बहुत भरपूर औषधीय गुण भरा हुआ है, जिसके उपयोग से, जिसके सलाह से आप जो है कि बहुत सारी बीमारियों पे जो है कि जिसका निवारण निस्तारण कर सकते हैं।
4: जी।
3: इनमें से जो है कि सबसे पहला कि आपके रसोई में मेथी का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। सब्जी बनाने में और भी कई प्रकार के व्यंजन बनाने में
4: जी
3: मेथी का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है।
4: जैसा
3: कि मैं आपको बता दूं कि बहुत कम लोगों को ये ज्ञात होगा कि मेथी भी एक औषधीय गुण से भरा हुआ है।
4: जी।
3: तो मैं कुछ गुण मेथी का बताना चाहूँगा, कुछ उपयोग बताना चाहूँगा
4: जी,
3: कौन कौन से बीमारियों पे कारगर है, किस प्रकार से उपयोग में लाए जाते हैं, लाए जाना चाहिए।
4: जी।
3: तो सर्वप्रथम मेथी का एक बहुत ही अच्छा गुण है कि महिलाओं में अक्सर हार्मोनल इम्बैलेंस जिसको कहा जाता
4: जी,
3: है
4: जी।
3: जिससे बहुत सारी महिलाओं का PCOD का भी समस्या बढ़ जाता है, जिसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल में गड़बड़ी भी बोल सकते हैं
4: जी।
3: तो उस अनियमितता को सही करने के लिए, और किन्हीं महिलाओं में थायराइड भी ज़्यादा बढ़ जाता है जिसके वजह से मोटापा, शरीर में गांठ में दर्द होना
4: जी,
3: उसमें भी ये लाभकारी है। इसका जो है कि उपाय मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि मेथी का कुछ दाना जो है कि रात में भिगो करके छोड़ देना है।
4: अच्छा।
3: भिगो करके रखे रात भर उसको। और जो उसका सुबह पानी जो होता है मेथी दाने में जो भिगोए हैं उसका पानी आप सुबह खाली पेट उसको सेवन करें।
4: अच्छा, लगभग एक चम्मच।
3: लगभग एक चम्मच नहीं, एक चम्मच मेथी दाना को रात में भिगो कर रखना है।
4: जी जी जी।
3: और लगभग आधा या एक गिलास पानी में उसको भिगो कर रखें
4: जी, जी।
3: और उस पानी को सुबह में छान करके, सिर्फ पानी को रोज सुबह खाली पेट लगभग 3 से 4 दिन ये क्रिया करने से PCOD की समस्या में बहुत आराम मिलता है।
4: अच्छा अच्छा
3: जी। थायराइड में बहुत आराम मिलता है, जोड़ों के दर्द में भी ये आराम मिलता है। जो हार्मोनल इम्बैलेंस से जो गांठ में, जोड़ों में, महिलाओं में दर्द उत्पन्न होती
4: जी,
3: है
4: जी,
3: उसमें
4: जी, जी।
3: आराम मिलता है, लाभकारी है।
4: अच्छा
3: जी जी।
4: अच्छा, ये जो मलेरिया की बात आती है, जाड़ा देकर बुखार आने लगता है, कुछ दिन के बाद लोग जो है कि टाइफाइड की बात ज्यादा करते हैं।
3: जी जी जी।
4: जाड़ा तो नहीं दे रहा है लेकिन शरीर में दर्द दर्द है।
3: जी जी जी।
4: और पता चला कि टेस्ट के दरमियान निकला कि टाइफाइड है।
3: जी जी।
4: इसके लिए आयुर्वेद का क्या कुछ इलाज है?
3: जी, इसके लिए आयुर्वेद का इलाज तो कई रूप में भी है, और सबसे पहले स्वच्छता और परहेज, ये दोनों नियम को अपनाना होगा।
4: जी जी।
3: क्योंकि अगर जांचों उपरांत डॉक्टर बताते हैं कि आपके ब्लड में इन्फेक्शन है, आपको टाइफाइड है, तो सबसे पहले इस पे चर्चा ये करना चाहूँगा कि ये चीजें शुरू कैसे होती हैं।
4: जी जी।
3: आपका जो है कि आप जब भी स्वच्छता को अच्छे से ध्यान में नहीं रख पाते हैं, नियमित रूप से किसी भी चीज का सेवन नहीं कर पाते हैं, जैसे कि पानी का सेवन।
4: जी।
3: पानी का सेवन करने का भी जो विधि है, जो तरीका है, वो बहुत लोग अभी नहीं जानते हैं, जिसके वजह से बुखार आना या टाइफाइड में परिवर्तित हो जाना।
4: जी जी जी।
3: ये कहीं ना कहीं हमारे जो हम पानी के सेवन विधि को नहीं जान पाते हैं, उसके कारण भी होता
4: जी,
3: है
4: जी, या तो जो है कि अस्वच्छ पानी,
3: अस्वच्छ पानी हो गया, या ठंडा पानी का उपयोग करना।
4: जी जी, जी।
3: ये आपके बुखार को, आपके टाइफाइड को बढ़ावा देता
4: बढ़ावा देना। तो चलते चलाते श्रोतालों से आप कुछ क्या कहना चाहेंगे?
3: जी, बस हम यही कहना चाहेंगे श्रोताओं से कि आप लोग जो है कि स्वच्छता का भरपूर ध्यान रखें
4: जी,
3: साफ सफाई का ध्यान रखें, अपने इर्द गिर्द इस मौसम में घास फूस ना बढ़ने दें, और जो है कि पानी गड्ढों में इकट्ठा ना रहने दें
4: जी,
3: गर्म पानी सुसुम पानी, साफ पानी पिए, उबाल कर पानी पिए, ठंडी खट्टी चीजें ना खाएं। अभी ऐसा मौसम, ऐसा वातावरण बना हुआ है
4: जी।
3: सर्द गर्म का वातावरण बना हुआ है। वात रोग को रोकने के लिए, कफ रोग को रोकने के लिए आपको जो है कि साफ सफाई, साफ पानी का पीना और साफ पानी से नहाना बहुत ज्यादा आवश्यक है
4: जी।
2: श्रोताओं देखिए, ये बिंडमगंज से आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर नीतीश कुमार जी थे। आपसे बातचीत हो रही थी कि तमाम बीमारियों का निमंत्रण देता है अस्वच्छता। साफ सफाई से अगर रहें तो बीमारी को दूर भगाया जा सकता है, साफ सफाई से नहीं रहेंगे तो बीमारी को निमंत्रण दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, साफ पानी पिए, साफ पानी में नहाएं। इतने अच्छा जानकारी के लिए डॉक्टर नीतीश कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद।

उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

0: 2800 रुपया कुंतल, करेला जौन बा वो 3000 से 3500 रुपया कुंतल, भिंडी 2000 से 2200 रुपया कुंतल, और टमाटर जौन बा 200 माने 2500 से लेकर 2800 रुपया भैया कुंटल रहल है। नींबू 500 से 600 रुपया सैकड़ा रहल है। ये
1: भाई
0: आज का
1: ताजा
0: करेला
1: बाजार भाव रहल है भैया, पाती के माध्यम से थाती हमेशा भैया भेजल करेला, और हम हन ओके अपने कार्यक्रम में शामिल करत रही राजा, भैया के देवल जाए धन्यवाद। लेकिन
0: धन्यवाद, लेकिन झूरे झूर ना रहा
1: हाँ
0: है। देखें राजकुमार और उनकर संघाती लोगन, भैया एक किसानी गीत सुनावत हो तो बिना देर कैले सुन।
1: सुन लिया।

0: मुनई भैया राजकुमार जी और संघाती भैया जवन है कितना बढ़िया जवन है किसानी गीत सुनो ना। और भैया जब मरमनसायन हो जाला तो मन हो जाला एकदम फ्रेश।
1: बिल्कुल भैया, जब फ्रेश मन हो गल ना तो हम तो कहब कि देख अजय कुमार कुशवाहा भैया का अनुभव बा, हम लोग जरूर सुनी। कहे से कि गोभी के खेती में का का सावधानी बरतत हूँ, उनसे जगत नारायण भैया की बातचीत है, तो बिना देर के लिए जानकारी सुन लो।
0: सुन लो जाए
2: खेती किसानी के क्रम में आज सब्जी उत्पादन के का कुछ योजना बनाई जा रही है, इन पर बातचीत होगी। सोनभद्र जनपद अंतर्गत दुधी बला के कादल में अजय कुमार कुशवाहा जी से मुलाकात हो रही है। आपके माध्यम से ही जानेंगे जो कौन सा खेती की तैयारी आप कर रहे हैं। अजय जी, आपका रेडियो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। इस समय तो इस साल बरसात थोड़ा करके लगातार हो रहा है, लेकिन साग सब्जी भी उसी में उत्पादन करना है, खेती भी करना है, धान वगैरह रोपाई हो गया।
3: हाँ, पहले तो अपने सभी किसान भाई जो हमारे सुन रहे हैं रेडियो के माध्यम से, उन सबको हमारे तरफ से नमस्कार। धान उन टोटल लग गए हैं, धान में डाई वगैरह सब डला गया है, धान तो ठीक ठाक है सब। अब धान के बाद हम लोग के नंबर लगी है हरी सब्जी में, जैसे गोभी वगैरह हो गया। गोभी, टमाटर, बैंगन, धनिया, पालक, खेती तो हर प्रकार की होती है हमारे यहाँ।
2: गोभी की रोपाई कब तक चलेगा?
3: गोभी की रोपाई तो अभी मान के चलिए एक महीने पहले से शुरू है, ये अभी मान के चलिए फरवरी मार्च तक रेगुलर चलता रहेगा। किसान भाई जिसको जिस मतलब अपने अपने हिसाब से जिसका जिस प्रकार से खेत हो
2: जी, जी,
3: जिसके पास पर्याप्त खेत है तो बारी से मतलब बारी बारी करके
2: बारह मासा कर सकता।
3: हाँ, 15 दिन 20 दिन के आगे पीछे नर्सरी कर करके गोभी का खेती किया जा सकता है,
2: क्योंकि गोभी तो एक ही बार तैयार होगा, एक ही बार निकालना पड़ेगा उसको।
3: हाँ, तो मान के चलिए जिसके पास 5-6 बीघा खेत है तो 7-7-8-8 बिस्वा में करके थोड़ा थोड़ा 3-3-4-4 पैकेट नर्सरी डाल करके और थोड़ा थोड़ा खेती करने पर ये भी लाभ है किसान भाई लोग को कि मान लीजिए कभी थोड़ा रेट डाउन हो जाता है, कभी रेट अच्छा मिल जाता है, तो रेगुलर मतलब कि निकलते रहता है सब्जी, तो मान लीजिए कभी रेट मिल जाएगा तो उसमें मान लीजिए किसान भाई को नुकसान नहीं होता है।
2: गोभी के खेती करने के लिए अभी मान लीजिए सितंबर में रोपाई करना है, सितंबर अक्टूबर में, तो नर्सरी अब हो सकता है?
3: हाँ, नर्सरी तो मान के चलिए अब तो कितने लोग किसान भाई लोग लगा भी चुके हैं, हम खुद लगा चुके हैं, पोड़ा भी दिया गया है, मतलब एक महीना पहले लगा है, पानी की वजह से थोड़ा पौधा खराब हुए हैं, लेकिन जो भी है उसको कोड़ा वोड़ा दिया गया है, वो भी अब ठीक ही है, जो बचा है सही है। और नर्सरी अभी कुछ नर्सरी जमे हैं, कुछ नर्सरी डलाए हैं।
2: अच्छा।
3: हाँ, तो अब मान के चलिए बरसात के मौसम में थोड़ा आगे पीछे नर्सरी तैयार होने में थोड़ा टाइम लगता है, कभी 25 दिन 28 दिन 30 दिन 32 दिन यही टाइम लग जाता है।
2: अच्छा।
3: और ठंडी के दिन में तो 22 से 25 दिन में एकदम फिक्स है कि तैयार हो जाता है।
2: गोभी के अच्छा फूल लगे और गोभी के पात गोभी भी अच्छा बना है उसका, तो इसके लिए कौन सा जुगत अपनाते हैं
3: सर जी? अभी तो हमारे यहाँ मान के चलिए देसी पोल्ट्री के वगैरह अभी हम लोग चलाते हैं, आप देख ही रहे हैं।

0: है,
1: हाँ
0: सब कुछ हमारे पास जो भी उपलब्ध है। मान के चलिए साग सब्जी तो हम लोग लगाते हैं, जैसे गोभी वगैरह हो गया, क्या हरी सब्जी कोई भी हो गया, अवशेष हो गया, चाहे मार्केट ज़्यादा डाउन हो गया, तो क्या करते हैं हम लोग सब्जी को काट करके मुर्गी को खिला देते हैं। और मान के चलिए मुर्गी से जो उसमें से जो बीट वगैरह निकलता है,
1: हाँ
0: तो उसको हम लोग खेत में डाल करके खेत को अच्छे से तैयार करके लगाते हैं, तो हम लोग को उसमें थोड़ा जो ये जैविक खाद है
1: हाँ हाँ
0: उसको थोड़ा सा कम, मतलब उसका मात्रा थोड़ा कम हो जाता है।
1: अच्छा, ये जो ये रासायनिक डालना है, जरूरत कम पड़ती है।
0: हाँ, रासायनिक कम डालना पड़ता है, जैविक खाद हम लोग के काम आ जाता है। तो जैविक खादवा से ये होता है ना कि थोड़ा फसल ज़्यादा हरा भरा भी होता है, और मान के चलिए किस जो भी सब्जी उपयोग में लाते हैं उन लोग को किसी प्रकार के नुकसान भी नहीं पहुँचाता।
1: अच्छा, टिकाऊ भी रहता है।
0: हाँ,
1: जैसे अगर आज हम उसको काट दिए और एक आध दो दिन मैंने उसको रखा जा सकता है।
0: हाँ, रखा जा भी सकता है, और जैसे जो लोग खाएंगे सब्जी को वो लोग को अच्छा, इससे मतलब कि
1: स्वाद लगेगा,
0: स्वाद अच्छा
1: लगेगा,
0: पौष्टिक, मतलब पौष्टिक सब्जी, मतलब पौष्टिक के रूप में होगा।
1: तो गोभी लगाने में किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है?
0: इसमें जैसे किसान भाई सबसे पहले खेत में जिसके पास गोबर वगैरह हो या हमारे पास जो भी है व्यवस्था बताया आपको, अपना मुर्गी के बीट वगैरह डाल करके अच्छे से तैयार करके नर्सरी तैयार हो जाता है, तो उसको मान के चलिए कि 1 फीट की दूरी पर चारों तरफ से करके लगाया जाता है।
1: तो खेत की जुताई गहरा करना पड़ता है?
0: हाँ, खेत की जुताई जिसके पास, जो किसान भाई के पास रोटावेटर है, रोटावेटर से या कल्टीवेटर से अच्छे से तैयार करके, इसके बाद मान के चलिए जिनके पास जैसा खेत हो, अगर पानी लगने वाला हो तो थोड़ा झोरा बना करके मेड़ पर लगा दे तो अच्छा रहेगा।
1: अच्छा,
0: बरसात के लिए मान के चलिए पानी नहीं लगेगा।
1: हाँ हाँ,
0: और खेत ढालदार है तो ऐसे भी लंबा लंबा परिया जो नाली या करहा जो भी किसान भाई लोग बोलते होंगे, उस प्रकार से बना करके लगा देंगे। थोड़ा मतलब जैसे कि बरसात कम हो जाएगा, धूप उग जाएगा तो पटाने में आराम भी रहेगा, और गोभी भी मान के चलिए कि अच्छा होगा, उसमें पानी जो भी बरसेगा निकल जाएगा नाली से।
1: कुछ किसान भाई लोग तो लगाते हैं तो ऐसा भी होता है कि गोभी में फूल ही नहीं आता, और आता भी है तो छोटा छोटा आता है, बड़ा फूल कैसे आए?
0: थोड़ा यही होता है, किसान भाई लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, थोड़ा मान के चलिए खेत में कुछ कमी रहता है, सिर्फ रसायन खाद से तो काम चलना है नहीं, उसमें कंपोस्ट वगैरह खाद जैसे गोबर वगैरह हो गया, अगर ढंग के खेत है, खेत हाँ खेत में थोड़ा मतलब कि कंपोस्ट खाद वगैरह खेत में जान रहेगा तभी तो पौधा बनाएगा, तब तो फूल आएगा,
1: तभी फूल आएगा।
0: हाँ, तो यही बात है
1: मिला के कि खेत बीमार है, इसलिए
0: खेत स्वस्थ नहीं है, उसमें भरपूर जितना पोषक तत्व तो चाहिए पौधा को नहीं मिल पाता है, इसलिए पौधा सही से नहीं बनता है, इसलिए फूल छोटा छोटा हो जाता है।
1: कितना कितना दूरी पर लगाएं कि जो है कि
0: ये आपको बताया सर जी कि मान के चलिए 1 फीट की दूरी होना चाहिए।
1: अच्छा,
0: चारों साइड से लाइन की दूरी 1 फीट और पौधे की दूरी 1 फीट। हाँ, और पत्ता को भी मान लीजिए लगाना है तो थोड़ा नजदीक हो सकता है, 10 इंची पे हो सकता है। सब मान लीजिए जैसे फूल को भी लगेगा उसे पत्ता को भी थोड़ा इसका दूरी है वो थोड़ा सा कम कर देना है, खेत तो सेम उसे तैयार करना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। रोग कौन लगते हैं इसमें?
0: रोग तो इसमें बहुत विशेष नहीं लगते हैं, थोड़ा बहुत मान के चलिए कीड़ा उड़ा का प्रकोप है तो अपने अपने जगह पे जहाँ पे जो दवा उपलब्ध हो उस हिसाब से किसान भाई लोग उसको नियंत्रित कर सकते हैं।
1: अच्छा, कभी कभार माहौल भी देखते हैं कि उस पर बैठते,
0: उसके लिए बहुत कुछ ज्यादा दवा नहीं चलाना पड़ता है, कोई एसीटा होना चाहिए किसी कंपनी का,
1: हाँ,
0: और कोई एक कीटनाशक मिला करके मार देंगे तो जो लाही जो किसान भाई लोग बोलते हैं माहो लाही,
1: हाँ,
0: तो उससे खत्म हो जाती है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
0: और बाकी एक झुलनिया कीड़ा आता है तो उसके लिए भाई थोड़ा दवा थोड़ा सा उसका महंगा पड़ता है, तो उसको भाई किसान भाई लोग के यहाँ कौन सा दवा उसका मतलब उसको मारने के लिए मतलब किस नाम से उपलब्ध है ये किसान भाई लोग को देखना पड़ेगा।
1: हाँ, वो मतलब पूछना पड़ेगा जी, ऐसा है तो लक्षण बताते हुए विशेषज्ञ।
0: हमारे यहाँ भी बोरोफेरिया के नाम से है जो कि इस्तेमाल किया जाता है, हम लोग के यहाँ 850 के आता है, 25 ml 5 टंकी बनता है 16 लीटर वाले डब्बे में।
1: आपके दृष्टि से किसान भाई लोग क्या कुछ त्रुटि कर पाते हैं, चुक पाते हैं कि जिसकी वजह से अच्छा साग सब्जी उत्पादन नहीं कर पाते हैं?
0: थोड़ा किसान भाई लोग जिसे मैं कि मान लीजिए कभी कभी ये जो झुलनिया कीड़ा लगता है इस पे किसान भाई लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, और
1: अच्छा,
0: ये लोग सब काफ़ी तेजी से अटैक करते हैं, आज दिखाई दिया तो हफ्ता दिन 10 दिन जाते तक पूरा पौधा ध्वस्त कर देते हैं। तो फिर अगर मान लीजिए लेट से दवा भी मारेंगे तो संभालने में टाइम लगता है, और जो किसान भाई नहीं जान पाते हैं इसके दवा के बारे में वो इसमें फेल हो जाते हैं, उनका पूरा नुकसान चला जाता है, गोभी उनका खराब हो जाता है।
1: इस पर निगरानी बहुत जरूरी है,
0: देख रेख समय से। मान लीजिए आप खेती किए हैं तो उसमें खेत में मान लीजिए 2 दिन 4 दिन में मान लीजिए अगर निराई सर्वे भी करते हैं तो उसमें घूम फिर के देखते रहना चाहिए,
1: देखते रहना
0: कि हमारा सब इसमें किसी प्रकार के कोई कीटाणु या कोई लक्षण उस प्रकार से बीमारी उमारी आए तो उसका उस हिसाब से स्प्रे दवाई हो जाए समय से समय रहते।
1: तो ये सब है क्योंकि फसल अवशेष वगैरह की बात आप कर रहे थे कि तो गोभी के पत्ती वगैरह जो बचता है वो भी मुर्गी खा लेते हैं आपके?
0: हाँ, गोभी के पत्ती हो गया, जैसे कोई गोभी के फूल जिसे खराब भी हो जाता है तो गोभी के फूल या पत्ता गोभी हो गया, जो पत्ता गोभी फट जाता है कभी पानी ज्यादा से, चाहे ऐसे भी फट जाता है, ये सब हमारे यहाँ जो मुर्गी पालन होता है उन लोग के डाल देते हैं, सब खा लेते हैं।
1: अच्छा, अच्छा
0: इसमें
1: अच्छा।
0: मेरा ये भी फायदा है कि जो देसी पोल्ट्री में जो दाना हम लोग डालते हैं उसमें 15-20% बचत भी आ जाता है। जहाँ एक क्विंटल जहाँ हमको 100 kg दाना खियाल लाना है वहाँ 80-90 kg दाना मेरा काम बन जाता है, 20 kg वो भी 10-20 kg वो भी मेरा बच जाएगा। तो मान के चलिए आज के डेट में 30-35 rupees/kg से कम के दाना है नहीं, अगर मेरा 20 kg बच गया तो 700 rupees तो मेरा बच जाएगा।
1: क्या बात, मैं कृषि सह व्यवसाय आप बहुत भरपूर मात्रा में कर रहे हैं, तो चलते चलाते किसान भाइयों से क्या कुछ कहना चाहेंगे?
0: किसान भाई लोग से कहना चाहेंगे कि अपने पास जो भी खेत है उसमें कंपोस्ट खाद वगैरह जो भी हो, गोबर हो या अगल बगल जहाँ पे कोई फार्म हो जिनका खेत ना हो, बीट वगैरह मिल जाते हों तो अपने खेत में ले जा करके डाल करके खेत को अच्छे से मान के चलिए कि रसायन खाद से बचने के लिए कंपोस्ट खाद इस्तेमाल करें, और उसको डालने से उनका जैविक खाद जो लगता है रसायन वाली उससे मान के चलिए बचत भी होगा और कंपोस्ट खाद से स्वस्थ पौधा भी रहेगा और भरपूर मन के लिए पौष्टिक भी मिलेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो श्रोता आप देखें कितनी अच्छी जानकारी दे रहे थे अजय कुमार कुशवाहा जी। निश्चित रूप से यदि हम लोग जो है कि अगर रासायनिक खाद दवा डाल करके बहुत अधिक उत्पादन भी कर लें तो उसका अगर हम आहार लेते हैं तो बीमार पड़ करके फिर वो सब पैसा ले जा करके हम लोग हॉस्पिटल में दे देते हैं। बेहतर तो यही होगा कि हम लोग जैविक की ओर बढ़ें और उससे पौष्टिक आहार लें जिससे कि बीमारी का कम अवसर रहे, ताकि जो है कि हमारा पैसा भी बचे और हम स्वस्थ भी रहें। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए अजय कुमार कुशवाहा जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: भैया इरना हाँ, अजय कुमार कुशवाहा भैया से जगत नारायण भैया का बातचीत रहा है गोभी की खेती में सावधानियां। देखा कितना बढ़िया बातचीत रहा है, ये बातचीत से जरूर अपन पंच भैया लोग लाभ उठे हैं। अब भैया हो देखा अपने पंच भैया लोगों से हम ही कहब कि भैया कभी भी अपने लड़कन का छोट उम्र में बर विवाह न करें, काहे से कि बचवा लोगन का एक उम्र होला पढ़ाई लिखाई का, पढ़ाई लिखाई के साथ कम से कम उनके अंदर ही एक ऐसा क्षमता विकसित होए चाहिए जौने के कारण वो अपने जिम्मेदारी का निर्वहन कर सके, कि उनके का जिम्मेदारी मिलल बा। कैसे कि देखल जाला अपन जौन अंचल बा भैया, अक्सर ये शिकायत आवत रहा है कि वहाँ बाल विवाह होता, तो वहाँ बाल विवाह होता तो भैया हो बाल विवाह कई का, चाहे लड़की हो चाहे लड़का केहू भी हो भैया, सबके पढ़े लिखे का समान अधिकार मिलल बा। भाई अपने प्रधानमंत्री जी का नारा बा कि पढ़े बेटिया बढ़े बेटियां, तो भैया जौन बेटी बाई वो पढ़े लिखे बढ़े और साथ साथ जौन
3: सबसे बड़ी चीज मुन्ना भैया ये है ना कि भैया देखा एक उम्र अगर सरकार निर्धारित कैले है तो एक मतलब ये है कि भैया उनके अपन अच्छा भला बुरा सोचे का पूरा मेच्योरिटी मतलब वो पूरा परिपक्व हो जाना, और जौन भैया कम उम्र में शादी भैले पर लड़कपन में वो रह जाना और कहीं न कहीं भैया फिर उनकर भविष्य अंधकार के ही तरफ हो जाले।
2: बिल्कुल।
3: और जब आपन परिपक्वता पूरा कर लेना ओकरे बाद शादी ब्याह होला तो उनके अपन जिम्मेवारी का बोध जवन है उनके ऊपर महसूस होले कि अब हमके समाज के मुख्य धारा में जुड़ के आगे काम करे के।
2: बिल्कुल सही बात कत हुआ, तो भैया हो सबके समाज से जुड़े के चाहिए और समाज में जुड़ कर एक अलग जागरूकता का भैया जगावे के चाहिए, जो सामाजिक कुरीतियां भाई ओके दूर के लिए का प्रयास करे के चाहिए। भैया हो हम लोगन भी अपने समाज के आगे बढ़ावे के प्रयास करी जा अपने पंचायती के माध्यम से, लेकिन अब देखा धीरे धीरे अपने कार्यक्रम का जो समय बा वो हो चलल है, अगली पंचायती में फिर बैठल जी अपने पंच भैया लोगों से बात हुई
3: तो चला, चला
2: जानकारी का बात हुई तो चले के तो सब पंचन के राम राम, राम।

0: कार्यक्रम ग्राम जगत FM 102.7 पर हम आकाशवाणी की ओपरा केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही क्षणों में आप हमारे लखनऊ केंद्र से प्रसारित हमारे किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसान वाणी।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: जय हिंद।
1: अभिषेक भैया
0: हाँ पुनीता बहनी।
1: भैया, अपने देश के हर मनई तक पर्याप्त अनाज होए और वह पौष्टिक खाद्यान्न के उपलब्धता होए, यह सरकार के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और भैया, यह उद्देश्य से जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू करा गया।
0: बिल्कुल वही नहीं हो। यू मिशन क्या उद्देश्य यह है कि जो है चावल है, गेहूं है, दलहन है, ये जैसी जो नहीं प्रमुख फसलें हैं, इनका उत्पादन बढ़ावा जाए और उत्पादन बढ़ाए के हर पंजतीर पहुंचावा जाए।
1: और भैया देखो, इका और उद्देश्य यह है कि अपने जो किसान भाई हैं, पंच भाई हैं, जो उन खेती करते हैं, उनका बढ़िया से बढ़िया यानी उन्नत बीज उपलब्ध करावा जाए और आधुनिक कृषि तकनीक के माध्यम से खेती बाड़ी सिखाई जाए और पोषक तत्वों का संतुलित उपयोग कैसे करा जाए, फसल प्रबंधन कैसे करा जाए, ये सब बातें जो नहीं है भैया प्रशिक्षण दिन जाते और उनके माध्यम से अपने पंच भाई के यहाँ जागरूक करा
0: और
1: जाते।
0: बहनी देखा जाए तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन इमा खाली उत्पादन बढ़ावे खाली या योजना नहीं लाई गई है, मूल्य के साथ साथ में यहाँ आपकी खेती के जो माटी है ये कैसे निक रहा है, की उर्वरता शक्ति कैसे बनी रहा है, देश में यह खाद्य सुरक्षा के यहाँ मजबूत
1: मजबूत
0: की
1: करा
0: जा
1: जाए।
0: सके, इस दिशा में यह तमाम तन के महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं।
1: और अभिषेक भैया, जब हम पंच खेती पाती करे थे ना, तो जहाँ बातें हम कोई कर रहे हैं दलहन के, तिलहन के, चावल के, और साथ ही भैया देखो हम सबको ही अपने मिठास के फसल भी उपजाई थे, तो अपने गन्ना से नहीं संबंधित सुन लीन जाए आज की खबरें।
2: प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। आगामी पेराई सत्र में किसानों को सप्लाई स्लिप जारी होने से पहले ही ई गन्ना ऐप पर अपना गन्ना कैलेंडर, अनुमानित उत्पादन और संभावित सप्लाई स्लिप की पूरी जानकारी मिल जाएगी। इससे वे घर बैठे ही जान सकेंगे गन्ना कब काटा जा सकता है और चीनी मिल को कब तक सप्लाई करनी है। गन्ना विभाग अंतिम गन्ना कैलेंडर तैयार कर रहा है। चीनी मिलों में पेराई शुरू होने से पहले यह canup.in पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। किसानों के सर्वे से संबंधित विवरण भी सिस्टम पर अपलोड किए जा रहे हैं। इस डिजिटल सुविधा के तहत किसान ई गन्ना ऐप पर अपना गन्ना कोड दर्ज करके कैलेंडर के साथ संभावित सप्लाई स्लिप की संख्या भी देख सकेंगे। जिन किसानों को कोड याद नहीं है वे अपना नाम और गांव का विवरण डालकर भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इससे गन्ना आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता काफी हद तक कम हो जाएगी। किसान समय से कटाई और मिल तक पहुंचाने की तैयारी कर सकेंगे। स्लिप जारी होने पर उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए अलर्ट भी भेजा जाएगा। यह सुविधा किसानों को बेहतर योजना बनाने और पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करेगी।
0: प्रीता बहनी ये तो रही आज की खबरें और अब बारी है देखो आज की बातन के। तो का है आज की बातन में है विशेष बताए दो पंच बहन के यहाँ।
1: भैया आज के बातन में है भेड़ बकरियन के आहार व्यवस्था और उनका प्रबंधन, जी के बारे में हम बता रही हैं डॉक्टर इति मिश्रा और इनसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया। तो भैया सुनी जाए आज की बातें।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहाँ खेती के साथ साथ आप पशुपालन कर रहे हैं, खास करके भेड़ और बकरी पालन, तो इस मौसम में भेड़ और बकरियों की आहार व्यवस्था और

0: उनका प्रबंधन कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं पशुपालन निदेशालय उत्तर प्रदेश से उप निदेशक डॉक्टर इति मिश्रा। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि भेड़ और बकरी पालन से जहां पशुपालक भाई बहन जुड़े हैं, वहां उनके बेहतर स्वास्थ्य और अच्छे उत्पादन के लिए इस समय आहार व्यवस्था कैसे रखें, कितना रखें, कब रखें?
1: सबसे पहले मेरे पशुपालक भाई बहनों को नमस्कार। जहाँ तक ये बारिश का मौसम, बरसात के मौसम के दृष्टिगत आहार व्यवस्था का प्रश्न है, तो पहले मैं ये आप बताना चाहूंगी पशुपालक भाई बहनों को कि भेड़ और बकरी चराई पर निर्भर करते हैं। 6 से 8 घंटे वो चराई करते हैं,
0: जी
1: तो 6 से 8 घंटे की चराई के बाद भी उनको वो आहार पूर्ण नहीं है। उसको पूरा करने के लिए दाना मिश्रण या कंसेंट्रेट मिक्स देने की जरूरत है। अब ये जो कंसेंट्रेट मिक्स है, ये घर में ही मौजूद स्थानीय जो लोकल अनाज और दालें उपलब्ध हैं उससे बनाया जा सकता है। तो उसमें आप 3 हिस्सा मक्का, गेहूं या जौ जैसा अनाज लेकर के उसमें 1 हिस्सा गेहूं जौ का चोकर ले सकते हैं और 1 हिस्सा खली ले सकते हैं, मूंगफली, सरसों या तिल की। इन
0: जी
1: तीनों को मिला करके एक कंसंट्रेट मिक्स बनाया जा सकता है और ये जो चराई आधारित जो पोषण था उसको पूरा करने में ये पूरी तरह से मददगार साबित होगा। क्योंकि हड्डियों को मजबूत करना है, बढ़ते हुए बच्चों को, मेमनों को, और वयस्क में भी गाभिन है पशु, उसमें भी कैल्शियम की जरूरत होती है। तो इन सब जरूरतों को पूरा करने के लिए और बीमारी से बचाने के लिए भी खनिज लवण या मिनरल मिक्सचर भी देने की आवश्यकता है। लगभग आधा मुट्ठी एक वयस्क जानवर को दी जा सकती है। और इसके अलावा पशु के सामने एक नमक का ढेला भी रखा जा सकता है, जिससे जो भी वो पोषक तत्व या जो भी वो अनाज और जो भी चारा दाना ले रहा है उसके पाचन में वो सहायक होगा।
0: तो साधारण नमक या सेंधा नमक?
1: साधारण नमक भी दिया जा सकता है, सेंधा नमक और काला नमक भी दिया जा सकता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि पूरा पोषण तभी होगा जब 24 घंटे स्वच्छ और ताजा पानी उपलब्ध रहे। लगभग एक वयस्क बकरी को 3 से 4 लीटर स्वच्छ ताजा पेयजल की आवश्यकता होती
0: चौबीस
1: है
0: घंटे में
1: 24 घंटे में। बरसात के मौसम के दृष्टिगत मैं कहना चाहूंगी कि इस वक्त जो भी आप दाना खिलाएं उसमें ये जरूर देखें कि नमी के कारण कहीं फफूंद तो नहीं हो गई है।
0: हाँ
1: इसीलिए ताजा ही दाना मिश्रण बनाएं और ताजा ही उसको दे दें, इकट्ठा ना बनाएं, बहुत ज्यादा ना बनाएं।
0: डॉक्टर साहब, शारीरिक अवस्था के अनुसार आहार भेड़ बकरियों का तय करना होगा?
1: बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, नवजात मेमना या बच्चा है, उसको खीस जरूर 1 से 2 घंटे के अंदर पिलाना चाहिए।
0: जी
1: खीस में रोग प्रतिरोधक तत्व होता है और साथ ही मेमने का जो पहला मल जो उसके इंटेस्टाइन में, उसके आंत में रहता है, वो निकालने में भी सहायक होता
0: यानी
1: है।
0: पेट की सफाई हो जाती है।
1: पेट की सफाई हो जाती है। और उसके बाद 3 दिन तक 250 ग्राम दूध रोज देना चाहिए,
0: एक पाव
1: माँ, हाँ, 1 पाव दूध रोज बच्चे को देना चाहिए। उसके बाद 2 सप्ताह के बाद धीरे धीरे वो दूध कम कर देना चाहिए और एक बच्चों में शुरू करना चाहिए क्रीप फीड या
0: जी,
1: स्टार्टर फीड।
0: अच्छा
1: वो जो क्रीप फीड स्टार्टर फीड होता है, इसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है। भेड़ और बकरियों में एक पेट नहीं होता, ये 4 पेट वाले जानवर हैं, रूमन होता है।
0: जी
1: तो रूमन के विकास के लिए और इनकी तेजी से ग्रोथ के लिए, इनके वजन में वृद्धि के लिए ये बहुत जरूरी है।
0: लेकिन इनकी मात्रा कितनी?
1: बिल्कुल, जहां तक मात्रा का प्रश्न है, ये अगर 5 केजी का बच्चा है तो उसे 50 से 100 ग्राम तक दिया जाए, और 8 केजी का पशु है तो 100 से 150 ग्राम, और धीरे धीरे बढ़ाते जब 12 केजी का, 15 महीने का पशु है तो उसे 300 ग्राम तक, एक वयस्क नर या मादा को 300 ग्राम फीड तक दिया जा सकता है।
0: डॉक्टर साहब, जो भी भेड़ बकरियों के मेमने हैं, बच्चे हैं, उनको स्टार्टर राशन जो आप देने की बात कर रही हैं, तो इसके कुछ खास नियम होंगे? कुछ सावधानियां होंगी।
1: हाँ बिल्कुल, सावधानियां और नियम जरूर हैं, क्योंकि ये शुरू शुरू में दूध पी रहे हैं बच्चे 2 हफ्ते तक, उसके बाद हम 2 सप्ताह बाद इसमें ये शुरू कर रहे हैं, तो इनके सामने मन चाहा थोड़ा सा दाना रख दिया जाए ताकि वो धीरे धीरे चखते रहें,
0: जी
1: और चखने के

0: साथ धीरे धीरे इनमें उसको खाने की प्रवृत्ति बने और उसमें रुचि आए, और साथ ही इनका जो फीडर हो, क्री फीडर हो, वो इतना छोटा हो कि अन्य जो व्यस्क मादा या नर हो या बकरी भेड़ हो, वो उस क्री फीडर में अपना मुंह घुसा करके उनका स्टार्टर राशन ना ले सके, केवल बच्चे ही उसमें ले सके, और जो भी ताजा दाना हो वो कम मात्रा में ही दे, इकट्ठा ना दे।
1: डॉक्टर साहब, जो गर्भित भेड़ और बकरियां हैं उनकी आहार व्यवस्था में कुछ खास?
0: गर्भावस्था में 4-5 महीने के गाभिन पशु को 250 ग्राम अतिरिक्त दाना देना चाहिए, जैसा कि पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं।
1: एक पाव अतिरिक्त,
0: एक पाव अतिरिक्त, जैसा कि पहले भी हम कह चुके हैं कि एक व्यसक को 250 से 300 ग्राम तक चाहिए उसकी मेंटेनेंस के लिए। तो वही मादा अगर गर्भावस्था को प्राप्त हो गई है तो 300 ग्राम में 250 ग्राम या एक पाव अतिरिक्त जोड़ करके उसको दाना का मिश्रण दिया जाना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, बरसात का मौसम है, ये तो रही आहार व्यवस्था की बात भेड़ और बकरियों के लिए, उनका प्रबंधन भी महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल, प्रबंधन का बिंदु है। तो हमने आहार के बारे में तो काफी कुछ पशुपालक भाई बहनों को बता दिया है, बाड़े को लेकर के भी हमें बहुत सावधान रहना है, क्योंकि बकरी में नमी के कारण कई ऐसी बीमारियां हैं जो हो सकती हैं, जैसे फुट रॉट है, पीपीआर है, तो हमेशा इनका शेड जमीन से ऊपर होना चाहिए, भूमि से ऊंचे स्थान पर होना चाहिए, और धूप और हवा का आवागमन होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए ताकि नमी ना रहे बाड़े में। और बाड़े में 10 वर्ग फीट बाड़े में स्थान होना चाहिए एक पशु के लिए, एक व्यसक के लिए, और 20 वर्ग फीट बाहर का स्थान होना चाहिए,
1: खुला
0: स्थान घूमने के लिए। और इसके अलावा जैसा कि पहले भी है कि गीलापन और नमी से बहुत ज्यादा जरूरी है बचाव करना, बाड़ा सूखा रहना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, पशुपालक भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे भेड़ बकरियों की आहार व्यवस्था और उनके प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके पशुपालन निदेशालय आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 705-459-7847 705-459-7847 70-54-59-7847।
1: डॉक्टर इति मिश्रा, आज आप कार्यक्रम में आई और भेड़ बकरियों की आहार व्यवस्था इस मौसम में कैसी हो और उनका प्रबंधन कैसे हो, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: प्रीता बहनी, पंचन के यहाँ इंतजार रहा थे कि जानकारी के बातन के साथ साथ कुछ गीत गौनी सुन जाए तो मजा आ जाए थे। तो देखो आज हम पंचन बद लायन है एक कजरी, जिसका सुनाई रही संजोली पांडे बहनी।

0: अभिषेक भैया,
1: हाँ बहनी।
0: जहाँ अपनी थाली में है
1: हाँ
0: दाल चावल रोटी जरूरी है, उसके साथ साथ हमका लागत सब्जी और ज्यादा जरूरी है,
1: बिल्कुल भैया,
0: क्योंकि इनसे जो है बहुत पौष्टिकता मिलत है। तो ई पौष्टिकता भरी सब्जी तबहे मिली है हमका
1: हाँ
0: जब उनका अच्छा बीज उत्पादन हुई।
1: हाँ
0: तो
1: बहनी,
0: भैया देखो, आज अपने बीच में यहाँ है दूरभाष वार्ता के माध्यम से नहीं, परमेंद्र सिंह तोमर भैया
1: हाँ
0: जोन करते हैं सब्जी मटर बीज उत्पादन। तो भैया यह जानकारी लीन जाए आज के किसान के अंतर्गत परमेंद्र सिंह तोमर भैया से।
2: किसान भाइयों बहनों, आइए आज आपको ले चलते हैं जालौन जनपद के कौच ब्लॉक के ब्रासनी गांव, जहां सब्जी उत्पादन और सब्जी बीज उत्पादन से जुड़े परमेंद्र सिंह तोमर भैया हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। परमेंद्र सिंह तोमर भैया नमस्कार।
3: नमस्कार डॉक्टर साहब।
2: आप सब्जी उत्पादन और सब्जी मटर के बीज उत्पादन के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं, ये बताएं कि इसकी शुरुआत हुई कब से?
3: सर, इसकी शुरुआत हमारी हुई है 2017 से। हाँ,
2: यानी लगभग 9 साल हो गए।
3: 9 साल। इसका हम जो ब्रीडर सीड लाए थे उस कानपुर चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, इसका ब्रीडर सीड लाए थे जनक सीड।
2: अच्छा
3: इसके पहले हम किसान थे और हमने देखा कि अच्छी क्वालिटी के उन

0: उन्नत सील हमको बीज बोना है, अच्छी क्वालिटी के बीज हमें किसानों को देना है। हमारा जो किसानों का समूह जुड़ा है वो 50 गांव में हमारा किसानों का एक समूह बना हुआ है।
1: और सब सब्जी मटर उत्पादन करते हैं,
0: हाँ
1: तो जब पैदा होता है तो हरी मटर क्या बाजार को भी भेजते हैं?
0: हाँ जब पैदा होने के बाद हम किसानों में जो अच्छे किसान है हमारा करीबन 5 राज्यों में बीज जाता है।
1: तो सब्जी मटर में कौन कौन सी प्रजातियां आप लगाते हैं अपने खेत पर?
0: अपने खेत में हम लगाते हैं AP3, GS10, GS10 में 3-4 वेराइटियां हैं, और काशी उदय, काशी नंदनी और M7, अजंता 7 करके आती एक वेराइटी लुधियाना यूनिवर्सिटी की,
1: जी
0: उसको भी लगाते हैं। अर्किल भी लगाते हैं, अर्किल का सीड हम पंतनगर से लाते हैं, कुछ सीड हम जबलपुर यूनिवर्सिटी से लाते हैं, कुछ हम दिल्ली पूसा से लाते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटियों से हम उसका जनक सीड लाते हैं, ब्रीडर ब्रीडर से हमारा बनता है फाउंडेशन फर्स्ट और फाउंडेशन सेकंड हम किसान को देते हैं, और पूरा माल हमारा फाउंडेशन सेकंड से 35 में पूरा हमारा जाता है। बीज की जैसे जिस किसान को हम बीज लगवाते हैं उसकी देखभाल हम करते हैं, उसकी हम उसमें जो टेरिगेशन पौधा होता है उसको निकलवाते हैं, उसकी थ्रेसिंग करने के बाद उसको सुखाते हैं, सुखाने के बाद अपनी मशीनों से ग्रेडर ग्रेफ्टी करते हैं। बीज विधायन की हमारी जो मशीनें लगी हुई हैं
1: जी,
0: उसके बाद हमारा शॉर्टेक्स प्लांट से भी माल निकलता है, कोई दाना कटापटा जो दाना होता है उसको हम निकलवाने के बाद उसकी बुनाई भी करवाते हैं, जैसे दाना हमारा कटा है, मिट्टी है, कंकड़ है, उसका सब मशीनों से निकलने के बाद उसमें काफी हमारा इन्वेस्ट निकल जाता है। कुछ जो नंबर एक की क्वालिटी जो बनती है, प्योरिटी जो होती है, 100 में से 100 भी दाने का जमिनेशन हो वो हम किसानों में अन्नदाता किसानों को देते हैं।
1: तो इस साल क्या योजना है आपका, सब्जी मटर बीज उत्पादन का रकबा कितना होगा, और किसान भाई बहन जो 50 गांव में आपसे जुड़े हैं उनका मिलाकर के इस बार रकबा कितना होगा?
0: इस साल हमारा जो बीज का अनुमान है, जो हमें बीज बांटना है वो हम बांटेंगे 1,000 क्विंटल। 1,000 क्विंटल किसानों में बीज हम बांटेंगे, उसका हमारा 10 गुना उत्पाद होगा, 10,000 क्विंटल का उत्पाद हो जाए। और हम अपनी जमीन में 400 बीघा जमीन में अपने खुद की जमीन में बीज करते,
1: यानी एकड़ में बात करें तो
0: मान के चलो 400 बीघे का अपना जैसे हो गया, हमारे यहाँ जो एकड़ होता है वो 2.5 बीघे का एकड़ होता है
1: जी,
0: 400 बीघे का हमारा एकड़ हो गया करीबन 200 एकड़ की लगभग।
1: तो कब से बुआई की तैयारी है आपकी सब्जी मटर की?
0: 200 एकड़ में हमारा खुद का लगता है और बाकी हमारे जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो किसान भी लगाते हैं जो तिल किसान है।
1: तोमर साहब ये बताएं कि इस साल बुआई की तैयारी कब से है आपकी?
0: हमारी बुआई की तैयारी अक्टूबर माह से शुरू हो जाती है, 20 अक्टूबर से हम बीज उत्पाद का काम शुरू कर देते हैं।
1: तो बुआई और बुआई के पहले खेत की तैयारी से लेकर के फसल की कटाई तक कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम करते हैं आप सब्जी मटर के उत्पादन और सब्जी मटर के बीज उत्पादन में?
0: बुआई से खेत की जब तैयारी करते हैं तो उसमें हम अपना कंपोस्ट खाद भी डलवाते हैं, और उसमें खेत में हम गहरी जुताई भी करते हैं, और फिर इसके बाद खेत अच्छे से बना के हम उसको मटर को बबवाते हैं। बिजाई करने के बाद जब हमारा मटर 25 दिन का हो जाता है उसमें स्प्रिंगलर सेट करवाते हैं, स्प्रिंगलर सेट माने चिड़िया वर्षा करते हैं।
1: अच्छा,
0: चिड़िया वर्षा करने के बाद हमारा जब फूल प्रफुल्लन पे आता है तो उसमें हम अपनी अमीनो एसिड में दवा डलवाते हैं जिससे फूल अधिक आए
1: जी,
0: और दाना हमारा बोल्ड निकले, और उसमें समय समय पे जो भी फसल की आवश्यकता अनुसार उसमें डलवाते रहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह।
1: तो एकड़ पीछे लागत कितना गिरती है, उत्पादन कितना ले लेते हैं, और आपका मुनाफा होता कितना है?
0: मुनाफा एक एकड़ में किसान का इस साल का जो रेशियो हम बताएं, इस साल जो हमने बीज दिया एक एकड़ में बीज हमारा 75 kg लगता है मटर का सीड
1: जी,
0: 75 kg हमारा 7,500 रुपये का सीट हो गया, 7,500 का सीट हो गया, 2,500 रुपया उसका खाद पानी का मान के चलो एक एकड़ में 2,500 रुपये वो खर्चा आ जाता है, और एक एकड़ में 3,000 रुपये कटाई का खर्चा आ जाता है
1: जी,
0: और 1,000 रुपये थ्रेसिंग का खर्चा आ जाता है, तो हमारा 10,000 और 13,000 और 14 और 1,000 अतिरिक्त खर्चा और मान लें 15,000 रुपये एकड़ खर्चा आ जाता है
1: जी,
0: और इसमें हमारा उत्पाद हो जाता है 40,000 रुपये का।
1: अच्छा,

0: इसमें किसान को हमारे बच जाता है 25,000 रुपये।
1: जो अब तक का आपका तजुर्बा है सब्जी मटर बीज उत्पादन का, उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: हमारे योगी जी का, यहाँ पे योगी जी का कार्यक्रम लगा था हमारे जालौन में, उरई में आए थे, तो मटर के लिए हमारे जिले के लिए योगी जी ने काफी सुविधा दे रखी है।
1: जी
0: जैसे कोल्ड स्टोर, जैसे मटर रखते थे घर पे तो उसका टंकी अंकी आ जाता था, खराब दाना हो जाता था, तो योगी जी ने हमारे कोल्ड स्टोर यहाँ पे काफी कर दिए हैं, उसमें का नाम कोल्ड वालों को सब्सिडी भी दी है।
1: कुछ हरी मटर बाजार को भी बेचते होंगे?
0: हाँ, बाजार में जो खाली फली है किसान तुड़वा लेता है, जैसे रेट फली का अच्छा रहता है तो फली वाली मटर किसान अलग करता है, अपना कुछ फली भी तुड़वा लेता है, कुछ अपना सीड भी तैयार कर लेता है।
1: आप भी सब्जी मटर सीधे बाजार को बेचते होंगे? जी
0: जो हमारे एफपीओ हैं, एफपीओ के माध्यम किस किस किसान का रेट कुछ महंगा जाता है तो
1: जी
0: हम एफपीओ के माध्यम बेचते हैं, उसमें हमारे जिला अधिकारी महोदय को अध्यक्ष बनाया है।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: सर, हमारा मोबाइल नंबर है 9450645035, 94-50-64-50-35, 94-50-64-50-35।
1: परमेंद्र सिंह तोमर भैया, आज आपसे इतनी अच्छी बातचीत हुई।
0: जी
1: आप
0: सर,
1: सब्जी मटर उत्पादन कर रहे हैं और सब्जी मटर का बीज उत्पादन कर रहे हैं और पूरे
0: जी
1: देश
0: जी
1: में जाने जा रहे हैं। आपकी
0: जी जी
1: सफलता
0: जी
1: के लिए आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रधानमंत्री किसान

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: पुनीता बहनी।
4: हाँ अभिषेक भैया।
3: कार्यक्रम जो हम सबको बड़े निके से ने करी थे तो इंतजार रहा थे कि जो पंच भैया हम का सुन रहे हैं कुछ अपनी प्रतिक्रिया हमने तक पहुँचावे और प्रतिक्रिया पहुँचा सकते हैं पंच भैया अपने चिट्ठी पत्री के माध्यम से ने या ईमेल के माध्यम से ने। तो पंच भैया के यहाँ बता दो पता।
4: भैया अपने कार्यक्रम का पता है कार्यक्रम किसान वाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ पिन कोड है 226001।
3: पंचो हमारे ईमेल आईडी है farmandhome@gmail.com।
4: भैया आज अपन कार्यक्रम है तक सब पंचन से लीन जाए आज्ञा।
5: जय हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार

एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार तुम ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो। स्वामी विवेकानंद के अनुसार तुम ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ सहित देश के 45 स्थानों पर आयोजित रोजगार मेले में वर्चुअली 51,000 से अधिक युवाओं को वितरित किए नियुक्ति पत्र। कहा, मुक्त व्यापार समझौतों से खोल रहे हैं अवसरों के नए द्वार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के अंतर्गत राज्य के 818 अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में बनाएगा अपना स्थान। सेवा संकल्प अभियान के तहत मेरठ में हुआ एयर शो, नौहॉक जेट की कलाबाजियों ने हजारों दर्शकों को किया रोमांचित। और मथुरा में आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया राधाष्टमी का पर्व। देश विदेश से बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त।

0: नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मुक्ता शर्मा। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ, आगरा सहित देशभर के 45 स्थानों पर आयोजित 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
1: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, जिससे देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह शामिल हुए। उन्होंने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में 167 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए सबकी सहभागिता की आवश्यकता है।
2: हम लोग विकसित भारत 2047 की बात करते हैं, उसे सबकी सहभागिता की, सबका कोऑपरेशन की जरूरत, सबकी मेहनत की जरूरत है और सबकी सोच की जरूरत है।
0: आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने कहा कि रोजगार देने का कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा किया जा रहा है।
3: 20वें रोजगार मेले में 12,75,000 लोग पहले ही पा चुके हैं और आज 45 स्थानों पर

0: 51,000 लोगों को विभिन्न विभागों में प्रधानमंत्री जी ने नियुक्ति पत्र दिया है। और सभी बच्चों से जो मैं बात कर रहा था उसमें सभी लोगों ने यही कहा है कि 100% पारदर्शिता के साथ लिखित के आधार पर बिना इंटरव्यू के उनकी नौकरी लगी है।
1: प्रयागराज में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि देश की युवा शक्ति को मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरंतर कार्य कर रहे हैं।
2: हमारी सरकार युवाओं को इस देश का सबसे बड़ा सामर्थ्य मानती है और विकसित भारत एट 2047 का स्वप्न युवाओं के योगदान से ही पूरा होना है। इसलिए 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने युवाओं की शिक्षा, कौशल, पक्की सरकारी नौकरी और स्वरोजगार के अवसर, इन सभी स्तंभों पर काम किया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम जानेंगे प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से देश के कमजोर जनजातीय समूहों के जीवन में आए बदलाव के बारे में। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन एक केंद्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य भारत के कमजोर जनजातीय समूह को विकास से जोड़ना है। यह योजना विकास को आजीविका और आर्थिक अवसरों से भी जोड़ती है। इसके तहत 24,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी दी गई है। योजना के तहत जून 2026 तक 2.67 लाख पक्के मकान पूरे हो चुके हैं। 8,473 गांव में 100% पाइप से पानी की आपूर्ति भी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम जनमन योजना के जरिए होने वाला विकास आदिवासी समाज को प्रगति के समान अवसर दे रहा है।
4: पीएम जनमन योजना के जरिए आज देश के उन आदिवासी इलाकों में भी विकास पहुंच रहा है जो सबसे पीछे छूट गए थे, कोई पूछने वाला नहीं था।
3: गोरखपुर जनपद के ग्राम जंगल तीनकोनिया के राम गणेश ने बताया कि पीएम जनमन योजना से उसके गांव की तस्वीर बदल गई है।
5: पीएम जनमन योजना के तहत लाभ मिला है जो कि हमारे गांव में कभी न तो पानी मिलता था, न बिजली मिलता था, न तो राशन कार्ड मिलता था, न तो हम लोग को मकान मिलता था। 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो उसमें हम लोग को प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास और बिजली आई।
3: यह योजना कमजोर आदिवासी समुदायों को भारत के विकसित भारत की यात्रा के केंद्र में रखती है। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के अंतर्गत आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में नवचयनित 818 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे और उन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक 9.5 लाख नौजवानों को नियुक्ति दी है और अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिभाशाली युवा जब यूपी की ताकत बनेंगे तो प्रदेश नंबर 1 इकोनॉमी के रूप में खुद को स्थापित करेगा, हर क्षेत्र में नए भारत के नए यूपी के रूप में अपना स्थान बनाएगा।
6: 1 लाख से अधिक नौजवानों को अगले 6 महीने के अंदर ये नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम के साथ हम जोड़ेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है ये प्रतिभाशाली युवा जब यूपी की ताकत बनेगा तो यूपी भारत की नंबर 1 इकोनॉमी के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। नए अवसर पैदा होंगे हर एक क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में अपना स्थान बनाएगा।
1: सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में मेरठ के मोहिउद्दीनपुर स्थित न्यू इंटीग्रेटेड टाउनशिप में आज एक एयर शो का आयोजन किया गया। आयोजन में शामिल होने के लिए हिंडन एयरबेस ने से उड़ान भरकर 9 हॉक जेट विमान मेरठ पहुंचे और प्रदर्शन किया। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम में मेरठ के 3 स्क्वाड्रन लीडर भी शामिल रहे। भीड़ के मद्देनजर जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए विशेष इंतजाम किए थे। वहीं गोरखपुर के महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में हिंदी भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जबकि पीलीभीत में स्कूल कॉलेजों में रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गयी।

को सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। राहत आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 1 अप्रैल 2026 से 18 सितंबर 2026 तक विभिन्न आपदाओं से बचाव और राहत के लिए प्रदेश के विभिन्न जनपदों को अलग अलग मदों में कुल 249.76 करोड़ रूपये की धनराशि जारी की गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ सहित देश के 45 स्थानों पर आयोजित रोजगार मेले में वर्चुअली 51,000 से अधिक युवाओं को वितरित किए नियुक्ति पत्र। कहा, मुक्त व्यापार समझौतों से खोल रहे हैं अवसरों के नए द्वार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के अंतर्गत राज्य के 818 अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में बनाएगा अपना स्थान। सेवा संकल्प अभियान के तहत मेरठ में हुआ एयर शो, 9 हॉकजेट की कलाबाजियों ने हजारों दर्शकों को किया रोमांचित। और मथुरा में आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया राधा अष्टमी का पर्व, देश विदेश से बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन अब समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।

FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत श्रोताओं, फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस कार्यक्रम का पहला गीत आप सबको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में, राजा फिल्म से।

0: या ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी ओटीपी पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
1: आरबीआई कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
2: संदेश से पहले आपने सुना श्रोताओं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में कौन है जो सपनों में आया फिल्म का गीत। और श्रोताओं कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं गुलाम फिल्म से, आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की।

अभी आपने सुना कुमार शानू की आवाज़ में श्रीमान आशिक फिल्म का गीत। अरब श्रोताओं कार्यक्रम का आखिरी गीत आइए सुनते हैं आशा भोसले और विजय बेंडक्ट की आवाज़ में लव लव लव फिल्म से।

अगले क्रम में आइए सुनते हैं श्रोताओं गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुगम संगीत। और सुगम संगीत कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति सोनू निगम की आवाज में।

0: और अब श्रोताओं, सुगम संगीत कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति सोनू निगम की आवाज में।
1: ओ जाने जा, ये सच है कि मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कभी खुलकर न कर सका, मगर मेरी आंखें हमेशा मेरे दिल की हालत बताती रही, और तू है कि मुझसे बेखबर आज भी है।

अगले क्रम में आइए सुनते हैं श्रोताओं कार्यक्रम फिल्म संगीत। और फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत अलका याग्निक की आवाज में संग्राम फिल्म से। गीत की बोल नदीम के हैं, समीर के हैं क्षमा कीजिएगा, और संगीत नदीम श्रवण का है।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: संदेश की बात श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है जुनून फिल्म से। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और

फिल्म संगीत कार्यक्रम का आखिरी गीत आइए सुनते हैं, अलका याग्निक और मुकुल अग्रवाल की आवाज में, सपने साजन के फिल्म से।

जगजीत सिंह की गायस गजल के साथ ही हमारा गाय फिल्म में गीतों का कार्यक्रम सुगम संगीत समाप्त हुआ। एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओब्र केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही क्षणों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दी। पश्चिमी रेलवे के उधना उकाई सोंगाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण को भी मंजूरी। 2 दिवसीय पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन नागालैंड में संपन्न। राष्ट्रीय शिक्षा

0: नीति 2020 के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ. स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी के नवीनीकरण का आह्वान किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह तटीय आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरलम महाराष्ट्र तमिलनाडु और तेलंगाना में कल तेज बारिश की संभावना और 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
1: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है।
1: भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और भारत की स्टार्टअप स्टोरी अब केवल बड़े शहरों की कहानी नहीं है। आज करीब आधे रिकॉग्नाइज स्टार्टअप टीयर टू और टीयर थ्री शहरों में है। यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है।
0: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। कोलकाता में शिक्षा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार ने नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने विशाखापट्टनम में आयोजित 20वें रोजगार मेले में 200 नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मुंबई में युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। एक रिपोर्ट।
2: इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि पुल के हिस्से में 91 करोड़ से अधिक रुपए की अनुमानित लागत वाले ओपन वेब गर्डर सम्मिलित होगा। 4 लेन रोड ओवर ब्रिज सड़क यातायात की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दक्षिण तट रेलवे के 73 किलोमीटर लंबे सावल्यापुरम गुंटूर खंड पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के उन्नयन के लिए 142 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस खंड को 25 किलोवाट की एक यूनिट से 25 किलोवाट की दो यूनिट के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। वहीं सोलापुर डिवीजन के 7 स्टेशनों पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत मध्य रेलवे के मोहोल, मुंधेवाड़ी, बाले, सोलापुर होटगी जंक्शन होटगी एक कैबिन शाहबाद और वाडी जंक्शन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नलिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगी। सुपर्णा की

0: रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नागालैंड के चुमाओ के दीमा में नागा यूनाइटेड विलेज में दो दिन का पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन आज संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के नीति निर्माता, शिक्षाविद और प्रशासक शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने पर चर्चा की।
3: यह सम्मेलन नागालैंड सरकार ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित किया था। इसका विषय था एनईपी 2020 को लागू करना, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिकल्पना, चुनौतियां और अवसर। समापन समारोह में आज त्रिपुरा के उच्च शिक्षा, पंचायत और सामान्य प्रशासन मंत्री किशोर बर्मन ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। सम्मेलन में ये भी प्रस्ताव रखा गया कि पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद के लिए प्रधानमंत्री के विशेष वित्तीय पैकेज पर विचार किया जा सकता है। कोहिमा से असुनियों की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। आज की इस कड़ी में आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए इस विजन को हकीकत में बदला गया है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में प्रगति प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य विकास परियोजनाओं, सरकारी योजनाओं और लोगों की शिकायतों का तेजी से समाधान करना है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए प्रधानमंत्री खुद केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्यों के साथ सीधे समीक्षा करते हैं। पिछले 10 वर्षों में प्रगति ने कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी की वजह से होने वाली समस्याओं को दूर करने और तेजी से फैसले लेने में मदद की है। इससे अधिकारियों में जवाबदेही की भावना भी मजबूत हुई है। इस साल फरवरी में राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि प्रधानमंत्री स्तर पर विस्तृत निगरानी के कारण 85 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और उनमें तेजी लाने में मदद मिली है।
5: हमने एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया, हर महीने बैठा और लगातार उस काम करते करते और संबंधित राज्यों को भी बिठाया, हर एक की बारीकी से देखा और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि इस प्रगति के इम्प्लीमेंटेशन को बारीकी से प्रधानमंत्री के स्तर पर देखे जाने के कारण 85 लाख करोड़ रुपीज का काम को गति मिली। देश की कितनी बड़ी शक्ति को अनलॉक किया हमने, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है ये हमने करके देखा है।
4: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बीवी नगर हैदराबाद की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर अमिता अग्रवाल ने बताया कि प्रगति तंत्र की मदद से एम्स से जुड़े पानी और बिजली की आपूर्ति जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने में मदद मिली।
6: कि हमारे पास दो मेजर इश्यूज थे, एक पावर सप्लाई का और एक वाटर सप्लाई, जो कि दोनों बहुत अहम होते हैं अस्पताल के लिए, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की इंटरवेंशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरवेंशन और साथ में स्टेट गवर्नमेंट का हेल्प से ये प्रॉब्लम्स दोनों धीरे धीरे करके सॉल्व हो गए।
4: प्रगति प्लेटफॉर्म सहकारी संघवाद का भी एक उदाहरण है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और केंद्र के विभिन्न मंत्रालय एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलकर काम करते हैं। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रगति की 53 बैठकों की अध्यक्षता कर चुके हैं। आनंद कुमार के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। आज नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉक्टर वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की।
7: I think close to 8 cargo planes have arrived.
8: अब तक लगभग 8 कार्गो विमान 130 टन राहत सामग्री लेकर आ चुके हैं. 50 से अधिक भारतीय कर्मी आज भी बचाव और राहत कार्यों में मदद कर

0: रहे हैं, खासकर उन लोगों की जान बचाने और उन्हें निकालने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो शायद अभी भी इन पनबिजली सुरंगों में फंसे हो सकते हैं। मुझे लगता है कि भारत सरकार मदद के मुद्दे को बहुत सकारात्मक रूप से देख रही है।
1: इस बीच भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाई, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल को बाढ़ आपदा में सहायता के लिए राहत सामग्री ले गया ये वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। नेपाल सरकार ने पिछले महीने विनाशकारी बाढ़ के कारणों की जांच के लिए 7 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 पद जीत लिए हैं। परिषद के यश डबास अध्यक्ष, रिया छावड़ी सचिव और लक्ष्य राज सिंह संयुक्त सचिव चुने गए। निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने छात्र संघ चुनावों में परिषद की जीत पर बधाई दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू को आज पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वे लुधियाना में पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के पास उस समय विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जब मुख्यमंत्री भगवंत मान का काफिला वहां से गुजर रहा था। श्री बिट्टू ने बताया कि भाजपा पंजाब से जुड़े मुद्दे उठाती रहेगी और जब भी जरूरत होगी मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों और कार्यालयों के बाहर शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन करेगी। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में कल तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मराठवाड़ा, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, कोंकण, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कल गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की। टेक बॉल स्पर्धा के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की क्विमसी डिसूजा को इंडोनेशिया की सुमाया से 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। क्विमसी कल कांस्य पदक मुकाबला खेलेंगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी कल सेमीफाइनल खेलेगी। सेमीफाइनल में भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। एक अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और खेलों में शानदार सफलता हासिल करेंगे। राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर आज मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव के साथ राधा अष्टमी मनाई। उत्तर प्रदेश के बरसाना, मथुरा, वृंदावन और ब्रज क्षेत्र के अन्य हिस्सों में श्री राधा रानी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दी। 2-दिवसीय पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन नागालैंड में सम्पन्न। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी के नवीनीकरण का आह्वान किया। और 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi emphasizes pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India, distributes more than 51,000 appointment letters at 20th Rozgar Mela. Railway approves provision of coverage version 4.0 on 607.7 route kilometers of Lucknow division, also gives nod to construction of 4-lane road overbridge on Udna Ukai Songar section.

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: संदेश के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं चित चोर फिल्म से। आवाज है यशोदास की, गीत

0: भोली भी से गीत कार्यक्रम के आखिरी में आपने सुना आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज में गुमराह फिल्म का गीत। साहिर लुधियानवी के लिखे गीत को संगीत से सजाया था रवि ने। FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही क्षणों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
2: साइंस, लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन।

नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, विशेष रूपक

0: तीन वर्गों में दिए जाते हैं, फीचर फिल्में, गैर फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन। फीचर और गैर फीचर वर्ग में उत्कृष्ट सिनेमा को पुरस्कृत किया जाता है, जबकि सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन खंड में सिनेमा के अध्ययन और उसके विश्लेषण पर केंद्रित कृतियों को सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का मकसद है बेहतर सिनेमा को प्रोत्साहित करना। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 22 सितंबर को एकता नगर गुजरात में प्रदान किए जाएंगे। इसे पहले केवड़िया के नाम से जाना जाता था। आपको बता दें कि ये पुरस्कार साल 2024 के लिए दिए जा रहे हैं। इन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार आर्टिकल 370 को दिया जा रहा है। इसके निर्देशक हैं आदित्य सुहास जांभले। इसी फिल्म के लिए अभिनेत्री यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जा रहा है। बेहतरीन मनोरंजन देने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए पुरस्कार इस बरस दिया जाएगा नाग अश्विन सिंह रेड्डी की फिल्म कल्कि 2898 एडी को।
1: ये 6000 सालों पहले देखा था,
2: वो शक्ति वापस आ गई।
0: किसी नए निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार फिल्म स्वातंत्र वीर सावरकर को दिया जाएगा। इसे बनाया है जाने माने अभिनेता रणदीप हुडा ने। राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार तमिल फिल्म कैप्टन मिलर को दिया जाएगा। इसके निर्देशक हैं अरुण माथेश्वरन, जबकि सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार तेलुगु फिल्म 35 चिन्ना काथा कादू को दिया जाएगा। इसके निर्देशक हैं नंदकिशोर इमानी। साल 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार राजकुमार पेरियासामी को दिया जाएगा, उनकी तमिल फिल्म अमरन के लिए। ये फिल्म शिव अरूर की पुस्तक इंडियाज मोस्ट फियरलेस ट्रू स्टोरीज ऑफ मॉडर्न मिलिट्री हीरोज पर आधारित थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा संयुक्त रूप से अभिनेता

निर्देशक का पुरस्कार राजकुमार पेरियासामी को दिया जाएगा उनकी तमिल फिल्म अमरन के लिए। ये फिल्म शिव अरूर की पुस्तक इंडियाज मोस्ट फियरलेस ट्रू स्टोरीज ऑफ मॉडर्न मिलिट्री हीरोज पर आधारित थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा संयुक्त रूप से अभिनेता

0: बहुत जरूरी है कि अनंतनाग आर के नारायण की कहानियों पर आधारित दूरदर्शन के बेहद लोकप्रिय सीरियल मालगुडी डेज में नजर आए थे और तब उन्हें घर घर पहचान मिली थी। अनंतनाग के लंबे करियर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उन्होंने अपने किरदारों में बहुत ज्यादा विविधता रखी है। हर तरह के किरदार उन्होंने निभाए हैं। अनंतनाग की शुरुआत कन्नड़ सिनेमा से हुई थी। फिल्म संकल्प में वो बतौर लीड एक्टर नजर आए थे। हाल ही में फिल्म केजीएफ में वो नजर आए और नई पीढ़ी ने उन्हें पहचाना।
1: गरुडन नोड़ रॉकेट कन्फर्म आयतु हियर इज अ मैन हु कम्स फ्रॉम दैट पावरफुल प्लेस ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೂ ಅವನನ್ನು ಮುಗಿಸಾಕಲಿಲ್ಲ.
0: ಅನಂತನಾಗ್ ನೆ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ ಮೇ ವರಿಷ್ಠ ಪತ್ರಕಾರ ಔರ್ ಲೇಖಕ ಆನಂದ್ ಇಂಗ್ಲಾಗಿ ಕಾ ಕಿರ್ದಾರ್ ನಿಭಾಯಾ ಥಾ. ದರಸಲ್ ಯೇ ಕಿರ್ದಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾ ಸೂತ್ರಧಾರ್ ಭೀ ಹೈ. ಹಿಂದಿ ಮೇ ಅನಂತನಾಗ್ ಅಂಕುರ್, ಭೂಮಿಕಾ, ಕಾಲಿಚರಣ್ ಔರ್ ಜುರ್ಮ್ ಜೈಸಿ ಫಿಲ್ಮೋ ಮೇ ನಜರ್ ಆಯೆ ಹೈ. सिनेमा और कला के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार ने साल 2025 में अनंतनाग को देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा था। अनंतनाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलने के लिए ढेर सारी बधाइयां। ये था संपादकीय। अब विशेष रूपक हिंदी साहित्य और सिनेमा।
2: हंस क्यों रहे हैं?
3: हम अपने दोस्त और नवाब बुरहान उल मुल्क के रिसालदार के नगर पोते मीर रोशन अली पे हंस रहे
2: हैं। जरा होश में आइए हुजूर। जरा हाँ
4: सुनिए, मेरी बात सुनिए।
0: सिनेमा और साहित्य दो अलग अलग धाराएं हैं, लेकिन दोनों का आपसी रिश्ता बड़ा गहरा है। जब कहानी पर आधारित फिल्में बननी शुरू हुई तो इसका आधार साहित्य बना। बहुत कम लोग जानते होंगे कि दादा साहेब फाल्के ने भारत की जो पहली फीचर फिल्म बनाई थी वो भारतेंदु हरीशचंद्र के नाटक हरीशचंद्र से प्रेरित और उस पर आधारित थी। साहित्यिक कृतियों पर समय समय पर फिल्में बनती रहती हैं, लेकिन ज्यादातर ये कहा जा सकता है कि मुंबई के फिल्मकार साहित्यिक कृतियों पर फिल्में बनाने से बचते हैं। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि मुंबई की अजंता मूवी टोन कंपनी ने सन 1933 के आसपास प्रेमचंद को मुंबई आमंत्रित किया था फिल्मों में लिखने के लिए। प्रेमचंद की कहानी पर मोहन भावनानी ने फिल्म बनाई मिल मजदूर। निर्देशक ने मूल कहानी में थोड़े बदलाव किए जो प्रेमचंद को पसंद नहीं आए। इस फिल्म में मजदूरों की क्रांति की बात की गई थी। कराची में कोई घटना हो गई और फिर फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सन 1934 में प्रेमचंद की कृतियों नवजीवन और सेवा सदन पर फिल्में बनी और ये फ्लॉप हो गईं। सन 1941 में भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा पर केदार शर्मा ने इसी नाम से एक फिल्म बनाई। ये फिल्म कामयाब रही। इसके बाद सन 1964 में केदार शर्मा ने इस फिल्म को दोबारा बनाया। इस बार फिल्म में रोशन का संगीत था। इस फिल्म को एक उत्कृष्ट कृति पर बनी एक उत्कृष्ट फिल्म के रूप में याद किया जाता है।

0: सन 1960 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी पर बनी फिल्म उसने कहा था। निर्देशक थे मोनी भट्टाचार्य, कलाकार थे सुनील दत्त और नंदा।
1: क्या नाम है तेरा? कमली। कमली, बड़ा प्यारा नाम है। मेरा नाम नंदू है। अच्छा नाम है ना?
2: और बारे पुत्रा भाई,
1: चल तू इधर रोज आती है।
3: हाँ।
1: कल आना, मैं तुझे बड़े बड़े अमरूद दूंगा।
3: अच्छा मैं जाऊँ? बड़ी देर हो गई है, मामा बिगड़ेंगे।
1: संभल के जाना। कमली बोल, सुन।
3: क्या?
1: तेरी कुमाई हो गई?
0: आचार्य

तुरसेन शास्त्री के उपन्यास धर्मपुत्र पर बी आर चोपड़ा ने फिल्म बनाई। सन 1961 में आई इस फिल्म धर्मपुत्र के निर्देशक थे यश चोपड़ा, कलाकार थे माला सिन्हा और शशि कपूर और इस फिल्म ने 9वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था।

मुंशी प्रेमचंद भले ही सिनेमा से निराश होकर लौट गए, लेकिन उनकी कृतियों पर फिल्में बनने का सिलसिला जारी रहा। सन 1963 में त्रिलोक जेटली लेकर आए फिल्म गोदान, जिसमें संगीत पंडित रविशंकर का था।

0: सन 1966 में ऋषिकेश मुखर्जी लेकर आए फिल्म गबन, फणीश्वरनाथ रेणु की मशहूर कहानी मारे गए गुलफाम पर फिल्म तीसरी कसम बनी। इसे प्रोड्यूस किया जाने माने गीतकार शैलेंद्र ने और इसके निर्देशक थे बासु भट्टाचार्य, कलाकार थे राज कपूर और वहीदा रहमान। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भले ही कामयाब न रही हो लेकिन 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।
1: एक बात का गुस्सा तो नहीं कीजिएगा?
2: बोलो।
1: बात यह है, मेले में चोर पॉकेटमार बहुत आते हैं।
2: सो तो आते हैं फिर?
1: और देखिए मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, 1600 रुपया है, आप संभाल के रख लीजिए। तो
2: अगर मैं मार लूं तो?
0: फिल्मों के लिए कई कहानियां लिख चुके और कई फिल्में बना चुके राजेंद्र सिंह बेदी की कृति एक चादर मैली सी पर बनी फिल्म फ्लॉप हो गई थी। प्रेमचंद की कहानी पर सत्यजीत रे ने अपनी हिंदी फिल्म बनाई शतरंज के खिलाड़ी। ये फिल्म साल 1977 में आई थी।
3: गजब हो गया।
4: क्या हुआ?
3: आज वो घर पर ही है, दीवान खाने में बैठे खेल रहे हैं।
4: खेल रहे हैं
3: शतरंज मिर्जा साहब के साथ? इससे पहले कभी घर पर तो नहीं खेली। अल्लाह मेरा तो जी होला जाता है, कहीं उन्हें शक तो नहीं हो गया?
4: तो माओ जान शतरंज खेल रहे हैं,
3: कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो?
4: हो ही नहीं सकती, जब खुली बिसात सामने हो तो सिवाय मोहरों के और कुछ दिखाई नहीं देता।
3: अरे हाँ, ये तो वो भी कह रहे थे।
0: दरअसल हिंदी की साहित्यिक कृतियों पर सफल फिल्म न बनने के कई कारण हैं। सिनेमा का अपना व्याकरण, अपना ढांचा है और सिनेमा एक पेशेवर इलाका है। जाहिर है कि फिल्में बनाने में पैसे लगते हैं और फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर कामयाब होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए साहित्यिक कृतियों में बदलाव किए जाते हैं जो साहित्यकार को मंजूर नहीं होते। फिर भी दुनिया भर में साहित्यिक कृतियों पर अच्छी फिल्में बनाने का सिलसिला जारी रहा है। राजेंद्र यादव के उपन्यास सारा आकाश पर बासु चटर्जी ने 1969 में फिल्म बनाई थी। मनु भंडारी की कहानी यही सच है पर उन्होंने बनाई रजनीगंधा, साल था 1974।
5: यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में।
0: कमलेश्वर की लंबी कहानी आगामी अतीत पर गुलजार ने बनाई मौसम। 1975 में कमलेश्वर के उपन्यास काली आंधी पर बनी फिल्म आंधी।
6: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है।
0: इन दिनों सिनेमा किताबों को अपना तो रहा है, ये किताबें अंग्रेजी की होती हैं या अन्य भाषाओं की और उन पर पेशेवर फिल्में बनाई जाती हैं, जैसे थ्री इडियट्स बनी थी चेतन भगत के उपन्यास पर। हिंदी कृतियों पर अच्छे सिनेमा का इंतजार दर्शकों को हमेशा रहता है। ये था विशेष रूपक हिंदी साहित्य और सिनेमा, रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं गायिका आशा भोसले की एक अनमोल रिकॉर्डिंग। आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को सांगली में हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1943 में फिल्म माजाबाड़ के एक गाने के जरिए शुरू किया था। संगीत दत्ता दावजेकर का था। हिंदी में उनका पहला गीत था फिल्म चुनरिया के लिए, संगीतकार थे हंसराज बहल। आशा भोसले ने अपनी बड़ी बहन लता

उन्होंने 7 बार सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। 2 बार उन्हें सर्वश्रेष्ठ गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। फिल्म उमराव जान के लिए

0: फिल्म इजाजत के लिए। साल 2000 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो सुनते हैं आशा भोसले की ये अनमोल रिकॉर्डिंग।
1: आकाशवाणी एक ऐसा नाम है जो बचपन से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जब छोटे थे हम लोग और जब रेडियो चालू हुआ था, वो जमाना अंग्रेजों का था और उस समय छोटे छोटे रेडियो सबके घर में होते थे। रिकॉर्ड्स तो कम होते थे, बहुत बड़े लोगों के पास होते, लेकिन शाम होती थी और हम कुछ भी काम हो छोड़ के, दौड़ना हो सब छोड़ के जाके गाना सुनते थे। और हेमंत कुमार, जगमोहन, पंकज मलिक, नूरजहान, ये तो लोग याद हैं बिल्कुल, क्योंकि मैं तब से हेमंत जी के बिल्कुल जबरदस्त फैन के, मेरे बेटे का नाम भी हेमंत रखा मैंने। उनका गाना बताती हूँ आपको, बहुत चलता था उस वक्त। आंचल से क्यों बांध लिया मुझे परदेसी का प्यार, ये गाना तब मैं सुना करती थी और मैं बिल्कुल उनके प्यार में थी, छोटी सी थी प्यार में, कि कभी हेमंत कुमार जी का आवाज मैं सुनती हूँ। ये आकाशवाणी नहीं होती तो कभी दुनिया को पता नहीं लगता कि कौन सिंगर अच्छा है, कौन सिंगर बढ़िया है और किसके गाने अच्छे हैं, कौन म्यूजिक डायरेक्टर है, मतलब म्यूजिक किसी को पता ही नहीं लगता। ये पूरा काम जो है हमारी आकाशवाणी ने चालू किया। उस आकाशवाणी पे गाने आते थे, उससे लोगों को पता लगता था कि ये सिंगर बढ़िया है या कैसे हैं, अच्छे हैं बुरे सब, या सिर्फ प्लेबैक सिंगर ही नहीं, क्लासिकल सिंगर, उनके शो होते थे यहाँ पर एक एक घंटा रात को, वो लोग गाते थे, बड़े गुलाम अली हो, आमिर खान साहब हो, और ये सब गाते थे और लोग सुनते थे। तो ये आकाशवाणी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि मेरा पहला जो कदम था गाने की तरफ जाने का, वो रेडियो में हुआ। रेडियो में मुझे बुलाया तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि जाओ, पास हो गई तो घर आना, नहीं तो आना ही नहीं घर। मैंने जाके अपने पिताजी के गाने गाए, वो गाने क्लासिकल ढंग के गाने, तो तब दिनकर अम्बल करके उनके स्टेशन डायरेक्टर थे, वो आए, उन्होंने गाना सुना और कहा अरे ये दिना की लड़की है। ज्यादा सुना ही नहीं, मेरे सर पे हाथ रखा और कहा इस महीने में वो शो देते हैं ना, सुबह 7 बजे आके गाओ, दोपहर को 2 बजे गाओ, रात को कुछ 7 बजे गाओ, ऐसे शो दे दिए। और मैं कांपते कांपते घर गई कि मैं कहीं गाऊंगी कैसे, छोटी थी। और रेडियो, और रेडियो का जो सब लाइट लगता था, लाल लाइट, के रिकॉर्डिंग शुरू हो गई मतलब लाइव, तो वो लाइट देखते ही तो पसीने पसीने हो जाता इंसान। लेकिन ईश्वर की मर्जी थी, यहाँ तक लाना था। पिताजी का आशीर्वाद, मंगेश शिव का आशीर्वाद है कि आज मैं उसी आकाशवाणी में बैठी हूँ। तब मैं 14-15 की थी, अभी भी मैं गा रही हूँ, स्टेज पे जाती हूँ, 3 घंटे खड़े होकर गाती हूँ, रिकॉर्डिंग करती हूँ। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, अब ऐसा सीधा सीधा रफी साहब गा रहे थे, तो मैंने बोला ऐसे नहीं, अगर ऐसे गए तो इशारों इशारों में दिल लेने, इशारों इशारों, हरकत दे दे के उसको ऊपर ले जाना। तो ये हमने काम किया। मैं जब गाना सुनती हूँ तो वो वक्त, वो सामने रिकॉर्डिंग थिएटर सब आ जाता है, तो मुझे जब आप कोई पूछता है कि आपको वो वक्त याद आता है तो आपको कौन म्यूजिक डायरेक्टर याद आता है, ऐसे अगर देखा जाए तो मुझे पहला म्यूजिक डायरेक्टर याद आता है मदन मोहन जी के, जिसको लैंग्वेज की तमीज, उर्दू आना, उर्दू जिसको आता हो वो बोल भी अच्छे लेते हैं, फिर वो ऐसे आदमी को साथ में रखते जिसको बहुत अच्छी उर्दू हो, साहिर साहब हुए या राजेंद्र कृष्ण, राजा मेहंदी अली, मजरू साहब, बहुत अच्छे अच्छे लोग साथ में रहते थे, तो उनके गाने का स्टाइल, सिखाने का स्टाइल, और वो उस वक्त के लोग इतने अच्छे थे। आपको बताऊं, मैं जाती थी बेटे गाना गाओ, ये ऐसा होता था, बेटे खाना खा के फिर गाना गाओ, किस तरह म्यूजिक डायरेक्टर।

0: थे, दीदी को भी बेटे बुलाते थे, बेटे गाना गाओ, तो ऐसे इतने बड़े नहीं थे हमसे, बड़े तो थे उम्र में लेकिन इतने बड़े नहीं थे, लेकिन वो बेटे बुलाते थे। जब पहला गाना गाया था तो डर डर के गाया था, बच्चे का गाना था पहला रिकॉर्डिंग, और बड़े बड़े थिएटर जो जहाँ शूटिंग होता है उनमें गाना रिकॉर्ड होता था। बॉम्बे में आने के बाद भी गाने वैसे ही रिकॉर्ड होते थे, बड़ा स्टूडियो है वहाँ, सेट लगा हुआ है और उस सेट में खड़े होके गाना गाना, कभी पेड़ है, कभी मंदिर है, कभी तालाब बना हुआ है छोटा सा, गंदा सा छोटा सा तालाब को बड़ा दिखाते थे, तो ऐसे ऐसी जगह खड़े होके गाना गाते थे। पूरी रात गाना चलता था, पूरे दिन गाना चलता था। एक ही मन में था कि जो इंसान मेहनत करेगा उसी को भगवान यश भी देगा। असल में देखा जाए तो पिताजी जब गुजर गए 42, उसके बाद टाइम थोड़ा खराब आया, काम करने की आदत थी, शायद मेरे अंदर ये है वो कि काम करते रहो, सफाई होनी चाहिए, वर्गो हूँ, वर्गो को बस सफाई की जरूरत होती है 8 सितंबर। तो क्या होता है कि काम करना मीन्स पूरा जोर लगा के वो काम करना। आशा भोसले जब बोरेली में रहती थी, दादर में रहती थी, और आशा भोसले में कोई फर्क नहीं आया, ना खाने पीने में, ना पहनने में, ना ही बातचीत में, ना ही गाने में। गाना अच्छा करने की कोशिश की, संसार बढ़ता गया, बच्चे बड़े हो गए तो घर चेंज करने पड़े, वरना वही रहती।
1: जी
0: मुझे इन चीज़ों से कोई प्यार नहीं है, मैं मटेरियल चीज़ों से बहुत दूर हूँ। मुझे चाहिए, इंसान को एक रूम की ज़रूरत होती है जिसमें एक टीवी हो, एक रेडियो हो, एक बाथरूम
1: जी
0: हो, पलंग हो, उस इंसान को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए,
1: जी
0: एक खाना बनाने का घर हो। तो मैं ऐसी औरत हूँ, मुझे जहाँ आप रखे, महलों में रखिए चाहे कहीं पर, मैं सब जगह पे खुश रहती हूँ, क्योंकि इंसान जो सपनों पे भी जीता है उसको कोई भी जगह चल। मैं सपने में जीने
1: क्या
0: वाली औरत
1: बात
0: हूँ, मैं हर में बैठी हूँ, मैं अपने सपनों में रहती हूँ, अपने ख्वाब में रहती हूँ, कोई भी ख्वाब मेरे को चलता है उसी में मैं बहती जाती हूँ, कैसे निकल गया दिन मुझे पता नहीं लगता,
1: जी
0: फिर मैं खुद ही सोचती और भासती हूँ, पागल नहीं हूँ मैं, कितनी देर से क्या सोच रही।

0: ساعتی شیش. स्मृति शेष में आज हम नमन कर रहे हैं जाने माने निर्देशक कुकू कोहली को। कुकू कोहली का 25 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 77 साल के थे। कुकू कोहली का असली नाम था अवतार कोहली। उनका जन्म 4 जून 1949 को पेशावर में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की राज कपूर के साथ बतौर सहायक। कई बरस तक राज कपूर के साथ उन्होंने फिल्म निर्माण के गुर सीखे। सनी देओल की फिल्म बेताब में वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे। फिल्म अर्जुन में भी वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहे। इसके बाद उन्होंने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा और बनाई धर्मेंद्र अभिनीत फिल्म कोहराम। सन 1991 में उन्होंने फिल्म फूल और कांटे का निर्देशन किया। इस फिल्म के जरिए अभिनेता अजय देवगन ने रुपहले पर्दे पर अपना पहला कदम रखा।
1: मैंने प्यार तुम्हीं से किया है, मैंने दिल भी तुम्हीं को दिया है।
0: इसके बाद उन्होंने फिल्म सुहाग बनाई, जिसके सितारे थे अजय देवगन, अक्षय कुमार, करिश्मा कपूर और नगमा।
2: गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा।
0: इसके बाद आई हकीकत, जो अजय देवगन और तब्बू के अभिनय से सजी थी। उनकी अगली फिल्म थी अनाड़ी नंबर वन, जिसमें गोविंदा डबल रोल में थे। इसके बाद कुकू कोहली ने फिल्म जुल्मी बनाई, जिसमें अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने अभिनय किया था। इसके बाद उनकी फिल्म आई ये दिल आशिकाना। संगीतकार नदीम श्रवण ने इस फिल्म से संगीत जगत में वापसी की थी।
3: ये दिल आशिकाना, ये दिल आशिकाना, ये दिल।
0: कुकू कोहली की आखिरी

फिल्म थी वो तेरा नाम था, जिसमें अर्जुन बाजवा और कंची कौल ने अभिनय किया था। विनम्र नमन। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का सितंबर महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के मुंबई स्थित स्टूडियोज में किया गया।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप सभी संगीत रसिकों का हार्दिक स्वागत है। इसमें आज हम आपको श्री एस हरिकुमार का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन सुनवा रहे हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ कर्नाटिक वायलिन रिसाइटल बाय श्री एस हरिकुमार।
0: श्री एस हरिकुमार केरल के एक प्रख्यात संगीतकार हैं, जिन्होंने कर्नाटक, हिंदुस्तानी और पाश्चात्य संगीत परंपराओं में अपनी विशेष पहचान बनाई है। सन 1980 में जन्मे आप 7 वर्ष की आयु में अपने पिता से वायलिन वादन सीखने लगे और 9 साल की आयु में आपने अपनी प्रथम प्रस्तुति दी। तदनंतर आपने स्वर्गीय अनंत लक्ष्मी वेंकटरामन, स्वर्गीय चालकुडी नारायण स्वामी और डॉक्टर एल सुब्रमण्यम जैसे सुविख्यात संगीत पारखियों के अधीन अपना संगीत प्रशिक्षण जारी रखा। यथाशीघ्र आपकी संगीत कौशल की परख हुई और आपको 18 वर्ष की आयु में आकाशवाणी में ए ग्रेड प्राप्त हुआ। संगीत के सफर में तबला विद्वान पंडित किशन महाराज और अनिंदो चटर्जी, साथ ही पाश्चात्य वायलिन वादक जॉन ल्यूक पोंटी के साथ संगति करते हुए, प्रस्तुतियां देते हुए आप पूरी दुनिया में छा गए। बाद में आप लंदन गए और वहां आपने फ्यूजन संगीत समूह ब्लू फायर की स्थापना की, जिसके एल्बम ब्रेथ टेकर ने दुनिया भर की वाहवाही लूटी। 7 एवं 11 तारों वाले इलेक्ट्रिक वायलिन पर वादन करते हुए सुर, ताल और विभिन्न संगीत शैलियों के सम्मिश्रण में नए आयाम तलाशने वाले आप अपने नवोन्मेषी दृष्टिकोण के लिए खूब जाने जाते हैं।
1: श्री एस हरिकुमार इज अ डिस्टिंग्विश्ड म्यूजिशियन फ्रॉम केरला हु हैज मेड हिज मार्क अक्रॉस कर्नाटिक, हिंदुस्तानी एंड वेस्टर्न म्यूजिकल ट्रेडिशंस। बोर्न इन 1980, हरिकुमार बिगैन लर्निंग द वायलिन फ्रॉम हिज फादर एट द एज ऑफ 7 एंड गेव हिज फर्स्ट रिसाइटल एट द एज ऑफ 9. He went on to receive training from renowned musicians, including late Anandalakshmi Venkataraman, late Chalakudi Narayana Swami, and Dr. L. Subramaniam. His musical accomplishments were recognized early, with Harikumar earning the Akashwani A grade by the age of 18. His musical journey has taken him across the world, with performances and collaborations with celebrated artists such as tabla maestros Pandit Kishan Maharaj and Anindo Chatterjee, as well as Western violinist Jean-Luc Ponty. He later moved to London, where he founded the fusion ensemble Blue Fire, whose album Breathtaker received acclaims in the world music scene. Known for his innovative approach, Harikumar also performs on electric violins with 7 strings and 11 strings, exploring new dimensions in melody, rhythm, and

0: उस जैन म्यूजिक
1: कार्यक्रम में संगत वाद्यकार हैं मृदंगम पर श्री चंगना शेरी के आर जैन और खटम पर श्री अंचल एच कृष्ण अय्यर.
0: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही विल बी अकंपनीड बाय श्री चंगना शेरी के आर जैन ऑन द मृदंगम एंड श्री अंचल एच कृष्ण अय्यर ऑन द घटम.
1: श्री एस हरिकुमार अपने वायलिन वादन की शुरुआत संत त्यागराज के एक पंचरत्न कीर्तन जगदानंद कारका से कर रहे हैं. राग है नाटा, ताल आदि.
0: श्री एस हरिकुमार बिगिन्स हिज वायलिन रिसाइटल विद जगदानंद कारका, अ पंचरत्न कृति बाय त्यागराजा इन द राग नाटा सेट टू आदि तालम.

0: आगे प्रस्तुत है आर वेणुगोपाल की रचना सरिसमाना, जो राग विटपी और आदि ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू सरिसमाना, अ कॉम्पोजिशन ऑफ आर वेणुगोपाल इन द राग विटपी, सेट टू आदि तालम।

0: आगे पेश है कृति सरस्वती नमोस्तुते जी एन बालसुब्रमण्यम की रचना जो राग सरस्वती और आदि ताल में निबद्ध है.
1: द नेक्स्ट आइटम इज सरस्वती नमोस्तुते इन द राग सरस्वती सेट टू रूपक तालम कंपोज्ड बाय जी एन बालसुब्रमण्यम.

0: अब आप सुनेंगे कृपया पालया, महाराज स्वाति तिरुनाल की रचना, जो चारुकेशी राग और मिश्र चाप ताल में निबद्ध है।
1: You will now listen to Kribaya Palaya, a composition of Shri Swati Tirunal in the rag Charukeshi set to Mishra Chapu Thalam.

0: ये था तनिया वर्तनम। इसे प्रस्तुत किया मृदंगम पर श्री चंगना शेरी के आर जैन और घटम पर श्री अंचल एच कृष्ण अय्यर ने। श्री एस हरिकुमार अपने वायलिन वादन का समापन महाराज स्वाति तिरुनाल द्वारा रचित एक तिल्लाना से कर रहे हैं जो धनाश्री राग और आदि ताल में निबद्ध है।
1: That was Tani Avartanam played on the Mridangam by Shri Changanasheri K.R. Jayan and on the Ghatam by Shri Anjal H. Krishnayyar. Shri S. Harikumar concludes his violin recital with a Tillana composed by Shri Swadi Tirunal in the Raga Dhanashri set to Adi Thalam.

0: इसी के साथ संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आज अब यहीं संपन्न होता है। इसमें आज आपने सुना श्री एस हरिकुमार का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन। कार्यक्रम में संगति कर रहे थे मृदंगम पर श्री चंगनाशेरी के आर जैन और घटम पर श्री अंचल एच कृष्ण अय्यर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के तिरुवनंतपुरम केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और दिल्ली आकाशवाणी से प्रसारित हुआ।
1: With that, we conclude the violin recital by Shri S. Harikumar in the broadcast of National Program of Music. He was accompanied by Shri Changanashiri K. R. Jayan on the Mridangam and Shri Anjal H. Krishna Iyer on the Ghatam. This broadcast was recorded at Akashwani Tiruvananthapuram and came to you from the Delhi station of Akashwani.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और अब से कुछ ही क्षण बाद समाचार होंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
2: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
2: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
1: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 133 करोड़

0: करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नागालैंड के चुमोकेमिटा में नागा यूनाइटेड विलेज में दो दिन का पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन आज संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के नीति निर्माता, शिक्षाविद और प्रशासक शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने पर चर्चा की। ये सम्मेलन नागालैंड सरकार ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित किया था। इसका विषय था एनईपी 2020 को लागू करना, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिकल्पना, चुनौतियों और अवसर। समापन समारोह में आज त्रिपुरा के उच्च शिक्षा पंचायत और सामान्य प्रशासन मंत्री किशोर बर्मन ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ स्वर्णिम वाग्ले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। आज नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉ वाग्ले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के भारतीय दल को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और खेलों में शानदार सफलता हासिल करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:05 हुए हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल प्रातः 5:59 पर अपने कल के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।